दुनिया में जल्दी हासिल होने वाले फायदों का ख्वाहिशमंद हो उसे यही हम दे देते हैं जो कुछ भी जिसे देना चाहें। फिर उसके मकसूम में जहन्नुम लिख देते हैं जिसे वो तापेगा मुलामत जदा और रहमत से महरूम होकर। और जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो और उसके लिए साई करे जैसी के उसके लिए साई करनी चाहिए और हो वो मोमिन तो ऐसे हर शख्स की साई मशकूर होगी। इनको भी और उनको भी दोनों फरीकों को हम दुनिया में सामान ज़ीस्त दिए जा रहे हैं। ये तेरे रब का अतिया है और तेरे रब की आता को रोकने वाला कोई नहीं है। मगर देख लो दुनिया ही में हमने एक ग्रोह को दूसरे पर कैसी फजीलत दे रखी है और आखिरत में उसके दर्जे और भी ज्यादा होंगे और उसकी फजीलत और भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर होगी। तू अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद न बना वरना मुलामत जदा और बेयारो मददगार बैठा रह जाएगा। तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत न करो मगर सिर्फ उसकी। वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ तक न कहो, न उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो और नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो कि परवरदिगार इन पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने रहमत और शफ़क़त के साथ मुझे बचपन में पाला था। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम सालेह बनकर रहो तो वो ऐसे सब लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूर पर मुतनब्बे होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आए। रिश्तेदार को उसका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक। फजूल खर्ची न करो। फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। अगर इनसे यानी हाजतमंदों रिश्तेदारों

हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आए, मगर वो हक से और ज्यादा दूर ही भागे जा रहे हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी होते जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो वो मालिक अर्श के मकाम को पहुंचने की जरूर कोशिश करते। पाक है वो और बहुत बाला बरतर है उन बातों से जो ये लोग कह रहे हैं। उसकी पाकी तो सातों आसमान और जमीन और वो सारी चीजें बयान कर रही हैं जो आसमानों जमीन में हैं। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह न कर रही हो, मगर तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं हो। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही बुर्दबार और दरगुजर करने वाला है। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान न लाने वालों के दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं और उनके दिलों पर ऐसा गिलाफ चढ़ा देते हैं कि वो कुछ नहीं समझते और उनके कानों में गिरानी पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने एक ही रब का जिक्र करते हो तो वो नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं। हमें मालूम है कि जब वो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं तो दरअसल क्या सुनते हैं, और जब बैठकर बाहम सरगोशियां करते हैं तो क्या कहते हैं। ये जालिम आपस में कहते हैं कि ये तो एक सहरजदा आदमी है जिसके पीछे तुम लोग जा रहे हो। देखो कैसी बातें हैं जो ये लोग तुम पर छांटते हैं। ये भटक गए हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिलता। वो कहते हैं जब हम सिर्फ हड्डियां और खाक होकर रह जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। इनसे कहो तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ या इससे भी ज्यादा सख्त कोई चीज जो तुम्हारे जहन में कबूल हयात से बईद तर हो, फिर भी तुम उठ कर रहोगे। वो जरूर पूछेंगे कौन है वो जो हमें फिर जिंदगी की तरफ पलटा कर लाएगा। जवाब में कहो वही जिसने पहली बार तुमको पैदा किया। वो सर हिला हिला कर पूछेंगे अच्छा तो ये होगा कब। तुम कहो क्या अजब कि वो वक्त करीब ही आ लगा हो जिस रोज वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसकी हम्द करते हुए उसकी पुकार के जवाब में निकल आओगे और तुम्हारा गुमान उस वक्त ये होगा कि हम बस थोड़ी ही देर इस हालत में पड़े रहे हैं।

لك أن نحجب عنك.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

मीडिया ने वो वक्त भी ले लिया जिसे आमतौर पर फारिग वक्त कहते थे। रात हुई, बिस्तर पर गिरा, सो गया, सुबह अलार्म बजा और वही फिल्म दोबारा शुरू। तो यहां मसला ये नहीं कि उसने तमाम काम सही से किए या नहीं, ठीक है, यानी बात यह कि जरूरी कामों की कसरत भी इंसान को थका सकती है और कभी इंसान को काम छोड़ने की नहीं, कामों के दरमियान सांस लेने की जरूरत होती है। खलवत इसी माने में जिंदगी का वक्फ़े तनफ्फुस बन सकती है। जैसे मुसलसल दौड़ने वाला शख्स कुछ देर रुककर सांस बहाल करता है, पानी पीता है, अपने जिस्म की हालत देखता है, फिर आगे चलता है, इसी तरह इंसान के बातिन को भी कभी ऐसी जगह दरकार हो सकती है जहां उससे फौरी परफॉर्मेंस ना मांगी जा रही हो, न किसी को जवाब देना, न किसी बहस में अपनी पोजीशन साबित करनी, न कंटेंट पब्लिश करना है, न किसी के रिएक्शन का इंतजार, सिर्फ रुकना है। और अजीब बात यह है कि यह रुकना, यही वक्फा बाकी जिंदगी को ज्यादा शूर के साथ गुजारने में मदद देता है। और जब रफ्तार कम होती है, जब सोचने का वक्त मिलता है, जब ठहराव हासिल होता है, तो इबादत के तजुर्बे में भी एक फर्क महसूस होता है। तो ये फर्क दरअसल अमल की क्वांटिटी में जरूरी नहीं, फर्क रफ्तार में है। वही कुरान मगर इस मर्तबा पढ़ने वाले के पीछे कोई घड़ी नहीं दौड़ रही है। वही दुआ, वही नमाज मगर इंसान हर रकात को कंप्लीट करने के बजाय उसके अंदर कुछ देर मौजूद रहने की कोशिश कर रहा है। तो समझिए ना, खलवत रफ्तार को कम करती है और जब रफ्तार कम होती है तो बाज़ औक़ात वही मानूस अमल एक नई गहराई के साथ महसूस होने लगता है। अब खलवत के दूसरे फायदे की तरफ आते हैं। खलवत का एक फायदा मजीद ये भी है कि अपनी सोच को दोबारा देखने का मौका मिलता है। फर्ज कीजिए एक शख्स बरसों से एक खास फिक्री माहौल में रह रहा है, कुछ दोस्त हैं जिनसे रोजाना गुफ्तगू होती है, कुछ मुकर्रीन हैं जिन्हें वो मुसलसल सुनता है, मुमकिन है किसी तंजीम, जमात, इल्मी हलके, समाजी तहरीक, किसी मखसूस इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट से भी उसका ताल्लुक हो। अब इंसान इल्म लोगों से लेता है, तरबियत भी, तजुर्बा भी, और ये सब लाजमन गलत नहीं, लेकिन एक सवाल फिर भी बाकी रहता है कि क्या मैंने कभी अपने माने हुए ख्यालात को हुजूम और भीड़ से बाहर आकर दोबारा देखा भी है। तो ये सवाल आम आदमी के लिए भी उतना ही अहम है जितना किसी तालिबे इल्म या पब्लिक स्पीकर के लिए है, क्योंकि जब हम मुसलसल उन्हीं लोगों के दरमियान रहते हैं जो हमारी जबान बोलते हैं, हमारी इस्तेलाहात इस्तेमाल करते हैं और हमारी बहुत से असम्पशंस पहले ही कबूल करते हैं, तो एक वक्त के बाद हमें अपनी सोच नहीं लगती, वो हमें सिर्फ हकीकत महसूस होने लगती है, और यही कुछ फासला मुफीद हो सकता है। इस कैफियत को आप बहुत एक आम मिसाल से समझिए। फर्ज कीजिए आपने मुख्तलिफ चीजें ब्लेंडर में डाली और मशीन चला दी। अब अंदर सब कुछ तेजी से घूम रहा है, आप शीशे के बाहर खड़े हैं मगर अंदर किसी एक चीज को साफ अलग नहीं देख सकते। सब कुछ मौजूद है मगर सब कुछ मिला हुआ है। अब ब्लेंडर बंद कर दीजिए, फौरन कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ देर गुजरती है, हरकत कम होती है, मवाद ठहरता है और जो चीज पहले मुसलसल गर्दिश में थी उसकी तहें आहिस्ता आहिस्ता वाजे होने लगती हैं। कभी हमारा जहन भी उसी ब्लेंडर की तरह हो जाता है। सुबह एक वीडियो, फिर एक लेक्चर, फिर किसी की राय, फिर किताब के चंद सफहात, फिर डिबेट, फिर न्यूज, फिर किसी दोस्त का तज्जिया, फिर एक पॉडकास्ट, और रात तक जहन में मवाद बहुत जम जाता है मगर तरबियत कम। हमने बहुत कुछ सुना होता है मगर ये नहीं सोचा होता कि इन सब का आपस में ताल्लुक क्या है, कौन सी बात मजबूत है, कौन सी कमजोर, किस बात को मजीद समझने की जरूरत है और किस ख्याल को सिर्फ इसलिए अपना लिया कि वो हमारे पसंदीदा माहौल में बार बार दोहराया जाता था। तो खलवत कभी जहन का ब्लेंडर जो है ना वो बंद कर देती है ताकि मवाद बैठकर माना बनाना शुरू कर दे। तो सामिने किराम, ये बात खासतौर पर इल्म हासिल करने वाले इंसान के लिए एक नहायत अहम फर्क है। एक शख्स बहुत पढ़ता है, किताब के बाद किताब, लेक्चर के बाद लेक्चर, कोर्स के बाद कोर्स, उसके नोट्स भरे हुए हैं, लाइब्रेरी बड़ी है, मालूमात बहुत है, लेकिन एक दिन उससे पूछें इस पूरे मुताले ने तुम्हारे अंदर कौन सा वाज़ेह तसव्वुर पैदा किया, तो उन्हें मुख्तलिफ बातों को आपस में कैसे जोड़ा, क्या चीज पहले मानते थे मगर अब दलील की बुनियाद पर मुख्तलिफ समझते हो, और मुमकिन है वह रुक जाए, क्योंकि खाना सिर्फ मुंह में डालने से जिस्म नहीं बनता, हजम के लिए वक्त भी चाहिए। इल्म के साथ भी कभी यही होता है कि मुताला इनपुट है मगर खामोश गौर, रब, तज्जिया और मुहासबा, ये शायद फिक्र का हजमा है। इसलिए कभी बहुत पढ़ने वाले इंसान को मजीद एक किताब से पहले चंद खामोश घंटों की जरूरत होती है।

0: कि वो देख सके कि मैंने जो कुछ लिया उसने मेरे अंदर क्या बनाया है। तो इंसान जब कई हफ्तों की दौड़ से निकलकर पहली मर्तबा खामोश बैठे तो जरूरी नहीं कि पहले 10 मिनट में उसे बड़ी बसीरत हासिल हो जाए। जैसे कि हमने पहले भी मिसाल से समझाया कि मुसलसल घूमता हुआ मशरूब, वो ब्लेंडर की तस्वीर याद कर रहे हैं दोबारा, कि मुसलसल घूमता हुआ मशरूब फौरन साफ नहीं होता, मशीन बंद होने के बाद भी उसे कुछ वक्त चाहिए। तो जरूरी नहीं कि पहले 10 मिनट में जब हम ऐसे खामोश बैठते हैं हमें कोई बड़ी बसीरत हासिल हो जाएगी, नहीं। पहले तो शायद जहन उसी रफ्तार से चलता रहेगा, कल की बात, पिछले हफ्ते का मसला, किसी का कमेंट, किसी की तारीफ। लेकिन कुछ वक्त के बाद मुमकिन है ये अंदरूनी गर्दिश आहिस्ता होने लगे और फिर कुछ सवाल अपनी असल शक्ल में दिखाई दें। मैं जिस चीज पर इतना नाराज था असल मसला वाकई वही था। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं क्या उसे दलील से चुना था या सिर्फ माहौल के साथ चल पड़ा। तो यहां खलवत कभी इंसान को फौरन कोई लाजमी जवाब नहीं देती, वो कभी सवाल को साफ कर देती है। और अब जानते हैं कि साफ सवाल आधी बसीरत होता है, अस्सवालु नस्फुल इल्म। तो यह है खलवत का दूसरा फायदा, दूसरी समरा, कि अपनी सोच को दोबारा देखने का मौका। अब आते हैं तीसरी समरा या तीसरे फायदे की तरफ। और खलवत के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही है पिछले हलके से, और इस खलवत के मफहूम को हमने अक्स किया है आयत करीमा फऊ इलल कहफ यनशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिहि व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफका। इस आयत करीमा के इस हिस्से से हमने खलवत का जो मफहूम अक्स किया है इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और इसके समरात और फवायद के बारे में इस हलके में खसूसी तौर पर हमारी गुफ्तगू जारी है। जैसा कि आपने दो फायदे सुन लिए, खलवत का तीसरा फायदा यह है कि मैं दूसरों को मुसलसल तो दे रहा हूं मगर मैं खुद आखिरी मर्तबा कब बना था। और ये सवाल इस जमाने में काफी जरूरी है, क्योंकि हर कोई अब लेक्चरर है, हर कोई नसीहत कर रहा होता है। मुसलसल आउटपुट कभी इंसान को इस धोखे में रख सकता है कि मसरूफ होने से शायद मेरे इल्म में इजाफा हो और हर वक्त मेरी मालूमात भी बढ़ती रहे। ये बात जरूरी नहीं, एक उस्ताद बरसों पढ़ा सकता है मगर अगर खुद पढ़ना छोड़ दे तो उसका जखीरा आहिस्ता आहिस्ता पुराना होने लगता है। एक मुकर्रर मुसलसल बोल सकता है मगर अगर खामोश मुताला खत्म हो जाए तो अल्फाज नए होंगे, फिक्र शायद वही पुरानी रहे। एक सामाजिक कारकुन दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकता है मगर अगर अपनी नफसियाती बोझ को कभी देखने का वक्त ना मिले तो एक दिन वो अंदर से खुद भी एग्जॉस्टेड हो सकता है।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
0: तो खलवत दरअसल सिर्फ आराम नहीं, ये रीबिल्डिंग की जगह बन जाती है, पढ़ने की जगह, सोचने की जगह, अपने जज्बात को समझने की जगह, अपने तजुर्बात को प्रोसेस करने की जगह, ये देखने की जगह कि जो काम मैं कर रहा हूं वो मुझे अंदर से किस इंसान में तब्दील कर रहा है। इस तरह इंसान कुछ देर जिंदगी के तेज भाव से निकलकर अपने ही सफर को दूर से देखता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि मैं इतना मसरूफ तो रहा मगर इस मसरूफियत ने मेरे अंदर क्या बनाया। मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ कहा भी मगर क्या कभी इन सब को अपने अंदर उतरने, तरतीब पाने और माना बनने का वक्त दिया है या नहीं। सामने कराम चलें इस मंजर को मजीद आगे बढ़ाते हैं। खलवत का एक और फायदा जो उस इंसान के लिए सबसे ज्यादा अहम है जो मुसलसल दूसरों को कुछ दे रहा हो, वो उस्ताद हो सकता है, वालिद या वालदा हो सकता है, किसी इदारे में जिम्मेदार हो सकता है, लोगों की रहनुमाई कर रहा हो, या महज अपनी रोजमर्रा जिम्मेदारियों में इतना घिरा हुआ हो कि उसे महसूस ही ना हुआ हो कि बहुत अरसे से वो आउटपुट तो दे रहा है मगर अपने अंदर नया इनपुट आने की जगह कम होती जा रही है। यानी सादा अल्फाज में सवाल ये है, जो शख्स मुसलसल दूसरों के चिराग रोशन कर रहा हो वो अपने चिराग में तेल कब डालता है। फर्ज कीजिए हमारे पास एक नौजवान है, उम्र का वो जमाना था जब उसे पढ़ना था, सीखना था, सवाल करना था, अपने तसव्वुरात बनाना थे, लेकिन वो बहुत जल्द मसरूफ हो गया, किसी अच्छे प्रोजेक्ट से वाबस्ता हुआ, लोगों के काम आने लगा, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और उसे ये सब अच्छा ही लगता था। चंद बरस गुजरे, अब वो दूसरों को बता रहा है, समझा रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, मीटिंग्स पर मीटिंग्स, प्रोग्राम्स पर प्रोग्राम्स। लेकिन अगर एक तीसरे शख्स को उसकी जिंदगी दिखाई जाए तो शायद वो पूछे, ये सबको कुछ दे रहा है मगर खुद

आखिरी मर्तबा तालिबे इल्म कब बना था? ठीक है, अब ये सवाल यानी सिर्फ दीनी मैदान में काम करने वाले शख्स के लिए नहीं, एक टीचर के लिए भी है, एक मैनेजर के लिए भी है, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए भी है, एक वालिद के लिए भी है। क्योंकि जिंदगी में एक मकाम ऐसा आ सकता है जहां इंसान अपने पुराने जखीरे से मुसलसल खर्च कर रहा होता है मगर जखीरे में नया कुछ शामिल नहीं हो रहा, तो यहीं पर वो खलवत की जरूरत आ जाती है। इंसान को एक बहुत कीमती किरदार वापस दे सकती है ये खलवत, दोबारा तालिबे इल्म बनने का किरदार। क्योंकि इल्म में कोई ऐसा मकाम नहीं जहां इंसान ऐलान कर दे कि अब लेने का जमाना खत्म, अब सिर्फ देने का जमाना है। देना और लेना साथ चलते हैं, सिखाना और सीखना साथ, बोलना और पढ़ना साथ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मारूफ उसूल भी याद आता है, वइन्न लिनफ्सिका अलैका हक्कन, तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है। जरा चंद साल पीछे चलते हैं, कोरोना का जमाना था, अचानक सड़कें खाली, दफातर बंद, बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन, मुलाकातें महदूद, लोग घरों में। वो इंसान जो रोज सुबह निकलता था और रात को वापस आता था, अचानक उसे कहा गया अब घर में रहना है। और दिलचस्प बात देखिए, बहुत से लोग हकीकी मानों में तन्हा भी नहीं थे, घर में शरीके हयात मौजूद, बच्चे मौजूद, टेलीविजन मौजूद, इंटरनेट मौजूद, फोन हाथ में, सोशल मीडिया पूरी तरह फ़ाल, फिर भी बेचैनी थी। क्यों? क्योंकि मसला सिर्फ अकेला होना नहीं था ना, मानूस पैटर्न टूट गया था। इंसान को पहली मर्तबा एहसास हुआ कि बाहर निकलना, लोगों से मिलना, जगह बदलना, मुसलसल मूवमेंट, ये सब उसकी नफसियाती जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बन चुका था। अलबत्ता उसी दौर में एक दूसरा मंजर भी दिखाई दिया। कुछ लोगों ने दस्तियाब वक्त को पढ़ने लिखने, किसी किताब या इल्मी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने, नई स्किल सीखने या अपने काम के असर नो तरतीब के लिए इस्तेमाल किया। एक ही बैरूनी सूरत हाल थी लेकिन हर शख्स के अंदर उसका नतीजा एक जैसा नहीं था। और ये हमें एक अहम बात बताती है कि फारिग वक्त बजाते खुद तामीर नहीं करता, फरागत वक्त को इस्तेमाल करने का शोर तामीर करती है। खलवत भी ये सिर्फ खाली कैलेंडर का नाम नहीं, वो खाली जगह को माना देने का फन है। अब खलवत की एक और समरा की तरफ, एक और फायदे की तरफ आते हैं कि अपने ताल्लुकात को फासले से देखना, यानी अब किताब बंद कीजिए और इंसानों की तरफ आइए। हम में से हर शख्स ताल्लुकात के पूरे जाल के अंदर जिंदगी गुजारता है, खानदान, दोस्त, उस्ताद, शागिर्द, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सर्कल, कोई कम्युनिटी। पर ताल्लुकात के बारे में एक मुश्किल ये है कि जब हम उनके अंदर होते हैं तो हमेशा उन्हें वाजे तौर पर नहीं देख पाते। कभी कुर्बत जजमेंट पर असरअंदाज होती है, कभी नाराजगी, कभी लॉयलिटी, कभी ये खौफ कि अगर मैं इस ताल्लुक को नए सिरे से देखूंगा तो शायद कोई मुश्किल फैसला करना पड़े। खलवत में इंसान फौरी तौर पर लोगों को अच्छा और बुरा करार देने नहीं बैठता बल्कि ताल्लुक की क्वालिटी देखता है, ये दोस्ती मेरे अंदर क्या पैदा कर रही है, इस शख्स के साथ रहने के बाद मैं ज्यादा मुतवाजन होता हूँ या ज्यादा तल्ख, क्या ये ताल्लुक बाहमी खैर और एहतराम पर कायम है या मुसलसल ऐसे किसी प्रेशर पर, क्या मैं किसी अच्छे इंसान से सिर्फ अपनी अना की वजह से दूर हो गया। तो यहाँ खलवत ताल्लुकात को उनका सही मकाम दिखाती है, क्योंकि कभी इंसान लोगों से दूर जाकर यह समझता है कि किन लोगों के पास उसे वापस ज्यादा मोहब्बत के साथ जाना चाहिए। समझ के नाम और फिर आती है एक ऐसी सलाहियत जिसे हमारा जमाना आहिस्ता आहिस्ता महंगा बना रहा है, और वो है तवज्जो। फर्ज कीजिए आपके सामने दो नौजवान बैठे हैं, पहले के हाथ में फोन है, दूसरा कोई तवील मजमून पढ़ रहा है। पहला हर चंद सेकंड्स के बाद नई तस्वीर, नया कैप्शन, नई वीडियो, नया मौजू देखता है। एक जंग, अगले स्वीप पर मजाक, फिर एडवर्टाइजमेंट, फिर मजहबी क्लिप, फिर फुटबॉल, फिर किसी की शादी, फिर ट्रेजिडी, फिर मीम्स। जहन को किसी एक मंजर के साथ ज्यादा देर रहने की जरूरत ही नहीं। अब उसे शख्स से कहिए कि 20 सफहात का कोई संजीदा मजमून पढ़े। कुछ देर बाद तबीयत बेचैन होने लग सकती है, क्योंकि मसला इंटेलिजेंस का नहीं है, मसला अटेंशन पैटर्न का है। तो जरा आप अपने आप से पूछिए कि मैं आखिरी मर्तबा कितनी देर एक ही ख्याल के साथ बैठा था, न दूसरे इसकी, न दूसरा टैब, न दरमियान में कोई नोटिफिकेशन, सिर्फ एक सवाल और मैं। अब कुरान की एक माना खेज आयत सुनिए, इरशाद खुदावंदी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इन्नमा अऊज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमू लिल्लाहि मस्ना व फुरादा थुम्मा ततफक्करू। कह दीजिए मैं तुम्हें एक बात की नसीहत करता हूँ कि अल्लाह के लिए दो दो और एक एक होकर खड़े हो जाओ, फिर गौर करो। जरा तरतीब देखिए, मसना व फुरादा, दो दो एक एक, फिर थुम्मा ततफक्करू, गौर करो। इस आयत का असल सियाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुशरिकीन के इल्ज़ाम पर संजीदा गौर की दावत है, इसलिए उसे सिर्फ खलवत की आयत बना देना दुरुस्त नहीं होगा।

0: लेकिन इस मंजर में एक उमूमी इंसानी हकीकत जरूर महसूस होती है कि कभी हुजूम भीड़ के इज्तिमाई शोर से अलग होकर एक या दो इंसानों का संजीदगी से सोचना हकीकत को ज्यादा साफ देखने में मदद देता है, क्योंकि हुजूम में भीड़ में हम कभी सोचने से पहले मुतासर हो जाते हैं। खामोशी में कम अज कम ये मौका पैदा होता है कि पहले सवाल को पूरा सुन लें। तो ये फर्क इल्म के मैदान में और भी नुमाया है। फर्ज कीजिए कोई नौजवान फख्र से कहता है कि मैंने इस मौजू पर 10 किताबें पढ़ी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगला सवाल है इन 10 किताबों ने तुम्हें क्या समझाया, यहाँ शायद गुफ्तगू बदल जाए। ठीक है ना, आप 1000 सफहात पढ़ सकते हैं और बाज बुनियादी तस्वुरात फिर भी आपस में न जुड़े, और कभी 20 सफहात पढ़कर 2 घंटे सोचें तो वो 20 सफहात आपके जहन में एक नई तरतीब पैदा कर दें। तो यही बात है कि आपने जो पढ़ा है क्या उसे समझने के लिए जहन को ठहरने दिया। मशहूर मुफक्किरीन के हवाले से ये बात मारूफ है कि वो अपने आप के साथ जहन के साथ वक्त सर्फ करते थे, और यही खलवत मुताले को फिक्र में तब्दील करने की जगह बनाती है।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
0: सभी करम, यही हमारे आज के हलके का ट्विस्ट है, क्योंकि अगर हम अपनी दीनी जिंदगी को जरा दूसरे जाविये से देखें तो मालूम होगा कि शरीयत ने खलवत को सिर्फ किसी पहाड़, जंगल या बंद कमरे तक महदूद नहीं रखा। हमारी बाज़ इबादात के अंदर ही ऐसे वक्फे रख दिए गए हैं जिनमें इंसान दुनिया की मुसलसल रफ्तार से कुछ देर निकल कर अपने बातिन को यकसू करने का मौका हासिल करता है, और शायद इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल रात की है। वो रात जब दुनिया की आवाज मध्यम पड़ने लगती है, जरा एक मंजर तसव्वुर कीजिए, शहर वही है, सड़कें वही हैं, इमारतें वही, लेकिन रात गहरी हो चुकी है। दिन में जो रास्ता गाड़ियों, आवाजों और लोगों से भरा हुआ था अब निस्बतन खामोश है। घरों की बहुत सी रोशनियां बुझ चुकी हैं, फोन पर आने वाले पैगामात की रफ्तार कम हो गई है, कारोबार के दरवाजे बंद हैं और इंसानों की एक बड़ी तादाद नींद में है। उसी वक्त एक शख्स उठता है, वो किसी और शहर नहीं गया, किसी पहाड़ पर नहीं चढ़ा, किसी गार में नहीं दाखिल हुआ, सिर्फ वक्त बदल गया है, और वक्त के बदलने से उसके इर्द गिर्द की पूरी फिजा बदल गई है। कुरान इसी रात के बारे में फरमाता है, इन्ना नाशियत अल-लैल ही अशद्द वत्अं व अक्वा मुकीला। आयत का खुलासा यह है कि इन्हीं रात को सोने के बाद उठकर इबादत करना दिन की नमाज के मुकाबले में जबान और दिल के दरमियान ज्यादा मुआफ़क़त का सबब है, और उस वक्त कुरान पाक की तिलावत करने और समझने में ज्यादा दिल जमाई हासिल होती है। फिर अगली ही आयत में दिन की तस्वीर आती है, इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला, यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक दिन में तो आप बहुत से कामों में मसरूफ रहते हैं जिसकी वजह से एक सुई के साथ इबादत नहीं हो पाती। तो ये दोनों आयात साथ रखिए तो मंजर खुद गुफ्तगू करने लगता है कि दिन कहता है मेरे अंदर तुम्हें तैरना है, सबहन रात कहती है उस तैरने से पहले कभी किनारे पर भी आकर बैठो। दिन में आदमी लोगों से मामला करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, फैसले करता है और अपने हिस्से की दुनिया संभालता है, मगर रात का एक हिस्सा ऐसा हो सकता है जहां उसके सामने वो सब आवाजें पीछे चली जाएं और वो अपनी मुंतशर तवज्जो को दोबारा जमा कर सके। इसीलिए सामने किराम, तहज्जुद और क़ियामुल्लैल की तासीर सिर्फ इस बात में नहीं कि इबादत रात के क्लॉक पर हो रही है, रात की दरअसल अपनी एक नफसियाती और रूहानी फिजा है। ये वो वक्त है जब दिन का हजूम पीछे हट चुका होता है और इंसान के पास अपने बातिन की आवाज सुनने के लिए निस्बतन ज्यादा जगह होती है, और इस तरह रात की खलवत इंसान को उन मसाइल के सामने खड़ा होने के लिए एक मुख्तलिफ बातिनी कैफियत देती है। गोया रात इंसान को दुनिया से परमानेंटली बाहर नहीं निकालती, दुनिया में वापस जाने से पहले उसे अपने आप को समेटने का मौका देती है। अब सवाल यह है कि क्या खलवत के लिए जिस्मानी तौर पर अकेला होना जरूरी है। फर्ज कीजिए मस्जिद भरी हुई है, सफे कायम हैं, आपके दाएं भी लोग, बाएं भी लोग, आगे भी लोग, पीछे भी लोग, जिस्मानी एतबार से तो आप तन्हा नहीं हैं, फिर भी नमाज शुरू होती है और एक अजीब चीज मतलूब होती है कि आप जिस्म के एतबार से जमात के अंदर हैं मगर तवज्जो के एतबार से एक ऐसी मुलाकात में दाखिल हो रहे हैं जहां असल मुखातब सिर्फ आपका रब है। صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ تو یہ دراصل خلوت کی ایک دوسری صورت ہے، ایک جسمانی خلوت یعنی انسان واقعی لوگوں سے الگ کسی جگہ چلا جائے، اور ایک ذہنی و قلبی خلوت ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان موجود ہو مگر چند لمحوں کے لیے اپنی توجہ کو دنیا کی منتشر آوازوں سے نکال کر ایک مرکز پر جمع کر دے۔ اور نماز ہمیں اسی دوسری کیفیت سے بار بار آشنا کرتی ہے۔ سامعین کرام، قرآن کے ساتھ بھی یہ فرق معنی خیز ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، آیت گزری، پھر دوسری، پھر تیسری۔ تلاوت اپنی جگہ عظیم عمل ہے، لیکن قرآن خود ہمیں تدبر کی دعوت بھی دیتا ہے۔ یعنی کبھی آیت کے سامنے یہ سوال پیدا ہو کہ یہاں مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے۔ مثلا سورۃ الفلق پڑھتے ہوئے صرف الفاظ مکمل نہ ہو، انسان دیکھے کہ یہ سورت مجھے شر، خوف، حسد اور اپنی بے بسی کے بارے میں کیا سکھا رہی ہے، اور پناہ آخر کس سے مانگی جا رہی ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھیں تو سوال ہو کہ اللہ کے بارے میں میرا بنیادی تصور کیا ہونا چاہیے۔ قل ھو اللہ احد میرے عقیدے، اعتماد اور بندگی کے تصور کو کیسے تشکیل دیتا ہے۔ البتہ یہاں ایک حد بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ قرآن میرے لیے کیا پیغام رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص آیت کا جو معنی چاہے خود بنا لے، تدبر تفسیر سے بے نیاز نہیں کرتا۔ عربی زبان آیت کا سیاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، معتبر تفاسیر اور اہل علم کی توضیح اپنی جگہ ضروری ہیں۔ یعنی پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہدایت میری زندگی سے کہاں ملتی ہے۔ تب قرآن انسان کے اندر سوال پیدا کرنے لگتا ہے۔ اور سامعین کرام، غور کے لیے شور کا کم ہونا واقعی مددگار ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ایک طرف قرآن کھولے، دوسری طرف واٹس اپ، سامنے ٹیلی ویژن بھی کھلا ہے، تو درمیان میں ہر 3 منٹ بعد کسی سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، پھر کہے میں تدبر کر رہا ہوں، تو گویا کہ حالت یہ ہے کہ وہ بندہ قرآن میں اتر رہا ہے یا ہر 3 منٹ بعد قرآن سے باہر آ رہا ہے۔ تو گہری توجہ کا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ قرآن خود کائنات کو بھی ایک کتاب کی طرح ہمارے سامنے کھولتا ہے، فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف

0: FM 107. Time check. Time
1: check. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। भाई स्टूडियो की घड़ी में 6:02 मिनट।
0: आप सुन रहे हैं

0: भाई बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रिद्वान हमारे साथ, हैंडसम मैन रिद्वान। ओ शेखू इज हियर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू भाई, वेलकम टू द शो। हम हैं आपके साथ एफएम 107। तो भाई ये विशेष तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आगे बढ़ती रहेंगी, बट बहुत जरूरी सुबह के अस्कार आइए उनको सुन लेते हैं। और अल्लाह सुबहान तआला के नाम के साथ साथ इंशाल्लाह ताला दिन की शुरुआत होगी तो दिन और भी ज्यादा खूबसूरत गुजरेगा। तो कुछ 10-11 मिनट के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए सुबह के अस्कार आप समाप्त कीजिए। सर्व मिर्जा आपके साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीजा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिक बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार एफ एम 107 पर।

बशीर अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और इस विश के साथ ये भी याद रखिए कि आपने हमारे साथ जुड़ना है डेली और वक्त निकालना है। जाहिर बात है ऑफिस वगैरह होंगे सबके, और जो इस वक्त ऑफिस जा रहे होंगे वो हमारे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, भले ही इस वक्त बच्चों को छोड़ने जा रहे हो या बेगम को ड्रॉप करने जा रहे हो या बेगम हस्बैंड को ड्रॉप करने जा रही हूँ, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसी हवाले से आप लोग कनेक्ट जरूर होने की कोशिश करिए। तो मेरे ख्याल में क्योंकि ये वेलकम मैसेजेस तो हमारे चलते रहेंगे, जरूरी ये है कि हम आज के मौजू के ऊपर भी रोशनी डाल लें। तो बात हो रही थी कि सुबह आंख खुलते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसके हवाले से यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा। तो भाई कोई मोबाइल चेक कर रहा होता है, कोई अलार्म बंद कर रहा होता है। मेरे ख्याल में अलार्म तो हम सभी बंद करके उठते हैं, और अलार्म नहीं तो कहीं ना कहीं घर का अलार्म, मेरा मतलब ये है कि वो आवाज़ जो हम सुनते ही डर जाते हैं, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। और कोई और भाई कोई तो खैर अपने आप को जरा खाली खुली करने के लिए मेरे ख्याल में सबसे पहले उठ के भागता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंख नहीं खुलती, बिस्तर पे ही चाय चाहिए होती है उनको। उसी के हवाले से आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैंने सोचा थोड़ा हल्का फुल्का टॉपिक रखा जाए, पहले ही दिन है भाई। तो जानेंगे इसके बारे में कि चाय और कॉफी, ये आज हमारी डिबेट रहने वाली है। तो भाई अगर सुबह हमारे पास चाय होनी चाहिए या हमारे पास कॉफ़ी होनी चाहिए, यानी कि आप चाय पर्सन हैं या कॉफ़ी पर्सन हैं, ये आज का मसला रहने वाला है। तो आपकी ज़िंदगी चाय के कप से शुरू होती है या फिर कॉफ़ी के शॉट से शुरू होती है, इस तरीके से समझ लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं या नहीं, या ज़बरदस्ती अपने आप को पिलाते हैं कि भाई उठ जाए आँख खुल जाए, ये भी तो होता है। और जब तक हमें चस्का लग जाता है फिर पता ही नहीं चलता भाई कि ये क्या हो गया, अब तो इसकी ज़रूरत होने लगी। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉफी पसंद करते हैं, मुझे मालूम है, बट अपने जितने भी देसी लोग हैं उनको भाई चाय ही पसंद आती है, और वो भी शायद दूध पत्ती वाली। तो वो भी हम जान लेंगे किसी ना किसी तरीके से कि आज आप क्या चीज शुरुआत से ही पसंद करते हैं, और इन राज में से पर्दा भी उठ जाएगा सारा का सारा कि भाई कौन कौन कॉफी के साथ है और कौन कौन चाय की चुस्कियों के साथ है। तो भाई दो टीमें बनने वाली हैं, चाय टीम कॉफी टीम है, किसके साथ कौन है ये हमें इंशाल्लाह ताला बताना होगा आपने। ऑलराइट देन, तो देखिए जनाब दुनिया में लोगों की बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, और कुछ कहना चाहिए सुबह ज्यादा अच्छा पसंद करते हैं बात करना बोलना, जैसे कि मैं शायद उनमें से ही हूँ, और कुछ लोग शाम में ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मैं उनमें से भी हूँ। मुझे खुद नहीं पता, मैं कंफ्यूज रहता हूँ खैर कि मैं क्या अच्छा है मेरे लिए, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज रहता ही रहता हूँ। बहरहाल चाय और कॉफ़ी की बात हो रही है, तो ये बताइए कि आप क्या पसंद करते हैं और आपकी ज़िंदगी में ये कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है, हैं? और अगर आप कॉफ़ी पर्सन हैं तो वो भी बताइए उनकी ज़रा कॉफ़ी वाले। ज़ाहिर बात है मुझे लगता है कि आजकल के जो युवा हैं, जो जेन ज़ी हैं, हैं वो शायद ज़्यादा पसंद करते हैं भाई कॉफ़ी पर्सन। कुछ ना कुछ इंग्लिश भी निकल जाती है, तो जितने लाते हैं, चाटे हैं, बाते हैं, जितनी भी तरीके की कॉफ़ी है, मुझे ज़्यादा नाम नहीं याद रहे, पहले तो खूब याद हुआ करते थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। और आजकल सेहत से मुताल्लिक मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ भाई, मुझे बताया गया है कि ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, उसके अंदर से जितनी भी चीज़ हो सकती है वो निकाल दीजिए, बस रंग काला अगर आपको दिख रहा है तो उसका ही सेवन कीजिए। अरे भाई इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ मैं, बहरहाल मुझे आदत हो गई, मेरे ख्याल में 10 दिन से तो मैं पी रहा हूँ। शुरू में तो भाई ऐसा लग रहा था कि वाकई मतलब जहर मैंने चखा तो कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर जहर होगा भाई तो वो इसी तरीके का कुछ होगा, उसकी जो लज्जत है वो कुछ इसी तरीके की होगी, अल्लाह ताला खैर करे। बहरहाल आप पीते पीते अच्छी लगने लगी। वो असल में जो कहवा वगैरह पी रहे होते हैं या शुरू से जिनको आदत होती है, मुझे लगता है उनके लिए मुश्किल नहीं होती, तो शायद मुझे भी उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, बट शुरू शुरू में तो भाई जाहिर बात है क्योंकि शक्कर छोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी डील है। बहरहाल हम वापस आ जाते हैं। तो साहब टीम चाय या टीम कॉफी, आज इसके ऊपर बातचीत होगी, और आपने सिर्फ चूज ही नहीं करना है, अपनी टीम के हक में भाई लड़ाई भी करनी है, दलील भी देनी है, और बताना भी है प्रोग्राम के अंदर कि क्यों है आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी चाय, और सुबह उठते ही कितनी चाय हो जाती है, ऑफिस जाने से पहले चाय, ऑफिस जाने के बाद चाय, बेड पे चाय, या फिर कॉफी आप प्रेफर करते हैं। तो इसके हवाले से आज हम बातचीत करने वाले हैं, और बाकी खैर खैरियत तो आपकी चलती ही रहेगी, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं
9444-3777 पे और अपने मैसेजेस भी भेज सकते हैं 666-22-107 इस नंबर। तो आइए भाई चलते हैं मैसेजेस की जानिब। खादर हैं यहाँ पर, खादर अब्दुल हादी हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, वेलकम अब्रॉड। सरवर भाई फॉर मॉर्निंग एंटरटेनमेंट सेम अप शो, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। सरवर भाई प्लीज टेल द स्टोरीज, चाचा इज वेटिंग टू हियर योर स्टोरीज। भाई अपने अपना तो हकीकी मामला, हकीकी कहानी तो मैं सुनता हूँ, जो आपको सुनाते हैं उनसे मैं भी सुनता हूँ एक्चुअली, बाकी ये कहानियों से अपना कुछ ज्यादा रापता और वास्ता नहीं है सिवाय सुनने के। एंड हु इज दिस चाचा, इनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। चाचा किनको कह रहे हैं आप, कबीर साहब को ही कह रहे हैं कि वो सुनना चाह रहे हैं मुझसे क्या कुछ ऐसा। खादर कहते हैं आई प्रेफर ग्रीन टी इन द मॉर्निंग। क्या बात है भाई, वो भी चाय में ही आ गई ऑब्वियसली। तो चाय देखिए, चाय की सारी कैटेगरीज एक हैं, जैसे कि कॉफ़ी की बहुत सारी कैटेगरीज हैं भाई, तो इसी तरीके से ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, जो भी है, सुलेमानी, हैदरी, बिरयानी, जितनी भी है तो आएगी तो चाय की कैटेगरी में ही। तो वो आपने अपनी टीम चुन लेनी है, तो चाय टीम या कॉफी टीम, आज ये कंपटीशन रहने वाला भाई और बड़ा ही जानदार रहने वाला है मुझे लगता है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर भाई, सर्वर नाम है मेरा हसन, काम है मेरा। ओ मेरे लिए लाइन लिख के भेज दी भाई ने, इश्तियाक अंसारी। क्या बात है इश्तियाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, वेलकम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। बिलाल हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। शहजादा सलीम फिर कुछ कहते हैं, सरूर भाई शानिया वाले खालिद भाई फ़ोन करें तो ज़रूर नंबर लेना या मेरा नंबर उनको देना। ओ अच्छा, यहाँ पर अदला बदली का काम भी करना पड़ेगा शहजादा भाई। क्या है खालिद भाई के पास ऐसा, नंबर तो मैं ले लूंगा मगर अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे कितना फायदा होगा इस चीज से। ये भी तो है, क्या ऐसी चीज है जो खालिद भाई से आप ढूंढ रहे हैं, तो कद ये बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर्वर अंकल, हाउ आर यू टुडे, इज माय अरबिक एग्जाम अलीना। अरे मेरा बेटा कैसा प्यारा प्यारा, बहुत भाई अलीना सबसे पहले तो आपको वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह एंड ऑल द बेस्ट। और अरबिक का एग्जाम ही ये सुन के मुझे बहुत बहुत बहुत खुशी हुई मेरे बेटे, तो इंशाल्लाह तार एग्जाम तो बहुत अच्छा होने वाला है आपका, इसमें फिक्र ही मत कीजिए। अरबिक लैंग्वेज ही ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा आसान भी है और बहुत ज्यादा एंटरटेन भी करती है आपको, आप जब पढ़ते हैं तो आप खुद खुश भी होते हैं, आप समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। बहरहाल ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा एग्जाम करिएगा और पेपर को दो बार रीड कीजिएगा, जो आपके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, पहली बार में समझ में नहीं आएगा। सर्वन अंकल के साथ भी ऐसे ही होता था मतलब उसके बाद वो क्योंकि परेशानी होती है ना, जहन में एग्जाम है, पेपर है, उसके बाद जब आप उसको दोबारा पढ़ते हैं, अरे ये तो मजा आता है, ये तो बहुत आसान है भाई। तो इंशाल्लाह ताला अलीना का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, ऑल द बेस्ट, मेरी दुआ भी है और खूब सारी ढेर सारी विशेस अलीना के लिए। ओके ओके बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, आप इस्तकबाल है नए एपिसोड के साथ, फिरोज खान यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। वालेकुम सलाम, मुश्किल नहीं भाई, सबको पहला दिन बड़ा मुश्किल होता है पर कोई नहीं, इंशाल्लाह क्षमा बढ़ेंगी आज, बढ़ाएंगी आज। क्या बात है यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है, नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, फिरोज खान है नाम, हाँ ओके फिरोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। सरवर भाई हम चाय वाले हैं, क्या बात है चाय वाले हैं, पाजी रिजवान जो हैं चाय वाले हैं। ओके अस्सलाम वालेकुम सरवर, आई एम फ्रॉम चाय टीम। वालेकुम अस्सलाम फहद है हमारे साथ, लीजिए साहब चाय टीम का मसला जो है भारी होता हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, नसीम भाई हैं हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला नसीम भाई, खैरियत भाई। खूब सारे माशाल्लाह से मैसेजेस हैं और मुझे लगता है कि मैं रुकूंगा नहीं, पढ़ता ही रहूंगा इनको। तो कहते हैं भाई चाय टीम, सुबह दो बार, दोपहर में एक बार, शाम में दो बार, रात में एक बार। सरवर भाई ओए कितनी चाय पियोगे यार। यूनुस भाई तो मतलब दो और दो चार और दो छह, ज्यादा नहीं यार, इट्स फाइन, मगर छह कैसे छह हो रही है, वो लोटा भर भर के, कद्दे भर भर के पी जा रही है तो मसला है, वरना नॉर्मल कप में अगर पी रहे हैं देन इट्स फाइन। बहरहाल भाई चाय वाली टीम है, कोई भी नहीं है यार कॉफी वाला, कतर में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम सर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। शेख अली हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया शेख साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं।
ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूँ। सरूर भाई आपके मॉर्निंग में आने से मेरी मॉर्निंग वाइब के

0: सर्वर ट्रैक पर आ गए हैं, डाउन चल रहा था बहुत दिनों से। कौन है मेरा भाई? मैं देख, अरे यार बड़े हैंडसम आदमी है यार ये तो, फैजान भाई क्या बात है फैजान भाई, ये रात में जाग के सुबह का फोटो है? डोंट टेल मी यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है अच्छा खासा फाउंडेशन और लिपस्टिक और पाउडर लग रहा सॉरी मजाक कर रहा हूँ, बट माशाल्लाह सूरज की रोशनी के साथ आप भी चमक रहे हैं यार। अल्लाह ताला इस शहर को ऐसी खुशबाश रखे और ऐसी चमकता हुआ रखे और आपको अल्लाह ताला खैरियत से रखे। कहते हैं अभी 7 वीक्स से ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। मेरा भाई मैं समझ सकता हूँ यार, देख रहे हो कितना दिल और आवाज भारी हो गई। ये भाई मेरे लिए जिम से भी मुश्किल था, ये जिम जाने से भी मुश्किल था ब्लैक कॉफी पीना। मैं बता दूं तो मैं कभी जिम गया नहीं, मगर उसका जो ख्याल आता है ना मैं जिम जाऊंगा, उस ख्याल से भी ज्यादा बहरी ये बाहरी ये चाय थी और बहरे तो वही हो गया। कहते हैं उससे पहले अदरक वाली दूध की चाय पी रहा था, ओके अभी भी बीच बीच में 2 दिन में एक बार दूध वाली चाय पे हाथ साफ कर देता हूँ। अच्छी बात है, मैं भी बीच बीच में कोई जैसे कि ऑफिस में अगर कोई पी रहा है और कुछ बहाना हो गया, मतलब मेरे सामने किसी ने मांग ली अगर, या मेरे सामने से चाय गुजर गई, तो मैं कहा यार थोड़ी एक घूंट तो यार पिला दो, गिलास में थोड़ी सी डाल के दे दो। तो भाई ऐसा है अपने साथ, तो मुझे लगता है फैजान भाई और हम एक ही ट्रैक में हैं, बट फर्क काफी होगा मेरे और आपके वजन में जहां तक मैं समझता हूँ। आहा ये कौन है? गुड मॉर्निंग अबू अहमद, ब्लैक कॉफी आप बेटे, कॉफी वाले भी आ रहे हैं। तो अबू अहमद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और इधर अहमद भी मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, इस वक्त स्कूल जा रहे हैं, तैयार हैं एकदम, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए अहमद भाई। और अबू अहमद साहब आप भी खुश रहिए। कहते हैं टी, ओके सरूर भाई का फर्स्ट डे मॉर्निंग शो एंड टॉपिक अबाउट फूड एंड ड्रिंक्स एज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट डे बिरयानी पुलाव नहीं यार, ऐसा नहीं है यार, मैंने सोचा मोहम्मद दिलशाद है कि कुछ हल्की फुल्की बात करेंगे आज ताकि एक दूसरे से कनेक्ट भी हो पाए। जाहिर बात है भाई थोड़ा सा जुड़ने में टाइम लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे मुझे पता है। शहजादा सलीम कहते हैं सर भाई बिल्कुल अभी आप लोगों की कॉल भी लेना शुरू करूंगा मैं और आपसे बातचीत भी करना शुरू करूंगा। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सर भाई कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो और बहुत मिस किया आपको। कौन है जहीन? बड़ी जहानत वाली बात करी आपने जहीन भाई, और क्यों मिस किया आपने मुझे? मेरे ख्याल में आप सुबह के वक्त ही रेडियो से कनेक्ट होते होंगे और एक अरसा हुआ होगा, जबकि मैं मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन में तो रहते ही हूँ, शायद आप नहीं सुन पाते होंगे। बट एनी हाउ जहीन भाई अहलन व सहलन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का और हमारे साथ जुड़ने का, ये मोहब्बत है आपकी। इंशाल्लाह ताला आपका दिन अच्छा गुजरे यही मेरी दुआ है। चलिए भाई कुछ मैसेजेस अभी और भी हैं, मगर एक कॉल तो बनती है शुरुआत में ही, आइए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: हम हैं आपके साथ शेखो,
1: हम हैं आपके साथ एफएम 107।
0: कैसे हैं शहजादा सलीम साहब? खैरियत से हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं वॉच कर रहा हूँ आपको और 6 बजे से मैंने अस्कार से जब शुरू है ना, तो ये आज की एनर्जी एक्स्ट्रा मुझे कहीं नजर आ रही है, क्या पाए शायद खा के आए क्या पता नहीं इतनी जबरदस्त एनर्जी
0: यार। मैं सही बताऊं
1: एकदम से
0: मैं सही बताऊं तो जाहिर बात है जब थोड़ा सा चेंज होता है तो कहीं ना कहीं फिक्र भी होती है, परेशानी भी होती है ऑब्वियसली, कहां हम दोपहर में थे, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से क्योंकि मैं न्यूज करता हूं तो सुबह आना होता ही होता है, बट फजर के बाद आ जाना ये पहली बार हुआ है भाई प्रोग्राम के लिए, जबकि रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए भी आता हूं मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि उतना ज्यादा भारी नहीं है मेरे लिए, बट इम्पोर्टेंट इज कि मैं रात में जल्दी सो गया था तो इसलिए शायद कहीं ना कहीं आराम में हूँ, वरना वो 3-4 घंटे वाली नींद नहीं है, ये पूरी 6-7 घंटे वाली नींद है, तो इसलिए शायद मैं कहीं ना कहीं आराम में हूँ। भारल शहजादा भाई कैसे हैं और कैसी हुई सुबह, अभी तक की सुबह कैसी गुजर रही है?
1: जबरदस्त, हमेशा की तरह जो हमारी तो शुरू हो जाती है ड्यूटी 5 बजे से ही ना सुबह।
0: अच्छा माशाल्लाह।
1: हाँ लॉन्ग रूट पे निकलते हैं उधर सऊदी बॉर्डर साइड।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा,
1: पहले हाँ पहले हम आते ही अकोमोडेशन से नीचे मेस हॉल है तो एक पहले चाय ले लेते
0: हैं। कॉफी नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल चाय, सिर्फ चाय,
1: बिल्कुल बिल्कुल चाय की अपने चुस्की लगते रहे।

0: थी और दो चार बिस्किट होती है साथ में, तो इसी तरह फिर अब आया हूँ मैं, बैक टू किया हूँ कराना से, एक ड्यूटी एक ड्रॉप करके अब आया हूँ. अब मैस हॉल खुला है, अब जाऊंगा मैं उसमें नाश्ता करूंगा. तो आज का नाश्ता हो गया, यहाँ मेरे ख्याल चने की दाल है आज, चपाती वगैरह है.
1: अरे बस बस रुक जाओ, अब क्या रुलाओगे शहजादा सलीम.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो बड़ा जबरदस्त और बहुत बहुत यानी बहुत जबरदस्त मजा आया सुबह आपकी आवाज सुनकर.
1: हेलन भाई बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ,
0: और मेन है ना वो जो आपका जो दोपहर वाला जो स्टाइल था ना, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा लगा.
1: अच्छा?
0: तो मैं आज का नाश्ता तरुण भाई का बहुत जबरदस्त हुआ है यार, यानी ब्रिलियंट.
1: सुबह सुबह सुबह सुबह का मामला है, अब दोपहर तक पहुंचते पहुंचते काफी कहना चाहिए कि बातें हो जाती हैं. अब हम ऐसे तो है नहीं कि खामोश बैठे और प्रोग्राम नहीं भी कर रहे हैं, तो अपने आपस वाले जो हैं उन्हीं से ही बात कर रहे हैं. तो सुबह मॉर्निंग से लेकर दोपहर का शो, क्योंकि मॉर्निंग में न्यूज होती है, फिर दोपहर तक डेढ़ बजे तक पहुंचते पहुंचते तो कहीं ना कहीं उसमें कमी तो हो ही जाती है. तो फिलहाल अब आज सुबह ही सुबह आप टकरा गए उससे, तो शायद इसलिए लगा ऐसा. बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और टीम चाय के साथ ही है आप. इन शॉर्ट
0: सरोवर भाई जो मैंने मैसेज डाला था ना, तो वो अच्छा. जो हमारे खालिद भाई है ना शाहनिया वाले.
1: अच्छा, मैं एक बार वो पढ़ लूं यार, मैं भूल गया.
0: वो जो चाचा बोलते हैं ना उनको, सब लोग यहाँ पे सुबह वाले, तो अच्छा. वो शाहनिया वाले चाचा है, वो ऊंटो के सेहरा में रहते हैं.
1: अच्छा, कोई खालिद अरे मैं एक मिनट समझ लूं शहजादा भाई, सुनिए तो, कोई खालिद भाई है जो शाहनिया में रहते हैं.
0: हाँ जी,
1: ऐसे ही
0: जी,
1: और उनको चाचा कहते हैं सब मॉर्निंग वाले.
0: हाँ, उनको चाचा कहते हैं. हाँ, सुबह वाले जो है ना उनको चाचा कहते हैं. और बड़े मतलब है ना मजेदार है, तड़का लगा होता है उनका हर एक कॉल में. तो मैं गया था शानिया.
1: अच्छा.
0: तो मुझे तो नजर नहीं आए, सारे ऊँट ही नजर आए, वही उनसे पूछना था मुझे. तो मेरा हाँ, तो नंबर मेरा
1: मैं भी तो समझ लो. तो उनको आप के साथ ढूंढ क्यों रहे थे आकर, ये तो बताइए.
0: अरे मैं बोला बोले मैं शाहनिया में रहता हूँ, मैं आज आप लोग आ जाओ शाहनिया में रहता हूँ. अरे शाहनिया में रहते तो कहाँ, शाहनिया में तो सारे ऊँट ही दिखे मुझे, एक आप ही नजर नहीं आए. तो बहरहाल हाँ, बहरहाल अगर उनकी कॉल आए ना तो जरूर बोलूँ मैं याद किया हूँ. ठीक है.
1: अच्छा.
0: और नंबर है ना मेरा फॉरवर्ड कर,
1: खालिद नाम है उनका, फ्रॉम शाहनिया.
0: हाँ खालिद. हाँ हाँ जी जी जी जी,
1: जरूर इंशाल्लाह ताला. और मुझे याद रहा तो जरूर शहजादा साहब, भारत बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. और टीम चाय के साथ जा रहे हैं आप, ऑब्वियसली टीम कॉफी के साथ नहीं है शहजादा भाई, राइट?
0: नहीं नहीं, मैं चाय के साथ. चाय से तीन हो जाती है रोजाना, और दो तो पक्की, एक सुबह की और एक शाम की, दो तो लाजमी.
1: अच्छा, खाने के बाद भी चाहिए होती है?
0: खाने के बाद अगर मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र है, वरना
1: अच्छा, कोई बात
0: नहीं, गुजारा कर लेते हैं. किशमिश और वो कुछ है ना मुंह में मीठा डाल के थोड़ा सा.
1: ओके.
0: बस उसी से गुजारा कर लेते
1: हैं.
0: सही है बस,
1: बहुत अच्छी बात है. चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया शेखू साहब, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होती है. थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, अपना ख्याल रखिए.
0: शुक्रिया.
1: ऑलराइट, बाय बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. तो वही थे शहजादा सलीम साहब जो हमसे बता रहे थे कि किस तरीके से ये टीम चाय के साथ हैं. आप भी हमें बता सकते हैं, मैसेजेस यहाँ पर खूब सारे हैं, और फिर भी वार्तालाप करने के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. नंबर आपको पता ही है, 4434377. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. हिशाम हमारे साथ हैं, कैसे हैं हिशाम? खैरियत से यार? हिशाम भाई नंबर मुझे दे दो यार, ये तो बड़ा अच्छा नंबर है यार फोन का. ओके. यहाँ पर रॉयल एनफील्ड भी लगा रखी है भाई ने, नंबर भी वैसी वाला, एकदम अपने मिजाज वाले दिख रहा है मुझे भाई. कहते हैं मैं भाई आपके साथ हूँ कॉफी. ओके. मैं भी चाय वाला ही था भाई, मतलब यार ये तो अच्छी बात कह दी यार, मैं भी चाय वाला ही था. चाय वाले तो काफी मशहूर हैं आजकल. तो कहते हैं कि अच्छा सुभाष कुमार अब मेरे साथ हो गए, तो कॉफी मैं तो भाई बिल्कुल ही ब्लैक कॉफी बेचारी, किसी कोई मिलावट नहीं उसके अंदर, कुछ भी नहीं उसके अंदर, वैसी पी रहा हूँ आजकल. बहरहाल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका. मैं भाई आपके साथ हूँ कॉफी. चाहिए मैसेज तो पढ़ दिया है मैंने, दोबारा क्यों पढ़ रहा हूँ यार. कहते हैं हम तो चाय पीता हूँ, वो भी कड़क वाला. ओए रियाज भाई, अच्छा. हाँ नहीं बिल्कुल, मुझे मालूम है कि आप चाय के शौकीन हैं, टी लवर हैं यहाँ पर. और कौन है ये? इश्तियाक भाई है, इश्तियाक अंसारी, ये भी टी लवर निकले भाई. कॉफी वालों क्या हो रहा भाई, टीम हल्की पड़ रही है आपकी. ایک کالر اور لیتے ہیں اور اس کے بعد میسیجز کا سلسلہ. ہیلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سرور بھائی, خیریت؟
1: اہلین اہلین اہلین, الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں. کون ہے ہمارے ساتھ؟
2: الحمدللہ میں خواجہ مول ریگولر آپ لوگوں کا لسنر ہوں. میں کبیر بھائی کدھر چلے گئے؟
1: کون ہے ہمارے ساتھ؟ خادر ہیں.
2: خواجہ
1: آواز بہت دور سے آ رہی ہے, ذرا پاس آ جا میرے بھائی. خواجہ ذرا میرے پاس آ جا, تھوڑا اور قریب آئیے.
2: ابھی آ رہی
1: ہے؟ ہاں ابھی ابھی ابھی ٹھیک ہے, ابھی ٹھیک ہے, ابھی ٹھیک ہے. کیسے ہیں خواجہ بھائی؟ خیریت سے ہیں
2: الحمدللہ. کبیر بھائی کدھر چلے گئے؟
1: کبیر بھائی وہ بھگا دیا بھائی, میں نے بھگا دیا. کبیر بھائی چھٹی چلے گئے, چھٹی کر دی ان کی.
2: ماشاء اللہ صحیح.
1: اپنا آدمی اس وقت
2: دوپہر میں نہیں دکھتے کیا آپ؟ نہیں, آپ کو تو اتنے دن سے دوپہر میں کالا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کبھی بھی نہیں لگتا آپ کو اٹھاتے تھے میرا کال.
1: ارے میرا بھائی, نہیں نہیں خواجہ بھائی ایسی بات نہیں ہے یار. ہاں میں دوپہر میں بھائی کوشش رہتی ہے, اصل میں وہ میں اور نادیہ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ایک تو ہم دو آدمی ہوتے ہیں اور پھر پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت شارٹ ہوتا ہے, ایک گھنٹہ, تو اس میں میسیجز بھی ہیں کالز بھی ہیں, تو جتنے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں کرتے ہیں بھائی, کوشش تو کرتے ہیں بھائی. خواجہ بھائی اب ہو نہیں بات ہی بھائی, وہ بات الگ ہے بھائی, کیا کر سکتے ہیں بھائی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
2: اللہ کرم ہے الحمدللہ.
1: کدھر سے ہیں؟
2: پانی والی ٹیم کا ہوں میں.
1: کون سی والی ٹیم؟
2: پانی.
1: نہیں نہیں خواجہ بھائی وہ تو صحیح ہے بھائی, پانی تو یار ضروری ہے, بنا پانی کے کیسے کام چلے گا. بٹ پھر بھی چائے کافی کچھ بھی نہیں لیتے از اٹ؟
2: نہیں نہیں, چائے کافی میں میرے اہلیہ لیتے ہیں صبح صبح.
1: اوہ
2: چائے لیتے ہو؟
1: اچھا
2: ٹیچر ہے انہوں تو صبح چھوڑنے جائے تو نا میں تو پانی پیتا ہوں, میں چائے تو نہیں پیتا ہوں مگر میرے اہلیہ لیتے.
1: اچھا تو پھر ہاں تو ظاہر بات ہے پھر تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ پانی کیوں پی رہے ہیں جب صبح صبح بھابھی کو آپ چائے کافی پلا رہے ہیں. آہ بھائی مزہ آ گیا بھائی. خواجہ بھائی کدھر ہیں اپن؟ حیدرآباد سے کدھر بولے تو
2: اپن تو اپن حیدرآباد میں کریم نگر ڈسٹرکٹ بول کے وہاں سے اپن.
1: ہاں اوکے اوکے اوکے اوکے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی. اور یہ بھی بڑا اچھا رہا بھائی کہ ہمیں بنا چائے کافی والا بھی ملا. اچھا یار اچھا, بہت بہت شکریہ, اہلن وسہلن, بہت اچھا کیا آپ نے کال کری بھائی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ کا دن آگے اچھا گزرے.
2: آپ کو میں ایک بار میسج بھی کرا تھا, آپ سے ملاقات کا شرف اب حاصل ہوتا بلکہ دوپہر کے ٹائم.
1: ارے یار ان شاء اللہ تعالیٰ جب چاہیں تب, جب چاہے جب ان شاء اللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی میرے بھائی سے, کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, جب کہیں گے جب ہو جائے گی. بس آپ سوچ لیے
2: کب کریں گے بولو, جمعہ کے دن ہی چھٹی ملتی میرے کو.
1: اچھا جمعے کے دن, ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ تو کچھ کریں گے طے خواجہ بھائی, ان شاء اللہ آنے والے ٹائم میں اس کو بھی طے کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, ملاقات تو ہوگی یہ پکی بات ہے, جلدی ہو جائے بس ان شاء اللہ اس کی کوشش رہے گی. ٹھیک ہے میرے بھائی, اہلن وسہلن, اہلن وسہلن. آپ بھی بھائی, آپ بھی تھینک یو سو مچ. اوکے میرے بھائی, اوکے اوکے. Alright then, تو یہ تھے ہمارے خواجہ بھائی, اور یہ تو بھائی کسی طرف نہیں رہے, اور ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب بیگم کو ہی چائے کافی پینے کا اتنا شوق ہے تو یہ بھائی تو میرا پانی ہی پیے گا, اور کیا بن پائے گا اس کا. کہتے ہیں السلام علیکم سرور بھائی. سرور بھائی نام ہے میرا, ہنسنا کام ہے میرا. یہ تو میں نے پڑھ دیا یار, بار بار وہی میسج کھول دیتا ہوں میں جو آخری پڑھا ہوتا, آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم سرور بھائی, آپ کیسے ہیں؟ مارننگ شو میں آپ کا ویلکم ہے, اور میں اپنا صبح کی شروعات گرین ٹی سے کر رہا ہوں. چائے والی ٹیم. اوکے کے کے کے کون ہے؟ ایس ایس جی. یار نام کیا ہے آپ کا؟ نام نہیں لکھا بھائی نے, اور یہاں پر آپ کا پہلا میسج دکھ رہا ہے مجھے. اوکے آصف بھائی ہمارے ساتھ کہتے ہیں بھائی میں نے فرسٹ ٹائم امریکانو پیا تھا. سیم تھنکنگ, زہر سیم ہوگا, میں ہوں نا کافی والا. اچھا آصف بھائی از اٹ؟ ایسا مت کہو یار آصف بھائی, کافی والے ہیں آپ, میں تو یار آپ کو چائے والی ٹیم میں سمجھ رہا تھا آصف بھائی. دل ٹوٹ گیا میرا یار, جبکہ آج کل میں بھی کافی پہ ہوں, میں تو مجبوراً ہوں یار, مگر ہوں میں چائے ٹیم کے ساتھ ہی. کہتے ہیں السلام علیکم, آئی ایم سارا, گڈ مارننگ ٹو ایوری ون, آئی ایم 10 ایئرس اولڈ, آئی ایم کافی ٹیم. اوکے سارا, آئی ہیو ڈرنک کافی صبح صبح. کافی سارا اتنی سی عمر میں اتنا سارا؟ ارے سارا کیا ہے ہمارا؟ بٹ آئی ہیو ٹو گو ٹو اسکول. بائے بائے سارا. कौन है ये? मोहम्मद सलीम साहब की बेटी है सारा। सलीम भाई सुबह सुबह सारा को कॉफी पिला दे रहे हो भाई, अच्छा ही है सुबह पिला दे रहे हो। अब मुझे पता नहीं यार कि 10 साल की उम्र के लिए इज इट गुड, बट अगर घर पे आके दोपहर वोपहर में शाम में कॉफी पिला दी तो भाई सोच लीजिए कि सोने का टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। अल्लाह ताला सेहत दे सारा को। एट 10 AM दिस इज माई टी। ये कब का है भाई? खादर अब्दुल हादी। ग्रीन टी गिव्स यू द बूस्ट इन द मॉर्निंग, इट रिड्यूसेस टॉक्सिक्स। चाचा ऑलवेज गिव ट्रबल टू कबीर भाई, कबीर भाई नोज हिम वेल। अच्छा नहीं, वो तो मुझे भी अभी शहजादा सलीम साहब ने बता दिया कि क्या है मामला चाचा वाला। कहते हैं 10 AM, यार 10 AM तो अभी हुआ भी नहीं क्या? ये कल वाला फोटो खींच के आपने भेजा है। बहरहाल ग्रीन टी का फोटो जो है भेज दिया भाई ने, खादर अब्दुल हादी ने। ओहो हो, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं मोहम्मद तौफीक अलवाकरा से। सताओ सताओ तौफीक भाई, तुम्हारा यही काम है सगेरे सगेरे। ओह हो, अंडे की भुर्जी, ओह हो, चीज ट्राइंगल वाली और दही साथ में और पराठे। बस कर पगले, बस कर तौफीक, अब करो लागा मेरे भाई, बस कर। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, वेलकम है आपके इस फाइट ऑफ स्लीप वाली शो में। लेमन टी लवर, ओहो यार मुझे भी पसंद है यार। देखो खैर मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं, खाने में तो अपना सब पसंद है, पीने में भी अपना, मेरा मतलब चाय कॉफी के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, वो भी पसंद है। कहते हैं अंसारी साहब हैं ये, तो ये तो लेमन टी लवर निकले भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाई चाय टीम जीत रही है भाई, और मुझे पूरा अंदाजा था कि चाय टीम ही जीतेगी। अभी तक तो जीत रही है, अभी आपके पास टाइम है वैसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वेलकम टू मॉर्निंग कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ओहो मिस्टर मुआज, एन गाड़ा करते हुए मिस्टर मुआज भाई। देखो चाय कॉफी की बात छोड़ो, माज भाई यार मैं एक ही टीम में, वो अगर आप मुझे और माज भाई को एक साथ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मुआज इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो? ओके अनवर है यहाँ पर, अनवर फ्रॉम यूके, इज इट उत्तराखंड से तो नहीं है ये, यूनाइटेड केरला से? वाकई ओके से अनवर एच, मुझे लग रहा है अनवर भाई को मैं पहले बात कर चुका हूं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ इज फीलिंग टुडे सर? अनवर यूके, अच्छा मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं भाई। और यार ये तो बड़ी खूबसूरत फोटो है, बट ये तो अपना इंडिया ही है यार, या तो इंडिया या नेपाल है, मुझे ऐसा लग रहा है। कहां का फोटो है ये आपका अनवर भाई? एनी हाउ नाइस वन, वेलकम सरूर भाई। न्यू माई नेम जुबैर शाह, डिस्ट्रिक्ट टूथपेस्ट। ये क्या है भाई यार, ये मैसेज कैसे डीकोड होंगे सुबह वाले कमीने, ये तो पता कहीं नहीं गया तू। ये कैसे डीकोड करूं? सब कहते वालेकुम सलाम सर भाई, माय न्यू नेम जुबैर शाह, डिस्ट्रिक्ट टूथपेस्ट। यार ये इसने, आई एम वेरी श्योर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, एंड बस मैं डीकोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला होते होते पूछ लूंगा कभी उनके मैसेज में। कहते हैं सर भाई अस्सलाम वालेकुम, तलहा फ्रॉम अलखोर, वेलकम भाई। बाकी चाय हर वक्त, ब्लैक कॉफी सिर्फ मॉर्निंग में। हाँ ओके, सुबह सुबह मेरा भाई ब्लैक कॉफी पे एतबार कर रहा है, और उसके बाद नाम नहीं बताया सर आपने, अपना नाम भी लिखते। क्या नंबर है आखिर में? 6094 नाम लेंगे, नाम लिखेंगे तो बता पढ़ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, हाउ आर यू, वेलकम टू मॉर्निंग शो। क्या फॉर्मेट है शो का? इरफान, नाम तो सुना ही होगा। ओ हो हो हो हो, आइए आपका स्वागत है इरफान का। फोटो तो देख लूं इरफान भाई का, यार ये तो किसी और का फोटो खुल गया। आए इरफान भाई बाहर से तो यार आप मुझे शेख वाली ड्रेस में दिख रहे हैं, कंदूरे में और साफे में, और अंदर खोलते ही आपका चेहरा बदल जा रहा है यार। ये कोई नया फंक्शन है क्या व्हाट्सएप का जो मुझे नहीं पता? बहरहाल इरफान भाई है तो स्मार्ट आदमी, फॉर्मेट वही है भाई, सिर्फ मॉर्निंग अच्छी बनानी है, कुछ खास नहीं है अपना। जो जो खास हम खास दिन है उसके हवाले से बातचीत होगी, असकार आपको सुनाई दिए हमने, आगे कुछ गेम शेम खेलेंगे इंशाल्लाह ताला, उम्मीद तो यही है। और बस अब ना मॉर्निंग अच्छी बनानी है भाई, कुछ खास खास नहीं है, तो बढ़ते हैं आगे। ओके ओके ओके ओके ओके, ओ गुड मॉर्निंग, यहाँ पर मेरे फोटो बना के भेजे भाई, गुड मॉर्निंग। दो दो फोटो यार, AI की कमाल है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यार। कौन है ये? शमशाद भाई है। अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, गुड मॉर्निंग, मबरूक, वेलकम। यहाँ पर मेरे दो दो फोटोज जो हैं उनको बड़ा ही अच्छा खूबसूरत बना दिया है, जबकि मैं हूं ही नहीं, ये तो आप सभी को पता है। बहरहाल बड़ा अच्छा बना दिया है यहाँ पर। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सौरभ भाई, सुबह सुबह चाय मिल जाए और वाह वो भी नगोरी, मजा ही आ जाए। नगोरी वाकई वो ना, मतलब वो वैसी चाय कह रहा है मोहम्मद भाई, मैं सही दम जरा क्या यार। अच्छा भाई देखो, दो तीन दिन लगेंगे ये मैसेज डिकोड करने में और जो बातें हैं उनको समझने में, समझ जरूर जाऊंगा मुझे मालूम है। उसके बाद आप फिर खुद ही कह रहे होंगे यार कि ज्यादा ही समझ गया ये तो। सरोज भाई, मेरे एक दोस्त ने नया नया कॉफी पीना शुरू किया था, बहुत शो करता था। एक दिन मुझे बोला, टुडे आई हैड लाटे। मैंने कहा आपको लाते पढ़नी चाहिए, पीना छोड़ दो। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, कुछ कुछ हमसे मिलता जुलता है। सरोज भाई टेक माई कॉल। अरे यार अभी लो यार, मैं मैसेजेस इतने हैं कि मैंने कहा कि उन्हीं को पढ़ लें। नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से कनेक्ट होगी कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाय, हेलो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सुबह सुबह क्या बात है साहब, खैरियत से हैं?
3: साहब जहाँ है आप वहीं हैं।
1: नसीम भाई हैं भाई हमारे साथ, कैसे हैं नसीम साहब? वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्या बात है, बोल तो रहे हैं नसीब भाई इतना सारा, वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कैसे हैं और कैसी हुई सुबह आपकी?
3: अल्हम्दुलिल्लाह सुबह तो ठीक है, शुरुआत तो हो गई हमारी।
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे भाई की सुबह और भी ज्यादा अच्छी हो इंशाल्लाह ताला। तो क्या कहते हैं नसीम भाई, चाय टीम कॉफी टीम?
3: भाई आप जिधर शामिल कर ले उधर शामिल हो जाएंगे।
1: अच्छा दोनों चीजें मतलब नौश फरमाते हैं।
3: है? बस मिलनी चाहिए,
1: बस मिलनी चाहिए। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मैंने ये तो लिखा ही नहीं कि भाई फ्री की चाय फ्री की कॉफी, या खुद की खरीदी हुई चाय और खुद की खरीदी हुई कॉफी, ये भी ये कहना चाहिए था मुझे। चलिए उसके हिसाब से तो सही है, कुछ भी मिल जाए बस मिलना चाहिए सुबह सुबह चाय या कॉफी। नसीम भाई क्या बात है यार, क्या कहने भाई। तो नसीम भाई है अच्छा, जिधर मिल जाए उधर उधर ही चले जाएंगे, मतलब कॉफी वालों ने अगर कॉफी पिला दी तो कॉफी टीम, चाय वालों ने चाय पिला दी तो चाय टीम है।
3: बिल्कुल,
1: तो आपका बीच का वोट रख लेता हूँ मैं। अच्छा मुझे किसी चीज से बैर नहीं है, जहाँ तुम बुलाओ वहीं हैं हम। अच्छा यार ये तो लग रहा है अभी अभी मतलब बस छोड़ ही दिया है एकदम, बात करते करते छोड़ दिया भाई। नसीम भाई शायर है ये तो हमें बदलो में, और भी कुछ है नसीम भाई चाय और कॉफी के हवाले से?
3: नहीं ऐसा कुछ लाया तो नहीं आज,
1: ऐसा कुछ खास
3: नहीं। उसके अलावा कुछ और है तो कहें तो।
1: अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, अरे इरशाद इरशाद इरशाद इरशाद, कोई बात नहीं, आने दिए। नहीं आ पा रहा, गाड़ी में बैठे रहे उतरी मत, शेर आ रहा है बहुत तेज, इनका शेर ऐसे ही हो सकता है कि आप लोग डर भी सकते हैं। अरे ओहो ये तो रेस्पेक्टेड रेस्पेक्टेड शेर आ रहा है। ओके ओके,
3: कहते हैं हाँ, पर्दा आंखों से हटाने में
1: कौन कहते हैं
3: देर लगी, इकबाल साहब कहते हैं,
1: इकबाल साहब कहते हैं। अच्छा
3: जी, पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी।
1: आंखों से हटाने में या आंखों से उठाने में क्या है, सही से देखिए।
3: आंखों से हटाने में,
1: आंखों से हटाने में बहुत देर लगी,
3: देर लगी।
1: ओके,
3: हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी।
1: ओके,
3: जमाना जान गया था कितने वफादार हैं हम, जमाना जान गया था कितने वफादार हैं हम, मगर तुम्हें ये बात समझाने में
1: बहुत देर लगी। आए हाय हाय हाय हाय, क्या बात है भाई, अच्छा है, अच्छा है, काफी अच्छा है भाई।
3: शुक्रिया।
1: बहुत बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा। और भी है कुछ?
3: हाँ
1: हाँ जी जी,
3: मैसेज भेजा हूँ।
1: आपने मैसेज
3: आप
1: भेजा है आपने?
3: जी सर,
1: मैं जरूर पढ़ूंगा।
3: लग तो रहा है।
1: अब तो बात भी हो गई, बहरहाल फिर भी जब आएगा इंशाल्लाह सामने तो मैं जरूर पढ़ दूंगा, आप बेफिक्र रहिए।
3: अच्छी बात है, शुक्रिया।
1: चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नसीम भाई थैंक यू, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए भाई। थैंक यू।
3: अकेले
1: अधूरे लग रहे हैं, आप चाह रहे हैं सुबह भी वही बातें शुरू हो जाए।
3: छोड़ने वाला होना चाहिए।
1: चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपकी सुबह और भी ज्यादा खूबसूरत बनाए और दिन का पूरा हिस्सा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, थैंक यू। ऑलराइट, तो भाई शेरो शायरी का किस्सा चला है और सिलसिला चला है, तो अर्ज किया है कि तेरी हद तलब ने ऐसा जुनून बख्शा है चाय, तेरी हद तलब ने ऐसा जुनून बख्शा है चाहे, हम नींद से उठ बैठे हैं तुझे ख्वाब में बनता देख के। वाह वाह वाह वाह, आधा वादा वादा बढ़ जाते हैं कुछ मैसेजेस की जालिम। और फिर एक छोटा सा ब्रेक। ओके ओके ओके ओके, कहाँ छोड़े थे भाई मैंने मैसेज, यहाँ से मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम सुरभ भाई, कैसे हैं आप? सुबह सुभ कैसे? ये चाय भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? मुमताज भाई हमारे साथ, बस ऐसे ही गुजर रहा था यार, मैंने सोचा कि बैठ जाऊं और शो कर लूं। भाई जिम्मेदारी मिल गई मुमताज भाई, सुबह सुबह की जिम्मेदारी दे दी गई। कबीर भाई जो है वो छुट्टी गया है और मुझे कहा गया है कि मैं आप लोगों के साथ वक्त गुजार लूं थोड़ा, जब तक वो वापस नहीं आते। कहते हैं मेरा भी मैसेज है, वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, नए लियो नसीम भाई, यही लिखा था आपने। अच्छा, आपका फोटो भी है यार इसके अंदर। ओ नसीम जूनियर भी है यहाँ पे, तो क्या कहने भाई, किस ये कौन सा फ्लैग है इनके हाथ में, किसी पार्टी का है, किसी देश का है? नसीम भाई ये जरूर बताना यार, मैं नहीं समझ पाया। कहते हैं मजबूरी जरूर भाई, वैसे भाई आफ्टरनून वाली वाइब आ रही है, लव यू ब्रो। आसिफ भाई, आसिफ भाई किधर है? आसिफ भाई मेरा भाई कैसा, आसिफ भाई जैसा? कहते हैं बिल्कुल मैं कनेक्ट होता हूं मेरे भाई से, अगर फ्री हैं तो मैं एक कॉल की जानिब बढ़ रहा हूं भाई। ओके, यहां पर कुछ मैसेजेस भी। सलाम वालेकुम सरवर भाई, मैं बहरीन से सुन रहा हूँ और मैं चाय कभी कभी पी लेता हूँ। मेरा भाई बहरीन वाला भाई अंसारी जुल्फिकार, जुल्फिकार भाई एक तो ये छोटे दो जुल्फिकार जो दिख रहे हैं मुझे, जो जुल्फे दिख रही हैं आपकी सीधे हाथ वाली और उल्टे हाथ वाली, इनके नाम क्या है ये बताइएगा मुझे। माशाल्लाह से आप लोग एक साथ हैं एंड फ्रॉम बहरीन, यार बहुत बहुत शुक्रिया यार, ये तो बड़ी मोहब्बत है FM 107 से आपकी। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड है, पहले जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं फिर मैसेजेस का सिलसिला जारी रहेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि
1: वबरकातुहु। अरे भाई नहीं यार, मैं सबको बता दूं हमारे साथ माज भाई कनेक्टेड है। माज भाई सुबह उठने की आदत तो है ही यार अपनी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बट इस तरीके से टेक्निकली उठना, समझ रहे हो तो मेरी बात? उसमें जरा सा यार माज भाई कोई है अगर प्लेनेट अर्थ पे तो मेरा भाई माज ही समझ सकता है मुझे, और कोई नहीं समझ रहा। यार सुबह सुबह भाई कैसे कैसे उतरेगा भी कैसे यार, एकदम से अपनी आदत भी नहीं है और रात में जब देर रात तक कुछ चुगना चुगुना रहता है तो अब कैसे यार सुबह सुबह। अब भूख लग रही है आपसे बात करके और यहाँ पर ऐसे ऐसे पोस्टर और फोटोज और आ रहे हैं पराठों के और चाय के और जाने किसी की चीज के, तो यार देख के भूख लग रही है। एनी हाउ, किस तरफ रुख है माज भाई, ऑफिस की तरफ? ऑब्वियसली
4: बच्चों को छोड़ा है, अभी ऑफिस की तरफ रुख है।
1: ओके, क्या बात है यार, बेगम बेगम को भी छोड़ते हैं साथ में या बच्चों को ही छोड़ते हैं?
4: बेगम हमको छोड़ती है भाई, बेगम बच्चों को ड्रॉप करती है, हमें ड्रॉप करती है।
1: ओके ओके,
4: आराम से।
1: اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی دونوں کا. تو کیا کہتے ہو ماز بھائی, اپنا تو چائے والا معاملہ ہے مجھے لگتا ہے, رائٹ؟
4: الائچی والی.
1: ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے.

0: हाय हाय
1: हमारे पूरे बिल्डिंग में उसकी खुशबू जब तक महकेगी नहीं, जब तक
0: ओए होए होए चाय जब तक उबले नहीं मजा ही नहीं आता यार। तो चाय टीम के साथ रहने वाले हैं इमाज भाई।
1: तो कैसा लग रहा है क्या, उसके पास से किस किस ने कॉल कर लिया आपको हमारे
0: यार अभी दो चार लोगों से तो बात हुई है, अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला आगे भी। अभी तो है अपने पास दो घंटे, क्या बोले?
1: चलो देखा आपकी शेखू से बात हुई और नसीम भाई से,
0: शहजादा सलीम थे, नसीम भाई थे हमारे साथ। जी जी जी जी जी जी,
1: तलहा भाई आते हैं क्या, नदीम भाई आते हैं क्या, एहसान भाई आते हैं क्या?
0: अच्छा ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं मॉर्निंग के। ऑल राइट
1: भाई,
0: अच्छा तो वो मेरे ख्याल में अभी कबीर भाई को मिस भी तो कर रहे होंगे, आंसू पोंछ रहे होंगे
1: आपसे बात करने का। इस टाइम पे वो जो मेरा मकसद था वो ये था कि हर दिन सुबह में ये हमारे कबीर भाई का रहता था कि
0: साथ दो आप भी मेरा साथ दो बोल तो दो कम से कम यार
1: तो लेकिन जब तक कबीर भाई वापस नहीं आते तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपका साथ
0: देने। अरे मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है। और
1: मेरी हमेशा से वो जो गिला रहा है आपको पता है, पिछले दो तीन साल से मेरा गिला चल रहा है आपके साथ, वो गिला अभी भी रहेगा।
0: अरे यार ऐसा नहीं कहो यार, क्या गिला? वही वाला
1: यार, खाली वीडियोस डालते हो, फोटोज भेजते हो, खिलाते नहीं हो, बुलाते नहीं हो।
0: अरे यार नहीं यार ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह ताला इसको भी हम
1: तो मौसम के हिसाब से लगा है। खबर है कि शायद इस हफ्ते बारिशें होंगी तो कुछ करो
0: इंशाल्लाह ताला। यार बिल्कुल सही, मुझे भी सुबह सुबह खबर मिली, मैं ये शेयर करने ही वाला था, इंशाल्लाह आगे करूंगा अभी रिपोर्ट के साथ। और बारिश होने वाली, अगर ऐसा हो जाता है माज़ भाई तो डन कर देंगे इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। मगर अपनी पार्टी यार जाने वाली है अभी तो आधी से ज्यादा, देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह ताला। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, और चाय टीम की तरफ ही रहे माज़ भाई। एनी हाउ
1: आधी पार्टी चले जाएगी तो अपने लिए खाना ज्यादा रहेगा ना
0: अच्छा है यार, अब तो जरूर कर लेना चाहिए ये अच्छा था
1: भाई। वरना जो साथ बैठ के निवाले के अंदर कहते कितना खाएगा करके, वो टेंशन नहीं रहेगी,
0: ये भी अच्छा है। ऑल राइट माज़ भाई, अब एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे मैंडेटरी, इंशाल्लाह ताला आपसे बात होती रहेगी और कनेक्ट होते रहिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, फैमिली को अच्छा रखे और आपका दिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाए। थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए भाई। ओके देन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यूं गया और यूं वापस आया, सुनते रहिए FM 107।

0: FM 107 Time Check.
1: तो भाई 7:05 यहाँ पर 2 से आगे बढ़ गई है बात. 7:02 तो था ही था और यहाँ भाई 2 से ज्यादा भारी है मामला, तो 7:05 होना चाहिए नहीं होना चाहिए.
0: आप सुन रहे हैं

0: एक्चुअली मेरा भी दोस्त एक सऊदी में है और आपने कहा तो याद आ गया, फराद नाम है उनका, और तकरीबन 7-8 साल से हम नहीं मिले. राइट,
1: दोनों ने एक साथ में स्कूल गए, एक साथ में काम सीखे.
0: और आप
1: एक ही गैराज में दोनों बंदों ने, एक मैकेनिक था एक इलेक्ट्रीशियन था. वो मैकेनिक था, मैं इलेक्ट्रीशियन था.
0: और अब दोनों इतने अलग हो गए कि 18 साल हो गए. वाह, अब तो रात में बातचीत तो करते होंगे साथ में. बातचीत तो
1: नहीं, फोन नंबर कोई कांटेक्ट ही नहीं है अभी.
0: अरे ओ माय गॉड यार, ये तो यार आजकल तो
1: कांटेक्ट एक दूसरे का नहीं है, लेकिन घर में आना जाना एक दूसरे के है.
0: अच्छा, तो मतलब क्या कुछ ताल्लुकात खराब हो गए क्या?
1: नहीं, ऐसा नहीं है.
0: तो फिर यार
1: मतलब कभी अगर नहीं, बाय चांस ऐसा होता है ना कि कभी बाय चांस फोन आ गया उसके घर पे या मैं पहुंच गया इत्तेफाक पे, तो बात हो जाती. इतना याद ही रहता उसका नंबर लेके रख लूं. और अगर लिया भी होगा तो कभी नंबर चेंज हो गया.
0: ओके,
1: काफी टाइम, 18 साल से मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि 8 से उसकी मेरी मुलाकात नहीं, जबकि दोनों सऊदी में थे.
0: ऑलराइट, अल्लाह ताला आसानी करे भाई. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके दोस्तों को अल्लाह ताला खुश रखे और आपको भी खुश रखे भाई. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है भाई की. बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. तो भाई आज कुछ खासम खास दिन भी हैं और उनके हवाले से भी हम बात कर लेते हैं. आज वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, डे ऑफ रेस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी है, और डे आदि लराजा डे भी है. तो इन सब के हवाले से मैं खुलासा भी करूंगा कि क्या क्या है इसके अंदर, मसले क्या क्या चल रहे हैं. फिलहाल एक और कॉलर और फिर बढ़ते हैं आगे. हेलो, सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम
0: सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
2: ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा मेरा,
0: हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं. ये और बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं. कौन है हमारे साथ, अब तो बता दीजिए. शेर पूरा कर दिया मैंने.
2: थोड़ी देर और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि
0: ये याद दहानी
2: एक मकसद है.
0: याद दहानी वाला
2: ये शेर कहने का मकसद क्या है जानते?
0: अच्छा, क्या बताइए.
2: भाई कोई चीज ऐसे थोड़ी कही जाती है.
0: ओके okay.
2: उसके सयाक को सबात में कुछ चीजें होती
0: है. अरे मैं पहले ये जमील भाई है हमारे साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
2: जमाल भाई,
0: देखिए मैं बहुत करीब हूँ. ओके यार, अरे वाह सर, बड़े दिनों बाद आपसे बात हुई. और कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. और काफी मेरे ख्याल में ऐसा भी होता है जो हमारे लिसनर्स हैं, जाहिर है जो सुबह में ही अवेलेबल होते हैं तो सुबह में ही जुड़ते हैं, दोपहर में बहुत लोगों से बात नहीं होती, शाम में बहुत लोगों से बात नहीं हो पाती. बहरहाल मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ, और यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी बख़ैर आफियत और घर वगैरह पे भी सब खैरियत होगी
2: इंशाल्लाह.
0: अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र करें और उसका एहसान जो है वो मानते रहें. तो जमाल भाई, आज चाय और कॉफी के हवाले से बात हो रही है, तो क्या कहते हैं, चाय टीम कॉफी टीम? अच्छा,
2: लेकिन मैं ये और, है,
0: जी
2: ये कुछ कहना चाह रहा था मैं, जो मैंने आपके शो से पहले कबीर के शो में जो मैंने ऑब्जर्व किया है,
0: इरशाद
2: जिन चीजों का मुझे थोड़ा सा तजर्बा हुआ है ना
0: जी सर,
2: वो मैं कुछ कहना चाह रहा था. ये
0: बिल्कुल,
2: कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बज़ाहिर हमारे आगे नहीं होते, सामने नहीं होते, हमारे क्या कहते हैं, अरे वो दिखाई ना देते हो, पर्दापोशी हो उनकी, दूर हो हमसे, लेकिन वो बावजूद उसके लोगों की लबों पे होते हैं, जुबान पे होते हैं, उनकी यादों में बसते हैं, उसमें से एक बेहतरीन शख्सियत आपकी है।
0: अरे मेरा भाई,
2: ये बात तो बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, पता है आपको
0: मोहब्बत है आपकी जमाल साहब, मोहब्बत है, बड़प्पन है आपका।
2: ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जितने लिसनर आएंगे आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, मैं कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई फेकम पाक नहीं है। जब भी कोई ना कोई लिसनर, हर दिन
0: जी
2: एक दो लिसनर, उसमें आपका नाम आता था।
0: ये मोहब्बत है सर आप लोगों की, और एक्चुअली जो आपके साथ प्रोग्राम कर रहे थे या कर रहे होंगे और करेंगे इंशाल्लाह, वो भी और मैं भी उनसे इतनी ही मोहब्बत करता हूं, तो बात यहां सारी की सारी मोहब्बत पे आ जाती है जमल भाई, कि जब मोहब्बत होती है तो फिर इसी तरीके की बातें भी होती हैं और इसी तरीके की चीज़ें, जो ताल्लुकात हैं वो इसी तरीके के होते हैं, मैं ये मानता हूं। तो मोहब्बत मेन पिलर जो है वो मोहब्बत है, इस चीज़ की नीम जो है वो मोहब्बत है, एक्चुअली वो रखनी चाहिए।
2: अच्छा, भाई आप जानते हैं
0: जी,
2: मोहब्बत भी कई किस्म की होती है ना।
0: सही,
2: लेकिन आपका मतलब पता है कौन सी मोहब्बत से जुड़ा हुआ है
0: जी, कौन सी
2: मोहब्बत है? तो आपका मतलब आप जानते हैं किस तरह की, क्या नौलियत है उसकी, कौन सी किस्म है
0: जी, कौन
2: जो
0: सी?
2: मैं बड़े जो मैं एकदम ऐलानिया तौर पर ये कह सकता हूँ कि किसी ने कहा था कि उल्फत का मजा जब है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ से आग बराबर
0: लगी हुई,
2: आपको याद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस प्रोग्राम के अंदर रहने वाले तमाम आरजे जो जितने भी फर्द हैं, उन सब के और यहाँ कतर के सामईन के साथ जो एक बामी वालेहाना मोहब्बत है, वो किसी का भी पलड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वरना तवाजुन के साथ चलता है। बहुत बड़ी बात,
0: यही वो चीज है जैसे मैंने बताया ना, कि हर चीज के तवाजुन को भी रखने के लिए, बराबर रखने के लिए मोहब्बत की जरूरत पड़ती है जमाल भाई, और वो आप लोग खूब खूब खूब निछावर करते हैं।
2: हम याद करते हैं,
0: बिल्कुल
2: हम याद करते हैं, अगर आप ना याद,
0: नहीं
2: ऐसा नहीं, हम ना याद करें तो कहीं ना कहीं वो फीकापन नजर आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुमने देखा है, इसी वजह से मैं बरमला ये बात कहता हूँ कि ये 107 उर्दू एफएम जो है, ये अपने आप में ऐसा इम्तियाजी और ऐसा मुनफरिद है जो हम लोगों को कहीं और देखने को नहीं मिलता है।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, ये बस यही
2: पता है आपको,
0: आप लोगों की मोहब्बत की वजह से है भाई, और मुझे तो ऐसे ही लगता है ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं जिसकी वजह से हम लोग इस कदर परफॉर्म कर पाते हैं, हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं, और वो जो एक अंदाज है, वो जो एक कुछ लहजे ऐसे हैं और कुछ बातचीत ऐसी हैं जिनकी वजह से हम अपनी तरफ से ऐसा प्रेजेंट भी कर पाते हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह आप लोग हैं, मैं तो ये कहूंगा बहुत बड़ी वजह आप लोग हैं।
2: नहीं भाई, दोनों तरफ से खुलूस मुझे लगता है मुकम्मल है, इसी वजह से इसकी तरवीजो इशात में और इसके नस्ल में
0: जी
2: जो फैलाव है इसका, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ भी है कि अल्लाह इस बात को ऐसे ही हरा फूला रखे और इसकी उम्र दराज करे। अब बात आती है कॉफी और चाय की,
0: कॉफी है ना जी
2: तो मैं ये कह दूंगा कि मैं ज्यादातर चूंकि चाय पीता हूँ, तो अगर ज्यादातर चाय पीते हैं तो
0: टी लवर है, टी टीम में है आप, टी टीम, टीम टी
2: हाँ टी टीम में ही रहना बेहतर है भाई।
0: अच्छा,
2: उसमें मैच जल्दी खत्म हो जाता है।
0: अच्छा, कॉफी बिल्कुल नहीं पसंद है या फ्री की चल जाती है जमाल भाई?
2: मेरे भाई ऐसा नहीं है कि एक चीज से मोहब्बत है तो दूसरी चीज से नफरत, ऐसा नहीं है
0: यार। मैंने इसलिए कहा कि फ्री की चल जाती है क्योंकि जब शादियों में हमारे यहाँ जो कॉफी मिलती है ना, जिसमें दूध ही दूध होता है, कॉफी सिर्फ खुशबू के लिए होती है, वो मैं बहुत रच के पीता हूँ भाई, वो नहीं छोड़ता। एक तो उसकी वो मशीन वो इस कदर की आवाजें निकालती है, अरे मेरे का भाई, जो स्टीम मशीन होती है ना, वो याद दिला दिया आपने इस वक्त, तो भाई वो नहीं छोड़ता मैं।
2: अच्छा, अगर कहीं बगल से गुजर रहे हो और कोई काफी ले रहा हो और उसकी आवाज वही निकल रही हो, तो मुझे लगता है कि
0: यार मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं 92-93 की बात है ये, क्योंकि अमूमन जब हम घर वाले बैठे होते तो ये किस्सा आता भी है। हम यहाँ से गए थे छुट्टी पे, अपने फूफी साहब भाइयों की शादी थी, ठीक है, तो हम छुट्टी पे गए वहां पर अब्बा के साथ, और जब शादी वगैरह हुई, सारी चीजें शुरू हुई वहां पर, तो अब्बा बताते हैं मैं बीच में भागा भागा आया उनके पास बहुत तेज, और सांसें फूल रही थी मेरी। अब्बा ने कहा क्या हो गया? यार मैंने कहा डैडी कॉफी मिल रही है फ्री में, चार पी के आया हूँ। तो मतलब हमारे लिए वो बहुत नई चीज थी कि यार फ्री की कॉफी मिल रही है यहाँ पे, तो भैया चार छह गिलास खींच दो, हमारे ऊपर तो वैसे भी असर नहीं करते थे चार छह गिलास। तो हमने अब्बा से कहा भागे भागे आके, मैं और डैडी कॉफी मिल रही है फ्री की, चार गिलास पी के आया हूँ। तो ये

0: सर मेरा बड़ा मशहूर है भाई बचपने से ही, तो कुछ चीजें ऐसी भी हो जाती हैं लाइफ में। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब, आपने वक्त निकाला और इतनी प्यारी बातें करी, इतनी खूबसूरत बातें करी है, एज ऑलवेज बड़ी ही मीठी जबान है आपकी।
1: नहीं भाई मैं आपको एक बात बताऊं
0: जी,
1: ये इस टाइम का जो शो है ना
0: जी,
1: तो इसी तरह से मुसलसल मैं आप पे बोझ बनता रहूंगा।
0: अरे अहलन व सहलन बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ना कहें, ये तो हमारे लिए मोहब्बत का बाइस है भाई कि आप हमारे साथ जुड़े और इंशाल्लाह ताला ये राब्ता जो है कायम रहे, अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे।
1: 2011 से जुड़े हैं
0: माशाल्लाह,
1: इतने नशीब फराज, इतने उतार चढ़ाव हमने
0: देखे हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। और सबसे कमाल की बात यह है कि सिर्फ है ना
0: जी,
1: आज तक कोई रुख इधर उधर नहीं हुआ, सिर्फ अगर
0: अल्लाह ताला खुश रखे और इस पे कायम रखे आपको, मैं तो यही कहूंगा।
1: आमीन सुम्मा आमीन।
0: ये हमारे लिए गर्व की बात है।
1: ऐसे एक उस्ताद आप लोगों को देखा है, डॉक्टर निसार अहमद थे, हैदराबाद के थे शायद बालबन वो
0: जी,
1: है ना, और बहुत सारी शख्सियतें आए लोग चले गए,
0: नहीं
1: कि यह चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुले अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। तो खैर ये चहचहाहट जो है वो हर दिन हर आए दिन हमारी हम लोगों की शायद दुआएं पूरी हो गई कि हर दिन उस पर चहक जो है ना, इस चमन का चहचहाने की जो आवाज है वो हर दिन बुलंद हो रही है। अल्लाह करे मस्जिद आगे ऐसे ही हो और हम लोग आपके साथ जुड़े रहे।
0: आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जमाल साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, काफी दिनों बाद बात हुई और एज यूजुअल आप माशाल्लाह वैसी के वैसी, अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुश खुर्रम रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और हमारे साथ जुड़ते रहिए और इसी तरह मोहब्बतें जो है उसको बांटते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू,
1: बिल्कुल बहुत शुक्रिया,
0: अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। तो भाई ये थे जमाल भाई हमारे साथ प्यारी प्यारी बातें करते हुए। यहाँ पर आप लोगों की कॉल्स भी और कुछ मैसेजेस भी, बट उससे पहले कुछ अब बात कर लेते हैं ट्रैफिक के हवाले से। तो इस वक्त का ट्रैफिक जाहिर बात है अमूमन जो रहता है वैसे ही है, यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ सी रिंग रोड की बात करें तो जो इस वक्त सलवा रोड वाला हमारा सिग्नल है वहाँ पर जाहिर बात है क्योंकि वक्त ऐसा है जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो होता है। सनहिया में भी इस वक्त अब ट्रैफिक जो है वो काफ़ी हद तक चल पड़ा है और कॉर्निश वेस्ट बे की जानिब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स फाइन। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ अपडेट मिलती है तो डू लेट मी नो ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 666-22107 इज द नंबर, आप मुझे ट्रैफिक के हवाले से अपडेट भी कर सकते हैं। और भाई गर्मी पूरी तरीके से गई नहीं है तो पानी शानी पीते रहना है, इसके बगैर काम जो है वो नहीं चलने वाला है। तो कुछ खास हम खास दिन उसके हवाले से हम बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने अर्ज किया आज वर्ल्ड ऑथोराइटिस डे भी है और ये हर साल जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और वर्ल्ड ऑथोराइटिस डे जो है ये दूसरी जॉइंट डिजीज के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ऑथोराइटिस की वजह से जॉइंट में पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ बुजुर्गों तक महदूद नहीं है भाई, ये जो युवा पीढ़ी है उनके अंदर भी होती चली जा रही है, वो लोग भी इससे मुतासर हो रहे हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल जॉइंट्स की सेहत को अच्छा रखने में मदद करते हैं और अर्ली डायग्नोसिस मतलब शुरुआत में ही अगर हमें पता चल जाए इस प्रॉब्लम का तो प्रॉपर ट्रीटमेंट से इस बीमारी को बेहतर तरह से मैनेज किया जा सकता है। और ये दिन लोगों को अपनी जितनी भी हेल्थ वाइज परेशानियां हैं उनको याद दिलाता है कि भाई किसी की बीमारी को ऐसे मत छोड़िए कि आप उसका खुदा न खास्ता इलाज ना कराएं। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है आज, डे ऑफ रेस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिन मुल्क मुख्तलिफ कल्चर्स और ट्रेडिशंस के रेस्पेक्ट को प्रमोट करता है। दुनिया भर के लोग अलग जबानों, अलग रिवायात और अलग लाइफ स्टाइल्स के साथ रहते हैं ऑब्वियसली हम सभी, मगर कल्चरल डाइवर्सिटी मुआशरे को ज़्यादा रंगीन और मजबूत बनाती है, ये हम सब जानते हैं। दूसरे के कल्चर को समझना और रेस्पेक्ट करना हम आहंगी को बढ़ाता है और ये दिन टॉलरेंस, इंक्लूजन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का पैगाम देता है। मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोग जब मिलकर काम करते हैं तो बेहतरीन आइडियाज पैदा होते हैं और ये हम सब देखते हैं। हमारा कतर इसका एक बहुत बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है। हम अपने कतर के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ उनके अंदाज, उनके खाने पीने, कल्चर सारी चीजें देखते हैं, समझते हैं और एक दूसरे को बेहतर जानने की कोशिश भी करते हैं। तो ये बात हक है कि जब दो अलग जगहों के लोग यहां तक कि हमारा दीन भी यही हमें सिखाता है कि दूसरे लोगों तक जाओ, उनको देखो, उनको

समझो और उनकी जो अच्छी चीजें वो अख्तियार करो और अपनी अच्छी चीजें अपने दीन की अच्छी चीजें उन तक पहुंचाओ। तो ये एक सिलसिला है जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कायम रखना चाहिए और रहना भी चाहिए। तो जनाब इसके अलावा बढ़ते हैं आगे और आइए कुछ मैसेजेस का रुख कर लेते हैं। और मेरे ख्याल में अभी तक एक भी गाना प्ले नहीं हुआ है, तो क्या कहते हैं फिलहाल एक मतलब भाई मॉर्निंग की वाइब बढ़ाने के लिए एटलीस्ट। गुरु रंधावा

0: सुन रहे हैं
1: आप सुन रहे हैं
0: वेक अप वेक अप वेक अप Wake up only on FM 107.
2: Dil se desi. Hala, good morning, good morning, good morning, Qatar. तो भाई आइए कुछ वेदर का हालचाल जल्दी से जान लेते हैं और उसके बाद आपकी कॉल का सिलसिला और मैसेजेस का सिलसिला भी इंशाल्लाह ताला जारी रहने वाला है। तो साहब वेदर के हवाले से बात करें तो कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक आज से 14 अक्टूबर तक ओके यानी 12 से लेकर 14 अक्टूबर तक कतर के कुछ इलाकों में बारिश के चांसेस हैं। यस कतर सही सुना आपने, मैंने भी यही सुना तो मुझे ताज्जुब हुआ, बट इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को रेन जो है उसके साथ साथ कुछ गरज बरस भी रहने वाली है। तो कल यानी मंगल के रोज तो ख्याल कीजिएगा और तैयार रहिएगा, पकौड़े शकौड़े बना लीजिएगा अगर ऐसा कुछ होता, और हमें भी बुला लीजिएगा भाई, कोई बात नहीं है। डिपार्टमेंट ने बताया है कि इस वक्त कतर में अल हकबान वेदर कंडीशन चल रही है जो अल वस्मी सीजन से पहले आती है। इस दौरान लोकल क्लाउड्स बन सकते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में स्कैटर्ड रेन जो है वो हो सकती है। तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक कुछ औकात स्ट्रॉन्ग विंड्स भी चल सकती हैं जिसकी वजह से डस्ट उठ सकती है और विजिबिलिटी कम हो सकती है। तो तमाम यूजर्स को वेदर अपडेट्स फॉलो करने और एहतियात से ड्राइव करने की हिदायत की गई है। भाई जितने भी कहना चाहिए एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल करते हुए इंशाल्लाह ताला गाड़ी चलाइए तो आराम ही आराम होगा। ये कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
2: अहलेन अहलेन अहलेन कैफल हालकुम, कैसे हैं जमाल?
3: अल्लाह का शुक्र है
2: सैयद भाई, जमाल भाई सैयद भाई।
3: अबे काम काम करो, खानदान वालों का तुक्का नाम ले लो भाई।
2: सैयद भाई सैयद भाई हमारे साथ,
3: पूरे खानदान वालों का नाम ले लो।
2: अरे कैसी बातें कर रहे हैं मियां, मैं बोला ना सैयदी सैयद,
3: सैयद है ही नहीं तो इसलिए बोलो खानदान वालों का नाम ले लो।
2: जमाल भाई
3: नहीं ना, जमाल है ना सैयद है, पूरे अपने भाई थे लेकिन फिर भी जो है ना शेख अजहरुद्दीन फ्रॉम।
2: अरे यार अजहर भाई मेरी गलती है यार, माई बैड। आवाज गूंज रही है मेरे कानों में और घूम भी रही थी और वो नाम पिक नहीं कर पाई जल्दी में, क्योंकि यकीन जानो यार ये जो मैंने दोनों नाम बताए ना सैयद भाई एंड जमाल भाई फ्रॉम हैदराबाद, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप तीनों भाई हैं भाई, यकीन जानो एक ही आवाज है।
3: पूरे भाई हैं, आप भी हमारे भाई
2: हैं। अरे वो तो है ही है भाई, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है यार। अजहर भाई, अज्जू भाई, हाउ आर यू टुडे?
3: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सरवर भाई भी खाने के शौकीन, अज्जू भाई भी खाने के शौकीन, हैदराबादी खाने का शौकीन, सरवर भाई भी खाने के शौकीन, ये तो जुड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह।
2: माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको खुशोखरम रखे भाई। और कैसी हुई सुबह और कहाँ जा रहे हैं सगेरे?
3: सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई, और मैं बस लास्ट थर्सडे के दिन आया, वेकेशन गया था।
2: ऑलराइट, दैट्स व्हाई मैंने कहा ना कि आपसे यार कहाँ आप गायब थे इतने दिनों बाद बात हो रही। कितने दिन रही है भाई छुट्टी?
3: मैं एक महीना रह के आया था।
2: कैसा है भाई अपना हैदराबाद, कैसा है भाई
3: अपना हैदराबाद छोड़ने के बाद? तो किधर दिल्ली नहीं लगता, किधर भी ठहर गए तो भाई
2: जानुमा
3: हैदराबाद,
2: बेगम पेट,
3: बेगम तो बेगम ही थे वो।
2: ये मेरे अजीजों के मोहल्ले हैं इसलिए ये नाम अक्सर
3: बड़े खूबसूरत नाम लिया।
2: अरे भाई पुराने जगहें अपनी हैदराबाद की और खूबसूरत जगहें हैदराबाद की, इंशाल्लाह ताला जल्दी वहां का भी चक्कर लगाने वाला हूं मैं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो पूरी है।
3: अल्लाह आसान करे।
2: तो सर क्या कहते हैं आज कुछ टॉपिक भी हमारा चल रहा था चाय और कॉफी का, तो क्या कहते हैं अज्जू भाई, चाय टीम कॉफी टीम?
3: हकीकत चाय भाई, चाय
2: टीम,
3: चाय लवर।
2: और भाई और डिकाशन होना अगर सुबह ही सुबह अपने को, फिर उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। नहीं
3: डिकाशन होना है, चाय होना है और आने

0: आने से पहले सर्वर में हमारे दोस्त लोग आए थे, बोले चलो यार जूस वगैरह पियेंगे बोल के, बोले तो मैं बोला भाई वाला जूस ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलती, चाय
1: नहीं मिलती सही भाई। यार वहां जाने के बाद ऐसे होता है यूजुअली, जो वहां पर माशाल्लाह से हमारे दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, जाहिर बात है बातें हम लोगों की बड़ी बड़ी, मगर अब ऐसा नहीं है, माशाल्लाह से वो लोग बहुत अच्छे सेट हैं जैसा कि मुझे दिखता है। और जाने के बाद वो यही सोचते हैं कि भाई बाहर से आया चलो उसको चाय कॉफी और इस तरफ लेके जाओ, उनको पता ही नहीं है कि हम कितने देसी हैं भाई अभी तक, और किस तरीके से यहाँ पे रह के भी हम दूसरों को देसी बना रहे हैं। तो ये चीज बड़ी हो जाती है। आपने बड़ी अच्छी चीज बताई है कि लोग कहते हैं कि भाई चलो चाय जूस पियो, ये करो वो करो, अपने को तो भाई वही वाली चाय चाहिए पिरच में डाल के और सुड़ सुड़ करके पीने में जो मजा आया ना, वो कहीं नहीं है भाई, वो कहीं नहीं। और खासतौर पर जब सर्दियां,
0: अभी हमारे हमारे हैदराबाद में अभी कैसा ट्रेंड हो गया मालूम सरोवर भाई,
1: कैसा
0: चाय के लिए हम लोग, मैं रिसेंटली जब जाने के बाद हमारे दोस्त लोग वाला ऐसे बैठे बैठे चल भाई चाय पीने जाएंगे, तो मैं बोला ठीक है चलो कहाँ की पियेंगे, मजेदार की पियेंगे नहीं तो यहाँ पे पिस्ता हाउस की पियेंगे।
1: क्या नाम ले लिया, हलीम याद दिला दिया।
0: तो वो हमारा दोस्त क्या बोला मानो भाई, अरे घर के पीछे की क्या पीते यार, चलो नानी के घर के पीछे की पियेंगे,
1: थोड़ा दूर जाएंगे।
0: हाँ मैं बोला किधर है, कोसी तो भी जाएंगे, किधर तो भी जाएंगे रे, तो दो ऑप्शन है तेरे पास, एक नील कमल की चाय या नहीं बोले तो एक जैसे नीलोफर की चाय। मैं बोला किधर है, नीलकमल की चाय हिमायत नगर, नीलोफर की अगर चाय पीना है तो हाईटेक सिटी,
1: हाईटेक सिटी।
0: तो बोला उतनी दूर जाके चाय पीना कौन बोला रहे, बता फिर तो मजा है ना रे भाई चाय।
1: अरे भाई यार क्या क्या बातें हो गई सुबह सुबह, और तमाम लोग जो हैदराबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनको बड़ा अच्छा लगा होगा सुन के। भारत अजहर भाई, अज्जू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यार आपने वक्त निकाला हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े। और
0: भाई मैं फोन पुरानी इसलिए निकाला ताकि आप सुबह सुबह सुबह की शो में आए, आपका स्वागत करना हमारा फर्ज बनता है।
1: अहलन वसहलन
0: करना सुबह,
1: अहलन वसहलन मेरा भाई कैसा, अज्जू भाई जैसा। थैंक यू,
0: आपको देख के मैं बोला चलो ठीक है एक दो मिनट हम भी बात करेंगे सरोवर भाई का इस्तकबाल तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे।
1: थैंक यू सर,
0: सुबह के शो में बोल के हम आपको
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो बहुत खुशी भी हमारे को आपसे बात करके, जो है ना ऐसा महसूस करेगी जो है ना एक चाय हो गई हैदराबाद की।
1: लूट लिया, दिन बना दिया भाई, अज्जू भाई दिन बना दिया। वाकई ऐसा एहसास हो गया कि चाय हो गई, और यकीन जानिए आज मेरी चाय हुई नहीं है अभी तक, अब आगे क्योंकि सेट होते होते सेट होऊंगा तो मुझे मालूम है कि कब मुझे सैंडविच खाना है, कब मुझे चाय खाना है। अभी तो चाय खाना है, लो साहब हमारे बंगाली भाई भी याद आ गए मुझे बात करते करते।
0: सर्वर भाई एक बात बोल के तो मैं एक बात बोल के कट कर देता हूँ इंशाल्लाह
1: जी।
0: मैं लास्ट टाइम उमरे को गया था तो अब वहाँ पे उमरे को गया तो हमारे हैदराबाद से भी एक हमारे एक कजन भाई आए थे, उन्होंने एक महीने के लिए उमरे को आए थे, तो वहाँ पे चाय के लिए इतना तड़प रहे थे, वो इतना तड़प रहे थे। तो हमारे हैदराबाद से यानी डबल पुरे से जैसे एक हमारे और एक रहमान भाई बोल के रहते, उन्होंने मदीने मुनव्वरा से और उनके रूम को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस, उनको बस उतने करीब में रहते थे। अल्लाह बहुत बड़ी खुशनसीब वाले,
1: खुशनसीब 5 मिनट बिल्कुल सही,
0: यकीनन 5 मिनट सिर्फ अढ़ाई सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले में उनका घर है, रूम है
1: सही।
0: उनका जब दिल वाला, जब फजर नहीं जोहर, जब दिल वाला जब दीदार करते, कुर्बान हो जाओ हमारी सारी दुनिया उनपे कुर्बान है।
1: सुभान अल्लाह,
0: जब हम गए मुलाकात करे तो उन्होंने हमारे लिए, हम जब गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक के दीदार करे ज़ियारत करे, उसके बाद हम उनको फोन करे तो उन्होंने बोले ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास, बोल के रात के 2 बजे उनके हाथ घर में उनके रूम में उनके हाथ की हैदराबाद की पत्ती की चाय बना के रात को लेके आए, लेके आए।
1: क्या बात है यार, पत्ती आई थी बकायदा हैदराबाद से लेके आई गई थी। है?
0: नहीं नहीं, उन्होंने आने के टाइम पे
1: लेके आए थे
0: जो ना 1.5 किलो पत्ती ले लेके आए।
1: वाह,
0: एक साल तक चलना बोलिए, 1.5 किलो पत्ती ले लेके आए।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: ये मोहब्बत है,
1: ये मोहब्बत है
0: चाय की, चाय से मोहब्बत।
1: अरे भाई चाय के अलावा क्या क्या, शामिया याद दिला दी आप, गोश का अचार याद दिला दी आप, मॉर्निंग में भूख लग रही मुझे।
0: आप इजाजत दिए तो इंशाल्लाह गोश का अचार लेके आके दूंगा।
1: अहलन बस सहलन। बहुत बहुत शुक्रिया अज्जू भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुबह को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए इसी तरीके से, खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, यहाँ पर अब बात चल रही है आज चाय कॉफी के हवाले से। और यार मुझे यहाँ बराबर कॉल तो आ रही है बट मुझे व्हाट्सएप नंबर भी कॉल आ रही है। तो इन द लास्ट 0443 8862 3044 तो मैंने बता दिया 9615। आप तमाम लोग मुझे 443 7 7 पे कॉल कर सकते हैं। 443 443 77 इज द नंबर। मैं इस नंबर पे जिस पे आप कॉल कर रहे हैं इससे मैं कॉल कनेक्ट नहीं कर सकता हूं मेरे भाई। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 443 443 77। फिर बोल दूं 443 443 77 इस पे आप मुझे कॉल कीजिए तो मैं रिसीव और अटेंड करूंगा। चलिए साहब मैसेज के सिलसिले पे वापस आते हैं। भाई बहुत सारे मैसेज हैं, कहाँ से छेड़ूं, दास्तां कहाँ तमाम करूं। यहाँ पर मुझे कुछ अपडेट्स वगैरह भी लेनी है और मुझे पूरी उम्मीद थी आप लोगों की मोहब्बत की, शफकत की, इनायत की, कि इसी तरीके से मुझे नवाजा जाएगा। और मैं यकीन जानिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ। इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जो है मोहब्बत का आगे भी कायम रहने वाला है। और आज के दिन मैंने सोचा था कि वाकई गाने वगैरह कम ही प्ले कर पाऊंगा मैं, और क्योंकि बातचीत ही इतनी होगी। और मुझे अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने जो मुझे उम्मीद थी वो पूरी कर दिखाई। कहते हैं नैनीताल का है सर अनवर भाई। मैं बोला था अनवर भाई कि ये फोटो आपका जो है ये है तो कहीं आसपास का। दो तीन मैसेजेस उसके बाद कॉल लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, माई हस्बैंड इज अ कॉफी पर्सन, उनको सुबह कॉफी हाथ में रखे उठना पड़ता है। फॉर मी नन न कॉफी न चाय। ओ मैम वाई, अच्छा चलिए खैर, कम से कम समीरा अजीज है हमारे साथ। समीरा जी मैं समझ सकता हूँ कि कितनी ज़्यादा परेशानी सुबह सुबह होती होगी आपको जब आप चाय कॉफ़ी पीते नहीं हैं और बना के और फिर सर्व करती हैं। तो मज़ा कर रहा हूँ, परेशानी तो नहीं बट ये चीज़ बताती है कि आप और आपके हस्बैंड में कितनी मोहब्बत है। अल्लाह ताला इस चीज़ को कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम सर, कॉफ़ी लवर एनर्जी के लिए कॉफ़ी पीना मांगता है भाई सैयद रज़ा। सही बात है रज़ा भाई, मैं भी यही कहता हूँ यार। ये एक घंटे पहले के मैसेजेस हैं जो अदा कर पा रहा हूं मैं। इलायची वाली चाय विद बन मस्का, मेरी भाई बॉम्बे से है। अच्छा दिस इज मोना। ओह मोना, हाउ आर यू, अगर मैं समझ रहा हूं कि सही, अगर वही मोना है, मोना ईसा। इलायची वाली चाय विद बन मस्का मीन्स कोई तो बॉम्बे से है भाई। बन मस्का इज बॉम्बे टर्म फॉर बन एंड बटर, राइट। यहाँ पर रईस खान ने मुझे कुछ अंडे पराठे और कॉफ़ी चाय सब भेज दिए। ना करो भाई, ना करो, प्लीज़ प्लीज़ मत करो। अभी कितनी देर है भाई, एक घंटा है यार। अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, कड़क चाय नहीं तो सुबह नहीं। कमालुद्दीन मेरा भाई कैसा, कमाल भाई जैसा, बिल्कुल मत होने देना सुबह को चाय के बगैर। Everyone drinks tea, but only the rich drinks coffee. No, it's not like that. अब मुझसे ज़्यादा गरीब गुरबा आपको कहाँ मिलेगा यार। अबू अहमद क्या बातें कर रहे हैं यार, यहाँ काली चाय तो छोड़ो, काली कॉफ़ी पी रहे हैं यार, ऐसा नहीं है यार। अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, गुड मॉर्निंग, गुड टू हे यू। ओके थैंक यू सो मच। माजिद हुसैन हमारे साथ कुछ और भी टाइप कर रहे हैं। कहते हैं मस्का बन हमारी तरफ कराची में भी चलता है। ओ यस माई बैड, कराची रहा हूँ मेरे भाई मैं 33 डेज लगातार एक साथ। मैं कराची में बहुत वक्त गुजारा है माजिद हुसैन। ओके अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, कॉल मी प्लीज़, आई एम टी लवर मोहम्मद आसिफ। श्योर भाई, वाई नॉट मैं कुछ मैसेजेस अदा कर लूँ, या चलिए ये भी रस्म अदा कर देते हैं क्योंकि ये भी हमारी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होता है कि कॉल जो हमें करने के लिए कहते हैं उनसे भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। भाई मैं मिलाऊँ कैसे, दोनों लाइन बिजी आ रही हैं। सॉरी यहाँ पे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आसिफ भाई हमारे साथ, लेट्स सी कि इनका क्या कहना है, अगर कॉल उठा लेते हैं क्योंकि मैसेज तो गालबन एक घंटे पहले का था। हेलो सलाम वालेकुम।
1: हेलो सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या मैंने सही कनेक्ट किया, इज इट मोहम्मद आसिफ विद अस?
1: जी सर।
0: अरे आसिफ भाई क्या हो गया, सुबह नहीं हुई क्या, चाय नहीं मिली क्या?
1: नहीं सर, चाय नहीं है, कुछ नहीं है सर, अभी तो ऑफिस पे है।
0: अभी ऑफिस में है, कहाँ से ताल्लुक है आसिफ भाई आपका?
1: एक्चुअली मैं हैदराबाद से हूँ सर।
0: हैदराबाद, कहाँ हैदराबाद, आई मीन विच प्लेस इन हैदराबाद? हैदराबाद में किधर?
1: चारमीनार ओल्ड सिटी।
0: चारमीनार ओल्ड सिटी, बट ऐसा लग नहीं रहा यार बिल्कुल भी बात करके कि आप ओल्ड सिटी से हैं। एनी हाउ तो क्यों आसिफ भाई अभी तक क्यों?

0: नहीं हुई मॉर्निंग चाय या कॉफी के साथ? मतलब अभी अभी पहुंचे हैं ऑफिस?
1: जी हाँ सर, अभी अभी ऑफिस पहुंचा हूँ सर। आप बताइए, आप कैसे हैं सर?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आसिफ भाई, और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। बस अल्लाह ताला इसी तरीके से आगे कहानी बढ़ाता रहे। तो क्या कहते हैं, चाय या कॉफी आसिफ भाई? चाय टीम, कॉफी टीम?
1: टू बी फ्रेंकली बता दूं, आपकी ही टीम में हूं, चाय लवर हूं। और मैं इतना क्रेजी चाय लवर हूं, अगर लिसनर्स अगर सुनेंगे तो बोलेंगे कि बंदा आधा पागल है।
0: अरे तो फिर तो बनता है,
1: आधा पागल
0: है। कोई पागल नहीं कहा भाई, सुनो भाई, कोई आसिफ भाई को पागल नहीं कहा, इधर भी और इधर भी, लेफ्ट राइट दोनों कह दिया मैंने। आप बताओ आसिफ भाई, क्या है मामला बताओ।
1: लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं फैमिली को लेके खतर से एग्जिट एंट्री करता हूँ एवरी टू मंथ्स में।
0: Alright.
1: जो हया पर है मेरी फैमिली, मेरे बीवी बच्चे हैं और मेरे साले हैं, उनकी
0: अल्लाह खुश रखे।
1: एवरी जजाकल्लाह सर, एवरी टू मंथ्स में हम लोग जाते हैं खतर से एग्जिट करने के लिए, फिर एंट्री करते हैं। तो खतर से जब हम लोग एग्जिट करते हैं तो वहाँ पर एक है चाय स्टॉल, जो मैं नाम डिक्लेयर नहीं करना चाह रहा हूँ। तो हमने एक बार चाय पिया वहाँ पर, दो बार चाय पिया, तीन बार चाय पिया, ये सिलसिला नहीं, जब भी एग्जिट करते हैं यहाँ से।
0: जी जी मैं समझ गया,
1: खतर से जब एग्जिट करते हैं ना वहाँ पर,
0: जी जी जी,
1: तो लगभग ये सिलसिला एक साल से जारी है।
0: ओके,
1: तो फाइनली एक वीकेंड में मून हुआ कि भाई चाय पीनी है, और वो भी वहीं पर जाकर।
0: ओहो, मतलब जरूरत नहीं थी जाने की, बट फिर भी मूड हो गया कि भाई जाना तो वहीं है,
1: जाना तो वहीं है। और गए किधर सर जी? खतर से एग्जिट करके।
0: अरे नहीं यार, ऐसा नहीं कहो।
1: खतर से, आई स्वेयर टू यू, मैंने खतर से एग्जिट किया हूँ, मेरे दोस्त को लेके, उसके पास भी सऊदी का मल्टीपल एंट्री वीजा है
0: यार,
1: मेरे पास भी सऊदी का मल्टीपल।
0: यार बस करो, मैं रो जाऊंगा यार, मैं रोने लगूंगा। मैं मुझे तो तलाश थी ऐसे आदमी के भाई, थे किधर? मैं तो चाहता हूँ मेरे दोस्त ऐसे बने भाई जो मेरी तरह हरकतें करें। चाय पीने के लिए एग्जिट ले लिया,
1: 110 किलोमीटर पड़ता है जाने के लिए, 110 किलोमीटर।
0: तो क्या गाड़ी से गए थे या फ्लाइट से गए थे?
1: बाइक कार, नहीं सर बाइक कार जाऊंगा, बॉर्डर
0: से एग्जिट करेंगे। यार मैंने भी कैसा सवाल किया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कब जा रहे हैं अपन?
1: मुमकिन सर नेक्स्ट मंथ की 16 तारीख या 14 तारीख को फिर चले जाऊंगा, क्योंकि फैमिली का एग्जिट खत्म हो जाएगा।
0: तो वो तो फैमिली साथ में मजबूरी होगी ना, मतलब जब ये वाली कोई आपको माजरत के साथ खुजली उठे, ऐसी कोई खुजली उठे ना, हाँ ऐसी कोई खुजली उठे तो भाई को याद कर लेना इस बार। यार
1: मैं आई जस्ट वॉन्ट टू बी कंटिन्यू माई वर्ड्स। तो जब मैं वापिस आया हूँ तो मेरी कंपनी से मेरे को वार्निंग लेटर मिला है, 3 दिन सैलरी भी डिडक्शन।
0: अच्छा, ये बाद में जानने को मिला मुझे कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, क्योंकि ये तकलीफ की बात है यार। ये तो अब पता चला कि आप क्यों कह रहे थे कि मजनून कहा जाएगा।
1: कैन यू इमेजिन 3 दिन की सैलरी? आई एम वर्किंग एज एचएससी मैनेजर, सो एक प्रोफेशनल आदमी के,
0: नहीं नहीं बनता है, 3 दिन की सैलरी नहीं नहीं, आप ये इतना तो बनता है आपके साथ, इतना होना भी चाहिए यार, इतना तो होना भी चाहिए।
1: विदाउट इन्फॉर्मेशन
0: बहुत,
1: मैंने मैनेजमेंट को भी नहीं बताया कि मैं जा रहा हूं।
0: क्या शेर सुनाया आसिफ भाई आपने, आपने अपनी कंपनी को क्या शेर सुनाया, वो इरशाद कहीं नहीं पाएंगे बाकी कभी।
1: वो एक शेर है सर, एक शेर है,
0: इरशाद
1: अच्छे चले वो हमसे जिसे अपना सर अजीज हो, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले।
0: ओए बच के चले वो हमसे जिसे अपना सर अजीज हो,
1: हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले।
0: आए हाय हाय हाय, तो बस समझ लो अब ये कनेक्शन हो गया। वो जो सरबरा जिससे बचने के लिए कह रहे हैं आप, वो आपको मिल गया। अब 110 किलोमीटर दोनों भाई एग्जिट लेंगे और हो गया।
1: कभी भी आप चलिए बिंदास, बिल्कुल लिटरली फ्रैंकली बता रहा हूँ ना, वो चाय के एडिक्ट हो गए वहां पर की स्पेशली।
0: यार क्या बात है यार, हर तरीके का लिसनर हमारे साथ है, और यही खूबसूरती है हमारे कतर की भी और हमारे लिसनर्स की भी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बड़ा अच्छा लगा आसिफ भाई आपसे बात हुई, और इतने अच्छे किस्से आपने चाय से मुतालिक शेयर कर दिए। मुझे लगता है आज का टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल भी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: आपने जिस टॉपिक को लिया है आज, लिटरली मैं बता रहा हूँ, तो आई हॉनेस्टली फील दैट के कबीर भाई की आपने जगह को फील कर रहे हैं।
0: अरे सर वो बड़े खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर
1: तो है, बट थोड़ा थोड़ा आप भी तो कोई कम नहीं
0: हैं। सचिन तेंदुलकर अब भारत, वो बात अलग है कि धोनी आया तो उसने सबको हटाया।
1: ओ
0: भाई बैठ भाई बैठ
1: लगे रहो।

0: उन्होंने ये सुन लिया ना तो फिर मेरी खैर नहीं,
1: नहीं
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया
1: भाई। बोलेंगे हम साथ दो और आपने भी हमारा साथ,
0: हमारा साथ पांच है क्योंकि हम पांच के बराबर हैं, तो हमारे साथ पांच है।
1: और प्रिंस भाई ने फोन किया था
0: यार मुझे पता नहीं, एक्चुअली अभी पता चल रहा है कि कौन कौन रेगुलर कॉलर हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनसे भी बात करेंगे। जस्ट नाउ व्हाट आई कैन सी इज लाइक मुझे सऊदी से कॉल आ रही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो उनसे बात करूंगा अब आपके बाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे सर, थैंक यू सो मच। तो भाई बनता है बनता है बनता है, सऊदी से कॉल आ रही है, इतना तो बनता है कि ये वाली कॉल कैसे ड्रॉप होगी। ओके If I'm not wrong, hello, assalamu alaikum. Or is it?
2: Assalamu alaikum.
0: Ji, kaun?
2: Ji, Sarwar bhai.
0: Ji, ab do minute rukiye, abhi bula ke lata hu. Kaun hai hamare sath?
2: Ji, mera naam Rana Nadeem hai. Main Saudi se hu.
0: Yaar, Rana bhai, yaar. दिल खुश कर दिया यार तुसी, यार क्या बात कर रहे हैं, सरवर तो आपके खिदमत में हाजिर है। मैंने वही देखा, मैंने कहा यार सऊदी से कॉल आ रही है ये तो मुझे। राना भाई खैरियत से हैं?
2: सरवर भाई गरीब बंदों को भी टाइम दे दिया
0: करो, ये निकल के गाड़ी आ गए। सऊदी से कॉल अगर हमें कोई कर रहा है तो भाई आप सोचिए फिर कि अब तो मेरा आपके पास आना बनता है, जो बात आप कह रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है।
2: बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, सर आंखों पे सर,
0: कैसे हैं?
2: चलो जल्द करे तो।
0: अरे मेरा भाई कैसा, लाहौर से हैं क्या राना भाई?
2: जी मैं पंजाब साहिवाल से।
0: पंजाब साहिवाल से हैं, ओके यार, और मुझे लगता है कि आप रेगुलर लिसनर हैं माशाल्लाह सऊदी में रह के एफएम 107 के।
2: जी सर बस हल्का फुल्का।
0: अरे नहीं सर हल्का फुल्का कहाँ से, इतना भारी तो मामला आपने कर ही दिया, सऊदी से कॉल कर रहे हैं आप और वो भी 7:53 में, इससे ज्यादा क्या होगा, टाइम इतना भारी हो रहा है सुबह सुबह का। आपने दिन बना दिया सर मेरा और बहुत खुशी हुई मुझे, और मुझे नहीं मालूम कि आप पहले भी कॉल कर चुके हैं, शायद बात होती होगी जब आपने आज। दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम माई गॉड माई गॉड माई गॉड सर, थैंक यू सो मच। और ये देखिए ये एग्जाम्पल है मोहब्बतों का एफएम 107 से, ये कमाल है भाई।
2: आपकी मोहब्बत है सर
0: भाई, मैं देर इज नो वर्ड्स, और आपने बेमिसाल इस वक्त जो बात करी है ये कॉल करके, मैं वाकई मेरे पास लफ्ज नहीं मिल रहे हैं कि मैं, जबकि काम मैं यही करता हूँ पैसे इसके लेता हूँ, बट इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया यार, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा राना भाई, बहुत बहुत शुक्रिया राना भाई। तो
2: सरवर भाई
0: जी जी बताइए,
2: मुझे एक छोटी सी अर्ज करनी थी जी, अगर आप।
0: अहलन वसहलन जी बताइए।
2: ये अभी मेरा भाई बात कर रहा था, चाय पीने के लिए 130 किलोमीटर आते हैं, हम लोग खाली मछली खाने के लिए रियाद से तमाम आते हैं, मछली खाने के लिए।
0: मुझे मालूम भाई, मुझे नहीं मसला क्या है राना भाई, मुझे पता है सऊदी वाले क्या क्या करते हैं भाई ट्रैवलिंग और खाने के चक्कर में, मैं भी उनमें से एक हूँ भाई, मैं यहाँ से हुफूफ जाता हूँ खाना खाने के लिए, तो वो बात एक टॉपिक अलग हो जाएगा मामला। तो मगर हम
2: भाई कब आ रहे हैं,
0: ये मामला अलग हो जाएगा,
2: कब आ रहे
0: हैं? मैं इंशाल्लाह ताला जरूर हाजिर होऊंगा सर, और यकीन जानिए आप लोगों की इतनी मोहब्बत है तो आपसे तो मिलना बनता है राना भाई, इंशाल्लाह ताला जरूर। आप मुझे मैसेज भी करिएगा, मुझे मैसेज भी करिएगा, और कभी
2: सरवर भाई इस वक्त मेरी ड्यूटी जो है ना वो सलवा में है।
0: ओह ओके, सो बड़े करीब हैं आप हमसे।
2: जी मैं एक्चुअली टेलीकॉम इंजीनियर हूँ।
0: ओके ओके ओके ओके माशाल्लाह माशाल्लाह,
2: तो इन दिनों में मेरी ड्यूटी जो है सलवा में है।
0: अरे सर क्या बात कर दी, जरूर जरूर जरूर, क्योंकि आपने आपने अब ये मोहब्बत की पहल जो करी है ना, इसका मैं इंशाल्लाह बदल करने जरूर आऊंगा इंशाल्लाह ताला, जरूर।
2: आप नहीं कर सकते सर।
0: अरे अरे अरे अरे अरे, नहीं नहीं सर इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश पूरी रहेगी, और आपका नंबर भी मैं याद रखूंगा, आप इस वक्त सलवा में होते हैं वैसे। जी
2: आप नहीं कर सकते, आप हमें दावत दें, हम क्या कहते हैं ना उसको
0: सर, यकीन जानिए इस वक्त मैंने फोटो खींचा है,
2: आपके पास आ गए,
0: आपके नंबर का भी फोटो खींचा है, बहरहाल हमसे रابطہ तो रहेगा ही, और आपकी कॉल बढ़ रही है इसलिए मैं जरा परेशान भी हो रहा हूँ। मैसेज के जरिए जरूर कनेक्टेड रहिएगा, वॉइस नोट भेजते रहिएगा और अपने मैसेजेस जरूर करते रहिएगा। यूजुअली सलवा के अलावा कहाँ होते हैं फिर आप सऊदी में, अगर आपकी पोस्टिंग वगैरह होती है तो?

0: basically to my reaction aur
1: reaction dar aana hai. All right main samajh gaya
0: yahan pe duty hai aaj kal meri.
1: Okay
0: jo hai na banda short hai.
1: Okay
0: isliye mujhe aana pada.
1: All right
0: otherwise main pure saudi mein ghumta hu ji.
1: माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहतयाब रखे, खुशोखुर्रम रखे और इसी तरीके से मोहब्बतों से आप हमें नवाजते रहें. आपके दिल में हमेशा हमारे लिए जगह रहे भाई और बहुत और बेहद शुक्रिया. बहुत और बेहद शुक्रिया
0: यार, अल्लाह ताला आपको भी 100 साल उम्र दे सर भाई.
1: अरे सर, अरे
0: आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया.
1: अल्लाह ताला चलता फिरता
0: रखे. मोहब्बतें इतनी है माशाल्लाह दिल में जगह करती है.
1: मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे पास लफ्ज नहीं है, शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं कितना खुश हुआ उस वक्त इतनी बातें और आपकी ये कॉल देखकर कि मैं बता नहीं सकता. मेरा सुबह आना उसूल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी फैमिली को खुश रखे, आपके रिस्क में बरकत करे और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहे. थैंक यू सर जरूर
0: हमें दावत का मौका दें.
1: जरूर राना भाई, जरूर मोहब्बतें भाई. थैंक यू राना भाई, थैंक यू सो मच
0: सर. अहलन बस याद रखिएगा, हमें याद रखिएगा गरीब.
1: थैंक यू सर थैंक यू सो मच. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हाय फराज साहब का शेर याद आ गया मुझे, और कितनी मोहब्बतें चाहिए तुझे फराज, माँ ने अपने बेटों के नाम पे तेरा नाम रख दिया. ये मोहब्बत है सर और इसी तरीके से आप लोग हमें नवाजते रहिए. फिलहाल दिस इज टाइम फॉर ब्रेक. भाई प्लीज अभी लेता हूँ कॉल, अभी लेता हूँ. मेरी खामोशी है भाई, एक दो गाने तो चल जाने दो, केस हो जाएगा मेरे ऊपर. ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं. दिलजीत पिटबुल एंड ऑफ कोर्स नीरज भाई. मॉर्निंग. तो जाग जाओ यार, इतना अच्छा गाना.

गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कतर भाई, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और जिन्होंने जो अभी अभी हमें ट्यून किया है और उनको ये आवाज़ सुनाई दी है, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल परेशान मत होइए, प्रोग्राम का मिजाज सेम रहने वाला है, बस तरीका अलग है। कबीर जो है वो छुट्टी गए हुए हैं और सरवर मिर्ज़ा हाजिर खिदमत है आप लोगों के लिए। चलिए तो अब एक अभी तक चाय और कॉफ़ी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। दो टीम बनी थी भाई, आज टाइम ऐसा था कि हमें दो टीम बनानी पड़ी, और चाय टीम एंड कॉफ़ी टीम। तो चाय टीम की तरफ ज़्यादा रुझान रहा अभी तक, बाकी कॉफ़ी टीम वाले भी जुड़े हमारे साथ। और बताइए लोगों की कैसी कैसी दीवानगी है भाई, लोग कहाँ कहाँ से भाई कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि मैं ही एक ऐसा नमूना हूँ, बट ऐसा नहीं है। आज मुझे ये एहसास हो गया कि मेरे जैसे माशाल्लाह से और भी लोग मौजूद हैं। तो मुझे दुनिया वालों, है ना, बेवकूफ़ ना समझो प्लीज़, आगे भी नहीं कह सकता। कहते हैं कि भाई सरवर भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैसेजेस की जानिब आ गए, उसके बाद एक अपडेट और उसके बाद आप लोगों की कॉल। कैसे हैं सरवर भाई, और काफी दिनों बाद सुना आपको। तो क्यों सुना आपने काफी दिनों बाद, कहां थे आप अभी तक? दानिश भाई किधर थे आप? खैरियत से हैं दानिश भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने शायद इसलिए काफ़ी दिनों बाद सुना कि आप सुबह ही अवेलेबल होते होंगे। तो आज मुझे मॉर्निंग शो में पहली बार आके ऐसा पता चला, यस दिस इज़ माई फर्स्ट मॉर्निंग शो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 6-7 साल के अंदर। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह न्यूज़ बुलेटिन में हुआ करता हूँ, तो कभी बिजनेस न्यूज़, कभी स्पोर्ट्स न्यूज़, कभी बुलेटिन, तो इसलिए कभी मुझे मॉर्निंग शो करने का मौका ही नहीं लगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। बहरहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ दानिश भाई, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। कहते हैं अच्छी छी छी, क्या है भाई है? अली खान यार क्या लिखते हो अली भाई, मुझे काम करो वॉइस नोट भेजो तो मैं समझ लूंगा। मुझे मालूम है आप किसी की कच्ची करना चाह रहे हो उसके अंदर, बट मैं तो नहीं है इसमें साथ हूँ। कहते हैं कदम बढ़ाओ सर्वर भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। मॉर्निंग ब्लैक कॉफी, रेस्ट ऑफ द डे ग्रीन टी, ओके। हलवा पूरी को देखा तो सर्वर भाई की याद आई, हलवा पूरी देखा तो ये ख्याल आया, प्लेट में रखी पूरी देखी तो खुद से शर्म आ गई। यार ये क्या बात होती है इरफान भाई, बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगी शायरी आपकी, क्योंकि इसमें खाना मौजूद था और मैं उसमें नहीं था। नेपाल का है कहते हैं। अच्छा नसीम भाई मिला दिया मैंने दो मैसेजेस को आपस में। नसीम भाई से मैंने पूछा था ये फोटो कहाँ का है और इसमें जो इनका बेटा झंडा उठाया हुआ है वो कहाँ का है। सो ही रिप्लाइड कि दिस इज नेपाल्स फ्लैग। सलाम मिर्ज़ा भाई, वेरी नाइस योर शो सुरजीत।

सरवर मिर्जा साहब, डिस्ट्रिक्ट 99, टॉपिक क्या है आज का? अच्छा, ऐसा भी हो रहा है। वैसे अभी जस्ट नोटिस किया भाई, आपकी वॉइस कबीर उस्ताद से मिलती जुलती है, थोड़ा लो पिच करें तो। अरे भाई, उनकी काफ़ी चीज़ें मैंने बताया, देखिए इससे पहले भी मैंने खुलासा करा था, कबीर उल इस्लाम पूरा नाम है उनका, ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश एक्चुअली, उनकी जो टाइज हैं वो बांग्लादेश से जुड़ती हैं, और उनकी वालदा जो हैं शी इज़ फ्रॉम अलीगढ़ एक्चुअली, तो इसलिए ये जितना हंसी मजाक है ना, ये सब भाई हमारी तरफ से गया हुआ है, दिल्ली दिल्ली करते हैं वो, ही इज़ फ्रॉम अलीगढ़ बेसिकली, खून जो है ना वो अलीगढ़ का ज्यादा है भाई उस आदमी के अंदर, मैं आपको बता दूं। आज देखिए पहला खुलासा किया, पूछ लीजिएगा जब आ जाए तो। एनी बाओ पट्टी पाओ, आगे बढ़ते हैं। ये कौन थे हमारे साथ जितना अच्छा मैसेज किया इन्होंने, भाई अपना नाम नहीं बताया, डिस्ट्रिक्ट 99 वाले साहब नाम क्या है? प्यार का मारा। अस्सलाम वालेकुम चाय है, वालेकुम सलाम भाई कॉफी, क्या हाल चाल है, कैसी हो, कहां हो आजकल, मिली नहीं, मुजीर आलम सलाम के बाद थोड़ा गैप दे देते यार, चाय तो लिख दिया आपने, कहाँ है, इतने दिनों बाद आपसे बात हो रही। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, आई एम हनी फ्रॉम कानपुर टू, रामा देवी से, ओके, यूपी वाले भाई, यूपी वाले बाबू, ओके, अच्छा है यार, मैंने देखना चाहा आपका फोटो मगर मुझे कुछ और दिखा वहाँ पे। सलाम सरूर भाई, कबीर भाई थे तो लड़ाई झगड़ों वाले टॉपिक लाते थे, और अब आप आ गए हैं तो अब मुझे लग रहा है आज से टी कॉफी से स्टार्ट हो गया है, अब रोजा रोज खाने पीने की बात भी होगी, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल होती रहेगी। मेहर अजीज हैं हमारे साथ, एहलन वसहलन मेहर जी, कबीर वेयर आर यू, तो भैया कबीर से पूछिए, मैं तो नहीं बता रहा, आप अगर मुझसे कहते कि वेयर इज कबीर तो मैं बताता, उस्मान मोहम्मद जाओ मैं आपसे बात नहीं करता इसी से पूछ रहा भाई, कबीर वेयर आ रही हो, बताओ मैं क्या जवाब दूं। कबीर भाई छुट्टी गया है, थोड़े दिनों बाद वापिस आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह, जब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहेगा। सरवर भाई हो और खार की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, खार की बात मतलब काटे, यू मीन्स काटा, बिरयानी से शुरू करें साहब, अच्छा मेरे ख्याल में खाना कहना चाहते होंगे। सीबी, सीबी ने अपनी गाड़ी का हैंडल का फोटो लगाया हुआ है, नक्शेबाजी दिखा रहे हैं यहाँ पे, असली फोटो लगाया नहीं इन्होंने भाई, हम लोग हैदराबादी हैं, हमारी रगों में खून नहीं, ईरानी चाय दौड़ती है शेख राऊ फ्रॉम हैदराबाद, सही कहा भाई, सही कहा भाई, मान गया मैं मानता हूँ इस बात को, शहजादा सलीम है, जमाल भाई ऑलवेज सुपर कॉल, शहजादा सलीम कहते हैं यहाँ पर, जमाल भाई अगर आप हमारे साथ हैं, तारिक जमील साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, इज्जत माँ आप बहुत ही शरीफ आदमी एक्चुअली शेख इरफान अल कासमी साहब हैं, और बिल्कुल तारिक जमील साहब से मिलते हैं, तो देखिए मैंने आपकी तारीफ कर दी है साहब। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, एकदम से हालत बदल गए, जज्बात बदल गए, और चिप्ट भी बदल गई, हाँ भाई वही हो गया क्या यार। सरवर भाई चलो कोई नहीं, चाय की चुस्की लेकर रात की रोटी तक आप हमारे दिल में बसते हैं, बट नाजिया जी का क्या होगा, वो तो बाहर ही जाएंगी ना, बोर हो जाएंगी ना, ओहो यार मैं असल में खुश हो जाता हूँ उनके बारे में, आपने बोर लिखा मुझे लगा वो तो बाहर ही जाएंगी ना, तो मैं ऐसी बातें मेरे मुंह से निकल जाती हैं। यहाँ पर कोई वॉइस नोट भेजा है और कहते हैं जी शकील अहमद साहब, मैं प्रोग्राम के बीच में कैसे सुनूं इस वॉइस नोट को, इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि ब्रेक में सुन लूं, बहरहाल अगर आप टाइप कर देते तो अच्छा होता। अस्सलाम वालेकुम कैब भाई, मुझे कबीर ही समझ रहे हैं, एक बात तो समझ में आ गई, बहुत रिफ्रेशिंग माशाल्लाह आपको सुन के सुबह सुबह। सो फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन मिस और मिसेस और मिस्टर अहमद, क्योंकि यहाँ पे फोटो आप दोनों का लगा हुआ है, इज इट अहमद, दिस इज नॉट कबीर, दिस इज सरवर मिर्ज़ा विद यू इन द मॉर्निंग, आज से इतनी ही लाए तो बस खत्म हो गई यार अंग्रेजी के बारे में अगर बात करूं भाई, मैं कल ही भी याद करके हंस रहा था, आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने 30 मार खां देखी है अक्षय कुमार की, अब आप कहेंगे कैसी फिल्म की बात कर रहा है, जो उसने मनाई थी फारिया, क्या नाम है उनका, फराह खान राइट, 30 मार खां अक्षय कुमार की देखी थी आपने, मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी अच्छी थी भाई, उसके अंदर आपने अंग्रेज देखा जो अंग्रेज बनाया उन्होंने माय गॉड यार, सो फनी भाई, यस भाई बता नहीं सकता मैं, मुझे ऐसा लगा था कि ये बिल्कुल हमारा वाला मजाक हो रहा है, और अगर आपने 30 मार खां देखी नहीं देखी, आज आप उसकी क्लिप ये देखिएगा, इंग्लिश मैन इन 30 मार खां लगाइएगा और देखिएगा कि किस

0: इसे उन्होंने अंग्रेज बनाना चाहा है उसके अंदर, वो पूरा फॉर्मेट है मूवी का, कहानी है, बहरहाल बात अलग है। हेलो भाई, कहानी कब आएगी? अभी आएगी, अभी बस 8:12 हो रहे हैं, कहानी बनाता हूँ मैं, देखिए, और अभी आपकी कहानी बना देता हूँ मैं। कौन है ये? हसन, हसन अभी आएगी कहानी, अभी बस इंतजार में रहिएगा, एक 33-34 दिन इंशाल्लाह ताला काली आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह अल खैर, शुनक खुई सरवर वेन कबीर, कबीर रो जा सा बाबा एंड माफी कमिंग बैक। नहीं नहीं, इंशाल्लाह मेरा भाई खैरियत से आएगा, कबीर रो माल इजाजा, और इंशाल्लाह ताला जल्दी वापस आएंगे। और आपका फोटो मैंने देखा सर, हु इज दिस प्रिंस हमारे साथ हैं, प्रिंस कबीर विल बी बैक इंशाल्लाह आफ्टर हिज वेकेशन एंड लाइक फुल नवंबर मंथ आई एम विद यू इंशाल्लाह, एंड थैंक्स फॉर द मैसेज, और आपका फोटो भी मैंने देखा, इट्स रियली गुड टू सी दिस। अस्सलाम वालेकुम, लखनऊ और ग्लोब की चाय, ग्लोब की चाय या शर्मा के चाय, शर्मा जी की चाय होगी और शायद ग्लोब, मैं सही कह रहा हूँ, वो वाली चाय है लखनऊ में कोई, अफजल उस्मानी, लखनऊ गया हूँ यार, सिर्फ शादियों में गया हूँ, खाना खाने के लिए, मतलब शादी अटेंड करने के लिए, माई बैड, सॉरी, शादी अटेंड करने के लिए गया था यार, मैं सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं गया था। कहते हैं हाय एंड हाय, हाय टू यू टू, मोहम्मद हैं हमारे साथ, स्मार्ट मोहम्मद भाई, भाई कोशिश पूरी है कि मैं सारे मैसेजेस ले लूँ, बट मुझे लग रहा है कि शायद नहीं हो पाएगा आज के दिन, हो जाएगा इंशाल्लाह, अपने पास इतना टाइम है, मैं गाना नहीं चलाऊंगा, फिर यही करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, वेलकम, आप भी कोई भूत जिन की कहानी सुना दीजिए। मैं कम हूं? अरे आपका भाई भूत जिन से कम है के? अली मकसूद, मैं काफी हूं ना यार, तो आपको क्यों भूत याद आ रहे हैं, मैं आपकी जिंदगी में भूत की तरह ही हूं। और कितने भूत चाहिए तुम्हें ए मकसूद। गुड मॉर्निंग सरवर भैया, मिसिंग कबीर भैया, ओ बाया चला गया वो बाया, वेलकम टू द शो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अमन है हमारे साथ, और अमान और भाई बाज लगाया हुआ है भाई अपना हाथ में, अमान भाई असली है नकली है? अमान भाई यार बहुत ही बड़ा बाज है यार, ये तो बाज आ जाओ इन बातों से यार, बाज को लिए थे ले, बाज आ जाओ। रमेश यादव, ओ हो, क्या बात है, आज आमद हुई तो फिर वो भी पकौड़ियों के साथ, हिंदी में लिखते हैं गुड मॉर्निंग सरोज भाई, वेलकम मॉर्निंग शो, कहाँ थे यार रमेश भाई, कल किसने देखा हो, आज ही खा लो भाई जान, इलायची वाली चाय और सैंडविच, क्या बात है यार रमेश भाई, लॉन्ग टाइम यार, लॉन्ग लॉन्ग टाइम यार, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम सरोज भाई, सर्वर बिग होस्ट एंड आई एम योर बिग फैन, मेरा भाई कैसा, अब्दुल रहमान अल शाह जैसा, और खूबसूरत आदमी अब्दुल रहमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, चाय पराठा हिट डिफरेंट, कॉफी के साथ कुछ नहीं ले सकते, ना बिस्किट ना पापे ना पराठे, ओके ओके ओके ओके, चलिए साहब यार, शॉप का नेम या लोकेशन मंगवा लें, अच्छा कोई इनको याद आ रही होगी जो इस बीच गुजरी। अस्सलाम वालेकुम, या अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल द हिडन ब्लेसिंग्स, देन आई वाज अनएबल टू थैंक यू फॉर, या अल्लाह, व्हेन आवर हार्ट्स फील एंशियस फिल देम विद तवक्कल, आवर डेज विद बरका एंड आवर आखरा विद जन्ना, आमीन या रब्बल आलमीन सुम्मा आमीन, इफ यू आर नॉट बिजी से अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली शय, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, बहुत अच्छा मैसेज, कुल्लु नफ्स दायकल मौत, बेशक ये नाम की जगह लिखा हुआ है, भाई आपका नाम क्या है, लेट मी नो योर नेम ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम, आप खिलाड़ियों के खिलाड़ी ही है, अबू बकर हमारे साथ, और यहाँ पर बच्चों के प्यारे प्यारे फोटो, भाई दिस इज टाइम कि मैं एक कॉल ले लूं, वरना मैं थक ही रहा हूं मैसेज पढ़ पढ़ के, आप लोगों की नवाजिश मोहब्बत करम, यहां पर एक कॉलर हमारे साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु,
1: क्या भाई थक गए क्या
0: यार, वाकई आसिफ भाई मैं मैसेज पढ़ पढ़ के थक गया यार। कबीर भाई अपना बिल्कुल ठीक है और छुट्टी एंजॉय कर रहा है फिलहाल, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे,
1: उम्मीद तो ठीक है आप ही आओगे मगर इतने जल्दी आओगे ये उम्मीद नहीं थी।
0: अरे यार अब तो आए हुए टाइम हो गया,
1: जी जी 6 बजे से मैं तो लाइन में।
0: अच्छा नहीं, मैंने कहा शायद दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया में आए में तो हो गए भाई 30-32 साल।
1: भाई मैं बोल रहा हूँ भाई, आप सुधर जाओ भाई सच्ची में।
0: यार मैं तो सुधर रहा हूँ यार आसिफ भाई,
1: आप सुधरे हो ना उतना कोई नहीं है।
0: अरे यार ऐसी बात क्या बात कर रहे हैं यार आसिफ भाई, मैं तो यार मुझसे ज्यादा कौन सुधरा हुआ है बताओ यार।
1: शरीफुल दौला
0: कैसे आसिफ भाई, खैरियत से हैं? यार आसिफ भाई मुझे लगता है कि अब क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था एंटरटेनमेंट के हवाले से भी कुछ होना है, तो अब आपकी आमद हो गई है। पहले तो चाय कॉफी में से मुझे मालूम है आप कॉफी के ही शौकीन हैं, है ना? चाय तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है।
1: मजबूरी है भाई, जैसा आप 10-15 दिन से शुरू कर रहे हो। हमने
0: अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था यार, मैं तो मजाक कर रहा था भाई, ऐसी मैं तो आपको जरा चुरका दे रहा था। मैंने कहा आप नाराज होकर कहेंगे नहीं नहीं भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो चाय पीता हूँ।
1: नहीं नहीं भाई
0: हमारा गेम शुरू करते हैं। और कुछ भी नहीं आसान, आपको तो मेरे ख्याल में आप पहले खेल चुके हैं मेरे साथ, तीन का दम खेला ही होगा यार, ये तो अपना पुराना गेम है। तीन सवाल पूछूंगा मैं आपसे,
1: सलमान खान की याद आ गई 10 कदम।
0: हाँ वैसे ही है, तो इसके अंदर क्या होने वाला है, मैं आपसे तीन सवाल पूछूंगा, दो बहुत मुश्किल सवाल होंगे एक बहुत आसान होगा, वो आपको पता ही है। ठीक है
1: बिल्कुल भाई बिल्कुल।
0: चलिए ठीक है, तो आप रेडी हैं?
1: जी जी।
0: ऑलराइट देन, पहला सवाल आ रहा है आपके सामने, ये आसमान का रंग क्या होता है?
1: नीला।
0: ये पहला मुश्किल जवाब आपने दे दिया है। दूसरा मुश्किल सवाल, कतर की करेंसी को क्या कहते हैं?
1: हाय गर्मी
0: आर। क्यों आर? बिल्कुल सही आपने, अब बहुत ही आसान सा सवाल आपके लिए, अगर आप सेकंड पोजीशन वाले को ओवरटेक कर दें तो आप किस पोजीशन पर आ जाते हैं?
1: सेकंड।
0: फिर बताइए।
1: सेकंड।
0: अरे ये याद था क्या? याद था यार, सही जवाब दे दिया। ज्यादातर लोग फर्स्ट पोजीशन कहते हैं, कहते हैं हम दूसरे से आगे बढ़े फर्स्ट पे आ गए यार, ये याद करके
1: आया था मेरे पास ये।
0: अच्छा ये आ चुका है,
1: ये आया था मेरे पास 2-3 दिन पहले।
0: यार मुझे लगा कि मैंने पूछा था शायद पहले।
1: नहीं नहीं भाई, ये मतलब
0: ये
1: आया था मीम
0: अचानक
1: से मेरे मुंह पे आ गया भाई
0: सेकंड। यार सही वक्त, आज तो सारे मौके सही लग गए आसिफ भाई, आज इंशाल्लाह दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं तो फंसा रहा था आपको इधर उधर, बट इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ और मजाक अपनी जगह, अल्लाह ताला आपका हर दिन अच्छा बनाए भाई।
1: बहुत शुक्रिया भाई,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
1: हमारे जो हमारे कबीर भाई बहुत मीत याद तो आ रही उनकी स्टोरियों की, कबीर भाई की। बाकी क्या है ना भाई, चलता है सरवर भाई, आ गए कोई वक्त कम नहीं।
0: यार देखिए अब आपको इतनी याद आ रही है, सोचिए मुझे कितनी याद आ रही होगी यार, ये भी तो सोचिए जरा हैं। मेरे बगैर वो आदमी रोटी नहीं खाता यार, उसको मेरी याद आ रही होगी, एक्चुअली मुझे नहीं आ रही है। उनके लिए खास म्यूजिक और आसिफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपसे एक सवाल पूछूं
0: यार? अच्छा पूछो।
1: एक रूम में 5 मोमबत्ती,
0: हाँ,
1: दो बुझ गई, कितनी बची?
0: यार ये मेरे वाले सवाल तो मेरे ऊपर ही लाते रहे आसिफ भाई, जिसके जवाब दे नहीं पाए। ओहो नहीं, ये बताना नहीं है आसिफ भाई, ये बताना नहीं, अभी ये आगे पूछे जाएंगे, ये आगे लोगों से पूछे जाएंगे, ये इसको ओपन नहीं करना, इसको छुपा के रखो, छुपा के। अच्छा और यार चालाकी खेल गए यार, मेरे सारे जवाब तुमने याद कर लिए पुराने गेम के, और अब मैं तुम्हें कैसे हराऊं। इंशाल्लाह नया कुछ लेके आऊंगा मार्केटिंग हो गई भैया आपने। अरे मेरा भाई आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आगे भी कनेक्टेड रहिए हमारे साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
1: मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार मैंने अमेरिका में कॉफी पिया था, आपकी जो बात थी ना पेस्ट्री जहर, जहर कैसा होता है शायद ऐसा होता है भाई, मैंने एक बार अमेरिका ने कॉफी पिया था अमेरिकानो, मेरे मुंह से वापिस आ गई वापिस अगेन टाइप कर दिया मैं इसको।
0: ओह माय गॉड, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सेहतयाब रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चे तो अब स्कूल जा चुके होंगे, तो अब हम खेल रहे हैं तीन कदम। अगर आप भी खेलना चाहते हैं, जिसमें मैं तीन बहुत ही आसान से सवाल पूछ रहा हूं, उसमें आपने जवाब देना इंशाल्लाह ताला, तो आप मेरे साथ खेल सकते हैं। नंबर इज 4434347 पे आप कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही, आप लोग के बहुत सारे मैसेज हैं, मुझे पता है। कोशिश करूंगा कि मैं पानी पी लूं एक घुट और फिर मैसेज की तरफ आ जाऊं। फिलहाल एक चैंपियन हमारे साथ, इनसे करते हैं बात। हेलो, सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्ला।
0: अहलेन फिलहाल
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: आपको लगेगा, सुनिए रईस भाई, आपको लगेगा कि आप आवाजें बदल बदल के आएंगे तो हम लोग पहचानेंगे नहीं।
2: आप वक्त को बदल बदल के आ रहे हैं तो हम आपको पहचानेंगे।
0: अच्छा है भाई, अच्छा लाए अच्छा है।
2: आपको वक्त बदलते टाइम नहीं लग रहा है माशाल्लाह, और हम आपके इंतजार में रहते हैं माशाल्लाह, और हमारी तमन्नाएं दुआएं अल्लाह ने कबूल की और आप आ गए माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगता है।
0: अहलन बस अहलन, कैसे हैं, कैसी हुई सुबह और कैसी गुजर रही है सुबह अभी तक की?
2: अल्हम्दुलिल्लाह। मैं असल में ड्राइव पे था, लंबा थोड़ा, मतलब मुझे यहाँ पे करीब यहाँ पे समझो खोर से आगे 15-20 किलोमीटर, तो मैं बोला ड्राइव पिक के टाइम बात नहीं करना अच्छा है, तो हमारे कुछ भाई लोग बात कर रहे थे, मैं बोला चलो सुनने पे इक्तफा करते हैं, जब मंजिल पर पहुंच जाए
0: तो इंशाल्लाह बात होगी।
2: हम अपनी अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं इंशाल्लाह।
0: क्या बात है। अहलन व सहलन। और आज हमने चाय और कॉफी के हवाले से भी बात करी, तो उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे?
2: चाय की बात मत करो, ये चाय कुर्सी दिला भी देती है जनाब। और
0: यार ये तो आपने भारी बात कर दी यार, ये वाकई, ये चाय तो कुर्सी दिला भी देती, कुर्सी चीन भी लेती है यार, हकीकत है यार।
2: ये समझने वालों के लिए
0: वाकई
2: माशाल्लाह समझ गए होंगे।
0: दिस इज फैक्ट, ये हकीकत है यार। आओ चाय पियो यार, क्या बात है, और उसी पे फैसले हो जाते हैं। वाह, बहुत अच्छे।
2: कुर्सियों का खेल होता है इस चाय के अंदर, बहुत दम होता है मेरे भाई।
0: क्या बात है यार, क्या बात है।
2: फर्क इतना है कि हमने चाय कहाँ पे पी है, ये फर्क है कि
0: ये फर्क है यार। अच्छा है रईस भाई, अच्छा है।
2: सुबह जो चाय का कप हाथ में ना आए तो कसम से पूरी दुनिया ही बदसूरत नजर आए। नींद भी कैसी है थोड़ा और सो लो जनाब, पर ये कमबख्त चाय है कि खुशबू हमें बिस्तर से खींच लाए।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने भाई।
2: इश्क और चाय का रिश्ता बड़ा गहरा है, दोनों ही एक ही कड़क रंगत का पहरा है। फर्क सिर्फ इतना है मेरे यारो, चाय पेट में जाती है और इश्क होश उड़ाता है।
0: वाह, क्या कहने भाई, वाह।
2: अरे हमारे जमाल भाई आए थे तो हम बोले हम भी उसी साइड के हैं, तो थोड़ा सा हम भी अपनी उसको रंगत को बिखेर दे। जमाल से जमीन बना दिया आपने माशाल्लाह, जमाल से जमीन बना दिया
0: यार। मैं माई बैड, मुझे उनका नाम ही नहीं आता, जो की बात है, क्योंकि काफी दिनों बाद मेरी बात हुई।
2: दोनों के नाम पे बिल्कुल मतलब और माने तकरीबन सेम ही है माशाल्लाह से, कोई
0: exactly, हाँ, इतना मैंने उनको निराश नहीं किया होगा और उदास नहीं किया होगा, मैं ये समझ सकता हूँ।
2: तकरीबन अंदाज में माशाल्लाह वो पेश करते हैं अपनी गुफ्तगू का आगाज भी माशाल्लाह, उर्दू भी उनकी बड़ी बेहतरीन है।
0: जी,
2: हम लोग भी मतलब अब पढ़ाई तो है लेकिन मतलब बोलने का जो अंदाज है उनका, मतलब माशाल्लाह उर्दू उनकी बड़ी बेहतरीन है हमारे जमाल भाई का।
0: सही।
2: किए थे हम लोग जब मिले थे सारे दोस्त लोग, तो जमाल भाई आने वाले थे लेकिन बीच में शायद उनको कुछ,
0: हाँ, जो अभी FM 107 के जो लिसनर्स की मुलाकात हुई थी,
2: जो हम लोग टीम की मुलाकात हुई थी, तो वो शायद कुछ मसला हुआ उनके सामने तो वो नहीं पहुंच पाए थे, नहीं तो मुलाकात हो जाती। और सुनाए हमारे
0: बस सर, अब हम थोड़ा सा एक गेम खेल लेते हैं आपके साथ, गेम कर देता हूँ आपका मैं, है ना, तो रेडी हैं?
2: बिल्कुल, आप फंसा देते हैं तीसरे में, वो मुझे पता है।
0: नहीं, बहुत आसान रहने वाला है। सारे ही सवाल के जवाब आसान रहने वाले हैं, तो चलिए फिर रेडी हैं आप?
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलें, गो अहेड।
0: चलिए साहब, मछली पानी में रहती है या हवा में? पहला मुश्किल सवाल।
2: नहीं नहीं नहीं भाई, वो तो पानी में ही रहती है, हवा में कैसे रहती है?
0: रहती है।
2: ये तो बड़ी आसान, अभी आखिरी में आप गेम करोगे मुझे पता है। बड़ा पुराना
0: नहीं, एक साल में कितने महीने होते हैं? दूसरा मुश्किल जवाब।
2: एक साल में तो भाई 12 महीने, अभी तक तो हम मतलब पढ़ते लिखते देखते आए हैं,
0: अभी तक 12
2: पहले कुछ पुराने जमाने में शायद मैंने सुना।
0: हाँ नहीं, अलग अलग कैलेंडर्स भी हैं भाई दुनिया में।
2: हाँ
0: बिल्कुल सही, हमारे वाले 12 ही होते हैं, आपने सही फरमाया।
2: बिल्कुल सही।
0: तो अब आ जाते हैं तीसरे सवाल की तरफ। एक टेबल पर प्लेट में 4 लड्डू रखे हुए हैं और टेबल के करीब 5 अफराद बैठे हैं, अगर लड्डू सबको बराबर बराबर तकसीम करें तो किसके पास कितने लड्डू जाएंगे?
2: चलो आज आपने हमारे लायक सवाल कर दिया और इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे।
0: और भाई साहब सब यार यार, ये तो मुझे लग रहा है कि मैंने पुराने वाले ज्यादा निकाल लिए सवाल और नए वाले पेश करे नहीं। नहीं, मैं बदलूंगा। हम नहीं खेल रहे,
2: हमने बड़ी स्टडी की है कि एक टेबल पर रखा है और बाकी प्लेट।
0: यार दूसरों को मौका ही नहीं मिल रहा।
2: चलिए साहब, में जब हम लोग पढ़ते थे तो आज हमने माशाल्लाह निकाल लिया और आपने मतलब।
0: अच्छा चलिए चलिए, फिर एक और हो जाए। आपने आप जीत चुके हैं, ऑलरेडी जीत चुके हैं आज के विनर। आप अभी तक तो आप ही हैं, अब आगे पता नहीं कोई हमारे साथ जुड़ता है तो एक और पूछ लूं क्या? नहीं चलिए, मगर यार आज आपको विनर घोषित रहने देते। सुनिए, दूसरों को जरा हिम्मत भी बढ़ेगी कि सर्वर तो बहुत ही आसान सवाल पूछ रहा है, तो इंशाल्लाह आसान होते भी हैं। बहरहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया
2: साहब, और जितने हमारे भाई लोग हैं, जितने मिलने वाले थे हमारे तौफीक भाई से लेके सारे लोगों को,
0: पूरी टीम सलाम भाई, पूरी टीम को रईस भाई की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए। अपना ख्याल रखिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो खातिनों हजरात, बच्चों बुजुर्गों दोस्तों, यहाँ पर बातचीत चल रही थी अभी तक की चाय की और अब हम गेम खेल रहे हैं, तो गेम खेलने के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 4434377 पे। मुझे 666221007 पे कॉल आ रही है भाई, मैं इस पे कॉल नहीं उठा सकता हूँ, कॉल मैं 4434377 पे उठा सकता हूँ। फिलहाल एक अपडेट यहाँ पर और उसके बाद आप लोगों के मैसेज की जाने बढ़ेंगे, फिर एक ब्रेक इंशाल्लाह ताला। तो साहब ये जानिए कि कतर मेंस हैंडबॉल लीग जो है उसका जो आगाज है, जो नया 2026-2027 सीजन है वो शुरू हो चुका है आज से, मंडे यानी आज से शुरू हो रहा है। ओपनिंग राउंड में 5 मैचेस खेले जाएंगे और तमाम मैचेस दोहेल हैंडबॉल कॉम्प्लेक्स में होंगे। हम सभी जानते हैं पिछले सीजन की चैंपियन टीम अल अरबी अपने टाइटल का दिफा करने के लिए मैदान में उतरेगी। अल अरबी ने 2025-2026 सीजन में लगातार दूसरी और मजमूई तौर पर चौथी बार चैंपियनशिप जीती थी। अब दोहेल रनर अप रहा था जबकि रैयान तीसरी पोजीशन पर था। ओपनिंग मैचेस में अल अरबी का मुकाबला शमाल से होगा, इसके अलावा असद का अलगर्राफा से, अल अहली का अलवाकरा से, कतर स्पोर्ट्स क्लब का अद्दोहिल से, जबकि अल खोर और अल रैयान आमने सामने होंगे। साब लीग की तारीख में रैयान सबसे ज्यादा यानी कि 15 टाइटल से जीतने वाली टीम है, असद 9 बार और अद्दोहिल 5 मर्तबा चैंपियन बन चुके हैं। तो भाई जितने भी शौकीन लोग हैं वो इंशाल्लाह ताला इसको अटेंड कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप इंटरनेट पर जाकर टाइप कर सकते हैं। इस बार के सीजन के साथ आपको सारी डिटेल्स इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगी। यहां पर अब आइए कुछ मैसेजेस की जानिब बढ़ते हैं, उसके बाद कुछ ब्रेक और गाने आपके लिए। तो क्या कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे, वेलकम टू मॉर्निंग शो। भाई हम तो चाय वाली टीम के साथ हैं, खूब सारे दिल भेजे हैं मुझे यहाँ पर, एक के अलावा तीन दिल हैं आपके पास, क्या बात है सरवर भाई। इस कॉल के बाद मुझसे बात कर लीजिए इंशाल्लाह ताला। मैं बिल्कुल भाई ओके मैं निराश नहीं करूँगा आपको। और एक सेकंड भाई, जरा हटना भाई साहब, हटना एक मिनट इनके पास तक जाने दो। मादर चाहता, मैंने एक कॉल जो है मुझसे ड्रॉप हो गई, एक्चुअली मैं उठाने वाला था बट वो ड्रॉप हो गई मुझसे, तो अब मुझे मौका मिल गया कि मैं इनसे बात कर लूं यहाँ पर, एंड लेट्स सी। अरबाज हमारे साथ हैं एंड वी आर कनेक्टिंग टू, कौन है अभी आप लोग खुद ही जान जाएंगे जब वो अपना नाम बताएंगे। लेट्स सी कि वो रिसीव करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये कॉल मैसेज आया मुझे, टाइम हो गया, बट ही इज कनेक्टेड नाउ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है?
0: अहलेन, कौन है हमारे साथ, ये जाइए, ये बताइए, सब जानना चाह रहे हैं आपका नाम।
3: मेरा नाम जानना चाह रहे हैं?
0: भाई मैं तो जानता ही जानता हूँ, अब आप अपना नाम खुद भी बता दें तो।
3: जेस खान।
0: फिर बताइए एक बार।
3: जेस खान।
0: अब साफ हुआ ना, ऐसा लग रहा था जैद खान, मैंने कहा ये नाम कैसे बदल गया रातों रात।
3: भाई साहब क्या हुआ?
0: कौन तो कौन तो कह रहा है, मौते तो ना कह रहा हूँ बाबू जी। कैसे हैं जैसा?
3: कैसा लग रहा है सरवर भाई?
0: यार बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्चुअली, बड़ा मतलब मैं अदा नहीं कर पाया हूँ अभी तक पूरे मैसेजेस, और मुझे खुशी इस बात की है कि 3 घंटे के सफर में भी माशाल्लाह से इतनी कॉल और इतने मैसेजेस होते हैं कि मजा ही आ जाता है, सुबह बन ही बन जाती है, जो कि बड़ी खूबसूरत बात है यार। मोहब्बत है आप सब लोगों की, मैं और क्या इसके अलावा कह सकता हूँ।
3: हर दिन रोज बनेगा दिन आपका
0: इंशाल्लाह ताला। मुझे सऊदी से भी एक कॉल आई यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा, राणा साहब थे हमारे साथ और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने FM 107 कॉल किया और मुझसे टकरा गए। अब आप सोचिए उनके साथ क्या होने वाला। नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो पहली बार कॉल करके मुझसे टकरा गए, अब उनकी खैर नहीं, आगे तो यही है।
3: इनविटेशन तो मिल गया,
0: बेचारे बॉर्डर पे बैठ के मेरा इंतजार कर रहे हैं, आपको
3: इनविटेशन तो मिल गया।
0: ओह माय गॉड, जस भाई तो मुझे लगता है चाय के साथ ही जाने वाले हैं, राइट?
3: बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, हम चाय के शर्फी हैं।
0: अच्छा कुछ याद है जस कब से चाय पी रहे हो, मतलब फ्रॉम विच एज?
3: जब से पैदा हुए भाई साहब, दूध छोड़ा।
0: यार ऐसे कैसे हो जाएगा, जब से पैदा दूध छोड़ा जब से, हाँ चलो समझ में आता, बट फिर भी व्हाट एज वुड यू लाइक टू मेंशन मिस्टर चाइज?
3: नहीं बचपन से भाई साहब, इतना तो है कि 4-5 साल के होंगे तब से पी रहा है।
0: एक्चुअली ये बात मालूम है मैंने क्यों निकाली है यहाँ पर, क्योंकि अब कंक्लूड भी करने का टाइम है साथ हम साथ, कि बच्चों को चाय नहीं पिलानी चाहिए और तकरीबन 6 से 7 साल तक के जो बच्चे हैं उनको चाय पिलाना अच्छी बात नहीं है। एंड इवन शुगर तो खैर हम सबके लिए अच्छी नहीं है, हम तो आज तक ये बात नहीं समझ पा रहे, हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है, बट बच्चों के लिए वो भी बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। तो इस वक्त वालदेन मेरे साथ कनेक्टेड होंगे जो बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, बच्चों को छोड़ के वापस आ रहे हैं, तो मैं आप सभी जानते होंगे, बट हमारे यहाँ यूजुअली क्योंकि प्रैक्टिस होती है कि हमने चाय पी, अब वो थोड़ी सी ठंडी हो गई, ले बेटा पी ले, या वो बच्ची या बच्चा आ गया, अब्बा मैं भी, तो उसको पिला दी, तो नहीं हमें नहीं पिलानी है चाय। एंड बोथ इवन द कॉम्बिनेशन जो है चाय और शुगर का, वो उनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक है भाई। तो बच्चों से बिल्कुल मजाक नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं, उनकी सेहत के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं, तो हम उनको चाय और चीनी से दूर रखेंगे, आज हम ये अहद करते हैं इंशाल्लाह ताला। एंड
3: कोशिश करेंगे
0: और पहुंच गए। अच्छा आप तो ड्यूटी से फारिग होके वापस आ रहे होंगे अब मेरे ख्याल में, या पहुंच गए अपने
3: रूम पे? भाई साहब रूम पे,
0: हाँ वापस आ गए, वापस आ गए। चलिए,
3: और प्रिंस भाई से बातचीत हुई नहीं हुई अभी?
0: यार मुझे पता नहीं मैंने किस किस की कॉल मिस कर दी एक्चुअली बात करने में, और
3: मैं ज्यादातर कैरेक्टर में प्रिंस भाई हो गए,
0: हाँ
3: नदीम भाई है।
0: अच्छा नहीं मुझे
3: भाई है,
0: मुझे लगता नहीं अभी तक मैं कनेक्ट हो पाया इन लोगों से,
3: नहीं शायद नहीं आई आज कॉल, नहीं आई है।
0: हाँ अभी तक तो नहीं आई
3: भाई की,
0: मेरे ख्याल में कबीर भाई के इंतजार में भी होंगे, या उनको पता चल गया है कि कबीर भाई छुट्टी चले गए तो उन लोगों ने भी छुट्टी ले ली, उन्होंने भी छुट्टी ले ली होगी।
3: अभी जरा थोड़ा यार वो है ना खुलते खुलते खुलेंगे
0: ओके, अल्लाह ताला सबको खुश रखे भाई, अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबके साथ।
3: और जरा रईस भाई, अगर रईस भाई से मैसेज पर बात हो तो रईस भाई से नंबर प्लेट की बातचीत करते रहना, याद दिलाते रहना।
0: रईस भाई से हुई थी बातचीत और मेरे ख्याल में बात भी हुई मेरी, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ रईस भाई से बात भी हो गई, अभी थोड़ी देर पहले उनका ही कॉल था तो उनसे भी बातचीत हो गई और बड़ी अच्छी बातें रही उनकी।
3: नंबर प्लेट का खैर जिक्र पूछते रहना,
0: नंबर प्लेट का। अच्छा चलिए ठीक है, ये भी तो चीज है कुछ जो पता चल रही है हमें बराबर, किस किस से क्या बात करनी है। एनी हाउ यार, बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक जाते जाते जाते जाते बस तीन सवाल कर लेते हैं आपसे जल्दी से, उनका जवाब दे दीजिए जैस साहब, बहुत ही आसान से, है ना। तो चलिए पहला सवाल आपके लिए, सूरज किस तरफ से निकलता है बता सकते हैं? पहली मुश्किल हो गई
3: यार, ये हिंदी में पता है यार, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण
0: पहला ही मुश्किल हो गया। अच्छा ठीक है ओके ओके,
3: क्या कहते हैं
0: वो छोड़ दो फुटबॉल गोल होती है या चौकोर?
3: गोल
0: इसमें परेशान क्यों हो रहे हो यार, गोली होती है। सही है, सही जवाब है यार,
3: चाकोर उस पे निशान होते हैं ना।
0: अच्छा है जैस यार, बहुत दिमाग चल रहा है आपका। अच्छा चलिए बढ़ते हैं आगे। क्रिकेट टीम में ऑन ग्राउंड कितने प्लेयर होते हैं?
3: प्लेयर एम्पायर को हटा के तो 11-22 होते हैं भाई, 13 होते हैं।
0: जैस भाई यार, यू आर सो फनी। पक्का एक फाइनल जवाब दो
3: जी,
0: क्या जवाब है? 11
3: नहीं 13, क्योंकि दो प्लेयर खेलने वाले होते हैं और 11 फील्डिंग करने वाले होते हैं भाई, सब 13 होते हैं।
0: चलो इसका जवाब दूसरे लोग दे देंगे मुझे। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, बहुत ही आसान, ठीक है। अगर 1 किलो रुई है और 1 किलो लोहा है, तो दोनों में से ज्यादा वजनी कौन सा है? यार जैस भाई बहुत ही आसान है यार, ये तो बता दो यार कम से कम। लोहा भारी होगा। बिल्कुल गलत जवाब है आपका। नहीं इसमें सही गलत नहीं, एक्चुअली आपके सवाल के जो जवाब आते हैं वो मुझे मैसेज से आएंगे, लेट्स सी लोगों का क्या कहना है, उनके ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आज देखो तुम्हारी हंसी निकाल दी जैस भाई, बहुत कर रही करके मैंने, सही है ना, सुबह सगरे। चलो यार जैस भाई अपना ख्याल रखो, बहुत ही प्यार और दुआओं में याद रखो, इंशाल्लाह ताला जुड़ते रहना, अपना ख्याल रखना भाई। थैंक यू सो मच, अहलन वसहलन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। तो एक छोटा सा गाना चलाता हूँ, वापस आने के बाद आप लोग के मैसेजेस। गुरु रंधावा एंड तनिष बख्शी कह रहे हैं।

Morning, morning, morning, Qatar. Be Prague and Tanish. और साथ में यू यू हो तो फिर तो मॉर्निंग और भी अच्छी हो ही जाएगी हमारी भाई. क्या बात है. वेलकम बैक हेलन वसेलन, खुश आमदीद, स्वागत है. और भैया दृश्यम 3 जो है बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन डे 10 पे क्या कर रही है बताऊं आप लोगों को. 300 करोड़ मार्क कर चुकी है भाई. 300 करोड़ याद आ गई मुझे इस वक्त, क्योंकि वेदर का हाल बताने वाला था. सामने देखा इन्हीं का चेहरा था, अजय देवगन का, तो मैंने सोचा कि शेयर करता चलूं. हाँ, इट्स रियली अ गुड मूवी, बट लेंदी है यार. अब 3 घंटा कहाँ हो पाता है यार, कहाँ हो पाता. हाँ, बांधे रखे जो मूवी तो ठीक है. मैं थोड़ा उस वक्त शायद अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा था, खाना वगैरह खा के मैं ऐसे ही चला गया था. तो सच्ची बात करता भाई आपका, बिल्कुल मिलावट नहीं, झूठ तो कभी बोला ही नहीं. 36 डिग्री हो रखा भैया टेम्परेचर इस वक्त. सही कह रहा हूँ मैं या गलत कह रहा हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लूँ. हाँ भैया सही है. ओ यस, बट फील्स लाइक 43 है यार. तो ख्याल रखना भाई, एक्सेसिव हीट ही है ये. अपना अपना ख्याल रखिएगा, पानी का सेवन जो है उसको बंद मत कीजिएगा. हवाएं इस वक्त 8 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चल रही है. ह्यूमिडिटी वहीं पे 51% है. तो भैया ख्याल रखना अपना अपना सबको ज्यादा जरूरी है. और फिलहाल अब मैं कॉल नहीं अटेंड करूंगा क्योंकि मेरे जाने का भी वक्त हो रहा है. अब से थोड़ी सी देर में आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन विद अवर FM 107 टीम. तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस जल्दी जल्दी वो अदा करके और फिर आज के लिए आपसे इजाजत कहते हैं. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ब्रो कम. ओ माई गॉड यार, कम ऑन यार, ये तो बहुत ज्यादा डाइट की तरफ चले गए आप यार. क्या कहने यार आसिफ भाई, जबरदस्त मजा आ गया देख के. मगर ऐसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाओगे तो मैं कहां आ पाऊंगा भाई. कहते हैं फ्रेश मिल्क चाय कड़क. क्या बात है, एहतराम भाई ने इस कदर एहतराम दिखाया है इस चाय को मुकम्मल करने में कि बस पूछो ही मत. सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, नाइस टू हेयर यू इन द मॉर्निंग. ब्लैक वो भी अच्छा यार. ये क्या है यार, मैं इसमें कैसे जागूं. आपने तो मेरे साथ गेम कर दिया यार. कौन है ये, सैयद मुबशर फरहान या मुबशर भाई, ये मालूम है मुबशर ने क्या किया है. सलाम बोला है और जब मैंने मैसेज किया वो बोला कि नाइस टू हेयर यू आफ्टर लॉन्ग टाइम मॉर्निंग. और नीचे जो इमोजी होता है ना, इमोजी ये चाय या टी या कॉफी वाला, वो बनाया है और कहते हैं ब्लैक वो भी. तो अब मैं इसके अंदर कैसे झाकूं कि ये काली चाय है या ये काली कॉफी है. मुबशर भाई सुबह सुबह कोई ना मिला तो मैं सगरे सगरे मैं ही मिला, तो ये बता दो ये कौन सी है, ये चाय है या कॉफी है. भारत अभी तक की तो भाई चाय टीम ही जिंदाबाद है. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर भाई. राना नदीम फ्रॉम सऊदीया सलवा, सुबह सुबह हल्का फुल्का नाश्ता किया करें, लस्सी पराठे साथ पाए, एक पिज्जा जबदी होना चाहिए, बड़ा मजा आता है. ये हल्का फुल्का है, ये हल्का फुल्का है राना भाई. तुम खुद हल्के फुल्के नहीं हो, आज तुमने साबित कर दिया हमें कॉल करके सऊदी से. थैंक यू राना भाई, एंड इंशाल्लाह ताला नंबर भी सेव कर लेते हैं हम. आप इंशाल्लाह मैसेज भेजते रहिएगा. कल भाई नहीं उठाई कॉल, भाई नहीं उठाया, आई एम वेरी सॉरी. कौन है हमारे साथ, शकील अहमद. शकील भाई इंशाल्लाह ताला अब कल बात होगी क्योंकि अब बिल्कुल वक्त हो चला कि मैं आपसे इजाजत ले लूं. बस ये कुछ जरूरी मैसेजेस आप लोगों के. अस्सलाम वालेकुम सरोज भाई, आपकी आवाज बहुत अच्छी है. आप किस कंट्री से व्लॉग करते हैं. मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ. कौन है, उमर शहजाद. मैं हर जगह से बिलोंग करता हूँ उमर शहजाद, मैं आपके दिल से बिलोंग करता हूँ. ओए होए, सुबह सुबह लाइन बोल गया सरोज भाई. खुद की तारीफ कर देता हूँ, दूसरा करता नहीं. इसलिए सरोज भाई आप बहुत स्वीट हैं, दैट आई नो हबीबी, आई नो. मैं मिष्टी दोई हूँ, मिष्टी दोई. अरे यार यहाँ इरफान भाई, इरफान अटारी, क्या बात है, बहुत ही कर रहे हैं अटायर में देख रहे हैं आप. कौन है ये, सुबह सुबह मैसेज मिठा दिया मुझे लिख के. कहते हैं सलाम अलैकुम, कैसे हो सर. तीर मेरा प्यार गाना लगवा प्लीज. ये तो मुश्किल हो जाएगा भाई, क्या कहना चाहते हैं. एंड आई थिंक मैं ये मैसेजेस भी अब अदा नहीं कर सकता हूँ जो है. मैं बहुत माजरत चाहता हूँ. इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात होगी तो इन मैसेजेस को जरूर जरूर जरूर 2 गाने काट के इन मैसेजेस को शामिल करूंगा मैं. क्या 1 मिनट और ले सकता हूँ मैं. ओके नहीं ले सकता मेरे ख्याल में. यहाँ पे अलार्म भी बोल रहे हैं और चारों तरफ से मुझे इशारा भी हो रहा है क्योंकि अभी न्यूज़ स्ट्रीम का टाइम हो गया आने का. सो फॉर नाउ इंशाल्लाह ताला आज आप लोगों से इजाज़त ले लेते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा सुबह मुलाकात होगी. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया और मोहब्बतों से नवाजा. इसी तरीके से इंशाल्लाह आगे भी नवाजते रहिए. और
फिलहाल करण ओजला के साथ आपको छोड़ जा रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। सबसे जरूरी बात जो हमें करनी है, देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से।

0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी।
2: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती, आपका

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री।

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स,
5: स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स,
4: जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
6: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
7: न्यूज एट 9 AM फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107।
8: अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इस वक्त दोहा कतर में सुबह के 9 बज रहे हैं। आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर FM 107। समाअत कीजिए मोहम्मद नफीस से आज का पहला नशरिया और इब्तिदा में पेशे खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम वजीर खारजा से कतर में लीबिया के सफीर ने मुलाकात की है। वजारत मुआसलात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने माइक्रोसॉफ्ट के इश्तराक से सरकारी इदारों में मस्नूई ज़हानत के इस्तेमाल में पेशरफ्त का जायज़ा लिया है। कतर ने रियाज के शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूसी गिरोह के हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। कतर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के नज़्म व नस्क में मस्नूई ज़हानत के इस्तेमाल से मुतालिक एक खसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वजारत औकाफ इस्लामी उमूर ने समाअत और गोयाई से महरूम अफराद के साथ मुअस्सर राबते के लिए तरबियत का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है। अरब और आलमी सतह पर रियाज के बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे पर हमले की मजम्मत की गई। गजा पट्टी में वाक़ अलबराक के इलाके पर इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी के नतीजे में गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सामाइन ये थी आज के नशरिए की अहम खबरों की सुर्खियाँ। अब पेश खिदमत है आज का मुफस्सल नशरिया।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम आज की दुआ में हम एक ऐसी दुआ पर गुफ्तगू करने वाले हैं जो हर मुसलमान के दिल की गहराइयों से निकलती है। ये दुआ वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है जो कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में जिक्र की गई है। رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। ये मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत और शफ़क़त से पाला। रब्बी, ए मेरे रब, इरहमहुमा, मेरे वालिदैन पर अपनी ख़ास रहमत फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, मेरी ज़रूरियात पूरी की, मेरी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके मेरी परवरिश की। सामिने किराम, ये दुआ हमें याद दिलाती है कि वालिदैन के एहसानात का बदला देना मुमकिन नहीं, इसलिए तमाम तर खिदमात के साथ साथ ये बड़ी खिदमत भी है कि उनके लिए रहमत और मगफरत की दुआ की जाए। इस दुआ में बचपन की याद दहानी है। कुरान ने इंसान को उसकी तफुलियत याद दिलाई कि जब वो बिल्कुल बेबस था और वालिदैन ने उसकी हर ज़रूरत पूरी की। इसी तरह इस दुआ में इस बात की तरफ भी इशारा है कि जब वालिदैन ज़ईफ़ हो जाएँ और उनकी तबीयत में कमज़ोरी या चिड़चिड़ापन आ जाए तो भी उनके साथ शफ़क़त, एहतराम और सब्र का मामला करना ज़रूरी है। तो इस तरह सामिन, वालिदैन की खिदमत नेकी का काम है और उनकी नाफरमानी गुनाह कबीरा है। औलाद का फ़र्ज ये बनता है कि वालिदैन ने जैसे बचपन में कुर्बानियाँ दीं, वैसे ही बुढ़ापे में औलाद को उनकी खिदमत और दिलजोई करनी चाहिए। तो आज की दुआ हमें ये सबक देती है कि वालिदैन की खिदमत और उनके लिए दुआ करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो दुनिया में मौजूद हों या इस दुनिया से जा चुके हों। आइए हम सब मिलकर अपने वालिदैन के लिए ये दुआ पढ़ें। رب ارحمهما كما ربياني صغيرا।
2: आपके जहन में वजारत दाखिला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है? वजारत दाखिला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं? तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखिला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और आवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम। पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107।
3: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियाँ, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनके इम्तहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
4: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
5: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
2: दोस्तों, स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग के दौरान हिफाजती कवानीन पर अमल जरूरी है। وزارت داخلہ نے اسکوبا ڈائیونگ اور فری ڈائیونگ کے شوقین افراد کو ہدایت دی ہے کہ حفاظتی قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ پانی کے نیچے ہونے والے حادثات سے بچاؤ ممکن ہو اور غوطہ خوری یا واٹر ڈائیونگ کو محفوظ بنایا جا سکے یاد رکھیں کہ ڈائیونگ شروع کرنے سے پہلے ٹریننگ لینا بہت ضروری ہے جو کسی آفیشیل ادارے سے حاصل کی جائے اس کے ساتھ ساتھ سمندر اور موسمی صورتحال بھی چیک کرنا چاہیے تاکہ نامناسب حالت میں ڈائیونگ کو اوائڈ کیا جا سکے وزارت داخلہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ جب آپ اکیلے ہوں تو ڈائیونگ مت کیجیے اور کھانے کے فوراً بعد یا ایسی دوا لینے کے بعد ڈائیونگ مت کیجیے جو توجہ یا ہوش پر اثر ڈال سکتی ہو یہ بھی یاد رکھیے کہ سمندری مخلوق کو چھونا یا نقصان پہنچانا منع ہے جبکہ سمندری ماحول کی حفاظت بھی ہر ڈائیور کی ذمہ داری ہے ڈائیونگ سے پہلے تمام اکوپمنٹ کی جانچ کر لینا لازمی ہے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ وہ ٹھیک حالت میں ہے ڈائیور کو چاہیے کہ ڈائیونگ لوکیشن اور واپسی کے وقت کے بارے میں گھر والوں یا دوستوں کو پہلے سے اطلاع دیں اور پانی کی سطح پر ڈائیونگ فلیگ کے ساتھ نمایاں بیوائے لگائیں تاکہ وہاں پہ جو کشتیاں یا دوسرے لوگ ہیں ان کو آپ کی موجودگی کا اندازہ ہو سکے ڈائیونگ کے دوران پانی کی گہرائی پریشر اور ایئر کنزمپشن پر لگاتار نظر رکھنی چاہیے جبکہ ممنوع علاقوں اور ملک کی سمندری حدود سے دور رہنا ضروری ہے اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً 999 پر رابطہ کیجیے منسٹری آف انٹیریئر کہتی ہے کہ حفاظتی قوانین پر عمل کریں محفوظ رہیں اور سمندر کا لطف ذمہ داری کے ساتھ اٹھائیں ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے
4: فٹ بال کا اصلی رنگ اصلی جذبہ اور اصلی دھماکہ لے کر آ رہا ہے محمد امین اٹس اے گول شو جہاں ہر میچ کی ہر کک ہوگی لائیو ہر گول بنے گا ایک سیلیبریشن
6: ہائی لائٹس کمنٹری اور سپورٹی وائبس کا فل پیکج اگر فٹ بال ہے آپ کا پیشن تو یہ شو ہے آپ کا الٹیمیٹ مزہ ڈونٹ مس اٹ اٹس دا گول شو ود محمد امین ایوری سنڈے اینڈ تھرسڈے ایٹ 1 PM لائیو آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
5: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे टेनिस खिलाड़ी के बारे में। मॉडर्न टेनिस स्टार हैं और जबरदस्त खिलाड़ी हैं एलेना रिबाकिना। जी हाँ दोस्तों, एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान की हैं और आज के दौर में उन टेनिस स्टार्स में वो बिलोंग करती हैं जो कि अपनी कंसिस्टेंसी, पावरफुल गेम और प्रेशर मोमेंट्स में कंपोजर की वजह से वर्ल्ड टेनिस में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रिबाकिना ने कम उम्र में ही प्रोफेशनल टेनिस की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे अपने इस गेम को इतना मजबूत बनाया कि आज वो विमेन्स टेनिस की एलिट प्लेयर्स में शुमार होती हैं। रिबाकिना की टेनिस जर्नी रशिया में शुरू हुई जहां उन्होंने जूनियर लेवल पर टेनिस सीखना और कॉम्पिटिटिव मैचेस खेलना शुरू किए। बाद में उन्होंने कजाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का फैसला किया जो उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित होता है। कजाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए उन्होंने इंटरनेशनल सर्किट पर अपनी पोजीशन मजबूत की और कंट्री को भी विमेन्स टेनिस में एक नई पहचान दिलाई। अगर उनकी करंट फॉर्म और रैंकिंग की बात की जाए तो रिबाकिना इस वक्त WTA रैंकिंग्स यानी विमेन्स टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग्स के मुताबिक वर्ल्ड नंबर 2 पर हैं। ये उनके करियर का हाईएस्ट रैंकिंग लेवल भी रहा है। टॉप रैंकिंग तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि रिबाकिना ने सिर्फ एक या दो टूर्नामेंट्स में नहीं बल्कि लंबे अरसे तक कंसिस्टेंटली वर्ल्ड क्लास टेनिस खेली है। अगर उनकी करंट फॉर्म और रैंकिंग की बात की जाए तो रिबाकिना इस वक्त WTA रैंकिंग से मुताबिक नंबर 1 खिलाड़ी हैं। शी इज द टॉप मोस्ट रैंक प्लेयर इन द टेनिस वर्ल्ड इन विमेन्स टेनिस। ये उनके करियर का हाईएस्ट रैंकिंग लेवल भी रहा है और टॉप रैंकिंग तक पहुंचना दोस्तों इस बात का सबूत है कि रिबाकिना ने सिर्फ एक या दो टूर्नामेंट्स में नहीं बल्कि लंबे अरसे तक कंसिस्टेंटली वर्ल्ड क्लास टेनिस खेली है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ग्रैंड स्लैम स्टेज पर आई। रिबाकिना ने विंबलडन चैंपियनशिप 2022 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। उस टूर्नामेंट में उन्होंने प्रेशर फिल्ड मैचेस में रिमार्केबल कंपोजर दिखाया और फाइनल में ओंस जाबोर को हराकर अपना पहला मेजर टाइटल हासिल किया। दैट वाज द स्टार्टिंग जर्नी ऑफ एलेना रिबाकिना इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल टेनिस। विंबलडन की फतेह ने उन्हें ग्लोबल टेनिस ऑडियंस के सामने एक जेन्युइन ग्रैंड स्लैम चैंपियन के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। इसके बाद रिबाकिना ने अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाया और 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीतकर अपनी ग्रैंड स्लैम कलेक्शन में दूसरा मेजर ऐड किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन की जीत ने ये साबित किया कि विंबलडन की कामयाबी सिर्फ एक एक्सेप्शनल रन नहीं थी बल्कि रिबाकिना कंसिस्टेंटली ग्रैंड स्लैम लेवल पर टाइटल जीतने की सलाहियत रखती हैं। एक लेवल छोड़ दिया उन्होंने कि मैंने विंबलडन इसलिए जीता नहीं कि बिकॉज मैं टैलेंटेड हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद उन्हें यह साबित किया कि मेरा जो विंबलडन टाइटल था दैट वॉज नॉट जस्ट बाई फ्लुक, बस एम ही चांस नहीं लिया था और जीत गया। दैट वॉज अ कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी इज द की वर्ड टू डिफाइन एलेना रिबाकिना। रिबाकिना का प्लेइंग स्टाइल उनकी सबसे बड़ी पहचान है। उनका सर्व विमेंस टेनिस के सबसे डेंजरस वेपन्स में से एक माना जाता है। वो पावरफुल फर्स्ट सर्व्स के जरिए ओपोनेंट्स पर शुरू से ही प्रेशर बनाती हैं और शॉर्ट पॉइंट्स जीतने की कोशिश करती हैं। उनकी हाइट और रीच भी उन्हें सर्व और कोर्ट कवरेज में फायदा देती है। अच्छा, सर्विस यानी सर्व के साथ साथ उनका बेसलाइन गेम भी बहुत पावरफुल है। रिबाकिना ग्राउंड स्ट्रोक्स को डेप्थ और पेस के साथ हिट करती हैं। खासतौर पर फोरहैंड और बैकहैंड दोनों विंग से वो ओपोनेंट को डिफेंसिव पोजीशन में धकेल सकती हैं। बहुत डिफिकल्ट है उनको खेलना। उनका गेम सिर्फ पावर पर डिपेंड नहीं करता है, वो रैलीज को समझने और सही वक्त पर अटैक करने की सलाहियत भी रखती हैं। रिबाकिना की एक और खास क्वालिटी प्रेशर मोमेंट्स में उनका काम रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। ग्रैंड स्लैम मैचेस में जब स्कोरबोर्ड टाइट हो और प्रेशर अपने पीक पर हो तब भी वो अक्सर अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखती हैं। ये मेंटल स्ट्रेंथ उनके गेम को और डेंजरस बना देती है। करियर के दौरान इंजरीज और डिफिकल्ट पीरियड्स ने भी रिबाकिना का टेस्ट लिया।
लेकिन हर सेटबैक के बाद उन्होंने कमबैक करने की कोशिश की और अपने लेवल को मेंटेन किया। मॉडर्न वुमेन्स टेनिस में कंपटीशन बहुत टफ हो गई है, जहां हर टूर्नामेंट में मल्टीपल प्लेयर्स टाइटल की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स होती हैं और इस एनवायरनमेंट में रिबाकिना का कंसिस्टेंटली टॉप लेवल पर रहना उनकी क्वालिटी को हाईलाइट करता है। आज एलेना रिबाकिना वुमेन्स टेनिस की लीडिंग कंटेंडर्स में शामिल हैं। उनका नाम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के फेवरेट्स में लिया जाता है और उनका पावरफुल सर्व, एग्रेसिव बेसलाइन गेम और काम टेम्परमेंट ओपोनेंट्स के लिए एक सीरियस चैलेंज होता है। रिबाकिना सिर्फ एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं है, बल्कि मॉडर्न डे टेनिस की एक पावरफुल फोर्स हैं। उनकी जर्नी ये दिखाती है कि टैलेंट के साथ कंसिस्टेंसी, मेंटल स्ट्रेंथ और प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी किसी भी खिलाड़ी को वर्ल्ड स्टेज पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्टिंग कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दुआ वाला कबीर एफएम 107 पे एंड येट अनदर अपडेट। देखिए टेक अपडेट में मैंने आपसे वादा किया है, मैंने आपको वेबसाइट्स बहुत सारी बताई है, बहुत सारी भाई कभी कभार तो मैं भूल जाता हूँ कौन कौन सी बताई है। लेकिन अब हम बात करेंगे मेन स्ट्रीम टेक और गैजेट्स की जो खबरें आ रही है मार्केट में, किस तरीके से डेवलप हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, सब चीजों के बारे में कवर करेंगे ताकि आप बिल्कुल अपडेटेड रहें। तो मैं बात करने वाला हूँ VR ग्लासेस के बारे में। देखिए बड़ा ही पेचीदा टॉपिक है ये पेचीदा इसलिए भी है क्योंकि कई मर्तबा इसको लेके लोग जो है इतने ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं कि वो नजरअंदाज कर देते हैं इसके यूसेज को। मैं समझाता हूँ क्या कहने का मतलब है। आपको लगता होगा भाई VR आ जाएगा, मजा आ जाएंगे अनटिल और अनलेस यू आर ओके विद द प्राइस टैग। चलो प्राइस टैग भी हटा देते हैं, आपने ले लिया, लेकिन उसके बाद अब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मैं खुद बताता हूँ आपको। मैंने लिया था PlayStation का VR एंड वो अभी भी पड़ा हुआ है, उसका इतना इस्तेमाल नहीं है एंड आई एम रिग्रेटिंग काइंड ऑफ कि मैंने क्यों इस पे इतने खर्च कर दिए। दूसरी चीज जो आपने अगर नहीं देखी है तो आपको बता दूं बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं एंड मेडिकली प्रूवन है कि बच्चों को VR नहीं देना चाहिए। सो इफ यू आर गिविंग देम VR तो थोड़ा आप जरा बच के रहिए बिकॉज ये इफेक्ट करता है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो प्लीज बी श्योर कि आपका बच्चा अगर आपसे कह रहा है कि मुझे तो VR चाहिए, VR नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बड़ा होने के बाद दिलाने की वाली बात दूसरी खुद ही ले लेगा, मगर उससे पहले मत दीजिए बिकॉज बहुत बहुत बहुत फर्क पड़ता है इससे। एंड VR की बात हो ही गई है तो मेन स्ट्रीम मीडिया में जब एप्पल विजन प्रो लॉन्च हुआ था आपको याद है, उसकी कीमत इतनी ज्यादा रखी गई कि लोगों ने कहा कुछ तो होगा, एप्पल है तो कुछ तो होगा ही, इतना महंगा है, लोग बड़े बड़े लोग ले रहे होंगे। लेकिन बड़े बड़े लोगों को भी एप्पल विजन प्रो लेने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। पीपल आर लाइक ये क्या है यार, ये मतलब अपने प्राइस टैग के हिसाब से नहीं है, इट्स अ लिटिल टू ओवरवेलमिंग। जिस हिसाब से वो था उस हिसाब से 2,000-3,000 रियाल 4,000-5,000 रियाल थोड़ा कम होता तो बढ़िया रहता है। एप्पल कुड हैव डन इट बेटर, कुड हैव डन इट बेटर वाला जो टैग है वो एप्पल पे लग गया और एप्पल ने लिटरली मेंशन करना बंद कर दिया था एप्पल विजन प्रो को। कहीं पर आप कोई सा इवेंट उठा के देख लीजिए, दे आर नॉट इवन मेंशनिंग, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बनाया ही नहीं, एप्पल विजन प्रो कभी था ही नहीं। बट रिसेंटली एप्पल ने बिल्कुल सुबड़ी में चुपके से अपनी इस एंट्री को मिक्स्ड किया है और उसे मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश करी है स्पेशल कंप्यूटिंग की के जरिए। तो स्पेशल कंप्यूटिंग कंज्यूमर एंटरप्राइजेस स्पेसेस में अपनी जगह बनाई है एप्पल ने और उन्होंने अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन माइक्रो ओएलईडी स्क्रीन्स जो हैं, डिस्प्लेज, आई ट्रैकिंग, हैंड जेस्चर, विजन प्रो में और सुधार किया जा रहा है। हालांकि आपको किसी इवेंट में नहीं नजर आएगा बट दे आर ट्राइंग टू ब्लेंड डिजिटल कॉन्टेंट इन टू फिजिकल इन्वायरमेंट। वो उसे अभी उसका प्राइस से कम नहीं कर रहे, वट दे आर डूइंग इज दे आर ट्राइंग टू मैच द प्राइस टैग जो ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है। ये भी एक अलग किस्म का चलन है, वो जानते हैं कि अभी सस्ता करेंगे तो लोग बोलेंगे देखा हमने कहा था इतना अच्छा है नहीं। सो एप्पल क्या कर रहा है कि उसकी कीमत के हिसाब से उसको वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो इफ यू हैव चेक्ड एप्पल विजन प्रो अभी तक, पर अगर आपने नहीं चेक किया है अभी उसमें सुधार आने के बाद इट इज गुड, पर क्या अभी भी एक आम आदमी के लिए है? Answer is no, I don't think so. अभी भी एक आम आदमी इसको ऐसे यूज करे जैसे एप्पल का फोन यूज करता है वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। बट तो आने वाले इवेंट में लगता है कि एप्पल जो है अपने एप्पल विजन प्रो को शायद मेंशन करे और इस बार वो जब मेंशन करेगा तो शायद प्राइस टैग को भी थोड़ा सा लोअर करे। हालांकि मुझे ये प्राइस टैग लोअर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट दे माइट अटैच इट और क्या कहते हैं उसको इंजेक्ट करे बाकी एप्स के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं कि ड्रॉबैक है एप्पल प्रो विजन में, बट डेफिनेटली प्राइस टैग बहुत हाई है। आपको क्या कहना है एप्पल विजन प्रो पे अगर सस्ता हो जाएगा क्या आप लेंगे तो ये बताइएगा। 666-221-07 नंबर है हमारा और सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट।
4: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में हम बात करते रहते हैं, चाहे वो यू नो टिकट के बारे में स्कैम हो रहे हो, पेड क्विज के बारे में स्कैम हो रहे हो, डिस्काउंट वाले स्टेकेशन पार्टी वाले स्कैम हो रहे हो, या फिर फ्री में आपको कोई फर्नीचर दे रहा हो सोशल मीडिया पे, उस तरह के भी अगर स्कैम हो रहे हो तो हम यहाँ पर बात करते रहते हैं और आपको एक्चुअली में आगाह करते रहते हैं। वेल, आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है फेक इवेंट टिकट के गिव अवे स्कैम। यार अगर आपको कोई टिकट देगा किसी बड़े इवेंट का, क्या आइए और ले जाइए फ्री में, तो आप तो बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे। लेकिन ये फ्री का टिकट एक स्कैम हो सकता है। जब भी कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है शहर में तो उसके बारे में बड़ा बज होता है, लोग बात करते हैं, सोशल मीडिया पे इसके पोस्ट चलते हैं, वेरीफाइड जो पेज होते हैं वो भी इसके फ्लायर डाल रहे होते हैं, है ना, रेडियो पे अलग अलग जगह बातें हो रही होती हैं, पोस्टर लगे होते हैं, और ये बड़े बड़े सिंगर लेकर आते हैं तो ये पोस्टर जो लगे होते हैं इसमें सिंगर का पोस्टर होता है, कॉन्सर्ट होता है, म्यूजिक फेस्टिवल है ना, वर्ल्ड कप जैसे बड़े बड़े क्रिकेट मैचेस हैं, तो लोगों में टिकट्स को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज होता है क्योंकि इनके टिकट्स आसानी से मिलते नहीं है। स्कैमर्स एक्चुअली इनका फायदा उठाते हैं, इस तरह के कॉन्सर्ट का, क्रिकेट मैचेस का, जहां पर टिकट बहुत आसानी से नहीं मिलता है उसका फायदा उठाते हैं, एक्साइटमेंट और जज्बात का फायदा उठाते हैं। वो सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पर फेक एड्स और पोस्ट वगैरह चलाते हैं जहां पर फ्री वीआईपी पासेस या फ्री प्रीमियम टिकट्स गिव अवे का लालच देते हैं। इनका तरीका बाकी स्कैम से थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये आपसे तुरंत पैसा नहीं मांगते हैं, ये चालाकी करते हैं, ये आपको एक लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं जो दिखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार ये तो टिकट की एक्चुअली में कोई लिंक है, ये ऑफिशियली टिकटिंग वेबसाइट है जहां से किसी वर्ल्ड कप की, किसी कॉन्सर्ट की, किसी म्यूजिक फेस्टिवल की टिकट मिल जाएगी। अपना फ्री प्राइस क्लेम करने के लिए ये आपसे एक फॉर्म भरने को कहते हैं थ्रू लिंक, जिसमें आपकी बहुत सेंसिटिव और प्राइवेट डिटेल्स भी मांगी जाती है, जैसे कि आपका पूरा नाम, घर का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, और यहाँ तक कि अपने ईमेल या अकाउंट के क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड्स भी कहते हैं। इसके साथ ही वो आपसे कहते हैं कि इस लिंक को अपने 5 से 10 दोस्तों को भेज दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कहीं और सोशल मीडिया पे, तभी टिकट जो है वो अनलॉक होगा। जैसे ही आप भेजेंगे 10 लोगों को, ये अनलॉक हो जाएगा, टिकट आपको मिल जाएगा। ऐसा करके वो आपको ना चाहते हुए भी किसी तरह इस फ्रॉड का हिस्सा बनने के लिए कोशिश पूरी कर रहे होते हैं और वो फंसा देते हैं। एक बार जब आप अपनी सारी डिटेल्स उन्हें दे देते हैं तो कोई टिकट वाकई में आती ही नहीं। स्कैमर्स आपके इस डेटा का यूज करके आपके ईमेल्स हैक कर लेते हैं, और कई बार एक्चुअली में टिकट आती है, सारी डिटेल्स होती हैं उसमें, लेकिन एक्चुअली में कोई मतलब नहीं होता। मिसाल के तौर पे ABCD मैं लिख दूं किसी टिकट का आईडी नंबर और फिर उसमें सीट नंबर अलाना फलाना डाल दूं और वो आपको यू नो सोशल मीडिया पे या फिर आपके व्हाट्सएप पर भेज दूं, तो इससे गारंटी थोड़ी हो जाती है कि आपको टिकट मिल गया। अगर मैं किसी ओरिजिनल वेबसाइट के थ्रू कहीं पेमेंट करूंगा तो मुझे वो जो आईडी या वो टिकट मिलेगा या टिकट का आईडी मिलेगा वो कंफर्म होता है, वो सही होता है। लेकिन आइडेंटिटी थेफ्ट करके भी आपको स्कैम किया जा सकता है। कई बार ये टिकट भेज देते हैं लेकिन उस टिकट का कोई मायने होता ही नहीं। खैर, अगर आपसे ये सारी डिटेल मांगी जा रही हो जिसमें वो आपसे पूरा नाम, घर का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर मांग रहे हो, तो आपको चिंता करनी चाहिए। आपके बैंक अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं या आपके नाम पर फ्रॉड लोन्स और फेक आईडीज बनाकर आइडेंटिटी थेफ्ट को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन बचने के 3 आसान तरीके हैं। ऑफिशियल वेरीफाइड हैंडल्स चेक करें। अगर कोई बड़ी कंपनी या इवेंट ऑर्गेनाइजर सच में गिव अवे कर रहे हैं तो वो हमेशा अपने ऑफिशियल वेबसाइट या ब्लू टिक वाले वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही इसकी अनाउंसमेंट करते हैं। दूसरा तरीका है सेंसिटिव इन्फो शेयर करने से बचें। अगर कोई भी आपसे कहे, इवन आपसे अगर ऑफिशियल वेबसाइट में भी इतनी सारी डिटेल्स मांगी जा रही है, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल बचना चाहिए। उसके अलावा काउंटडाउन टाइमर्स और प्रेशर से बिल्कुल ना डरे। इस तरह के स्कैमर्स जो होते हैं जब आपको टिकट का लालच देते हैं तो वो आपके सामने 2 मिनट लेफ्ट, 1 मिनट लेफ्ट, है ना, 5 मिनट लेफ्ट, ये करा करते हैं। तो इस तरह के काउंटडाउन से बचिए। किसी भी तरह से कोई भी टिकट खत्म नहीं हो रही, बहुत टाइम होता है इन सब के टिकट्स में, बहुत इजीली बिकती भी नहीं है टिकट, सच्चाई तो ये है। और अगर आपसे जरूरत से ज्यादा डिटेल्स मांगी जा रही हो तो आपको खतरे की भनक लग जानी चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज के इस स्कैम के बारे में समझ आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
3: स्मार्ट मनी,
5: हेलो एंड वेलकम।
3: हुआ सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी। मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक फाइनेंशियल टर्म पे और ये टर्म है एमोर्टाइजेशन, यानी एक बड़ी कॉस्ट को वक्त के साथ डिवाइड करना। चलिए जानते हैं कि ये टर्म हमें और आपको क्या सिखाने वाली है। दोस्तों जब हम बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में एमोर्टाइजेशन का लफ्ज सुनते हैं तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। इसका मतलब है किसी इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान धीरे धीरे एक्सपेंस की शक्ल में रिकॉर्ड करना। सबसे पहले यहाँ पर यह भी समझना होगा कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या है। देखिए इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो फिजिकली नजर नहीं आते लेकिन बिजनेस के लिए बहुत कीमती होते हैं। मिसाल के तौर पे ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड नेम, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ये सब चीजें आप हाथ से टच तो नहीं कर सकते लेकिन इनकी मार्केट वैल्यू होती है और ये कंपनी को पैसा कमा कर देते हैं। अब मान लीजिए एक कंपनी ने एक पेटेंट खरीदा और पेटेंट की कॉस्ट थी $100,000 और उस पेटेंट की यूजफुल लाइफ है 10 साल। अब अगर कंपनी पूरे $100,000 को एक ही साल एक्सपेंस दिखा दे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत पिक्चर दिखाएगा, है ना। इसीलिए अकाउंटिंग के रूल के मुताबिक कंपनी इस कॉस्ट को 10 सालों में डिवाइड करेगी। कैलकुलेशन है 100,000 डिवाइडेड बाय 10। इस तरह से हर साल कंपनी $10,000 को एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी और इस प्रोसेस को एमोर्टाइजेशन कहते हैं। देखिए एमोर्टाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी जानना जरूरी है। सोचिए अगर आपने एक फ्रेंचाइजी खरीदी जो 20 साल तक इनकम जनरेट करेगी, अगर आप पूरी कॉस्ट एक ही साल में एक्सपेंस कर दें तो प्रॉफिट बहुत कम नजर आएगा लेकिन असल में उस फ्रेंचाइजी का फायदा तो अगले 20 साल तक मिल रहा है। इसीलिए अकाउंटिंग कहती है कि जिस ड्यूरेशन तक एसेट बेनिफिट दे रहा है उसी ड्यूरेशन में उसकी कॉस्ट को स्पीड करो। इसी प्रिंसिपल को मैचिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, यानी इनकम और एक्सपेंस को उसी पीरियड में शो करो जिस पीरियड में बेनिफिट मिल रहा हो। अब देखिए डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन में भी फर्क है। स्टूडेंट्स और बिगनर्स अक्सर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स भी कर देते हैं। डिप्रिसिएशन जो है वो क्या है? टेंजिबल एसेट्स पर ये डिप्रिसिएशन लगता है। एग्जाम्पल्स हैं बिल्डिंग है, आपकी गाड़ी है, मशीनरी है, फर्नीचर है। वही एमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स पर होता है। टैक्स प्लानिंग में, बेटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, एसेट वैल्यू ट्रैक करने में और इन्वेस्टर्स को क्लियर पिक्चर देने में। अब कुछ लोग कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि एसेट खरीद लिया मतलब पूरी कॉस्ट फॉरन एक्सपेंस कर दो। ये अकाउंटिंग के रूल के खिलाफ है। जिस एसेट का बेनिफिट फ्यूचर में मिल रहा हो उसकी कॉस्ट को भी फ्यूचर पीरियड्स में एलोकेट करना चाहिए। इसे एलोकेशन ऑफ एमोर्टाइजेशन भी कहते हैं। देखिए अब बस जाते जाते आपसे यही कहूंगी कि एमोर्टाइजेशन हमें और आपको ये सिखाती है कि हर बड़ी कॉस्ट को एक ही वक्त में नहीं उठाया जाए। जिस तरह जिंदगी की जिम्मेदारियां वक्त के साथ पूरी होती हैं उसी तरह इनटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट भी उनकी यूजफुल लाइफ में स्प्रेड की जाती है। स्मार्ट बिजनेसेस सिर्फ पैसा खर्च नहीं करते बल्कि हर कॉस्ट को सही वक्त पर रिकॉग्नाइज करते हैं और यही एक्यूरेट अकाउंटिंग की बुनियाद है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते यही कहूंगी कि एक गोल्डन रूल अपने जहन में रखिए। टेंजिबल एसेट्स इज एक्चुअली इक्वल टू डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल एसेट्स टू एमोर्टाइजेशन। ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया क्या? लेट्स स्टिक टू व्हाट वी हैव लर्न। फिलहाल के लिए मुझे यानी नासिया को और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू साथियों इस वक्त FM 107 की घड़ी बजा रही है रुक जाओ इधर दो सेकंड रुको हाँ 10 बज के 2 मिनट हो रहे हैं भाई और आप सुन रहे हैं शो का नाम है
2: आप सुन रहे हैं यू मैटर
3: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
2: FM 107 पर दिल से देसी
1: तो भाई वेलकम हैरी वेलकम गोविंदा फुल्लन जरा आ जाओ खुशबू लगा कर और खुशबू लगा ही ली है तो भाई थोड़ा फासला रख के बात करेंगे क्योंकि खुशबू लगा ली है ना तो मुझे एलर्जी है क्या कहती है माविश
4: अस्सलाम वालेकुम मैं बस सुन रही हूँ मैं मुझे ये बातें जो है रिलेट ही नहीं कर पा रही मैं क्या बोलूं
1: मैंने कहा थोड़ा सा माविश को इंक्लूड कर लिया जाए तो कहेंगी सफा ने बोलने का मौका ना दिया
4: हाँ वो तो मैं वैसे भी बोलूं
1: अच्छा भाई देखिए साथियों आपका और हमारा एक घंटे का साथ रहेगा और इस एक घंटे में हम करेंगे आपसे गुफ्तगू
4: ओके
1: कितना भारी भरकम गुफ्तगू अच्छा मैं जो ना कल परसों देख रही थी मूवी देख रही थी अब याद नहीं आ रहा मत पूछ मत लेना कौन सी मूवी देख रही थी मैं उन लोगों में से हूँ जो सदी में एक दफा कभी जो है ना रिमोट हाथ में पकड़ते हैं टीवी का जिनको टीवी चलाना नहीं आता यस आज की सदी में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं मेरे जैसे

0: इनको टीवी चलाना नहीं आता, लेकिन किसी तरह से मैंने कुछ करके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक मूवी देखने की कोशिश की. नाम क्या था वो मुझे भी याद नहीं है.
1: बहन तुम ना ही बताओ.
0: तो खैर मैं स्टोरी नहीं बता रही थी, मैं ये बता रही थी
1: स्टोरी में कुछ भी ना बताओ. कुछ
0: पता है क्या हुआ?
1: हां
0: पता है क्या हुआ?
1: क्या हो गया?
0: मैंने किसी ऐसे तरह से करके वो मूवी खोल तो ली.
1: सही हो गया.
0: अब मामला ये हो गया कि उसके अंदर मैं जो हूं ना, देखा मैं बात ही भूल गई.
1: बस मैं ये कह रही थी ना तुमसे कि ना बताओ ना बताओ.
0: उन लोगों में से अच्छा मुझे याद आएगी, अभी याद आएगी. मैंने एक बात बतानी थी आप लोगों को बड़े मजे की. तो खैर चले, आजकल तो मैं वो सीख रही हूँ, पता है कौन सी वाली लैंग्वेज?
1: सफा.
0: यूपी में बोली जाती है. कभी कभी
1: सीखनी चाहिए वो स्किल. मैं मुझे वो सीखनी चाहिए स्किल जिसमें मैं तुम्हारे साथ जो है ना वो कुछ रिलेट कर पाऊँ. मैं कुछ
0: अरे मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आजकल बिहारी सीख रही हूँ, आपको पता है?
1: नहीं.
0: आप शायद मजाक समझ रही हैं.
1: नहीं.
0: अरे क्या मस्त मस्त सीरीज और क्या मस्त मस्त जो ना मूवीज आ रही हैं, मैं वो
1: बिहारी
0: देख रही हूँ. हाँ
1: अच्छा.
0: मतलब वो उर्दू टाइप जो है ना वो जो बिहारी होती है ना वो एक्सेंट जो ना वो हम वो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ.
1: मैं सोच रही हूँ कि यार बस एक ही हफ्ता रह गया यही वाला,
0: गुजारना तो पड़ेगा.
1: गुजारना तो पड़ेगा. मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में ये वाली थॉट है, वरना तो फिर मतलब मैं क्या.
0: एक घंटा आप मुझे बर्दाश्त कर ले अभी, एक घंटे के बाद, मतलब एक घंटे के बाद नहीं सॉरी, एक हफ्ते, कुछ हफ्ते नहीं, चार दिन के बाद जो है वो,
1: तीन दिन के बाद आज तो शुरू हो ही गया. तो बस
0: आपको अकेले भुगतना पड़ेगा, मुझे और माविश को अकेले अकेले
1: अकेले अकेले.
0: चले खैर है,
1: मैं इसलिए कुछ बोल नहीं रही. मैं कह रही हूँ यार मतलब क्या ही बोलूँ, अब एक ही दिन रह गया बिचारी का.
0: ज्यादा बातें नहीं करो.
1: मतलब 3 दिन रह गए बिचारी के.
0: बातें नहीं करूँ
1: तो इसलिए जो है ना
0: नंबर बता दूं. नंबर
1: मैं
0: नंबर आपको बता देती हूँ. कॉल करने के नंबर है 4434377. 4434377 इज द नंबर टू कॉल. और चाहें तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं. खबरदार जो किसी ने मैसेज वाले नंबर के ऊपर कॉल किए, मैं नाराज हो गई ना तो फोन नहीं उठाऊंगी. 666-22-107 इज द नंबर.
1: मैं क्यों हंसी? मैं
0: क्योंकि मुझे सर पैर समझ में नहीं आया.
1: मुझे नहीं आया.
0: देखो भाई मैंने मैसेज वाले नंबर पे फोन वैसे भी उठाना.
1: या अल्लाह कैसे कैसे मैं बकौर कबीर लोगों को क्या क्या मतलब झेलना पड़ता है. मैं झेल रही हूँ.
0: कबीर का शो मैंने करना था मॉर्निंग का.
1: हाँ
0: बचत हो गई सबकी. 666-22-107
1: क्या होता.
0: अरे भाई बताओ अगर कबीर का मॉर्निंग शो मैं करती तो क्या होता.
1: ये ना साने
0: वालों का क्या होता.
1: साने होते हैं ये.
0: 666-22-107 इज द नंबर टू मैसेज. और आज का मुद्दा कॉल आ रही है हमें. आज का मुद्दा भाई ये चल रहा है कि दूसरों को मशवरा देना इतना आसान क्यों लगता है भाई.
1: हाँ लोग ना कर्टेसी में बोलेंगे सफा कि नहीं नहीं आपको सुन के अच्छा लगेगा, तुम उस पे यकीन ना करना. क्योंकि
0: टेंशन मतलब सफा टेंशन तो हमें होनी थी.
1: ये तुम नहीं यकीन करना क्योंकि ये तुम्हारा दिल रखने को बोलेंगे.
0: नहीं भाई आज धुआंधार शो किया सरो भाई ने.
1: अच्छा कर लिया आज. हो गया.
0: हाँ, नहीं आज हुआ मॉर्निंग शो.
1: सही सही.
0: तो भाई अच्छा अपने मुद्दे पर अपने शो के तक रहो ना महावेश, कहाँ तुम निकल गई हो बातों में.
1: ओके
0: अच्छा भाई दूसरों को मशवरा देना इतना आसान ही होता है, लेकिन खुद उस पर अमल करना, जब आप के अपने बाल खींचने लगते हैं तो उस वक्त अमल करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, ये बात बताओ.
1: हाँ.
0: दूसरों को तो बड़े मजे से कह रहे थे भाई टेंशन मत लो, अरे भाई सब ठीक हो जाएगा, पूरा वक्त है. हाँ. अच्छा वक्त भी
1: अच्छा,
0: आता है.
1: क्या मसला क्या होता है कि हम जब किसी को मशवरा दे रहे होते हैं अक्सर लोग वो होते हैं मशवरा लेना ही नहीं चाहते, वो बिला वजह का मशवरा ले रहे होते हैं.
0: दे रहे होते हैं देने वाले
1: ले रहे हो देने वाले तो देते ही फजूल है ना उनको. हाँ. तो मतलब कोई वो नहीं होता, लेकिन अमूमन कोई खुद बोलता है मशवरा दो, आप मशवरा देते हो, वो बेसिकली लेना नहीं चाह रहे होते
0: क्योंकि बहुत ही थका हुआ मशवरा होता है माविश. बहुत ही थका हुआ मशवरा होता है.
1: होता है ऐसा. ये भी होता है कि हम दूसरों से मशवरा ले तो रहे होते हैं लेकिन हम बेसिकली लेना नहीं चाह रहे होते, मतलब हम वो सुनना नहीं चाह रहे.
0: अच्छा
1: होते.
0: आप वो वाली बात. हाँ. कर रही है कि सुनूंगा सबकी करूंगा. हाँ, अपनी
1: नहीं सुनूंगा सबकी भी बात नहीं है, मतलब ये कि कहीं कहीं पे जब हम. हाँ. कहते हैं ना कि मशवरा दूसरों को देना तो आसान है लेकिन हम खुद से क्या था पूरा सेंटेंस.
0: हाँ, लेकिन खुद उस पर अमल करना मुश्किल क्यों
1: लगता है? लगता है क्योंकि हम अपने आप को हमेशा एक विक्टिम के तौर पे देख रहे होते हैं. अगर कोई हमें कह भी रहा होता है ना कि नहीं नहीं मतलब ठीक है ये हो जाएगा ये गुजर जाएगा, तो उस वक्त हमें वो बंदा जहर लग रहा होता है. असल में हमें ये हो रहा होता है कि
0: साइकोलॉजी भी कहती है जो डिप्रेस और जो एंजाइटी वाले लोग होते हैं ना उनको कभी ये मत कहो कि भाई इट्स ओके गुजर जाएगा ये हो जाएगा वो, ये
1: सिंपल सुनना ही नहीं चाह रहे होते.
0: हाँ.
1: अक्सर मैंने देखा है ये कि ऐसा होता है कि आप किसी को मशवरा दो कुछ करो वो उस पर बकायदा मतलब खुद भी
0: नापसंदीदगी का इजहार करते हैं.
1: कभी कभी ऐसा खुद भी होता है कि आप अपने तौर पे भी जो मशवरा आप दूसरे को दे रहे होते हो जब आप उस जगह पे खड़े होते हो तो आपको वो चीज नहीं समझ
0: आसाजगार गुजर रही होती है.
1: एग्जैक्टली.
0: 666-22-107

0: ठीक है, कूर बन के बोलूंगा है ना, ऐसे ही है ना?
1: ऐसा नहीं है,
0: ऐसा नहीं है,
2: मैंने कहा बोलेंगे ऐसा ही है
0: ऐसे ही।
2: चलिए जी आसिफ भाई बताएं।
1: कबीर भाई को जो है आप लोगों ने ओवर टाइम में लगा दिया, मना कर रहा था, सॉरी सरवर भाई को
2: हाँ
1: ओवर टाइम में लगा दिया, मना कर रहा था इतनी बिरयानी मत खाओ जो पैसे कम पड़ जाए ओवर टाइम करना।
2: सरवर भाई
0: वो
2: लेकिन मुझे बड़ा मजा आया, मैंने सरवर भाई का शो सुना था और इट वाज गुड।
0: मैंने सुना नहीं, जस्टिफाइड अपनी राय मैं पूछ रखती हूँ, लेकिन जब सुनूंगी मतलब मैं खैर मैं तो उम्मीद कर सकती हूँ, मतलब क्या उम्मीद कहना चाहिए क्या कहना चाहिए, मतलब मुझे अंदाजा है।
2: देखिए
0: अच्छा किया,
2: मॉर्निंग शो के लिए ना आपको चाहिए होती है एनर्जी।
0: हाँ
2: और सरवर भाई बगैर कॉफी के डोज के जो एनर्जी दिखा रहे थे ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह लाख होता है,
0: मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि अच्छा ही किया होगा सरवर भाई ने।
1: वो बिरयानी खा के जो है आते हैं सवेरे सवेरे फुल एनर्जी में
2: आए बेचारे सरवर भाई, ना बोले ऐसे भाई, ऐसे नाम ऐसे ही बदनाम है सरवर भाई, अगर उनका खाना पीना आप देख लेना
0: सफा क्या हुआ है सुबह सुबह कोई भत्ता दिया गया है।
2: मैं तो कह रही हूँ कि भाई नहीं, मिस्किन आदमी ने मेरे सामने आए कॉफी पी थी बेचारे ने,
0: अच्छा
2: सुबह से कॉफी तक नहीं पी थी उन्होंने।
1: मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको इतनी जो है डबल शिफ्ट करनी पड़ रही है,
0: आईफोन की डबल शिफ्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे डबल शिफ्ट, डबल नहीं है, डबल नहीं है आसिफ भाई, अब यही शो करेंगे बस वो।
1: अच्छा तो हाँ। ये आफ्टरनून का शो नहीं करेंगे?
2: नहीं नहीं आफ्टरनून के शो में जो है अभी नाजिया आएंगी,
0: नाजिया
2: और फिर जब नाजिया छुट्टी पर जाएंगी तो फिर
0: बस आप
2: फिर कौन सफर करेगा और कौन
0: गुजरेगी उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते।
2: पहले से
0: सफा जा रही है,
2: देखिए मैं एडवांस में माजरत कर रही हूँ एडवांस में।
1: मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है तू बेवफा हो गया तो छोड़ के जा रहा है।
2: हमें अलग किया जा रहा है क्योंकि एक क्या होता है एक मायान में दो तलवारें नहीं रह सकती,
0: तलवारें नहीं रह सकती।
2: तो हमें कहा जा रहा है बहुत भारी शो चल रहा है आपका एक घंटे का, तो आप दोनों को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, अलग हो जाए हम दोनों।
1: अच्छी सिंगल सिंगल
2: सिंगल सिंगल। अच्छा भाई ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंसान की एक फितरत है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सबके अंदर होती है, 99% लोगों में ये मसला होता है कि हमें बोलना तो बहुत आसान लगता है लोगों के, भाई बुरा वक्त है गुजर जाएगा, या एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ होती है ना बोलना बड़ा ईजी लगता है कि भाई चार दिन है गुजर जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब वही चार दिन अपने ऊपर आते हैं ना, टोपी जब घूम कर खुद हमें हेलमेट पहनना पड़ता है ना, तो हमसे वो जो हमने दूसरों को कसीदे पड़े होते हैं ना वो हमसे खुद से मुश्किल होता है वो करना, हम वो काम नहीं कर सकते, मशवरे हाँ बुरे भी लगते हैं और किए भी नहीं, इम्प्लीमेंट भी नहीं किए जाते।
1: एक्चुअल जो सच्चाई है दुनिया की वो ये होती है जब कोई बुरे वक्त में फंसता है ना तो उससे बेहतर हम अपने आप को अच्छा समझते हैं, उससे अच्छा समझते हैं हम अपने आप को, ठीक है, क्योंकि दुनिया के अंदर क्या है हर चीज घूम के आनी है, साइकिल है ये एक तरह से, तो जब वही प्रॉब्लम हमारे ऊपर आती है तो हमें सबके मशवरे भी बुरे लगते हैं, तो हमें सिर्फ वो चाहिए होता है कि इसका सोल्यूशन कोई निकाल के देते हैं, ठीक है, सजेशन नहीं करे, हमें जो है कंक्लूजन निकाल के दे दे बस, ये फितरत है इंसान की, और जब प्रॉब्लम सामने वाले के ऊपर होती है तो हम उससे बेहतर अपने आप को समझते हैं कि हमारा तो सब सही चल रहा है।
2: अच्छा अगर मैं इसे इस लेवल पर आकर देखूँ ना तो मुझे एक बड़ी कॉमन एग्जांपल लगती है माँ वालिदैन की और बच्चों की, बड़ी कॉमन एग्जांपल लगती है और ये मुझे कभी कभी ना माचिस की तीली की तरह आग भी लगाती है, अम्मा अब्बा बैठे होते हैं, अम्मा अब्बा कहते हैं भाई बच्चा मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल टीवी ज़्यादा देख रहा है, मूवी ज़्यादा देख रहा है, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, अब जब आप गर्दन घुमा के लेफ्ट साइड में बच्चा बैठा हुआ है राइट साइड में माँ बैठे हुए, जैसे राइट से गर्दन हटा के आप बच्चे की तरफ करोगे तो बच्चा हाँ देख रहा है मोबाइल, वापस जैसे आप गर्दन अम्मा अब्बा की तरफ घुमाओगे ना वो भी बैठे हुए स्क्रॉल कर रहे होंगे। ये क्या चल रहा है सिर्फ इसलिए, और मैं आपकी इस बात पे मुझे मैं आपकी इस बात से बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि जो आपने दलील दी है ना कि भाई
1: हम दूसरों को
2: हाँ क्योंकि हम अम्मा अब्बा तो हम कर सकते हैं,
1: दूसरों से अपने अपने आप को अच्छा समझते हैं, सीधी बात ये है कि हम अपने आप को बेहतर समझते हैं सामने वाले से, और ये चीज इंसान को गलत फहमी की तरफ लेके जाती है,
2: खुश फहमी मेरे ख्याल से खुश फहमी
1: गलत फहमी है कि हम अच्छे हैं सबसे, खामियां तो सबके अंदर है, खूबियां और खामियां सबके अंदर है, वक्त किसके साथ क्या आ जाए कोई भरोसा
2: नहीं होता,
0: सही बात है
2: सही,
1: एक सेकंड का पता नहीं होता एक सेकंड के अंदर क्या हो सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात है।
2: कितने कितने

0: वही बात है, कितने मजे से कह देते हैं गुस्से में कभी कोई फैसला नहीं चाहिए, नाराज नहीं हुआ करो और जो है ना गुस्सा नहीं किया करो। अरे भाई आपने अपना हाल देखा है जब आप गुस्से में आते हो?
1: सारी फेक बातें, सारी फेक है। मैं अपने ऊपर बोल रहा हूँ, मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं किसी को सजेशन देने बैठ गया, मैं दूसरे की बात नहीं कर सकता, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। मैं सामने वाले से अच्छा अपने आप को समझने लगता हूँ कि मैं अपना सेट हूँ, ये है मेरे पास, वो है, मैं अपना सेट हूँ, ठीक है। सामने वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार, इसकी गलतियां होंगी, उसकी गलतियां, खामियां निकालने लगते हैं हम,
0: सही मीखें निकालने लगते हैं, मीखें।
1: तो वो ये है कि सामने वाले के हर चीज पे हम, यार तुमने ये गलती की थी इसकी वजह से ये हुआ, ठीक है, लेकिन हमने वही गलती 50 बार की होगी।
0: कुछ कुछ ऐसा भी तो होता है ना,
1: अपना टाइम अच्छा होता है तो हम लोग अपने आप को उससे बेहतर समझने लगते हैं। अरे मेरे साथ में ये हुआ था, हम तो कर गए थे, सही कर लिया था, सारी चीजें हमने सही कर ली थी, ये कर लिया था
0: वो उस वक्त हम इमोशन, हम अच्छे वाली, हम बेटर प्लेस पर होते हैं ना उस वक्त, तो इमोशंस हमारे कुछ काबू में होते हैं। अब अगर आप देखें कि दूसरे को, मुझे लगता है मशवरा देना इसलिए भी आसान होता है क्योंकि हमने उसके जूतों में पाँव नहीं रखा होता, हमें पता ही नहीं होता वो किन कांटों से गुजर रहा है मिस्किन और कितने छेद हैं उसके जूते में, ये पता ही नहीं होता हमें।
1: परेशानियों का आपने बात कर दी, ये वही जान सकता है जब अपने ऊपर पड़ती है तब समझ में आता है।
0: मेरी अम्मा कहती है बेटा जब अपने बाल खींचेंगे ना तब पता चलेगा बाल कितना कितना दर्द होता है। ये अम्मा मेरी बड़ी कॉमन सी मिसाल देती है।
1: लेकिन एक चीज तो है, एक चीज तो है, मैंने जब तक प्रॉब्लम ना आए जिंदगी में, कसमकस ना हो, तब तक मजा भी नहीं आता है। क्या
0: मोटिवेशन, मोटिवेशन मिलती है, ये बात है, ये आप सही कह रहे हैं। वैसे
1: हर दिन एक टास्क होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अंबानी, इनकी क्या लाइफ होगी, बोरिंग लाइफ।
0: हाँ ये तो है,
1: पैसा अनाप शनाप भरा हुआ है, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है, टास्क कुछ भी नहीं है। और हम लोगों का सही है, हर दिन कुआं खोदना है, पानी भरना है, उसके बाद शाम को खर्च खत्म करना है, उसको कल के बारे में सोचना है, कल क्या होगा, कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है जिंदगी में।
0: अच्छा, मेरा
1: मजा आता है जिंदगी
0: मुझे, मुझे इस बात पे थोड़ा सा इख्तलाफ होता है। पहले मैं भी आपके नजरिए से देखती थी, बिल्कुल आपके नजरिए से, मैं कहती ये जो बड़ा पार्टी है, द बिग पोटैटो एंड द स्मॉल पोटैटो वाली सिचुएशन है। अब मसला पता है क्या है, मसला ये, हम जिस लेवल पे खड़े हुए ना, हमारे लिए हमारे मसले मसाइल और लेवल के, वो जिस लेवल पे खड़े हुए उनके लिए मसले मसाइल और लेवल के।
1: बात सही है, ये आपकी बात सही है, उनके
0: वो हमारे लिए काउंट नहीं करते क्योंकि हम लोग नहीं, हम लोग उस लेवल तक ना है ना जाना चाहते, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। या तो फिर कह लेंगे कि मुझे नहीं पता, कुछ कुछ मामला है,
1: मैं जाना चाहता हूँ उस लेवल,
0: मैं नहीं जाना चाहती, मैं अपने लेवल बहुत खुश हूँ, मैं, मुझे ऐसा लगता है मैं आजाद इंसान हूँ, आजाद पंछी हूँ,
1: खुश मैं भी हूँ लेकिन मुझे जाना है।
0: अच्छा आपने मेरे भाई वाली बात कर दी, मेरा छोटा भाई ना कहता है बाजी ये ब्रांडेड कार में बैठकर, एसी वाली कार में, ब्रांडेड कार में रोना पसंद करोगी या फुटपाथ पे बैठकर रोना पसंद करोगी मसले मसाइल का? मैंने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है कि ब्रांडेड कार में गाड़ी साइड पार्क हुई तो बंदा एसी वाली गाड़ी में रो रहा हो ना कि फुटपाथ पे बैठा रो रहा हो। तो हाँ ये बात तो है कि वो हमारी अपनी चॉइस होती है कि मैं कहाँ बैठ के रोना पसंद करूंगा।
1: उसमें फर्क भी है ना, आप जो है एसी वाली गाड़ी में बैठ के रोगे 10 आदमी को फिक्र होगी,
0: ये बात सही बात।
1: रोड पे बैठ के रो रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है,
0: कोई पूछने वाला नहीं है, सही वही वाली बात है। मैं परेशान था, मैंने जहाज पकड़ा, मैं टूर पे निकल गया मैं परेशान था, मैं बाहर दरवाजा खोला, घर का गली में बैठ गया। तो हाँ ये है कुछ एक, लेकिन ये भी एक इंसानी फितरत है कि हम लोग को जो ना हमेशा द ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर एंड, हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमसे ज्यादा, चाहे वो कितना अपर हायर क्लास में क्यों ना हो, भाई सबके अपने अपने अपने ही रोले होते हैं,
1: अपने अपने फंडे हैं।
0: हाँ
1: सबके ऊपर बारिश के ओले गिरते हैं, बर्फ के ओले गिरते हैं, लेकिन समझ में किसी को, हमें दूसरे आदमी की लाइफ अपने से अच्छी लगती है।
0: हाँ ये और ये, हाँ ये बात है, ये बात तो।
2: अच्छा इससे पहले कि अंबानी और उन जैसे सारे अमीरों को हमारी नजरें लग जाएं मेरा पहले हमें कहीं और आना चाहिए,
0: इनको नहीं लगती नजर, नहीं लगती भाई,
2: मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि हम जो कहते हैं ना कि इनको नहीं लगती, लगती है
0: सबको, लगती है वैसे तो लगती है, हदीस है कि सबको लगती है भाई, इंसान को अल्लाह अल्लाह माफ करे।
1: हम ये सोचते हैं कि इनके पास पैसा भरा हुआ कितना लोन में, ये किसी को नहीं मालूम।
0: हाँ। चले भाई हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे ऑन एयर, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे। चले जी आपका कॉल करने का बहुत शुक्रिया, लेकिन आशा भाई आपकी बात मुझे टू द पॉइंट

0: बहुत अच्छी लगी कि हम दूसरों को अपने आप से नीचे रखकर उनको अपने आप को उनसे ऊपर रखकर हमेशा ही समझते हैं तभी
1: अपने फेवरेट होते
0: हाँ
1: सही हो
0: गया सब बहुत शनि अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू फॉर कॉलिंग अल्लाह हाफिज
1: राइट तो आसिफ भाई का जो पॉइंट था वो ये
0: मुझे बहुत मुझे वैलिड लगा बहुत बहुत ठा करके लगा ठा ठा करके शनि जी अब देखते हैं कौन है हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम मैडम
0: जी कौन है हमारे साथ
2: कहानी
0: घर घर की
1: अली रजा
0: अली रजा भाई कैसे हैं इनका बड़ा फिल्मी सा नाम लगता है क्यों अली रजा
1: अली रजा फिल्मी सा लगता है
0: क्यों अली रजा किसका नाम है अली रजा मैं जब इनका नाम
2: सुनती
0: हूँ अरे भाई बड़ा हीरोइटिक सा नाम लगता है मुझे ये ऐसा लगता है कोई माशाल्लाह सेट नाम है अली रजा
1: नाम प्यारा
0: किसी का तो है नाम अली रजा मुझे क्यों याद नहीं आ रहा
2: किसी का नाम नहीं मैडम
0: है भाई है कोई मशहूर पर्सनालिटी नहीं है तो आपको बना लेंगे टेंशन नॉट ऐसा लगता है वो कोई मशहूर नाम है
1: हाँ अच्छा नाम है अली रजा
0: अच्छा जी अली रजा भाई कैसे हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैडम आप कैसे हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह ये बताएं कि ये अपना जो ह्यूमिडिटी है उसके साथ कैसी जंग चल रही है आपकी
1: आज तो माशाल्लाह बेहतर है आज बेहतर है मौसम
0: मुझे आज भी गुबार
2: गर्मी से
1: हाँ आज मतलब थोड़ा बेहतर है कल के मुकाबले में
2: अभी पता चलेगा मैडम अभी तो खैर
0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है
1: लेकिन ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम है ना आज मतलब वो वाला हाल नहीं है जो कल था
0: वैसे तो हमारे पास बड़े कसीदे होते हैं थीसिस होते हैं फिलोसफियां होती हैं अब जैसे मामिश मुझे बैठी मशवरे देती रहती हैं
1: अब लो
2: हमारी मैडम बहुत अच्छी है बहुत अच्छे मशवरे मशवरा देना
0: ये मामिश ने जरूर सौरे चिपकाए होंगे जरूर सौरेल चिपकाए माविश ने बता दें ये ब्रांड एंडोर्समेंट चल रही है माविश की यहाँ पर ये तो पता है अरिजा भाई की वाली बात हो गई वो मेरा बेटा ना 10 साल का है उसकी फेवरेट उसकी क्लास टीचर है उसको ये तक पता है कि मेरी टीचर को सालन नहीं पसंद इसलिए मुझे भी सालन नहीं पसंद
1: ओहो
0: तो अरिजा भाई का भी हाल चल रहा है मैडम मेरी टीचर बहुत अच्छी है अच्छा भाई ये बताएं कि दूसरों को मशवरा देना इतना आसान क्यों होता है और खुद जब हम खड़े होते हैं उसी सर्कल में तो हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है जबकि हमें पता होता है वही तो हम लोग झाड़ कर आ रहे होते हैं एडवाइस दूसरों को
2: मैडम मशवरा देना और सही मशवरा देने में फर्क होता है
0: सही मशवरा
2: सही मशवरा देना मुश्किल रहता है और मशवरा ऐसे ही किसी को देना आसान रहता है सही मशवरा देना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि अगर कोई आपके साथ काम कर रहा है उसको सही मशवरा दोगे तो आपको बाद में ये डर रह जाएगा कि यार उसको मैंने तो मशवरा दे दिया लेकिन बाद में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए मेरी जॉब पे बाद ना आ जाए ऐसा एग्जांपल बताता हूँ आपको तो मशवरा लेना चाहिए मैडम दूसरे का भला हो अच्छा हो दूसरे का भी अच्छा देना चाहिए सही मशवरा देना चाहिए और इस्लाम
1: सही बात
0: सही कुछ तो शोर शराबा चल रहा है कुछ है पीछे कोई देखा ये पीछे वाले बहुत गलत मशवरे दे रहे हैं दूसरे को अली रजा भाई हैं कि चले गए सही और कुछ कहना चाहेंगे जी जी
2: नहीं मेरे पास ऐसा कुछ खास है नहीं मशवरे के लिए लेकिन मैं जिसको मशवरा देता हूँ सही मशवरा देता हूँ अगर उसका भला रहे तो बुरा ना हो
0: ये भी एक अच्छी बात है
2: मैडम को छोड़ के बाकी मुझे जो मशवरे मिले वो खराब ही मिले ये कर लो पाकिस्तान चले जाओ कुछ नहीं रखा ऐसा नहीं है वैसा नहीं है
0: अरे भाई वो मशवरे नहीं होते वो मशवरे नहीं होते वो टॉक्सिकनेस होती है
1: वो उनके वो जज्बात होते हैं जो चारे होते हैं पूरे हो जाए ख्वाहिशात होती हैं
0: हाँ वो अंदर की मैं बोलना अंदर की भड़ास होती है लोगों की कि भाई ये अभी तक खड़ा हुआ है कैसे खड़ा हुआ है
2: नहीं ऐसे कहते हैं ना लोग हमारे मशवरा हमारा आपके लिए सजेशन ये है मशवरा ये आप पाकिस्तान चले जाओ यहाँ कुछ नहीं रखा
0: ऐसे लोगों से पता है क्या कहना चाहिए ऐसे लोग उनसे कहना चाहिए कि भाई आप अभी तक यहाँ पे क्यों मार्केट बंद होगी दुकान बंद होगी शटर डाउन करो चलो चलो मेरे साथ चलो सब खत्म हो गया दुनिया खत्म हो गई है चलो भागते निकलते
1: सही बात है मतलब अगर कोई मशवरा मांग रहा हो ना जी जी जी बोले आप अली
2: एक बात है लेकिन जब कोई

0: मशवरा दे रहा होता है ना इंसान, जो दिल से मशवरा देता है ना वो समझ में आता है कि हाँ यार इसकी बात में कुछ दम है. और कुछ लोग ऐसे हैं इनके मशवरे समझ नहीं आते, वो मशवरा नहीं लगते, वो एक ऐसा टोन टोन होता है आपके ऊपर यार तुमसे नहीं होगा.
1: ऐसे ही है. मुझे पता है मसला क्या लगता है, मुझे लगता है ये हमारी कोताही होती है कि हमें पता होता है कि कौन हमें सही मशवरा दे सकता है, कौन हमारा दोस्त है और कौन नहीं है. लेकिन उस वक्त उस सिचुएशन में हम इतने परेशान होते हैं कि हम हर किसी के सामने खुल जाते हैं. वो एक मेंटल स्टेट हमारा सही नहीं चल रहा होता ना. ये हमारी गलती होती है कि हम हर किसी के आगे बोल देते हैं.
2: ऐसे ही है.
1: वो हमें भी देख सोचना चाहिए. मैंने कहा हमें भी सोचना चाहिए लोगों को अपनी परेशानी बयान करने से पहले कि हम किसके आगे खुल रहे हैं.
0: क्योंकि इंसान को अपनी खुशी इंसान को अपना दम किसी के आगे बयान नहीं करना चाहिए. क्योंकि इंसान के दम में बंदा हंसेगा, तकलीफ में हंसेगा, खुशी में वो जेलिस होता है.
1: ये होता है. हाँ, ऐसे ही
0: तो है. अपनी अपनी खुशी मैं अगर मैं खुश हूँ या अपने अपने मेरे अंदर को तकलीफ मेरे साथ कोई तकलीफ है तो मेरे हद तक ही रहनी चाहिए. एक दूसरे तक जाएगी ना वो खुशी होगी. और
1: सही
0: किसी को नहीं पता. मैडम से मेरी बहुत अच्छी बात है, मैडम मैम से मेरी बहुत अच्छी बात है. आप इससे जैसे आप पूछ ले, मैंने इनको अपना मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई हो कभी?
1: सही.
0: मैंने ऊपर ऊपर से बताया कि मैं परेशान हूँ. मैंने कभी नहीं बताया मेरे अंदर क्या. मैंने आज तक इनको ये भी नहीं बताया मैं काम क्या करता हूँ, करता था और क्या करता हूँ.
1: सही.
0: कुछ नहीं बताया इनको. इनको इतना बताया कि अली परेशान.
2: सही सही कह रहे हैं आप. कभी भी आप अपना किसी को भी ना अपने आप को खोल के ना रखें, क्योंकि अगले ने कुछ नहीं कर सकता. कोई जो मतलब जो कर सकता है ना वो सिर्फ और सिर्फ वाकई अल्लाह ताला ही है जो हमारे सारे मसले हल करते हैं. अल्लाह ताला के सामने ही हमें हर चीज़ रखनी चाहिए. उसके अलावा कोई भी नहीं है दुनिया में. ऐसा तमाशा बन जाता है इंसान.
1: क्या बात याद आई मुझे, अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ जाता है. अरे भाई इमोशनल डैमेज कर दिया मुझे. चलें आपकी कॉल बंद करेंगे नहीं तो मैं रो पड़ूंगी फिर.
2: थैंक यू अली. थैंक यू.
1: ढेर सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.
2: अल्लाह हाफिज. राइट. तो अब हमें मेरा ख्याल है कॉल लेने के बजाय हमें एक म्यूजिकल ट्रैक की तरफ चलना चाहिए. बिल्कुल 26 हो रहे हैं तो हम
1: जी जो भी कॉल कर रहे हैं मुसलसल कॉल आ रही है और जो भी कॉल कर रहे हैं मेरे जरा वो मुझे हिमेश रेशमिया याद आ रहा है. करूँ मैं और जो है ना एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं.
2: सफा नहीं.
1: इनको वेट नहीं कराएंगे. थोड़ा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे. नहीं वेट कराएंगे थोड़ा सा. जो भी इंटरनेशनल कॉल आ रहे हैं थोड़ा सा ब्रेक लेंगे. ठीक है क्योंकि देखिए हमारी भी मजबूरी है.
2: होल्ड नहीं करवाएंगे.
1: होल्ड नहीं करवाएंगे. हाँ चलो भाई हमारी भी मजबूरी है. थोड़ा बातों को समझा करो. आप सुन रहे हैं 107 मावेश्वर सपा के साथ यू मैटर. और ब्रेक पे चलो भाई. मेरा बेकार दिल नहीं है. मेरा दिल बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा. ये और बात है कि मैं दिल में आती हूँ समझ में नहीं. सलमान खान आया है सलमान खान की तरह. चलो भाई ट्रैक सुनो.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: क्रिकेट हो
4: एंड ही इज हुक दैट अवे, दैट्स फोर रन।
3: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
5: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
3: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट

0: 1 PM.
1: क्योंकि यहां होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
0: दोस्तों, स्कूल स्टूडेंट्स की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए वजारत दाखिला ये ताकीद करती है कि बच्चों को सिर्फ डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के जरिए ही रोड क्रॉस करने की हिदायत दी जाए। ये न सिर्फ उन्हें ट्रैफिक एक्सीडेंट से महफूज करता है बल्कि उनमें ट्रैफिक अवेयरनेस और अपने आप को महफूज रखने की आदत को भी बढ़ावा देता है। पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल स्टाफ का फर्ज है कि वो बच्चों को गाइड करें और उन्हें समझाएं कि ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी हर वक्त जरूरी है। बिना पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के रोड क्रॉस करना खतरा बढ़ाता है, खासतौर पर बिजी रोड्स और स्कूल जोन्स में। बच्चों को ये जरूर बताएं कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर भी रुककर ट्रैफिक का मुआयना करना, सिग्नल्स और रोड मार्किंग्स को फॉलो करना उनकी सेफ्टी को इंश्योर करता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि अगर हम सब मिलकर बच्चों को रोड क्रॉस करने का सही तरीका सिखाएं तो हम न सिर्फ उनकी हिफाजत करते हैं बल्कि एक डिसिप्लिन्ड और सेफ ट्रैफिक कल्चर को भी बढ़ावा देते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
3: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल।
2: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल्स।

0: बनने के लिए रेडी हूँ मैं रेडी हूँ मैं रेडी हूँ
1: नहीं नहीं
0: बिल्कुल बिल्कुल मैं रेडी हूँ मावेश मैं रेडी हूँ
2: आप सुन रहे हैं यू मैटर
3: आरजे सफा और आरजे महवेश के साथ
2: एफएम 107 पर दिल से देसी
0: मुझे
1: पता है मेरे साथ तुम ये करती रहोगी जब जब तुम वहाँ बैठोगी ये मुझे पता है अच्छी तरीके से
0: देखो आज इंचार्ज मैं चल रही हूँ तो पता चलना चाहिए
1: अल्लाह माफ करे ऐसे इंचार्ज से लोग जो है ना पनाहें मांगेंगे
0: तो भाई वेलकम बैक आप सुन रहे हैं यू मैटर विद सफा एंड मावेश आज का हमारा मुद्दा ये चल रहा है कि मावेश जैसे मुझे लेक्चर देती रहती हैं वैसे मावेश बोलना इतना आसान होता है अपने ऊपर क्यों नहीं इंप्लीमेंट करती क्यों नहीं
1: या अल्लाह
0: दूसरों को बोलते हैं
1: लोगों को सबको अंदाजा है इस बात का
0: चलो भाई अगर हम लड़ने बैठे तो पूरा दिन गुजर जाएगा कॉलर ले लेते हैं कॉलर से बात करते हैं कि इनको भी लड़ने का मौका देते हैं हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम अस्सलाम
1: मुदस्सिर भाई आ गए
4: क्या हाल है मुदस्सिर भाई आपके मैं बिल्कुल आप ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: मुदस्सिर भाई अभी मैं जंग छेड़ने वाली थी ये कहकर कि मुदस्सिर भाई बताएं पहले किसको सलाम करेंगे मुझे कि माविश को लेकिन आपने तो कहा आपने मतलब जमा में बात कर दी मुदस्सिर भाई मजा ना आया ये तो प्रैंक हो गया
4: आपने बोला ना कि सलाम अलैकुम
0: तो भाई मैंने सोचा पहले कहेंगे शायद सफा को सलाम करेंगे या पहले एक्सेप्शनली माविश को सलाम करेंगे
1: हद होती है ना मतलब हर वक्त फटने चाहिए जिंदगी में कुछ है ही नहीं
0: वो हम कहते हैं चस चस आनी हाँ, चाहिए
1: बिल्कुल ऐसे ही है कुछ लोगों का मिजाज ही ऐसा होता है
0: अच्छा भाई मुदस्सिर भाई ये तो बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि हम दूसरों को तो बड़े मजे के मशवरे देते हैं लेकिन जब अपनी बारी आती है तो बैक सीट पकड़ लेते हैं
4: आप लोगों को मालूम है कि मशवरे कौन देता है
0: माविश
4: मैं आप लोगों से पूछता हूँ आप लोग मशवरे देते हो कि नहीं देते हो
0: मैं नहीं देती मैं बिल्कुल भी मैं पता क्या कहती हूँ मैं कहती हूँ भाई मुझे नहीं पता मैं अपनी तो पहले
1: मशवरा देने के लिए अकल भी होनी चाहिए अब मशवरा दे अकल होगी तो कोई मशवरा देगा है कि नहीं मुदस्सिर भाई मानते हैं ना
4: आप लोग इसलिए मशवरा नहीं देते हो कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि किसी को मशवरा दे दो
0: टाइम नहीं दिमाग ही नहीं है भाई अपनी सुलझ नहीं रही दूसरे की प्रॉब्लम में गोता मारूं मैं
4: ठीक है मेरे बात तो पूरा सुनो ना
1: यही तो मसला है ना अभी सुनती नहीं है किसी की
4: मशवरे वो लोग ज्यादा देते हैं ना जो बेकार बैठे
0: मावेश चल रही बेकार
1: अल्लाह ना करे
4: नहीं मावेश तो ऑलरेडी कभी भी काम पे ना कैसे बेकार है
1: हाँ ना देखा
0: ये आज क्या क्या डोज खिलाया सबको
1: सीखो कुछ
0: ये क्या पानी में क्या क्लोरीन मिलाकर और अपना कोई पुश कर दिया
1: सीखो कुछ
4: जो सीनियर होता है ना उसकी कदर होनी चाहिए ना
1: हाँ ये ही तो बात है
0: ये सीनियर सिटीजन की कदर मैं करती हूँ बस में ट्रेन में हर जगह इनके लिए जगह छोड़ती हूँ
4: वो तो लाजिम करना चाहिए ना
1: कितने यार सीधे हैं ये
4: मैं ये कहना हूँ कि मशवरे ज्यादा वो लोग देता है जो काम नहीं करता है बेकार बैठा है
1: हाँ।
4: जो अपनी लाइफ में बिजी है वो किसी को मशवरा नहीं देता है
0: अपनी लाइफ में चल रहा है
4: हमारी पर बहुत ज्यादा टेंशन है हमारे मशवरा नहीं देता है जो मशवरा देते हैं वो बेकार बैठा है
0: हाँ ये नहीं भाई मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं मुदस्सिर भाई जो जिनके अपने मसले सुलझ नहीं रहे होते लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमने दूसरों को थीसिस पढ़ानी है दूसरों को जरूर खानदान में अक्सर औकात ऐसा होता है आपने खानदान में देखा है ये जो खानदान के ऊपर मीम्स बनती हैं खानदान में ना अक्सर मैंने देखा है कि क्या होता है कि अपने माजरत के साथ मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही किसी जनरेशन को लेकिन अपने जो बड़े बूढ़े होते हैं ना उनके अपने घर में इतने रोले चल रहे होते हैं या पुप्पो ताया ये वो जो भी होते हैं मामू शामू सब सब सब इसके अंदर आते हैं चाहे ननियाल वाले चाहे ददियाल वाले हों अपने बच्चे संभल नहीं रहे होंगे हमारी अम्मा को फोन करके मशवरे दे रहे होंगे अपने बच्चे ऐसे संभाल लो ऐसे पाल लो ये कर लो तुम अपने अम्मा के हमारी अम्मा को भर रहे होंगे डोज दे रहे होंगे फुल ऑन
4: अच्छा
0: ऐसा क्यों
4: ऐसा इसलिए होता है ना कि वो अपना घर का मसला इसलिए नहीं हल करते उधर कोई सुनने वाला है नहीं
0: भाई क्या बात कर दी भाई
4: सही है ना तो दूसरा उसका अपने घर में वो किसी उसका नहीं सुनता है ना कोई भी वो दूसरे को इसलिए मशवरा है कि वो सुन रहा है
0: अरे भाई ये भी एक बात है हाँ
1: पॉइंट लेकर आए
0: खतरनाक पॉइंट
4: तो इसलिए वो दूसरों को
1: मशवरा पता नहीं हमारे अम्मा अब्बा हर किसी की वाकई इतनी ज्यादा सुनते क्यों थे हर किसी की सुनते थे
0: मेरे तो अभी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हयात है तो मेरे अम्मा अभी मेरे अम्मा अब्बा की वही वही ट्रेन पुरानी वाली और वही पटड़ी और टक टक टक आटा उसी पे चल रहे हो।
4: ये तो मुश्किल बात है ना कि वो दूसरे के ज्यादा लोग ऐसे दुनिया में है ना कि वो दूसरे को सुनते हैं अपनों को नहीं सुनता है।
0: अच्छा उनको
4: तो उसका जितने भी वजाहत होगे ना वो तुम्हारा बात नहीं सुनता है। लेकिन आप उसको जो मसलन तुम मेरे बाप को फोन करो ना कि मदद से ये करते हैं मदद से वो करते है तो मैं उसको बोलना कि मैंने ऐसा नहीं किया ना, वो नहीं सुनते है। वो सपा की बात या महवेश आपकी बात क्यों यकीन करते है क्या इसने ऐसा किया है।
0: अच्छा और इसी वजह से ना रिश्तेदारों से सख्त खा रहे मुझे मेरा अगर कोई रिश्तेदार सुन रहा हो तो सॉरी सॉरी लेकिन हमारे इस
4: नहीं सॉरी नहीं करो जो रिश्तेदार ऐसा करते हैं उसको खाली वाली करो सॉरी की जरूरत ही नहीं है।
0: नहीं, इसके अंदर फिर ये बात आ जाती है ना कि दूसरों से आपको मसला इसलिए क्योंकि आपके अपना घर का मिजानिया ना दुरुस्त नहीं चल रहा, अम्मा अब्बा सबकी लपेट में आ जाते हैं, जंगल में लगी आग की तरह, तुमने भी बोल दिया तुमने भी बोल दिया। अच्छा भाई ये
4: तो
0: भी होता
4: ये,
0: है।
4: मैं एक आदमी को जानता हूँ वो पाकिस्तान पे वो काम नहीं करते, जब आप उसके साथ बैठते हो ना मतलब आप उसके साथ बैठे वो आपसे पूछेगा कि आप क्या काम करते हो
0: सही।
4: तो आप उसको बोले कि मैं 107 में ऐसा हूँ ऐसा हूँ ना फिर वो आपको इतना एडवाइस इतना मशवरा देंगे ना
0: जाओगे मैंने कहा मेरे अब्बा के बारे में बात तो नहीं कर रहे
4: पाकिस्तान का बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में
0: सही सही
4: लेकिन वो खुद घर में टमाटर भी नहीं लेके आता है
1: भाई। अक्सर अमूमन लोग ना ये बात मतलब मजाक से हटकर और सफा तुम बिल्कुल भी ना कहना कि मैं तुम्हें इस किस्म के मशवरे देती हूँ अगर खबरदार जो तुमने मेरी तरफ देखा लेकिन जिनके पास वाकई कुछ नहीं होता है ना वही मशवरे देते हैं ये बात सही होती है अमूमन से कल मैंने कब दिया मशवरा तुम्हें
4: मेरे बात सुनो अभी जो तुम लोग ये 107 अभी तुम बैठे हो ना लाइव शो कर रहे हो ना ठीक है 3 बजे मैं आप दोनों में से एक को फोन करता हूँ कि आप मुझे मशवरा दे दो। आप मुझे क्या बोलोगे? आप मुझे बोलोगे कि भाई अभी मैं बिजी हूँ बच्चों के लिए खाना बना रहा हूँ बाद में बात करेंगे ठीक है आपके पास टाइम नहीं है तो
1: यानी अभी हम बहुत फ्री चल रहे
4: हैं तो जान छुड़ाओगे और ज्यादा लोग ऐसे करते हैं वो लोग फ्री बैठा है बस वो
1: बात करने वाला फरागत
4: वो उसके साथ बात करने वाला
0: शुगल लगा लिया मशवरा दे दिया
4: बस वो तो तुमको मशवरा दे दे
1: मेरे ध्यान में कुछ नाम आ रहे हैं जो कि हैं इस तरह के मैं तो नहीं फरागत तुम्हारा मतलब तुम मसला ये है मदसर भाई कि सफा मशवरा दे लेकिन लेगा कौन
0: कोई सीरियसली नहीं लेता
1: सीरियसली नहीं लेगा
4: नहीं सफा मैम से तो मशवरा नहीं लेना चाहिए वो तो
1: देख लिया
4: हर बात भूल जाती है
0: बस भाई कदर बहुत छोटा सा है कहीं टकरा ना जाना
4: मैं तो तुम्हारे घर की तरफ रोज आता हूँ लेकिन मैं नहीं कुट नहीं टकराता हूँ
0: अब सर्विलेंस लगाना पड़ेगा मुझे आपके पीछे अब सर्विलेंस लगाना पड़ेगा आपके पीछे दया पता करो मुदस्सिर भाई कहाँ होते
4: आप बस बोल रहे हो ना कि मैं हर बात भूल जाता हूँ ना
0: ये बात ना भूलूंगी इसके अंदर औरतों वाला दिमाग हो जाता है मैं बुराई की मुतासिर भाई अभी बताती हूँ
4: मैं आप मुझे मशवरा दोगे ना 10 मिनट के बाद मैं से पूछूंगा कि उस बात पे मशवरा दे दो फिर तुम दूसरा मशवरा मुझे दोगे फिर
1: ये ऐसे ही
0: ये इस पे ये वाला गजनी वाला मोड मेरा चलता है
1: गजनी वाला
0: और मुझे याद भी नहीं होगा कि मैंने आपको कोई मशवरा पहले दिया था
1: इसलिए सफा का कभी कोई मशवरा ना ही ले तो बेहतर है
4: तो मैं भी यही बोल रहा हूँ ना कि आपसे मशवरा ना लेना बेहतर है।
0: थैंक यू आपने मुझे जो गीले तौलियों में लपेट के जो है ना मेरी इज्जत अफजाई है मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी
4: ये तुम नहीं भूलोगे तुमसे खुद भूल जाएगा
0: इज्जत अफजाई जो मेरी हुई है ऑन एयर मैं इसको मेडल के तौर पे
1: रखूंगी मेडल के तौर पे सफा कौन सी नई बात है अब तो तुम आधी हो चुकी हो है ना
0: बस
1: 5 साल हो चुके हैं
4: ये इसको याद भी नहीं रहेगा अभी शो खत्म हो जाएगा अपने हो जाएगा कि मैं किसके साथ बात की।
0: अच्छा ये जरा ये एक मेरी क्वालिटी है मैं इसे क्वालिटी में लेती हूँ
1: अच्छा
0: मेरी हाई ग्रेड क्वालिटी इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे
1: अभी कह रहे थे ना आसिफ भाई कि इंसान खुद को पसंद करता है तो ये अभी यहाँ पे साबित हो गया
0: तो ये चले कोई बात नहीं
1: मुदस्सिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया
0: रीजन अच्छा था आपकी रीजनिंग अच्छी थी आई लाइक इट चले जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज मुदस्सिर भाई दया जरा पता करो मुदस्सिर भाई कहाँ होते हैं अच्छा कह रहे थे मशवरा आपसे तो लूंगा ही नहीं अगर किसी और नेक्स्ट कॉलर ने आकर ये बात कर दी ना तो अच्छा ना होगा, बता रही हूँ
1: प्रोग्राम चल रहा है।
0: देखो ऑन एयर बेइज्जती नहीं किया करो, ऑफ एयर कर लो।
1: एक के बाद एक, अबे वो फोन कहाँ है प्लीज मुझे पकड़ा दीजिए।
0: आप जरा पीछे तो देखो, पीछे वो वायर वो रही। अच्छा भाई हमारे साथ कॉलर है, एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: हां क्योंकि मैसेज का टाइम हो गया है किसी के, हमने पढ़े ही नहीं।
0: अज्जू भाई कैसे हैं? अज्जू भाई
5: आई एम गुड,
0: ऑल गुड। अज्जू भाई
5: ऑल गुड।
0: सो अज्जू भाई टेल मी व्हाई इज इट, अब टाइम शॉर्ट रह गया इसलिए टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है? टेल मी के भाई ये क्या मामला है कि ऐसा क्यों होता है दैट वी आर गुड इन एडवाइजिंग अदर्स बट व्हेन इट कम्स टू आवरसेल्फ।
5: एक्चुअली व्हेन वी सी द अदर अदर प्रॉब्लम यू आर नॉट इमोशनली इन्वॉल्वड, तो इट मींस आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा वो किसके वजह से सफर कर रहा है।
1: ऐसा है, सही कह रहे
5: हैं। या द सेम चीज आपका ऊपर आ गया तो आप सफर में आएगा, तो आपका स्ट्रेस आपका फियर ये पूरा ओवरकम करता है। उसी टाइम आप उसी टाइम द सेम रिएक्शन आपको मिलेगा।
0: सही।
5: तो टू बी द पॉइंट क्लियरली, आपको जो किसी को एडवाइस देने का पहले थोड़ा सोचने का, वो किसी तरह के सफर कर रहा है। आपको स्ट्रेस सब कुछ हो सकता है, इसलिए वजह से किसी को एडवाइस देने का नहीं, एडवाइस लेने का भी नहीं।
0: अच्छा ये एक बड़ी अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना सामने वाले का मामला, तो बेहतर ये कि आप खामोशी इख्तियार कर लो। I like, मैं ये करती हूँ, मुझे नहीं समझ आता तो मैं खामोशी की तरह कर लेती हूँ, that's better.
5: No, no, for me, I'm not taking advice from others, I'm not giving advice to anyone.
0: ये मेरा अपना personal life, मेरा भी अपना यही perspective है कि ना आप, because we are not experts, हर कोई अपने experience के हिसाब से बोलता है, तो it's better to sit along with the person, if they want to vent, you can listen to them. मैं अपने दोस्तों के साथ भी यही करती हूँ।
5: अगर द पर्सन आस्किंग समथिंग रिगार्डिंग व्हाट ही वाज सफरिंग, देन आई कैन टेल यू, देन आई कैन टेल। आई एम नॉट टेलिंग फोर्सली, एडवाइसिंग ब्लाइंडली, नो।
0: सही,
5: मिस्टर पिंक।
0: चलें जी अज्जू भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड आई रियली एडमायर दिस, कि ये एक बहुत अच्छी बेहतरीन बात है, खामोशी ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप जो है ना वो अननेसेसरी एडवाइस, सिर्फ बात करने के लिए आप बात कर लो तो That is not appropriate.
1: सही हो गया।
0: चलें जी अपना जल्दी सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
1: थैंक्स अ लॉट। राइट, और मैं जल्दी से मैसेजेस पढ़ दूं फटाफट। जी अच्छा, आसिफ का मैसेज है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, एक कहावत।
0: मैंने देखा
1: एक कहावत है, और ये इन्होंने क्यों बोली है सफा, तुम सोचो क्योंकि तुम्हारे लिए बोली। आप लोगों को जब कॉल नहीं लेना रहता है तो आप लोग जरूरत से ज्यादा मशवरा देने लगती हैं क्या? रईस खान कह रहे हैं तुमने कॉल नहीं लेना। रईस भाई देखिए आज मैं हुई ही नहीं कंसोल के ऊपर, इसलिए अब मुझे नहीं कह सकते। अब गर्दन पकड़ेगा कल आके सफा की,
0: ये इन्होंने मशवरा दिया था, आ जाए कंसोल में बैठो।
1: मैंने मशवरा दिया था?
0: हाँ।
1: ओह गॉड। अच्छा जी रियाज अहमद, अस्सलाम वालेकुम सफा जी, मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो आपने कहा कि लोगों ने अपने बच्चे नहीं संभाले जाते और हमारे अम्मा अब्बा को शिकायतें लगाते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि आप ऐसी हरकतें क्यों करती हैं कि लोग आपके बारे में शिकायतें करना पड़ती हैं उनको? हमारी मावश मासूम मैडम के बारे में तो किसी ने आज तक कोई शिकायत नहीं की होगी।
0: मैं वो वाला बच्चा हूँ जो एम ही बदनाम होता है।
1: अब ये तो मतलब ये यहाँ पे ना लोग सारे के सारे गवाह हैं, अब आप कुछ नहीं बोल सकती।
0: देखें ऑफिस जाने का टाइम हो गया, अल्लाह हाफिज़।
1: हम हैं आपके साथ FM 107 शहजादा सलीम, और इसके साथ अली रजा, कहते हैं कि

0: पाकिस्तानी सिंगर अली रजा पाकिस्तानी सिंगर है।
1: अरे हाँ मैं बोल रही थी, मैं बोल रही थी। अरे भाई अली रजा अपना अपना जो हीर गाना चलाया था मैंने।
0: अच्छा मेरा नाम अली रजा।
1: मैंने कहा अली रजा, मैं गाना भी खुद लगा के बैठी हूँ लिस्ट में अली रजा का, और खुद मैंने ढूंढा अली रजा का सॉन्ग अली रजा करके, और भूल गई कि अली रजा। मैंने कहा नाम सुना हुआ है भाई, मैंने नाम सुना हुआ है।
0: या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे। और मेरे हिसाब से मशवरा तभी दें जब कोई सामने से पूछे, और अच्छा दें जिस पे आप खुद अमल करते हो। मेरी आदत है कि मैं किसी को ऐसे एडवाइस नहीं करता, कोई पूछे तो मैं जो समझ में आता है उससे सामने वालों को कुछ फायदा हो तभी देता हूँ, ऐसे नहीं देता।
1: मुझसे तो कोई पूछता ही
0: नहीं। सफा, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर मावश एंड सफा मैडम, कैसे हैं आप दोनों? एंड अल्लाह ब्लेस यू पीपल। और सफा मैडम, लगता है आप मेरी बड़ी बहन है, पिछले जन्म में अबरार कह रहे हैं ये, क्यों भाई? किसकी भी थी क्या? और अस्सलाम
1: वालेकुम, जाने में सिर्फ मतलब 2 मिनट
0: टाइटा बोल दिया। अच्छा खैर, मेरा ये कहना है इस मशवरे के ऊपर कि जब भी आपसे कोई मशवरा मांगे ऑन अ सीरियस नोट, आपको उस वक्त ये सोचना चाहिए कि अगर इसकी जगह मैं होता या होती तो मैं क्या करता। जब भी आपसे कोई मशवरा मांगे तो अपने आप को पहले उस सिनेरियो में रखें, उस जगह पे रखें, उसके बाद किसी को मशवरा दें। ऐसे नहीं कि मतलब आए टाइम पास करना है तो चलो कोई बात नहीं मशवरा दे देते हैं। हमेशा वो बात करनी चाहिए कि अगर आप उस पोजीशन में, क्योंकि हमारा मज़हब भी ये हमें बताता है कि जब भी आपसे कोई मशवरा मांगे ना तो उसको एहसन मशवरा दो।
1: और मुझे एक और बात इसके अंदर ऐड ऑन करनी है मजाक से हटकर कि जब आप किसी को मशवरा देते हैं ना तो आप उससे हमेशा ये बात बोलें। अक्सर औकात लोग जो ना बात करने में ही गड़बड़ कर जाते हैं। आप ये बोल सकते हैं, इसको क्लेरिफाई करें कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो दिस वाज माय चॉइस एंड दिस वर द कॉन्सिक्वेंसेस और दीज वर द एक्सपीरियंसेस व्हिच आई फेस्ड। आप ये मत कहो कि भाई बैग पैक कर चला जा। फॉर एग्जाम्पल होता है ना लोगों का जॉब का मसला होता है, ये वो हर कोई ये बोल रहा होता है भाई अब तो यहाँ पे मार्केट खत्म हुई हुई है, जॉब खत्म है, तू बैक पैक कर तू चला जा। दिस इज नॉट द वे।
0: सही बात।
1: आप हमेशा ये कह सकते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसा किया था, फिर मैं पलट के वापस आया जब मार्केट थोड़ी सेटल डाउन हुई। लेकिन इसके साथ साथ अब तुम अपनी सोच से भी हिसाब कर लो, कभी कभी ये बात नोट डाउन कर लें कि कभी कभी होता है ये कि सामने वाला इतना मसले मसाइल में होता है कि वो आपका एक सेंटेंस नोट करना भूल जाता है।
0: एक गलत मशवरा किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है और आपका एक सही मशवरा किसी की जिंदगी को बेहतर कर सकता है, कुछ
1: exactly.
0: के काबिल, उसको हिम्मत दे सकता है। तो इसको मशवरे को ऐसे नहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
1: आपको नहीं पता कि आपका थोड़ा सा हिम्मत देना या थोड़ा सा सपोर्ट दे देना, आपका बात करना ही बहुत बड़ा सपोर्ट होगा किसी के लिए। वो कितना बड़ा सपोर्ट होगा वो आपको नहीं पता। माइट बी दैट पर्सन, माइट बी ऐसा हो सकता है कि आप उसके ओनली फ्रेंड हो। मेरे साथ तो ऐसा ही, मेरी एक इकलौती दोस्त है, मैं उससे पूछती हूँ जाकर, हम दोनों दोनों करते हैं फिर हम दोनों सेट हो जाते हैं।
0: सही
1: हो गया, सारा ख्याल रखें और
0: मुलाकात होती है आपसे कल। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।
1: और महावीर से मेरी जान कब छूटेगी?
0: मैं ये सोच रही हूँ अब 3 दिन और गुजारा करना पड़ेगा।
1: अरे आसिम अजहर भाई आ गए क्या?
0: बाय बाय।
1: अल्लाह

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सामने कराम प्रोग्राम कुरान के मोती के आज के इस समंदरी सफर में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मकदम है। तलहा अशरफुल ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। पिछले दो हलकों से हमारी गुफ्तगू हो रही थी कुरानी आया फऊ इलल कहफ यनशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफका। तो किसी गार की तरफ जाकर पनाह ले लो, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी कुछ रहमत खोल देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में कोई सहूलत मुहैया कर देगा। सामने कराम इस आयत की तफसीर पर हमारी काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। यहाँ जो हमें कुरानी मोती मिला है उसे आप खलवत भी कह सकते हैं या जिंदगी के दरमियान एक ज़रूरी वक्फा लेना, इस तरह भी आप इसकी ताबीर कर सकते हैं। तो जैसे कि कल जिस मौजू पर हमारी बात ख़त्म हुई थी कि इस्लाम में असल मतलूब क्या है, इस्लाम का असल तसव्वुर क्या है, क्या इस्लाम चाहता है कि इंसान को गार में पहुंचा दे? बात तो ऐसी नहीं, बल्कि इस्लाम में तो असल मतलूब ये है जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم। वो मोमिन जो लोगों के साथ रहता है और उनसे पहुंचने वाली अजियत पर सब्र करता है उस मोमिन से बेहतर है जो लोगों से मेल जोल नहीं रखता और उनकी अजियत पर सब्र नहीं करता। तो सभी कराम यहाँ तस्वीर वाज़े होने लगती है कि इस्लाम इंसान को गार में पहुंचा कर वहाँ ऐसे यूं ही नहीं छोड़ देता, वो उसे गार से वापस शहर में भी बुलाता है। जमात के साथ नमाज है, ख़ानदान के हकूक हैं, वालिदैन हैं, पड़ोसी हैं, ज़रूरतमंद की मदद है, मुआशरे के साथ खैर का ताल्लुक है। गोया ये जो वक्फा है बाज़ औक़ात सफ़र के दरमियान मेंटेनेंस स्टेशन हम इसे कह सकते हैं। इसी तरह कुरान एक और मकाम पर रहबानियत का जिक्र करता है, वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम। रहबानियत उन्होंने खुद ईजाद की, हमने उनसे यानी हमने उसे उन पर फ़र्ज नहीं किया था। यह आयत के इस हिस्से के पूरे सियाक और तफसीर में तफसीलात हैं, लेकिन कम से कम इतना वाज़ है कि इस्लाम ने दुनिया से मुस्तकिल कट जाने वाली जो मोनेस्टिक ज़िंदगी को मुसलमान की उमूमी दीनी ज़िंदगी का नमूना नहीं बनाया है। हमें माशरे के अंदर रहना है, इस बाज़ार में दयानत दिखानी है, इसी ख़ानदान में हुस्न अखलाक, ऑफिस में अमानत, महल्ले में खैर, इसी इंसानी दुनिया में सब्र, अदल और खिदमत के साथ रहना है। अगर कोई खलवत हमें लोगों के हकूक़ से बेनियाज बना दे तो वो उस तवाज़ुन से हट रही है जिसकी तरफ इस्लाम हमें ले जाता है। समझने के हम एक बड़ी इस्लामी हकीकत यह है कि दीन सिर्फ मैं और मेरी ज़ात का मंसूबा नहीं। यूँ समझिए कि किसी को इल्म सिखाना, परेशान हाल की मदद करना, किसी ज़रूरतमंद के काम आना, किसी इंसान की मुश्किल आसान करना, ये सब भी बंदगी के बड़े दरवाजे हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं खलवत में अपने रब के साथ बहुत सुकून महसूस करता हूँ, इसलिए अब लोगों के मसाइल, ख़ानदान की जिम्मेदारियाँ और माशरे के हकूक़ मुझे डिस्टर्ब करते हैं, तो शायद ये मसला कुछ अलग है। यानी ये अगरचे खलवत की ताबीर में ये मसला बताया जा रहा है, लेकिन मसला यहाँ बिल्कुल अलग है। तो इस्लाम जो हमें खूबसूरत तवाज़ुन देता है वो ये कि यहाँ खलवत का मतलब ये है कि एक वक्फ़ा लेना, एक शख्स लोगों से कुछ देर दूर हो जाता है, ताकि लोगों से हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। वो खामोश होता है ताकि वापस आकर उसकी गुफ्तगू ज्यादा माना खेज हो। वो अपने ताल्लुकात को दूर से देखता है ताकि वापस जाकर कुछ ताल्लुकात को बेहतर कर सके, कुछ में हदूद कायम करे और कुछ की कदर पहले से ज्यादा जान ले। इसी तरह वो आसमान को देखता है, उसमें गौर करता है ताकि जमीन पर वापस आकर या जमीन की तरफ नजरें वापस हटाकर अपनी परेशानियों को सही तनासुब में देख सके। इसी तरह वो अपने रब के साथ कुछ खास टाइम, खास वक्त गुजारता है ताकि बंदों के दरमियान वापस आए तो उसके अंदर मजीद सब्र, आदल और ज्यादा रहमत का मामला करे। सैन करम, खलवत इस या इस जरूरी वक्फे को समझने के लिए एक आखिरी मिसाल देता हूँ। वो ये कि कश्ती समंदर में मुसलसल सफर कर रही है, वो समंदर छोड़ने के लिए बंदरगाह नहीं आती, वो कुछ देर बंदरगाह पर इसलिए रुकती है कि ईंधन ले, नक्शा दुरुस्त करे, सामान तरतीब दे और फिर दोबारा समंदर में उतर जाए। इंसान के वक्फे का मतलब भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि बंदरगाह को घर न बनाइए, मगर ऐसी जिंदगी भी न गुजारिए जिसमें कश्ती कभी बंदरगाह तक पहुंचती ही नहीं। और अब अगला सवाल बिल्कुल फितरी है, अगर वक्फा या खलवत की बात जो कही जा रही है ये खामोशी वक्तन फोक्तन इस्लाह, तजदीद और तफक्कुर का एक जरिया है, तो उसकी हदूद क्या हैं? कितनी खलवत मुफीद है और कहाँ तन्हाई नुकसान में बदलने लगती है? किन जिम्मेदारियों से खलवत के नाम पर पीछे नहीं हटा जा सकता और किस तरह पहचाना जाए कि मैं वाकई अपने बातिन को संवारने के लिए कुछ देर पीछे हटा हूँ या सिर्फ लोगों और मुश्किल जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार कर रहा हूँ? अब इस सवाल को समझने के लिए एक मिसाल लीजिए। तस्वीर कीजिए, एक शख्स हमारे सामने आता है, चेहरे पर थकन है, लोगों से कुछ तल्ख तजुर्बात हुए हैं, शायद किसी ने दिल दुखाया है, शायद माहौल ने उसे मायूस किया है। वो कहता है, बस अब मैं लोगों से दूर रहना चाहता हूँ, कहीं पहाड़ों में चला जाऊं, किसी ऐसी जगह जहां न मैं किसी को देखूं न कोई मुझे देखे, मैं सिर्फ अल्लाह के साथ रहना चाहता हूँ। सुनने में जुमला बहुत रूहानी मालूम हो सकता है, मगर एक लम्हे के लिए इस मंजर को रोक दीजिए और सवाल सिर्फ इतना कीजिए कि शख्स अल्लाह की तरफ जा रहा है या लोगों से भाग रहा है।

0: तो जैसे कि हमने पहले भी कहा, बंदरगाह किश्ती के सफर का हिस्सा है, मंजिल नहीं। किश्ती अगर कभी बंदरगाह ना आए तो थक सकती है, लेकिन अगर बंदरगाह ही में खड़ी रहे तो फिर वो किश्ती अपने मकसद सफर से महरूम हो जाएगी। अब आते हैं एक मखसूस हदीस की तरफ, जिसमें हमें एक खास मंजर सामने आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शदीद फितनों के जमाने का जिक्र फरमाया है, जिसमें किसी मुसलमान के लिए अपने दीन की हिफाजत करते हुए पहाड़ों और बारिश की जगहों की तरफ अपनी बकरियों के साथ चले जाना बायस खैर हो सकता है, इस तरह की बात कही गई है। तो सवाल ये कि क्या कभी मुकम्मल किनारा कशी की भी कोई सूरत हो सकती है? तो यही बात हमें इस हदीस में मिलती है, يُشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ। तो देखिए, यहाँ भी बात ये नहीं कि हर जमाने में हर शख्स के लिए हर मुश्किल समाजी तजुर्बे के बाद पहाड़ ही हल है। तो हदीस फितनों से दीन की हिफाजत की खास सूरत बयान करती है। तो अहले इल्म ने यहाँ मुखालतत और उजलत के मसले में हालात, शख्स, फितना, दीनी फायदे और जिम्मेदारियों के एतबार से तफसील बयान किए हैं। और असहाबुल कहफ का वाकया भी यही बताता है कि इनका गार आम इंसानी जिंदगी से उकताहट का नतीजा नहीं था, वो एक मखसूस दीनी बहरान और खतरे के अंदर लिया गया फैसला था। उसे हर शख्स की रोजमर्रा नाराजी पर चस्पां कर देना इस वाकये के वजन को कम कर देगा। अब एक और मंजर की तरफ आते हैं। एक शख्स लोगों के दरमियान बैठता है तो खुश रहता है, गुफ्तगू, मजलिस, मुलाकातें, बिल्कुल मस्त, सब अच्छा लगता है। मगर जब तन्हा हो और अपने रब के साथ वक्त गुजारने की बारी आए तो उसे वहशत महसूस होती है। एक दूसरा शख्स उसके बिल्कुल बरक्स है, तन्हाई में सुकून महसूस करता है, मगर जैसे ही लोगों के दरमियान आता है हर इंसान उसे बोझ लगने लगता है। अब बज़ाहिर दूसरा शख्स वो ज्यादा रूहानी मालूम हो सकता है, लेकिन अब आते हैं इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह के मकूले की तरफ। वो एक मुतवाज़न कैफियत की तरफ इशारा करते हैं। खुलासा यह है कि कामिल इंसान सिर्फ तन्हाई का इंसान नहीं होता, वो अल्लाह के साथ भी उनसे रखता है और अहले खैर के साथ भी उसने मुआशरत जानता है। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजर तो इस तवाज़ुन को और ज्यादा जिंदा करता है। वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने रब के हुजूर क़याम में तवील वक्त गुजारते हैं, वही घर वालों के साथ रहते हैं, सहाबा के दरमियान बैठते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तबस्सुम फरमाते हैं, इंसानी ताल्लुकात की गर्मजोशी को बाकी रखते हैं, और फिर नमाज का वक्त आता है तो वही ताल्लुक एक दूसरे जहत इख्तियार कर लेता है। वजुइलत कुर्रतु आईनी फिस्सला, और बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया जाता है, अरिहना बिहा या बिलाल, ए बिलाल हमें इसके जरिए राहत पहुंचा, अजान के जरिए, नमाज के जरिए राहत पहुंचा। तो यहाँ शख्सियत दो हिस्सों में तकसीम नहीं, एक तरफ रब से ताल्लुक, दूसरी तरफ बंदों से हुस्न ताल्लुक। तो कमाल इस बात की है कि इंसान जानता हो कब लोगों के हुकूक अदा करने हैं और कब अपने दिल को अपने रब के हुजूर जमा करना है।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ FM 107 पर।
0: अब सामने किराम एक और मंजर की तरफ आते हैं, एक और सिनेरियो है। फर्ज कीजिए किसी नौजवान का अपने करीबी दोस्त से शदीद इख्तिलाफ हो गया, या मस्जिद में किसी शख्स ने उसे सख्त बात कह दी, या किसी दीनी माहौल में उसे ऐसा तजुर्बा हुआ जिससे वो जख्मी हो गया, या घर में कोई तनाजो पैदा हो गया। चंद दिन बाद वो कहता है कि मैंने फैसला किया है, अब कुछ अरसा सबसे अलग रहूंगा, अपने रब के साथ वक्त गुजारूंगा और अपने आप को दुरुस्त करूंगा। अल्फाज बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब जरा इस सिनेरियो को रोक कर हम ये सवाल करते हैं कि अगर वो वाकया न हुआ होता तो क्या तुम फिर भी उस खलवत में जाते, उस वक्फे के लिए तैयार होते? अगर जवाब नहीं है तो शायद हमें इस वक्फे से पहले जख्म को देखने की जरूरत है, क्योंकि कभी इंसान जिसे रूहानी फैसला समझ रहा होता है वो दरअसल किसी सदमे के बाद पैदा होने वाली फौरी रिएक्शन होती है। तो यहाँ वक्फा बाज़ औक़ात खानदान या किसी माहौल या ताल्लुक में पेश आने वाले वाक़े से फरार की शक्ल इख्तियार कर सकता है, और ये फर्क बहुत बारीक है। किसी तकलीफ के बाद कुछ वक्त तन्हा होकर जज्बात को

0: समझना गलत नहीं, बाज हालात में यही वक्फा मुफीद हो सकता है। लेकिन अगर तन्हाई का मतलब ये हो जाए कि मैं उस मसले का सामना नहीं करूंगा, जिससे माफी मांगनी है नहीं मांगूंगा, जिस जिम्मेदारी को अदा करना है उसे छोड़ देता हूं, तो ये दरअसल वक्फा इस्लाह का कमरा नहीं रहा, ये दरअसल एस्केप रूम बन गई है। अब सामने कराम आते हैं एक तीसरे सिनेरियो की तरफ। हो सकता है कि आपको खामोशी या कोई वक्फा मिल गया हो। अब सवाल यह है कि इस वक्फे के अंदर आपको रहनुमाई कौन देगा? फर्ज कीजिए एक नौजवान ने वाकई फैसला कर लिया कि वो तवील अरसे के लिए सबसे अलग रहेगा, तो पहले चंद दिन उसे बड़ा सुकून महसूस हुआ, फिर जहन ने सवाल उठाने शुरू किए, एक ख्याल आया, फिर उस ख्याल पर दूसरा ख्याल, फिर उसी पर तीसरा। अब उसके पास कोई उस्ताद नहीं, कोई समझदार साथी भी नहीं जिससे पूछ सके कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वाकई दुरुस्त है। और यही वो मकाम है जहां वक्फे की एक अहम शर्त सामने आ जाती है, वो ये कि खामोशी इल्म का मुतबादिल नहीं। तन्हाई या फिर आप अपने आप में जब खोए हुए होते हैं, जो सोचने लगते हैं, तो ये आप सोचने का वक्त तो आपको मिल रहा है, लेकिन हर वो बात जो तन्हाई में जहन में आए हकीकत नहीं बन जाती। और इसीलिए अगर तवील वक्फा हो तो तवील वक्फे के साथ साथ इल्म नाफे और दुरुस्त रहनुमाई की जरूरत भी है। और ऐसे कई वाकयात मुशाहदे में आए हैं कि तवील वक्फा वहाँ फायदे के बजाय शदीद जहनी उलझन का सबब बना। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वक्फे के नाम पर हम मस्जिद का रुख तो कर लेते हैं या जाए नमाज बिछा कर बैठ जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन फोन साथ में ले लेते हैं, तो यहाँ दरअसल खामोशी का दूसरा इम्तिहान शुरू हो जाता है। तो कुरान और जिक्र के लिए लिया गया वक्त स्क्रॉलिंग में बदल गया, फिर स्क्रॉलिंग किसी नामुनासिब कंटेंट तक पहुंची, या किसी ऐसी गुफ्तगु का दरवाजा खुल गया जिससे वो पहले बच रहा था। अब एक अजीब तजाद है, जिस वक्फे के लिए वो दरअसल खलवत या वक्फा के तरफ बढ़ा था, तो वो उस मकसद के बिल्कुल बरखिलाफ अमल कर रहा है, उस मकसद की शुरूत के बिल्कुल बरखिलाफ अमल कर रहा है। और बहुत सो का मसला ये होता है कि अगर तन्हाई आ जाए तो उसके लिए यानी मसला बन जाता है, बार बार गुनाह के दरवाजा खोल देती है ये तन्हाई, तो उसके लिए महज मैं वक्फा ले रहा हूँ ये उन्वान ज्यादा मुफीद नहीं। मुमकिन है मुकम्मल तन्हाई के बजाय मस्जिद का पुरसकून गोशा बेहतर हो, मुमकिन है फोन साथ न ले जाना जरूरी हो, मुमकिन है अकेले रहने के बजाय किसी सालेह माहौल में खामोश मुताला ज्यादा महफूज हो। मकसद इंसान को तन्हाई में साबित करना नहीं, मकसद इंसान की हिफाजत और तामीर है। और शायद गुनाह खलवत का तसव्वुर इसी जगह हमें अपने आप से मिलवाता है। लोगों के सामने इंसान की एक तस्वीर होती है, तन्हाई में दूसरी, मजलिस में जबान संभली हुई, तन्हाई में कुछ अलग ही है, लोगों के सामने निगाहें झुकी हुई, बंद कमरे में कुछ अलग ही मामला, लोगों के सामने गुफ्तगू महज़ब, घर में या तन्हाई में कुछ अलग ही रवैया। तो दरअसल ये सवालात दूसरों को जज करने के लिए नहीं, असल में यहाँ तमाशाई भी हम हैं और किरदार भी हमारा। तो दरअसल खलवत या तन्हाई, खामोशी, वक्फा लेना, ये से हम दोधारी तलवार भी कह सकते हैं। गुनाह का खतरा भी हकीकी है, मगर इसमें इखलास का दरवाजा भी गैर मामूली तौर पर खुल सकता है। वो नेकी जिसे कोई नहीं जानता, वो दुआ जिसे कोई इंसान नहीं सुनता, वो आंसू जिसकी कोई तस्वीर नहीं, वो कुरान जिसकी कोई स्टोरी अपलोड नहीं होती, वो तौबा जिस पर किसी मजलिस से दाद नहीं मिलती। और यही दरअसल तन्हाई का इम्तिहान है, जब ऑडियंस चली जाए तो मेरे और अल्लाह के दरमियान क्या बाकी रहता है। उस तरह सामने किराम आया करीमा فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو قرآنی موتی ہے یہ انسان کو غار کا اسیر نہیں بناتی، غار سے نکلنے کے بعد راستہ زیادہ صاف دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال سامعین کرام، ہماری اس پوری گفتگو کا آغاز دراصل ایک غار سے ہوا تھا، ایک طرف اصحاب کہف کا وہ غار جہاں چند نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا کے ایک ہنگامہ خیز ماحول سے فاصلہ اختیار کیا، دوسری طرف غار حرا کی وہ خاموش فضا جہاں بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں وقت گزارتے تھے۔ फिर हम रात की खामोशी, नमाज के अंदर जहनी यकसोई, एतिकाफ, जिक्र, तफक्कुर और अपने आप के मुहासबे से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे कि खलवत आखिर इंसान के साथ करती क्या है। लेकिन अब इख्तिताम पर मैं चाहता हूँ कि हम खलवत को किसी खूबसूरत तसव्वुर की तरह नहीं बल्कि एक जिंदा मंजर की तरह देखें, क्योंकि कभी एक बंद कमरा इंसान के लिए अपने आप से मुलाकात की जगह बन जाता है और कभी वही बंद कमरा उसके नफ्स के लिए एक ऐसी दुनिया खोल देता है जहां कोई जाहिरी निगाह उसे रोकने वाली नहीं होती।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ एफएम 107 पर।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट एफएम 107 कतर। दिल से देसी।
3: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, feeling of missing out, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO ever again। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
4: उर्दू रेडियो एफएम 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाहु अकबर।

0: के सामने तन्हा बैठने की सलाहियत भी बचाए रखिए, क्योंकि मुसलसल भीड़ इंसान को अपने आप से गाफिल कर सकता है और मुसलसल तन्हाई उसे इस दुनिया के हुकूक से दूर कर सकती है जिसमें अल्लाह ने उसे जिम्मेदारी के साथ भेजा है, जिम्मेदारी के साथ रखा है। तो तन्हाई या वक्फा इन दोनों के दरमियान एक खामोश पुल है। हम शोर से गुजरते हुए इस पुल पर कुछ देर रुकते हैं, अपने दिल की सिमत देखते हैं, अपने सफर का नक्शा खोलते हैं और फिर वहीं घर नहीं बनाते बल्कि दोबारा सफर पर निकल जाते हैं। और शायद तब फ़ऊ इलल कहफ का ये मंजर हमारे लिए एक याद दहानी बन जाता है कि कभी दिल को भी एक महफूज गोशा चाहिए, ऐसा गोशा जहां दुनिया की आवाज कुछ देर मध्यम हो और इंसान ये सुन सके कि उसके अंदर क्या हो रहा है। अल्लाह ताला हमें दीन को सही समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें लोगों के दरमियान इस हाल में वापस लाए कि हमारे दिल ज्यादा साफ, हमारी सिमत ज्यादा वाजे और हमारे आमाल ज्यादा नाफे हों। نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اصلح لنا قلوبنا وأعمالنا وارزقنا إيمانا صادقا ثابتا إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين। प्रोग्राम कुरान की मोती के आज के इस हलके से तकनीक के मुआविन नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: म्यूजिक MG, तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़

0: DC.
1: Your health matters.
2: Assalamu alaikum listeners. मुंह और दांतों की सेहत सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट नहीं है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसे अक्सर अफराद मामूली समझते हैं, लेकिन हकीकत में इसका ताल्लुक हमारी मजमूई सेहत से भी है, और वो है हमारे मुंह और दांतों की सेहत। हम में से बहुत से अफराद दांतों का ख्याल सिर्फ उस वक्त करते हैं जब दांत में दर्द शुरू हो जाए, लेकिन दांतों की सेहत का मकसद सिर्फ दर्द से बचना नहीं है। सबसे बुनियादी जो आदत है वो दांतों की सफाई है। दिन में कम से कम 2 मरतबा फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ दांत साफ करना एक बहुत ही अहम और अच्छी आदत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ दांत साफ करना काफी है? तो लिसनर्स, नहीं, गम्स की सेहत भी इतनी ही अहम है। अगर गम्स से बार बार खून आता है, स्वेलिंग है, दर्द रहता है, मुंह से मुसलसल स्मेल या बदबू आती है, या दांत हिलने लगते हैं, तो उसे नजरअंदाज ना कीजिए। बाज़ अफराद कहते हैं कि गम से थोड़ा सा खून आता है तो ये कोई आम सी बात है, यानी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है तो उसे बिल्कुल मामूली बात समझते हैं। लेकिन मुसलसल ब्लीडिंग होना सेहतमंद गम्स की अलामत नहीं समझा जाता। ऐसी सूरत में डेंटिस्ट से मशवरा जरूर करना है और वो बेहतर साबित होता है। एक और सबसे बड़ी वजह यह है कि ज्यादा शुगर का इस्तेमाल। हम चाय में चीनी, मीठे मशरूबात, बिस्किट, केक, चॉकलेट और मुख्तलिफ स्नैक्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। मसला सिर्फ ये नहीं कि हम एक वक्त में कितना मीठा खाते हैं। बार बार मीठी चीज़ें इस्तेमाल करने से दांतों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मीठे मशरूबात और गैर ज़रूरी जो शुगरी स्नैक्स हैं उनको अपनी रूटीन ना बनाइए। बच्चों के लिए ये बात ख़ास तौर पर अहम है। वालदैन बच्चों को सिर्फ ये ना कहें कि दांत साफ करो, बल्कि खुद भी इस आदत की मिसाल बने। और एक और बहुत अहम बात कि दांत में दर्द ना होना इस बात की जमानत नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसलिए रेगुलर डेंटल चेकअप बेहद मुफीद है। डेंटिस्ट सिर्फ दर्द का इलाज नहीं करता, बल्कि बाज़ मसाइल को इब्तदाई मरले में ही शनाख्त कर लेता है। मुंह की सेहत और जिस्मानी सेहत के दरमियान ताल्लुक भी बहुत अहम है। WHO के मुताबिक ओरल हेल्थ मजमूई हेल्थ का एक हिस्सा है, और मुंह की बीमारियों के कई खतरे जो हैं वो सामने आते हैं। तो उसमें बहुत सी ऐसी हैं जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के जो खतरात हैं वो हो सकते हैं। अब ये है कि हम अगर अपनी रोज़मर्रा की जो आदतें हैं उन पर गौर करें, तो क्या दांतों के दरमियान सफाई का हम ख्याल रखते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, या फिर क्या आप स्मोकिंग या तंबाकू इस्तेमाल करते हैं? क्या कई सालों से आप डेंटिस्ट के पास गए हैं या नहीं? अगर जवाब हाँ है तो आज ही अपनी ओरल हेल्थ को अपनी हेल्थ रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। अगर आपको मुंह में ऐसा जख्म हो जो ठीक ना हो रहा हो, गैर मामूली गांठ महसूस हो, निगलने में मुश्किल हो, या कोई दूसरी मुसलसल तब्दीली महसूस करें, तो खुद इलाज करने की बजाय जो हेल्थ प्रोफेशनल है उनसे मशवरा कीजिए। लिसनर्स, खूबसूरत मुस्कुराहट यकीनन अच्छी बात है, लेकिन सेहतमंद मुंह सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। यह हमें खाने, बोलने और आराम से जिंदगी गुजारने में मदद देता है। तो आज का बहुत ही आसान सा जो मैसेज है कि दिन में 2 मरतबा दांत साफ कीजिए, मीठे का इस्तेमाल महदूद कीजिए, गम्स की अलामत को नज़रअंदाज ना कीजिए, और डेंटल चेकअप को अपनी सेहत का हिस्सा बना लीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत सिर्फ जिस्म के अंदर की चीज़ नहीं है, सेहत हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। योर हेल्थ मैटर्स।
1: ने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, फायरवर्क्स या फायर क्रैकर्स को लाइसेंस के बगैर यूज करना या अपनी कस्टडी में रखना कानूनन मना है, और ये एक जुर्म है जो आर्टिकल नंबर 18 ऑफ लॉ नंबर 7 ऑफ 2020 ऑन फायरवर्क्स के तहत पनिशेबल है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स फायरवर्क्स को बिना इजाजत इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना हत्ता के जेल तक की सजा लग सकती है। आपकी अवेयरनेस और कानून की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए भी बेहद अहम है। फायरवर्क्स जाहिरी तौर पर फन लगते हैं, लेकिन बिना कंट्रोल के वो पब्लिक सेफ्टी रिस्क भी बन सकते हैं, इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रॉपर लाइसेंस लेना लाजमी है। वजारत दाखिला का कहना है कि कानून का एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हम अपनी कम्युनिटी को सेफ और रिस्पॉन्सिबल बना सकें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं हूं दुहा वाला कबीर FM 107 पे and yet another update. देखिए टेक अपडेट में मैंने आपसे वादा किया है, मैंने आपको वेबसाइट्स बहुत सारी बताई है, बहुत सारी भाई, कभी कभार तो मैं भूल जाता हूँ कौन कौन सी बताई है. लेकिन अब हम बात करेंगे मेन स्ट्रीम टेक और गैजेट्स की जो खबरें आ रही है मार्केट में, किस तरीके से डेवलप हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, सब चीजों के बारे में कवर करेंगे ताकि आप बिल्कुल अपडेटेड रहें. तो मैं बात करने वाला हूँ VR ग्लासेस के बारे में. देखिए बड़ा ही पेचीदा टॉपिक है ये पेचीदा इसलिए भी है क्योंकि कई मर्तबा इसको लेके लोग जो है इतने ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं कि वो नजरअंदाज कर देते हैं इसके यूसेज को. मैं समझाता हूँ क्या कहने का मतलब है. आपको लगता होगा भाई VR आ जाएगा, मजा आ जाएंगे अंटिल और अनलेस यू आर ओके विद द प्राइस टैग. चलो प्राइस टैग भी हटा देते हैं, आपने ले लिया, लेकिन उसके बाद अब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मैं खुद बताता हूँ आपको. मैंने लिया था PlayStation का VR एंड वो अभी भी पड़ा हुआ है, उसका इतना इस्तेमाल नहीं है एंड आई एम रिग्रेटिंग काइंड ऑफ कि मैंने क्यों इस पे इतने खर्च कर दिए. दूसरी चीज जो आपने अगर नहीं देखी तो आपको बता दूं बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं एंड मेडिकली प्रूवन है कि बच्चों को VR नहीं देना चाहिए. सो इफ यू आर गिविंग देम VR तो थोड़ा आप जरा बच के रहिए बिकॉज ये इफेक्ट करता है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. तो प्लीज बी श्योर कि आपका बच्चा अगर आपसे कह रहा है कि मुझे तो VR चाहिए VR नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. बड़ा होने के बाद दिलाने की वाली बात दूसरी खुद ही ले लेगा वो, मगर उससे पहले मत दीजिए बिकॉज बहुत बहुत बहुत फर्क पड़ता है इससे. एंड VR की बात हो ही गई है तो मेन स्ट्रीम मीडिया में जब एप्पल विजन प्रो लॉन्च हुआ था आपको याद है, उसकी कीमत इतनी ज्यादा रखी गई कि लोगों ने कहा कुछ तो होगा, एप्पल है तो कुछ तो होगा ही, इतना महंगा है लोग बड़े बड़े लोग ले रहे होंगे. लेकिन बड़े बड़े लोगों को भी एप्पल विजन प्रो लेने की बात कोई फायदा नहीं हुआ. पीपल आर लाइक ये क्या है यार, ये मतलब अपने प्राइस टैग के हिसाब से नहीं है, इट्स अ लिटिल टू ओवरवेलमिंग. जिस हिसाब से वो था उस हिसाब से 2,000-3,000 रियाल 4,000-5,000 रियाल थोड़ा कम होता तो बढ़िया रहता है. एप्पल कुड हैव डन इट बेटर, कुड हैव डन इट बेटर वाला जो टैग है वो एप्पल पे लग गया और एप्पल ने लिटरली मेंशन करना बंद कर दिया था एप्पल विजन प्रो को. कहीं पर आप कोई सा इवेंट उठा के देख लीजिए, दे आर नॉट इवन मेंशनिंग, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बनाया ही नहीं, एप्पल विजन प्रो को भी था ही नहीं. बट रिसेंटली एप्पल ने बिल्कुल सुबड़ी में चुपके से अपनी इस एंट्री को मिक्स्ड किया है और उसे मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश करी है स्पेशल कंप्यूटिंग की के जरिए. तो स्पेशल कंप्यूटिंग कंज्यूमर एंटरप्राइजेस स्पेसेस में अपनी जगह बनाई है एप्पल ने और उन्होंने अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन माइक्रो ओएलईडी स्क्रीन्स जो हैं, डिस्प्लेज, आई ट्रैकिंग, हैंड जेस्चर, विजन प्रो में और सुधार किया जा रहा है. हालांकि आपको किसी इवेंट पर ही नजर आएगा बट दे आर ट्राइंग टू ब्लेंड डिजिटल कॉन्टेंट इन टू फिजिकल इन्वायरमेंट. वो उसे अभी उसका प्राइस चेक कम नहीं कर रहे, वट दे आर डूइंग इज दे आर ट्राइंग टू मैच द प्राइस टैग जो ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है. ये भी एक अलग किस्म का चलन है, वो जानते हैं कि अभी सस्ता करेंगे तो लोग बोलेंगे देखा हमने कहा था इतना अच्छा है नहीं. सो एप्पल क्या कर रहा है कि उसकी कीमत के हिसाब से उसको वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है. आई डोंट नो इफ यू हैव चेक्ड एप्पल विजन प्रो अभी तक, पर अगर आपने नहीं चेक किया है अभी उसमें सुधार आने के बाद इट इज गुड. पर क्या अभी भी एक आम आदमी के लिए है? Answer is no, I don't think so. अभी भी एक आम आदमी इसको ऐसे यूज करे जैसे एप्पल का फोन यूज करता है वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा. बट तो आने वाले इवेंट में लगता है कि एप्पल जो है अपने एप्पल विजन प्रो को शायद मेंशन करे और इस बार वो जब मेंशन करेगा तो शायद प्राइस टैग को भी थोड़ा सा लोअर करे. हालांकि मुझे ये प्राइस टैग लोअर होता हुआ नजर नहीं आ रहा बट दे माइट अटैच इट और क्या कहते हैं उसको इंजेक्ट करे बाकी एप्स के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं कि ड्रॉबैक है एप्पल प्रो विजन में बट डेफिनेटली प्राइस टैग बहुत हाई है. आपको क्या कहना है एप्पल विजन प्रो पे अगर सस्ता हो जाएगा क्या आप लेंगे तो ये बताइएगा. 666-22-107 नंबर है हमारा और सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar FM107 Qatar. फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड दिल से देसी.
1: Number one hits music station.
2: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है. कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है. कभी नए सपने दिखाता है. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो. चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज. डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास.

0: सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी गल्ला ते तू लड़दा है।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में हम बात करते रहते हैं। चाहे वो टिकट के बारे में स्कैम हो रहे हों, पेड क्विज के बारे में स्कैम हो रहे हों, डिस्काउंट वाले स्टेकेशन पार्टी वाले स्कैम हो रहे हों, या फिर फ्री में आपको कोई फर्नीचर दे रहा हो सोशल मीडिया पे, उस तरह के भी अगर स्कैम हो रहे हों तो हम यहाँ पर बात करते रहते हैं और आपको एक्चुअली में आगाह करते रहते हैं। वेल, आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है फेक इवेंट टिकट के गिव अवे स्कैम। यार, अगर आपको कोई टिकट देगा किसी बड़े इवेंट का, क्या आइए और ले जाइए फ्री में, तो आप तो बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे। लेकिन ये फ्री का टिकट एक स्कैम हो सकता है। जब भी कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है शहर में, तो उसके बारे में बड़ा बज होता है, लोग बात करते हैं, सोशल मीडिया पे इसके पोस्ट चलते हैं, वेरीफाइड जो पेज होते हैं वो भी इसके फ्लायर डाल रहे होते हैं, है ना, रेडियो पे अलग अलग जगह बातें हो रही होती हैं, पोस्टर लगे होते हैं, और ये बड़े बड़े सिंगर लेकर आते हैं, तो ये पोस्टर जो लगे होते हैं इसमें सिंगर का पोस्टर होता है, कॉन्सर्ट होता है, म्यूजिक फेस्टिवल है ना, वर्ल्ड कप जैसे बड़े बड़े क्रिकेट मैचेस हैं, तो लोगों में टिकट्स को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज होता है, क्योंकि इनके टिकट्स आसानी से मिलते नहीं है। स्कैमर्स एक्चुअली इनका फायदा उठाते हैं, इस तरह के कॉन्सर्ट का, क्रिकेट मैचेस का, जहां पर टिकट बहुत आसानी से नहीं मिलता है, उसका फायदा उठाते हैं, एक्साइटमेंट और जज्बात का फायदा उठाते हैं। वो सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पर फेक एड्स और पोस्ट वगैरह चलाते हैं, जहां पर फ्री VIP पासेस या फ्री प्रीमियम टिकट्स गिव अवे का लालच देते हैं। इनका तरीका बाकी स्कैम से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये आपसे तुरंत पैसा नहीं मांगते हैं, ये चालाकी करते हैं, ये आपको एक लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं, जो दिखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार ये तो टिकट की एक्चुअली में कोई लिंक है, ये ऑफिशियली टिकटिंग वेबसाइट है, जहां से किसी वर्ल्ड कप की, किसी कॉन्सर्ट की, किसी म्यूजिक फेस्टिवल की टिकट मिल जाएगी। अपना फ्री प्राइस क्लेम करने के लिए ये आपसे एक फॉर्म भरने को कहते हैं थ्रू लिंक, जिसमें आपकी बहुत सेंसिटिव और प्राइवेट डिटेल्स भी मांगी जाती है, जैसे कि आपका पूरा नाम, घर का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, और यहाँ तक कि अपने ईमेल या अकाउंट के क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड्स भी कहते हैं। इसके साथ ही वो आपसे कहते हैं कि इस लिंक को अपने 5 से 10 दोस्तों को भेज दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कहीं और सोशल मीडिया पे, तभी टिकट जो है वो अनलॉक होगा। जैसे ही आप भेजेंगे 10 लोगों को, ये अनलॉक हो जाएगा, टिकट आपको मिल जाएगा। ऐसा करके वो आपको ना चाहते हुए भी किसी तरह इस फ्रॉड का हिस्सा बनने के लिए कोशिश पूरी कर रहे होते हैं और वो फंसा देते हैं। एक बार जब आप अपनी सारी डिटेल्स उन्हें दे देते हैं तो कोई टिकट वाकई में आती नहीं। स्कैमर्स आपके इस डेटा का यूज करके आपकी ईमेल्स हैक कर लेते हैं, और कई बार एक्चुअली में टिकट आती है, सारी डिटेल्स होती हैं उसमें, लेकिन एक्चुअली में कोई मतलब नहीं होता। मिसाल के तौर पे ABCD मैं लिख दूं किसी टिकट का ID नंबर, और फिर उसमें सीट नंबर अलाना फलाना डाल दूं, और वो आपको सोशल मीडिया पे या फिर आपके व्हाट्सएप पर भेज दूं, तो इससे गारंटी थोड़ी हो जाती है कि आपको टिकट मिल गया। अगर मैं किसी ओरिजिनल वेबसाइट के थ्रू कहीं पेमेंट करूंगा तो मुझे वो जो आईडी या वो टिकट मिलेगा या टिकट का आईडी मिलेगा वो कंफर्म होता है, वो सही होता है। लेकिन आइडेंटिटी थेफ्ट करके भी आपको स्कैम किया जा सकता है। कई बार ये टिकट भेज देते हैं लेकिन उस टिकट का कोई मायने होता ही नहीं है। खैर, अगर आपसे ये सारी डिटेल मांगी जा रही हो, जिसमें वो आपसे पूरा नाम, घर का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर मांग रहे हो, तो आपको चिंता करनी चाहिए। आपके बैंक अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं या आपके नाम पर फ्रॉड लोन्स और फेक आईडीज बनाकर

0: आइडेंटिटी थेफ्ट को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन बचने के तीन आसान तरीके हैं। ऑफिशियल वेरीफाइड हैंडल्स चेक करें। अगर कोई बड़ी कंपनी या इवेंट ऑर्गेनाइजर सच में गिव अवे कर रहे हैं तो वो हमेशा अपने ऑफिशियल वेबसाइट या ब्लू टिक वाले वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही इसकी अनाउंसमेंट करते हैं। दूसरा तरीका है सेंसिटिव इन्फो शेयर करने से बचें। अगर कोई भी आपसे कहे, इवन आपसे अगर ऑफिशियल वेबसाइट में भी इतनी सारी डिटेल्स मांगी जा रही है, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल बचना चाहिए। उसके अलावा काउंटडाउन टाइमर्स और प्रेशर से बिल्कुल ना डरे। इस तरह के स्कैमर्स जो होते हैं, जब आपको टिकट का लालच देते हैं तो वो आपके सामने 2 मिनट लेफ्ट, 1 मिनट लेफ्ट, है ना, 5 मिनट लेफ्ट, ये करा करते हैं। तो इस तरह के काउंटडाउन से बचिए। किसी भी तरह से कोई भी टिकट खत्म नहीं हो रही, बहुत टाइम होता है इन सब के टिकट्स में, बहुत इजीली बिकती भी नहीं है टिकट, सच्चाई तो ये है। और अगर आपसे जरूरत से ज्यादा डिटेल्स मांगी जा रही हो तो आपको खतरे की भनक लग जानी चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज के इस स्कैम के बारे में समझ आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: It's Kaz on the beat.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे टेनिस खिलाड़ी के बारे में। मॉडर्न टेनिस स्टार हैं और जबरदस्त खिलाड़ी हैं एलेना रिबाकिना। जी हां दोस्तों, एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान की हैं और आज के दौर में उन टेनिस स्टार्स में वो बिलोंग करती हैं जो कि अपनी कंसिस्टेंसी, पावरफुल गेम और प्रेशर मोमेंट्स में कंपोजर की वजह से वर्ल्ड टेनिस में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रिबाकिना ने कम उम्र में ही प्रोफेशनल टेनिस की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे अपने इस गेम को इतना मजबूत बनाया कि आज वो विमेन्स टेनिस की एलिट प्लेयर्स में शुमार होती हैं। रिबाकिना की टेनिस जर्नी रशिया में शुरू हुई जहां उन्होंने जूनियर लेवल पर टेनिस सीखना और कॉम्पिटिटिव मैचेस खेलना शुरू किए। बाद में उन्होंने कजाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का फैसला किया जो उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित होता है। कजाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए उन्होंने इंटरनेशनल सर्किट पर अपनी पोजीशन मजबूत की और कंट्री को भी विमेन्स टेनिस में एक नई पहचान दिलाई। अगर उनकी करंट फॉर्म और रैंकिंग की बात की जाए तो रिबाकिना इस वक्त WTA रैंकिंग्स यानी विमेन्स टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग्स के मुताबिक वर्ल्ड नंबर 2 पर हैं। ये उनके करियर का हाईएस्ट रैंकिंग लेवल भी रहा है। टॉप रैंकिंग तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि रिबाकिना ने सिर्फ एक या दो टूर्नामेंट्स में नहीं बल्कि लंबे अरसे तक कंसिस्टेंटली वर्ल्ड क्लास टेनिस खेली है। अगर उनकी करंट फॉर्म और रैंकिंग की बात की जाए तो रिबाकिना इस वक्त WTA रैंकिंग से मुताबिक नंबर 1 खिलाड़ी हैं। शी इज द टॉप मोस्ट रैंक प्लेयर इन द टेनिस वर्ल्ड इन विमेन्स टेनिस। ये उनके करियर का हाईएस्ट रैंकिंग लेवल भी रहा है और टॉप रैंकिंग तक पहुंचना दोस्तों इस बात का सबूत है कि रिबाकिना ने सिर्फ एक या दो टूर्नामेंट्स में नहीं बल्कि लंबे अरसे तक कंसिस्टेंटली वर्ल्ड क्लास टेनिस खेली है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ग्रैंड स्लैम स्टेज पर आई। रिबाकिना ने विंबलडन चैंपियनशिप 2022 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। उस टूर्नामेंट में उन्होंने प्रेशर फिल्ड मैचेस में रिमार्केबल कंपोजर दिखाया और फाइनल में ओन्स जबोर को हराकर अपना पहला मेजर टाइटल हासिल किया। दैट वाज द स्टार्टिंग जर्नी ऑफ एलेना रिबाकिना इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल टेनिस। विंबलडन की फतेह ने उन्हें ग्लोबल टेनिस ऑडियंस के सामने एक जेन्युइन ग्रैंड स्लैम चैंपियन के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। इसके बाद रिबाकिना ने अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाया और 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीतकर अपनी ग्रैंड स्लैम कलेक्शन में दूसरा मेजर ऐड किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन की जीत ने ये साबित किया कि विंबलडन की कामयाबी सिर्फ एक एक्सेप्शनल रन नहीं थी बल्कि रिबाकिना कंसिस्टेंटली ग्रैंड स्लैम लेवल पर टाइटल जीतने की सलाहियत रखती हैं। एक लेवल छोड़ दिया उन्होंने कि मैंने विंबलडन इसलिए जीता नहीं कि बिकॉज मैं टैलेंटेड हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद उन्होंने ये साबित किया कि मेरा जो विंबलडन टाइटल था दैट वॉज नॉट जस्ट बाई फ्लूक, बस एम ही चांस नहीं लिया था और जीत गया। दैट वॉज अ कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी इज द की वर्ड टू डिफाइन एलेना रिबाकिना। रिबाकिना का प्लेइंग स्टाइल उनकी सबसे बड़ी पहचान है। उनका सर्व विमेंस टेनिस के सबसे डेंजरस वेपन्स में से एक माना जाता है। वो पावरफुल फर्स्ट सर्व्स के जरिए ओपोनेंट्स पर शुरू से ही प्रेशर बनाती हैं और शॉर्ट पॉइंट्स जीतने की कोशिश करती हैं। उनकी हाइट और रीच भी उन्हें सर्व और कोर्ट कवरेज में फायदा देती है। अच्छा, सर्विस यानी सर्व के साथ साथ उनका बेस लाइन गेम भी बहुत पावरफुल है। रिबाकिना ग्राउंड स्ट्रोक्स को डेप्थ और पेस के साथ हिट करती हैं, खासतौर पर फोरहैंड और बैकहैंड दोनों विंग से वो ओपोनेंट को डिफेंसिव पोजीशन में धकेल सकती हैं। बहुत डिफिकल्ट है उनको खेलना। उनका गेम सिर्फ पावर पर डिपेंड नहीं करता है, वो रैलीज को समझने और सही वक्त पर अटैक करने की सलाहियत भी रखती हैं। रिबाकिना की एक और खास क्वालिटी प्रेशर मोमेंट्स में उनका काम रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। ग्रैंड स्लैम मैचेस में जब स्कोरबोर्ड टाइट हो और प्रेशर अपने पीक पर हो तब भी वो अक्सर अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखती हैं। ये मेंटल स्ट्रेंथ उनके गेम को और डेंजरस बना देती है। करियर के दौरान इंजरीज और डिफिकल्ट पीरियड्स ने भी रिबाकिना का टेस्ट लिया।
लेकिन हर सेटबैक के बाद उन्होंने कमबैक करने की कोशिश की और अपने लेवल को मेंटेन किया। मॉडर्न वुमेन्स टेनिस में कंपटीशन बहुत टफ हो गई है, जहां हर टूर्नामेंट में मल्टीपल प्लेयर्स टाइटल की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स होती हैं और इस एनवायरनमेंट में रिबाकिना का कंसिस्टेंटली टॉप लेवल पर रहना उनकी क्वालिटी को हाईलाइट करता है। आज एलेना रिबाकिना वुमेन्स टेनिस की लीडिंग कंटेंडर्स में शामिल हैं। उनका नाम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के फेवरेट्स में लिया जाता है और उनका पावरफुल सर्व, एग्रेसिव बेसलाइन गेम और काम टेम्परमेंट ओपोनेंट्स के लिए एक सीरियस चैलेंज होता है। रिबाकिना सिर्फ एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं हो, बल्कि मॉडर्न डे टेनिस की एक पावरफुल फोर्स हैं। उनकी जर्नी ये दिखाती है कि टैलेंट के साथ कंसिस्टेंसी, मेंटल स्ट्रेंथ और प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी किसी भी खिलाड़ी को वर्ल्ड स्टेज पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्टिंग कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती, आपका

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री टॉप

0: शायद लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
3: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi
4: Assalamu Alaikum aap sun rahe hain Culture Moment main hu aapki RJ Mahavish is 5 minute ke safar mein hum baat karenge Qatar ki khoobsurat saqafat riwayat aur virse ki yahan har rasam har libas har khane aur har mehman nawazi ke peeche एक प्यारी सी कहानी होती है आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें महसूस करें और इस वर्षे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें कतर एक जजीरा नुमा मुमलिकत है जिसके चारों तरफ समंदर फैला हुआ है इसीलिए समंदर पुराने और नए कतर की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहा है मछली और दूसरी समंदरी गजाएं सिर्फ खुराक नहीं बल्कि साहली बस्तियों की याद कश्तियों के सफर और खानदानी रिवायत से जुड़ी हुई विरासत हैं। कदीम जमाने में कतर के कई लोग समंदर से अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करते थे मछेरे सुबह के वक्त कश्तियां लेकर निकलते और दिन भर के शिकार के बाद मछली झींगा या दूसरी समंदरी गजाएं लेकर वापस आते उनकी मेहनत साहली बाजारों घरों और दावत के दस्तरखान से सीधा ताल्लुक रखती थी समंदर से मिलने वाली गजा को तैयार करने के लिए सादा और आसान तरीका इस्तेमाल किया जाता था मछली को साफ करके नमक मसालों और कभी लीमू के साथ तैयार किया जाता उसे भुना तला या चावल के साथ पकाया जाता आज भी मछली के साथ चावल सलाद और तहीना पेश करना गल्फ के कई घरों में पसंद किया जाता है कतरी खानों में मछली की बहुत सी अकसाम इस्तेमाल होती हैं। हामूर यानी ग्रोपर उनमें एक मशहूर किस्म है इसके अलावा झींगा और दूसरी मुकामी समंदरी अशिया भी खाने का हिस्सा बनती हैं। हर किस्म की मछली का अपना जायका होता है इसलिए पकाने का तरीका भी उसके मुताबिक बदल जाता है मजबूज कतर के मशहूर खानों में शुमार होता है ये खुशबूदार चावल की वो डिश है जो गोश्त मुर्गी या मछली के साथ तैयार की जा सकती है मछली वाला मजबूज समंदर और जमीन दोनों विरसों को एक ही दस्तरखान पर जमा कर देता है इसमें चावल के साथ मसालों का तवाजुन मछली की नजाकत और कभी खुश्क लाइम की खुशबू मिलकर एक यादगार जायका पैदा करते हैं सालूना भी एक रिवायती डिश है जिसे घरों में मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है ये सब्जियों और मसालेदार शोरबे पर मबनी होती है इसमें मछली भी शामिल की जा सकती है हर घर का अपना अंदाज होता है कहीं कोई ज्यादा मसाला पसंद करता है और कहीं लहसुन या टमाटर का जायका नुमाया होता है इसी इख्तलाफ में घरेलू पकवान की खूबसूरती छुपी होती है रिवायती तौर पर मछली सिर्फ घर के खाने तक महदूद नहीं थी मेहमानों के लिए तैयार की जाने वाली दावत में भी समंदरी गजा को इज्जत की निगाह से देखा जाता था एक बड़े प्लेटर सब लोगों के सामने रखा जाता और तमाम अफराद मिलकर खाते इस तरह खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं रहता बल्कि गुफ्तगू कुर्बत और अपनायत का मौका बन जाता रमजान और ईद जैसे मौके पर भी मुख्तलिफ घरों में समंदरी खाने तैयार किए जा सकते थे खानदान अपनी सहूलत रिवायत और दस्तियाबी के मुताबिक मछली या झींगे की दावत का हिस्सा बनाते मेहमान नवाजी में असल अहमियत सिर्फ खाने की किस्म की नहीं होती बल्कि इसे मोहब्बत और दिल खोलकर पेश करने की होती है आज कतर में समंदरी गजा की दुनिया बहुत वसी हो चुकी है मछली बाजारों से लेकर रेस्टोरेंट्स तक لوگ اپنی پسند کے مطابق گرلڈ، فرائیڈ یا مختلف عربی انداز میں تیار کی ہوئی فش خرید سکتے ہیں۔ پرانے ذائقوں کو جدید پکوانوں اور نئے انداز کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ترقی اور تبدیلی کے باوجود ایک بنیادی قدر برقرار ہے، سمندر سے ملنے والی نعمت کی قدر۔ مچھلی کھانے کے ساتھ ایک پوری تاریخ جڑی ہوئی ہے، اس میں مچھیروں کی محنت، پرانے بازاروں کی رونق، کشتیوں کے سفر اور گھر کے دسترخوان کی گرماہٹ شامل ہے۔ سمندری غذا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قطر کی پہچان صرف ریگستان سے نہیں بنی، سمندر نے بھی اس ملک کی زندگی، تجارت اور ثقافت کو شکل دی ہے۔ جب ایک خاندان مچھلی اور چاول کی ڈش کے گرد جمع ہوتا ہے تو وہ صرف کھانا نہیں کھا رہا ہوتا، بلکہ اپنی کل وراثت کا ایک حصہ دوبارہ محسوس کرتا ہے۔ یہی قطری سمندری کھانوں کی اصل خوبصورتی ہے، سادہ اجزاء، گہری روایت اور ایسے ذائقے جو نسلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش، اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देखिए।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड कबीर जी बन गए हैं साइंटिस्ट, क्योंकि बॉस ने बोला एक्सपेरिमेंट करो बेटा, साइंस में और जागरूकता जागेगी। तो मैं ना सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी की कैंडल को जला रहा हूं, मगर मेरी कोशिश है ये कैंडल मशाल में तब्दील हो, सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं बल्कि औरों के भी, जो बच्चे सुन रहे हैं या सुनेंगे इंशाल्लाह, या आप जो बड़े सुनेंगे और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। आई एम प्रिटी श्योर आपके अंदर का जो साइंटिस्ट कहीं छुपा बैठा है वो जागेगा जरूर। दिस इज जूनियर साइंटिस्ट। आज का जो एपिसोड है बड़ा ही खास है, क्योंकि आज एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होने वाला है जो आपने बहुत दफा वीडियो में देखा, बहुत दफा देखा है, लोग ये करते ही रहे हैं भाई ये, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है ही इतना कमाल का और आपको बहुत कुछ सिखा देता है। सिंपल सिंपल चीजें जो आपके अराउंड होती है, जिनमें साइंस होती है एक्चुअली में, बट यू टेंड टू जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है ये तो ऐसे होता है, यूं होता है, और आप अपनी थ्योरी बना लेते हैं। मगर आप एग्जैक्ट थ्योरी अगर जानेंगे तो आप उतने ही फैसिनेट होंगे कि सुभान अल्लाह, ये जो पूरी दुनिया है, एक एक एलिमेंट, एक एक चीज, एक एक पार्टिकल किस तरीके से फंक्शन करता है, ये अपने आप में किसी मिरेकल से कम नहीं। क्योंकि हमारे सामने हो जाता है, हल्के में हो जाता है, तो हम हल्के में ले लेते हैं इसको, हाँ ये तो ठीक है, हो जाता है, बट वी डोंट रियलाइज द डेप्थ ऑफ इट। इसकी जो डेप्थ है जिसमें साइंस छुपी हुई है वो बहुत बहुत कमाल की है। तो दुनिया में आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सब में साइंस चल रही है। आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, इसमें भी एक साइंस है। अब इसे एक्सपेरिमेंट में आपको घर आके तो नहीं कर सकता, मगर इतना है कि एक एक्सपेरिमेंट आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, जो आज हम करेंगे, एंड देन यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। आप करके उन्हें बताएं एक्सपेरिमेंट के ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा क्यों होता है। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस नाम से हर जगह मौजूद है, प्लीज जाइएगा इन पेजेस पर एंड फॉलो कीजिएगा। इन केस अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हुए वीडियो बनाते हैं तो हमें जरूर टैग कीजिएगा, वी वुड लव टू हैव यू ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। एंड जी मैं जी प्रोफेसर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि आपको नंबर दूं, पास फेल नहीं करेंगे भाई, सिर्फ ग्रेडिंग नंबर देंगे आपको, ए प्लस तक ठीक है, मैं सबको ए प्लस देंगे, पास कर देंगे। आप वीडियो तो बनाओ, एक बार वीडियो बनाओ, टैग करो एंड लेट मी नो। दिस इज जूनियर साइंटिस्ट। कुछ देर में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे जिसे आपने कई मर्तबा देखा होगा, इनकी वीडियोस बनते रहते हैं, बट यू हैव नेवर ट्राइड इट एट होम, स्पेशली विद आवर किड्स, जो हमें करना चाहिए। तो इस क्यूरियोसिटी की कैंडल को कुछ देर में जलाएंगे, आपने जाना नहीं। मैं हूं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे, दिल से देश।

अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड राइट नाउ जूनियर साइंटिस्ट में एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं बढ़िया सा। ये एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे वीडियोस हैं इसके, अलग अलग तरीके से लोगों ने बनाए, और आज भी हम एक वीडियो नहीं, एक इस आइडिया को हम एक्चुअली में घर में ट्राई करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि इस एक्सपेरिमेंट में, जो बहुत सारे वीडियोस में, इसमें कैंडल जो होती है वो बुझ जाती है एक ग्लास ऊपर रखने की वजह से, और पानी जो नीचे का है वो राइज करता है, चढ़ने लगता है ग्लास के अंदर। पर कभी सोचा कि ऐसा होता क्यों है? आज हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे, विल स्टिक एंड सारे एविडेंस को हम एक साथ स्टिक करके फिर हम इसके पीछे की साइंस को जरा समझेंगे। अब जरा फर्ज कीजिए कि एक कैंडल है जो जल रही है अच्छी खासी, उसकी लौ जो है वो डांस कर रही है, प्रॉपर डांसिंग चल रही है, हिप हॉप कर रही है उसकी लौ जो है, बिल्कुल झूम कर। अब इसके ऊपर आप एक क्लियर ग्लास रखें, इसे कवर कर दें एकदम। स्लोली स्लोली जो ये लौ जल रही है उसकी, ये मोमबत्ती एकदम से डिम होते होते बुझ जाएगी, और इसके नीचे अगर पानी रखा हुआ है तो वो धीरे धीरे स्टिल वाटर अंदर की तरफ ग्लास की राइज होना शुरू हो जाएगा। ये किसी मैजिक से कम नहीं लगता, बट आज हम अनरेवल करेंगे, बड़ा सही वर्ड है ये, अनरेवल करेंगे इसके पीछे की साइंस, और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, प्रेशर एंड एयर। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स इस पर बहुत बहुत असर डालते हैं। तो मटेरियल्स क्या क्या चाहिए आपको? मटेरियल में आपको चाहिए एक तो कैंडल लाइट चाहिए, मोमबत्ती चाहिए आपको, ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए, ठीक ठाक मतलब जलती हो जलने वाली कैंडल होनी चाहिए। आजकल बड़ी मुश्किल है कैंडल, लेकिन मिल जाती है, फैंसी भी चलेगी, आजकल फैंसी मिलेगी वैसे आपको। इसके अलावा एक शैलो सी प्लेट चाहिए आपको, या डिश हो चलेगा, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा पानी चाहिए, और एक क्लियर ग्लास चाहिए या जार चाहिए जो इतना बड़ा हो कि उसके अंदर कैंडल, अगर उसे ढके तो कैंडल अंदर चली जाए। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, इतना छोटा ग्लास भी नहीं होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ जस्ट फॉर प्रिकॉशन। इसके अलावा ऑफकोर्स जलाने के लिए आपको मैच और लाइटर, ये चाहिए चाहिए, और एक ट्रे जरूर चाहिए, वेरी वेरी वेरी वेरी यूजफुल। अब यहाँ पर सब कुछ सेफ है, बहुत आराम से मिल जाएगा, बस आपको केयरफुल रहना है।

सिक्योर है, बढ़िया तरीके से रखी हुई है, क्योंकि क्या है अगेन सेफ्टी मेजर्स, आप माशाल्लाह मुझसे ज्यादा सही नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी। तो आपने ये कैंडल ट्रे पे रखी, उसके बाद आपने जला दी। अभी जो ट्रे है इसमें आपको एक थिन लेयर ऑफ वाटर इसमें डालनी है, फ्यू मिलीमीटर्स प्लेट के ऊपर, ज्यादा डीप भी नहीं, इतना गहरे भी नहीं, कैंडल उसमें डूबी हुई है, थोड़ा सा उसमें डालना है। अब इतना हो कि बस वो मूव कर रहा है पानी जो है, इतना ना हो कि छलके, मगर इतना हो कि इस ट्रे में जो मूव करता हुआ होना चाहिए। कैंडल आपने जला दी केयरफुली प्लीज, अगेन कंट्रोल एनवायरनमेंट, और अब आप देखेंगे कैंडल जो है वो ऑक्सीजन को का यूज कर रही है एनवायरनमेंट के, और जलना शुरू हो चुकी है। अब जब कैंडल बिल्कुल भपारा मार रही है भाई साहब, जल रही है बढ़िया करके, तो उसको अब आपको कवर करना है उस ग्लास से जो मटेरियल मैंने बोला। तो आपने एक ग्लास लिया जिसके अंदर ये मोमबत्ती समा सकती है, तो उस ग्लास से जेंटली, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है, जेंटली ये ग्लास को कैंडल के ऊपर धीरे धीरे नीचे लाना है आपको, और एंड में वो ग्लास प्लेट के ऊपर आ जाएगा, ट्रैप कर देगा मोमबत्ती को और उसकी फ्लेम को अंदर। अब यहाँ पे आप पॉज कीजिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे एक मैजिक आपकी नजरों के सामने। तो ग्लास के अंदर कुछ चीजें होंगी, एक ये जो फ्लेम है वो धीरे धीरे कम होती होती, डिम होती होती एकदम से बंद हो जाएगी, चली जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन चला गया। और ऑलमोस्ट इमीडिएटली आप देखेंगे जो पानी है जो नीचे था ट्रे में, वो धीरे धीरे ग्लास के अंदर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये है वो मोमेंट जिसका हमें कतई इंतजार था। अब इसके पीछे की साइंस जो है वो समझने की जरूरत है, क्योंकि आपने जो देखा उसे समझाना भी तो पड़ेगा। बच्चा बोलेगा ये कैसे हुआ पापा, या मम्मा, पापा अम्मा को अब्बा को नहीं बताओ कैसे होगा। अब लगेगा ऐसा इसको देखने पे कि पानी को किसी ने पुल किया ऊपर मैजिकली। अब कुछ चीजें इसमें काम करती है, पहला है कंबशन, जिसका जो यूज करता है ऑक्सीजन को, जो कैंडल फ्लेम जल रही है, वैक्स जो उसका फ्यूल है, वो ऑक्सीजन को एयर से लेता है और फिर उसको जलाता है। जब ऑक्सीजन डिप्लीट होने लगता है, बिल्कुल मिल नहीं रहा है उसे, तो फ्लेम जो है इवेंचुअली बंद हो जाती है, और जब फ्लेम एक्सटिंग्विश हो जाती है तो जो हीट है वो ग्लास के अंदर ट्रैप हो चुकी है। अब वो ट्रैप हो चुकी है, इसके बाद होता है कि गैस जो है जो ट्रैप हो गई वो टेम्परेचर को बदलने लगती है, तो अब जो गर्म हवा उसके अंदर है वो एक्सपेंड हो रही है और अपनी जगह बना रही है, पैर फैला रही है, जैसे आप बिल्कुल बिस्तर बोलते हैं सोने का इंतजार कर रहे हैं, वो अंगड़ाई आ रही है, बहुत थके हैं, फैले लग जाते हैं बिस्तर पे, वैसे ही ये जो वार्म एयर है ये अपनी जगह बनाने लगती है। अब जब फ्लेम इट गोज आउट और एयर इनसाइड द ग्लास कूल्स रैपिडली, जल्दी जल्दी वो ठंडी होने लगेगी, तो कूलर एयर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब कि मॉलिक्यूल जो है दे टेक अप लेस स्पेस और वो एयर प्रेशर को अंदर रिड्यूस करने लगते हैं ग्लास को एकदम से। अब जो प्रेशर डिफरेंस आता है एकदम से, वो प्रेशर डिफरेंस एकदम से आने की वजह से वो वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है, जो बाहर का एयर प्रेशर है इज नाउ हायर देन द प्रेशर इनसाइड द ग्लास। अब नेचर जो है, नेचर को पसंद नहीं है प्रेशर डिफरेंसेस, बिल्कुल वो कहता ना जी ना, मेरे को नहीं पसंद है। तो जो हायर आउटसाइड प्रेशर है वो पानी को पुश करेगा ऊपर की तरफ, ग्लास के अंदर की तरफ, ताकि जो लो प्रेशर है वो भर सके, और वो बैलेंस आउट करने के लिए आपके सामने नजर आएगा कि पानी जैसे खुद चढ़ रहा है ग्लास के अंदर। अब इसमें एक और चीज है और वो है कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज ऑल्सो प्रेजेंट। सो इस कंबशन के प्रोसेस के दौरान एक प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, वो हैवी होता है ऑक्सीजन के मुकाबले, और वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है इस चेंजिंग ऑफ गैस में जो ग्लास के अंदर मिक्स हो रही है। बट जो राइजिंग वाटर है उसका रीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इट इज मेनली कॉज्ड बाय प्रेशर चेंजेस, नॉट CO2, और वो पानी को डायरेक्टली ऊपर की तरफ खींचने लगता है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन समझाने पे आएंगे तो आपको खुद भी मजा आएगा। अब अगर हम रिव्यू करें जो हमने आज सीखा, तो सिंपल आपने ये सीखा कि किस तरीके से कैंडल जो है वो बर्न करने की कोशिश करती है ग्लास के अंदर, मगर जब नहीं हो पाती, प्रेशर चेंज होने लगता है, फ्लेम चली जाती है, कूल एयर कॉन्ट्रैक्ट करती है, लो प्रेशर बना देती है ग्लास में, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया और पानी जो है इस वजह से बैलेंस आउट होने के लिए ग्लास में चढ़ने लगता है, एंड इट सेट्स अप इनटू अ पावरफुल डेमोंस्ट्रेशन ऑफ फिजिक्स। जादू नहीं है मगर ये साइंस है, ये कॉम्बिनेशन है कंबशन, गैस बिहेवियर और एयर प्रेशर का, ये तीनों भाई साहब एक्टिंग कर रहे हैं, एक्शन में आते हैं और एक्शन बोलने के साथ ही ये सारे एलिमेंट्स आपको एक साथ अपने अपने किरदार को अदा करते हुए नजर आते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस, एंड अगर आप ये घर में करते हैं, अगेन मेरे सजेशन है प्लीज कंट्रोल एनवायरनमेंट में, बिकॉज इट इंक्लूड्स फायर,
तो माँ बाप ऑब्वियसली बच्चों की मदद करें।

0: और बच्चे जो क्यूरियस रहते हैं इन चीजों को जानने के लिए उनको और इसके लिए गाइडेंस दे सो दैट दे लर्न अ बिट मोर. क्या होता है कई चीजें ना थियोरेटिकली पढ़ने में मजा नहीं आता पर जब वो सामने देखने को मिलती है ना आदमी कहता भाई साहब ये कहा था ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं. पढ़ा सब होता है बस कई मरतबा वो नजरों के सामने जब दिखता है तब मजा आता है और यही ब्यूटी है मिरेकल्स की. सुभानअल्लाह एंड दैट्स हाउ साइंस वर्क्स. तो आपको एक्सपेरिमेंट कैसा लगा आप क्या कहना चाहते हैं आप भी ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं बच्चों के साथ या टीनेजर्स के साथ सो डू लेट अस नो. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar एंड फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ फ्रॉम जूनियर साइंटिस्ट जूनियर सल्यूट है आपको. करते रहे साइंस के लिए जद्दोजहद एंड अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी. मास्सलाम.
1: जूनियर साइंटिस्ट सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: FM 107 पर हर गाना हिट,
4: हर गाना हिट,
3: हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक। राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक। और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 1:30।
3: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर,
4: एनर्जी आर
3: विद आरजे नाजिया, सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी,
4: दिल से देसी।
2: हाँ जी दोस्तों, वो कहते हैं ना आज खुश तो बहुत हो गए। ये मैं अपने लिए कह रही हूँ। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं ये कहूँगी कि आज मैं खुश तो बहुत हूँ। नहीं, ऐसा तो है कि खुश रहना ही हमें चाहिए, लेकिन हाँ, खुशी की बात ये भी है कि आपकी मुलाकात पहले हो रही है, फिर मुझसे आपकी मुलाकात हो रही है। आई मीन टू से, आज से जो है वो मैं और आप साथ रहेंगे। चलिए, कहने के लिए बस एक वीक का ही हमारा और आपका साथ है, और फिर छोटा सा ब्रेक है, एंड देन अगेन आई विल बी बैक। लेकिन हाँ, ये साथ एकदम सॉलिड वाला है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि ऑफकोर्स आपके साथ मॉर्निंग में सर्वर भाई तो जुड़ ही चुके हैं, तो वहाँ पे भी आपको मिलने का भरपूर मौका सर्वर भाई से

0: मिल रहा है एंड दैट फॉर 3 आवर्स जबकि मैं और आप हैं जस्ट फॉर एन आवर. मुझे मैं थोड़ी देर के लिए सोच रही थी कि मैं जो हूँ ये वाला अंडरले लगाऊं कि नहीं लगाऊं यू एंड आई. देन आई थॉट कि क्यों नहीं लें, आप और मैं तो हैं एटलीस्ट, सो व्हाई नॉट सेलिब्रेट विद दिस एनर्जी आर. एक घंटा आपके साथ और आपको मेरे साथ जुड़ना है, मेरा साथ देना है. नंबर्स हैं 666-22-107 और आप मुझे कॉल कर सकते हैं. नंबर है 443-443-77. और आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है, ओहो क्या ही बात है भाई, मतलब इतना अच्छा टॉपिक, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक. और आई कैन से दैट ये ऐसा टॉपिक है जिस जो हम सब के दिल के बहुत करीब है. वो कहते हैं ना कि इंसान जो है वो सफ़र से सीखता है. कभी कभी बिना घर से निकले भी आप पूरी दुनिया का सफ़र कर लेते हैं. आज के दौर में तो एटलीस्ट ऐसा है ही. लोगों की कल्चर्स, उनके ट्रेडिशंस को जानने का हमें भरपूर मौका मिलता है. वी आर लिविंग हियर इन दिस ब्यूटिफुल कंट्री कोलकाता, है ना. यहाँ पर कितनी डिफरेंट नेशनलिटीज हैं, लोग हैं, उनके अलग अलग खाने हैं, उनके अलग ट्रेडिशंस हैं, उनके अलग फेस्टिवल्स जो हैं उन्हें हमें एंजॉय करने का मौका मिलता है. तो मैं तो कहती हूँ कि ये जो कल्चर है ना, वो हमें सिर्फ और सिर्फ कपड़ों से, यू नो, या समटाइम्स सिर्फ खाने से या फिर ज़बान से या फिर नाम से नहीं पता चलता. कल्चर एक कौम की रूह होती है ना. ये हमें बताती है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे खुशियाँ मनाते हैं और कैसे मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ निभाते हैं. मैं तो ये कहती हूँ कि भाई ये जो दुनिया है ना, एक हसीन रेनबो की तरह है. हर रंग अपनी जगह मुकम्मल भी और ख़ूबसूरत भी. और जब ये रंग मिल जाते हैं तो इंसानियत का रंग जो है वो उभर के सामने आता है. तो आज हम कल्चर की बात करने वाले हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ही कल्चर पे है. बस कल्चर को जो है वो यहाँ पर एक्सप्लोर भी करेंगे और आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे. तो सबसे अच्छा कल्चर जो है वो किस मुल्क का, पहले तो ये था सवाल जिसे मैंने सोचा कि थोड़ा सा ऐसे घुमा के पूछा जाए आपसे. और क्यों ना ये जाना जाए कि कतर का, इससे इतनी प्यारी कंट्री कतर जहाँ आप और हम रहते हैं, इस कतर का कौन सा कल्चर आपको सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, ये आज आपको जुड़ना है और मेरे साथ जुड़ के मुझे बताना है. फिलहाल मेरे साथ एक कॉलर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु.
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. कैसे हैं कादिम भाई, आप खैरियत से?
1: मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत. अभी मौजू में फोन पे फोन मिल के ना, मिला के ना, हाँ. मैंने सुन लिया कि क्या मौजू है. अच्छा. माशाल्लाह आज तो आप अकेले भी हो, सरवर भाई
0: नहीं,
1: भी
0: नहीं, नहीं नहीं नहीं आज मैं आपके साथ हूँ. देखा मैंने आते ही बताया कि आप और हम.
1: अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह वो सरवर भाई तो मेरे ख्याल में सुबह चले गए.
0: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सरवर भाई सुबह सुबह आपको मिलेंगे और फिर आफ्टरनून में तो मैं हूँ आपके साथ.
1: इंशाल्लाह उनको सुबह सुबह हम तंग करेंगे इंशाल्लाह.
0: और मेरी तरफ से भी थोड़ा ज्यादा कीजिएगा.
1: नहीं नहीं ज्यादा इंशाल्लाह, कल सुबह से इंशाल्लाह मैं शुरू हो जाऊंगा.
0: नहीं वैसे वो आजकल खुद ही कह रहे हैं मैं बहुत तंग हूँ, तो फिर तंग करते हुए मतलब अच्छा नहीं लगेगा.
1: डिस्टर्ब करेंगे हम, थोड़ा और भी डिस्टर्ब करेंगे हम.
0: इतना तंग करो कि तंग भी तंग आके छोड़ दे.
1: इंशाल्लाह देख लेना इंशाल्लाह.
0: जी जी जी जी बिल्कुल.
1: अच्छा कल्चर के बारे में आप बात कर रही थी.
0: हाँ कतर का
1: कल्चर, कतर का. देखो अगर देखा जाए माशाल्लाह कल्चर, हर मुल्क का अपना अपना एक कल्चर होता है और सबसे यानी हर मुल्क का वो कल्चर अच्छा होता है.
0: बिल्कुल.
1: कतर का मैं ये बताऊं कि कतर में तो कल्चर ये कि एक ये सारे लोग जो है ऐसे मिलते हैं कि ऐसे किसी को हम लोगों को अजनबी नहीं समझते. इन्हें मतलब ये कि दूसरे मुल्क वाले नहीं समझते.
0: बहुत अच्छा कहा.
1: मैं यूएई में भी रहा हूँ और मैं यहाँ भी रहा हूँ. मैं सऊदीया भी गया हूँ, वो तो कुछ दिनों के लिए बाहर, हाल पहले 1 महीना 1.5 महीने के लिए, फिर ऐसे 10-15 दिन के लिए, फिर ऐसा. लेकिन कतर और यूएई का मैं अगर थोड़ा दे दूं तो मेरे ख्याल में कतर बहुत ज्यादा अच्छा है माशाल्लाह.
0: यहाँ के लोगों में हॉस्पिटैलिटी कही कि जिस तरह से यहाँ के लोग जो है अपनी हॉस्पिटैलिटी जाते हैं,
1: बहुत ज्यादा.
0: हाँ बहुत ही अच्छा,
1: बहुत ज्यादा है.
0: अच्छा भाई आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से कहाँ से एग्जैक्टली? खैबर पख्तूनख्वा,
1: पेशावर, पेशावर, पेशावर पख्तूनख्वा, पेशावर मर्दान से।
0: ओके,
1: तो मर्दान से, मर्दान।
0: आपके आपके अपने शहर का कोई खास ट्रेडिशन, या फिर चलिए इसको और छोटा कर लेते, कोई फैमिली का कोई यूनिक सा ट्रेडिशन जो आज भी फॉलो किया जा रहा है, बड़ा पुराना है वो, बहुत ही पुराना, लेकिन अभी भी वो आपके यू नो अभी भी फैमिली में उसको अडॉप्ट किया रखा है और वो आप अभी भी जा रहे हैं।

0: की है, तो है कोई ऐसा ट्रेडिशन? हाँ,
1: तो उसमें ये हमारे पख्तूनों में ये एक हम लोग हुजरा बोलते हैं उसको,
0: हुजरा
1: मस्जिद. अच्छा? के साथ हुजरा एक ऐसे खुली जगह होती है, उसमें दो कमरे होते हैं, जैसे एक घर होता है बड़ा और उसमें दो या कमरे या तीन कमरे होते हैं, उसमें एक बरामदा भी बना है, सहन भी बड़ा रहता है. ये मस्जिद के बिल्कुल साथ ही बनाते हैं. अच्छा? उसकी वजह ये है कि वो हुजरे में नमाज पढ़ के जब ये सब जमा हो जाते हैं हुजरे में, वो दिन भर के जो हालात होते हैं उस पर एक एक किस्म के ये होता है ना कि जो हालात हाजरा का जो प्रोग्राम होता है सेम ऐसे सब अपना अपना वो पेश करते हैं कि आज ये हुआ.
0: मतलब ये आप कह रहे थे यहाँ पे कतर में मजलिस है और वो बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, मशवरा देते हैं, हालचाल सेम लाइक दैट इज हुजरा.
1: वही बात.
0: Nice.
1: सेम वही उधर भी है, उसको भी हम लोग पश्तो में हुजरा बोलते हैं.
0: ओह वेरी गुड.
1: और
0: अच्छा.
1: वो हुजरे में आपको होका मिलेगा, उसमें रबाब जो है रबाब म्यूजिक जो वो मिलेगा.
0: अच्छा.
1: वो उसमें एक ये जो मटका होता है ना गड़ा जो पानी का वाला था, उसपे एक रबड़ बांध के वो तबले का काम करता है वो.
0: अच्छा.
1: वो मिलेगा आपको.
0: ओहो,
1: वो उसमें आपको पुराने जमाने के जो वो जो बेल बेल पे वो हल चलाते थे वो हल आपको मिलेगा उसमें, यानी वो सामान पूरा मिलेगा. हाँ, उसमें आपको पुराने जमाने के वो जो मटके होते हैं वो लगे होते हैं. मैं इंशाल्लाह ये बार जाके आपको एक वीडियो बना के इंशाल्लाह मैं भेजूंगा.
0: प्लीज जरूर भेजिएगा. और मैं चाहूंगी कि फिर वो हम शेयर तो नहीं एक्सप्लेन कर सके, हालांकि आपने काफी हद तक किया. देखिए ये सारी चीजें हम लोग को पता नहीं होती जो कि चलनी भी चाहिए और इनको बड़ा प्राउडली हमें प्रेजेंट भी करना चाहिए. पता नहीं क्यों हम मॉडर्न लाइफ के
1: जरूर शेयर करूंगा. जरूर शेयर करूंगा. और हमारे पश्तो के एक शायर थे अब्दुल गनी खान
0: जी,
1: उनके उनके उनके हुजरे को दारुल अमान उस टाइम बोलते थे. 1937 में उसने बनाया था हुजरा और उसने वो दारुल अमान का नाम दिया होता. इंशाल्लाह मैं खुद जाके उसमें एक वीडियो बना के आपको जरूर शेयर करूंगा कि वही रिवायत वही चीजें सब अभी भी मौजूद है जो उनके जमाने में होते थे.
0: वाओ, नाइस.
1: अगर एक दरख्त लगाया हुआ है और वो सूख गया है तो वो भी उसको कट नहीं किया हुआ, सेम उसी तरह उसी जगह पे मौजूद है. तो इंशाल्लाह चारपाइयां लगी रहती है, मेहमान आते जाते हैं. अगर एक बंदा बिल्कुल उसने सिर्फ इतना है कि एक साग भी बनाए हुए घर में और मेहमान आ गए तो वो भी लाके वो मेहमान के सामने रखेंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि भाई ये मेहमान क्यों बेवक्त आ गए, ऐसे नहीं. ये हमारा कल्चर आज भी है, पहले भी था और ये इंशाल्लाह हमेशा रहेगा.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया. थैंक यू सो मच. मेरी भी नॉलेज में इजाफा हुआ. हुजरा मुझे नहीं पता था, जो पता चला इट्स क्वाइट सिमिलर लाइक मजलिस.
1: आप सर्च कर सकती हो हुजरा और ये हमारे पख्तूनों की बहुत ये कहते हैं ना कि एक रिवायत है रिवाज है ये कि हुजरा लाजिम एक बड़े गाँव में लाजिम हुजरा रहता है.
0: जबरदस्त
1: जी.
0: बहुत
1: कोई भी आके रह सकता है कोई भी. अच्छा. यानी अगर एक बंदा रास्ते में जा रहे है परदेश ऐसे, यानी हम जानते भी नहीं और वो लेट हो गए या कुछ ऐसा नहीं है, तो वो आके उसमें रहने का इंतजाम, उसको खाने पीने का रहने का इंतजाम उसके लिए होता है उसमें.
0: नाइस, बहुत जबरदस्त. चलिए बहुत ही अच्छी कॉल आपकी. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. ख्याल रखिए भाई अपना.
1: अल्लाह
0: हाफिज. वालेकुम अस्सलाम. तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है. पाकिस्तान का एक बहुत ही यूनिक ट्रेडिशन और कल्चर जो हमारे साथ शेयर किया सैयद खादिम हुसैन ने. मैं चाहूंगी कि अगर आपका ताल्लुक किसी और कंट्री से है और वहां का कोई ऐसा यूनिक सा ट्रेडिशन, नॉट दैट ऑफ योर कंट्री, कोई आपकी फैमिली का बहुत ही पुराना यूनिक ट्रेडिशन जो आज भी फॉलो किया जा रहा है शादियों में, कोई बड़ी गैदरिंग होती है उसमें, या फिर यूं ही डे टू डे लाइफ में, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. नंबर है 666-22107. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं डायरेक्टली मुझे कॉल करना है और मुझे बताना है इस ट्रेडिशन के बारे में, देन व्हाई नॉट. नंबर है 443-443-77. यहाँ पर साथ साथ मैं कतर के कल्चर के बारे में भी पूछ रही हूँ. क्या आपको कुछ ऐसा है जो लगता है कि कतर के कल्चर के बारे में आपको सबसे ज़्यादा यू नो फैसिनेटिंग लगता है? आप इतने टाइम से रह रहे हैं, कोई चीज़ आपने पर्टिकुलरली नोटिस की एंड यू फेल्ट कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए. एक और कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कौन है मेरे साथ?
2: मैं मदद से बात कर रहा हूँ. कैसे नाजिया? मैं ठीक हूँ
0: अल्हम्दुलिल्लाह. मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से?
2: मैं ठीक हूँ, खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह. तो सर्वर भाई किधर है?
0: आपका सर्वर भाई तो सुबह पहुँच गया, ऊपर निकल गया.
2: सुबह

0: आ रहा है
1: सर के ऊपर से
0: खुश हो गया
1: नहीं मैं कहां मैं तो हमेशा ही खुश हूँ ना और आज भी खुश हूँ माशाल्लाह आप भी खुश हैं देखिए रहना चाहिए हम सबको
0: नहीं वो सुबह के टाइम में अभी शो कर रहा है
1: हाँ सुबह के टाइम में शो कर रहे हैं अभी अल्लाह का शुक्र कीजिए
0: जगह पे कर रहा है या क्या यार
1: कबीर की जगह इन्होंने छीन ली अब आपको तो पता ही है तो आगे हैं ही माशाल्लाह ताकत भी है
0: नहीं एक तो कबीर सुबह पे आता था अभी वो सर्वर ट्रांसफर हो गया क्या हो गया हमको तो यार सही मालूम नहीं
1: ट्रांसफर नहीं हुआ सर्वर लिफ्ट कर दिए गए उधर
0: अच्छा ठीक है
1: सर्वर जो है वो मॉर्निंग का शो कर रहे हैं एंड कंटिन्यू रखेंगे आई थिंक नवंबर लास्ट एंड दिसंबर तक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर
0: इंशाल्लाह आपकी तरफ आ रही है मैडम सफा मैम
1: हाँ यहाँ पे शो में फिर सफा होंगी आपके साथ क्योंकि मैं छुट्टी पे जा रही हूँ दैट्स हाउ
0: जी जी जी ये तमाम मैं गया वो सरवर भाई किधर गया तो दोनों का जोड़ी अच्छा था
1: अरे क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं मदसर जी आपकी और हमारी जोड़ी ज्यादा अच्छी है हमारे लिसनर्स और हम जो जुड़े हुए ये इम्पोर्टेंट है
0: अजय ना ये सब रिलेशन को आप लोगों का बहुत अच्छा लगता है कि आप दोनों साथ फेरते हो ना
1: अरे आपको सुकून अच्छा नहीं लग रहा क्या कितना सुकून
0: नहीं,
1: है
0: आप एक दूसरे पर जब अटैक करते हो ना ये सबसे अच्छा लगता है
1: अच्छा भाई मुझे लगा कि लोग जो है ना वो सुकून पसंद करते हैं लेकिन कुछ लोग हैं नहीं उन्हें नोक झोंक पसंद आ रही है चलिए कोई बात नहीं तो यहाँ से जारी रहेगा हाँ हाँ वो नोक झोंक जो है चलती रहेगी आप बेफिक्र रहिए अच्छा आज मैं पूछ कल्चर के हवाले से रही हूँ तो आपका पहले मुझे बताइए ताल्लुक कहाँ से इंडिया से पाकिस्तान से
0: मैं नहीं पाकिस्तान से पेशावर
1: पेशावर ओह अभी हमारे एक भाई जुड़े उन्होंने पेशावर में ही हुजरा एक बताया कि ये एक बहुत ही अच्छा यूनिक सा उनका कल्चर और ट्रेडिशन है जिसे अभी भी फॉलो किया जाता है तो आप कुछ बताना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से पेशावर के हवाले से या फिर कतर का कोई ऐसा कल्चर जो आपको पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पसंद आए
0: मुझे तो कल्चर का जो कतर का कल्चर है मुझे तो ये पसंद है जैसे सर्दी का मौसम आता है ना जो कतरी का जो लोकल लोग है वो जाते हैं यानी मसीद या ऐसी जगहों पे जाते हैं वहाँ पे खेमा लगाता है वहाँ पे जो सेटिंग करता है ये मुझे सबसे अच्छा लगता है
1: बहुत अच्छा कहा आपने ये यहाँ पे वाकई यूनिक है
0: जी जी ये कतर का सबसे यूनिक काम है क्योंकि ये कल्चर में भी आता है इन लोगों का कल्चर में भी आता है अरब लेकिन वो जो जैसे सर्दी का मौसम आता है या मसाइद में जाता है या जो कुल्ली मैदानी जैसे होते हैं वहाँ पे खेमे लगाते हैं ना ये मुझे बहुत पसंद है
1: ये आपको पसंद है नाइस ये तो वाकई बहुत यूनिक है यहाँ पे बकायदा मौसम के साथ जो है अनाउंसमेंट की जाती है कैंपिंग की यू नो और बहुत ही अच्छी तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं विंटर्स को नाइस ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छा आपने बताया थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आगे भी हम और आप जुड़ेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे जो है वो कल्चर की बात हो रही है आपको लगता है कि हाँ कोई कतर का ऐसा खास या फिर आपकी अपनी कंट्री का कोई खास ऐसा कल्चर कोई ऐसा ट्रेडिशन जो आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है तो ज़रूर मेरे साथ जुड़िए मुझे बताइए एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं हेलो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आपका नाम
2: जी मेरा नाम रियाज है
1: रियाज जी कैसे हैं आप खैरियत से
2: ठीक ठाक
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ खैरियत से हूँ तो आज का आई एम श्योर आपने टॉपिक
2: सुना है सुबह से 107 का माहौल थोड़ा सा ये प्रोग्राम थोड़ा चेंज लग रहा है
1: लग रहा नहीं हो गया है चेंज कंफर्म चेंज यही तो
2: जो जो दोपहर में शोर शराबा और सुकून नहीं था वो सुबह चला गया और वो सुबह जो अच्छा था और सुकून था वो सुबह का वो तो बिल्कुल चला गया लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने एक घंटा अपने आप को छुड़ा के जो 3 घंटा हमारे पे सुबह सुबह ये बिठा दी तो आप दोनों का क्या मतलब
1: अब मैं क्या कह सकती हूँ आपसे भाई अब हिम्मत से ना आप झील हिम्मत से जो है वक्त काटिए बस मेरी दुआएं आपके साथ है और कुछ नहीं यही कहा जा सकता है मैं अपने लिए तो देखिए खुश हूँ ही और हमेशा हम सब मैं वैसे भी खुश थी. अब लोगों ने इतना एक दिन मैं खुश हो गई, लोगों ने मुझे इतना कहा अरे सरवर भाई नहीं थे तो बहुत मैम आप खुश थी, बहुत खुश थी. अरे मैं तो रोज ही खुश हूँ भाई, इसलिए आज मैं अपनी खुशी को थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ.
2: नहीं नहीं आपको अभी कंफर्म पता चल गया कि अभी मेरी मतलब चांस छूट गई इसलिए अभी आप
1: अल्हम्दुलिल्लाह बस ऐसे कर रही मैं खुश
2: मैं हालत में शुक्र अदा कर
1: ना, हाँ ना? और मैंने एक और चीज सीखी पता है क्या, बहुत ज्यादा अगर आप खुश हैं तो उसका इजहार मत करो वरना लोग जो है उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं. तो बस अपनी खुशी अपने तक रखो,
2: ये बात
1: ये सही है ना. हाँ तो आज मैं थोड़ा सा कंट्रोल होके बात कर रही हूँ, हालांकि दिल में मेरे लड्डू फूट रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ लेकिन मैंने कहा नहीं जाहिर नहीं होने चाहिए इतनी खुशी आपकी.
2: नहीं नहीं पहले दिन इतना वो नहीं आराम
1: ये आपने सही कहा, धीरे धीरे होना चाहिए.
2: मेरे सवाल का जवाब जो है ना वो मुझे पता नहीं सही नहीं मिला कि एक घंटा आपने तो अपने लिए ढूंढा लेकिन तीन घंटा हम तो
1: सर्वर भाई ने कहा मैं जो हूँ मैं एक घंटे में नहीं मैं चुप नहीं होने वाला हूँ, मुझे ज्यादा चाहिए, आई वॉन्ट मोर मोर मोर. तो फिर तो मोर ही कर दिया हमने, कर लीजिए आप तीन घंटे में आराम से बोलिए और दिल खोल के बोलिए. तो बस इसीलिए उन्होंने कहा मैं तीन घंटे में भी मेरा कुछ नहीं होगा. फिर ये हुआ कि मैक्सिमम तीन ही घंटे हैं तो सर्वर भाई ने कहा चलो फिर यही ठीक है. अरे वाह चलिए फिर तो अच्छा है. नहीं नहीं वो तो
2: आने वाली है, फिर इस टाइम पे सफा जी आएंगे.
1: जी जी जी जी नेक्स्ट संडे से फिर इंशाल्लाह सफा होंगी आपके साथ और फिर मैं इंशाल्लाह 1 नवंबर से फिर मैं आऊंगी आपके साथ. तो आप परेशान ना हो, कोई ना कोई आपका साथ देता ही रहेगा इंशाल्लाह.
2: नहीं ये तो एक ही फैमिली है, एक ही लोग
1: है. बिल्कुल. अच्छा रियाज जी मुझे ये बताइए कि कोई कतर का ऐसा कल्चर है जो आपको बड़ा अच्छा लगता है या फिर आप अपने कंट्री के बारे में कुछ बताना चाहें, कोई फैमिली में आपका कोई ऐसा यूनिक कल्चर ट्रेडिशन जो आज भी जिंदा है और लोग आप उसके बारे में चाहते हैं कि लोगों को पता चले.
2: जी कल्चर की जहाँ तक बात आती है ना तो जी मैं मतलब दो बातें मतलब नोट करता हूँ. एक ड्रेस के हिसाब से वहाँ का जो ड्रेस होता है ट्रेडिशनल या जो लोग जैसे इधर ये पहनते हैं ना उसको क्या बोलते हैं खतरी लिबास जो पहनते हैं तो बोलते हैं उसको क्या क्या
1: थोप, हाँ, थोप.
2: जी, हाँ, जी. हाँ. तो ये है. और दूसरा मुझे ना मतलब किसी भी कल्चर का हो लेकिन म्यूजिक म्यूजिक में जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज होते हैं या होते हैं ना तो उसको मतलब जानना में ये दो चीजों में मेरा इंटरेस्ट होता है. तो कतर में मैं जब आया तो मेरे को इनका ये ड्रेस और इनका ये जो पहनावा होता है या तो बोलते हैं इसको ये मुझे बहुत पसंद था अभी भी मतलब लेकिन ये बहुत है. और
1: आपने अपने लिए कुछ स्टिच करवाया ऐसा कतर या टायर आपके पास है?
2: मेरे पास था पहले इधर लेकिन हमारा काम जो है ना आपको पता है हम तो 12-12 घंटा शिफ्ट करते हैं वो करते हैं तो फिर फ्राइडे को सिर्फ हाँ हफ्ते में सिर्फ एक दिन वो मौका मिलता था या मौका तो उसी दिन यूज होता था. बाकी अभी बहुत टाइम हो गया मैंने यूज नहीं किया है लेकिन मुझे पसंद बहुत
1: अच्छा लगता है. बिल्कुल सही कहा आपने, एक अलग से यूनिक सी पहचान है अरब्स की वो
2: दिखती.
1: जी जी और आपने कहा म्यूजिक ऑफ कोर्स ये बात भी है. और मुझे ना पाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल कपड़े खासकर शलवार कमीज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मतलब ये मुझे अपने आप में लगता है कि हाँ
2: हमारे है
1: पेशावर आज डोमिनेट करें. मैं चाहूंगी कि नेपाल के बांग्लादेश के लोग इंडिया के लोग भी आए जुड़े बताएं कुछ.
2: आज का टॉपिक इस हवाले से इंटरेस्टिंग है कि आज मुख्तलिफ लोग आने चाहिए ताकि हर कोई अपने हिसाब से वो ट्रेडिशन के बारे में बात
1: बताए. चलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि फिलहाल तो पेशावर से ही लोग जुड़े हैं, लेकिन आपने कतर के कल्चर के बारे में बात की एंड बहुत ही अच्छा मेंशन किया उनके अटायर, उनके ट्रेडिशनल ड्रेस. वाकई जब फर्स्ट टाइम हमने भी देखा था ना, इट वाज यूनिक, इट वाज वेरी वर्थ वॉचिंग, है ना. मैंने देख के इतना अच्छा लगा था, और अब तो खैर हम लोग यूज्ड हो गए, बट या दैट्स ट्रू, ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का.
2: बहुत शुक्रिया, और अल्लाह करे आपको हमेशा खुश रहे, छुट्टी
1: मम्मी. थैंक यू जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका भी. जज़ाकअल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. वाओ, आज तो अच्छी बात ये है कि पेशावर हमारे साथ है. ज़्यादातर लोग जो है अभी तक जितने जुड़े हैं उन सबका ताल्लुक पेशावर से है. एंड आई रियली होप कि बांग्लादेश, नेपाल, यू नो, इंडिया एंड ऑफ कोर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कुछ और जगह से भी लोग जुड़े और बताएं अपने ख़ास कल्चर ट्रेडिशन के बारे में, या फिर ऑफ कोर्स कतर के कोई कल्चर, ऐसा कोई ट्रेडिशन जो आपको काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं. फिलहाल वी आर कनेक्टेड टू वन मोर कॉलर. हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसे हैं नसीम जी आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत खुश होंगे.
1: मैंने इजहार किया अपनी खुशी का? मैंने किया क्या? दिल में तो था कि करूं बट कर नहीं रही हूँ. देखिये बट दिखा नहीं रही हूँ कि मैं खुश बहुत हूँ, क्योंकि आप लोगों ने एक दिन मैंने क्या अपनी खुशी दिखाई, सबने मुझे कहा अरे सरवर भाई आपने थे तो बहुत खुश थी नाजिया मैम. अब तो है ही नहीं तो कितनी खुश होंगी मैं.
3: तंग करने वाले
1: नहीं तो हाँ, वैसे मैं खुश तो बहुत हूँ.
3: लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा.
1: क्यों क्यों आपको मेरी खुशी अच्छी नहीं लग रही?
3: बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही.
1: सिंह ये क्या बात है, शेर तो मैं भी सुन सकती हूँ, वाहवाही तो मैं भी दे सकती हूँ आपको.
3: जब आप दोनों एक साथ है ना तो खुशी तो बाला है, अभी तो सिंगल है
1: भाई. वो आपके लिए होगी खुशी तो बाला, मेरी तो चार बाला हो जाते हैं. मेरा तो गम चार वाला हो जाता है. तो चलिए कुछ दिन मुझे खुशी का मौका मिल रहा है तो खुश होना चाहिए ना हमें भी. सब दूसरों की, आपने क्या सीखा है, दूसरों की खुशियों में भी खुश हो, है ना.
3: अच्छी बात,
1: ये अच्छी बात है. अच्छा आप मुझे, अब आप ये बताइए कि कोई आप अपने कंट्री के बारे में कोई ऐसा कल्चर जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, या फिर कतर का कोई कल्चर जो आपको बहुत अच्छा लगता है.
3: ये
1: कुछ भी हो सकता है, खाना पीना, ट्रेडिशन.
3: खाने पीने का तो मेरे को कहवा बहुत पसंद होता है यहाँ का, जो साथ में खजूर देते हैं. और दूसरी बात, यहाँ एक चीज और मैं देखा हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद होता है, कभी कभी रोडों पे पानी वानी बांटते रहते हैं लोग, कहीं से कुछ किसी को दे देते हैं. एक से अक्सर मैं देखता रहता हूँ, मैं रोड पे चलता हूँ, अक्सर मुझे ये चीज मिलती रहती है और लोगों से भी सुना, लेकिन ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है.
1: हाँ, और मुझे खैर मुझे जान के पहले तो मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन पाकिस्तान में भी रमजान के दौरान मुझे पता चला कि लोग इतना ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अच्छा दरबंग, अच्छा अच्छा, कतर में तो खैर देखा ही हमने, रमजान में और ज्यादा होता है.
3: अक्सर जगह हमारे यहाँ भी लोग बांटते हैं.
1: जी जी, अच्छा अच्छा. But this is really unique कि दूसरों का ख्याल करना. और मैं एक चीज आपको बताऊँ, आपके कहते कहते मुझे याद आई, क्योंकि जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ पर इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती वुमेन को, दी जाती है, बट इस तरह से रोड क्रॉस करने के लिए गाड़ियाँ रुक जाएँ और बच्चे और फैमिली क्रॉस कर ले, इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है टू बी ऑनेस्ट. लेकिन यहाँ जब मैंने देखा कि वाकई
3: ये भी है ना, हाँ, अगर यहाँ नहीं करेंगे तो मजबूरी भी है.
1: हाँ यहाँ है, लेकिन फिर भी आप देखिए,
3: कुछ आदतें होती है ना जो यहाँ की आदत बन जाती है,
1: बन जाती है, और फिर हम अपने कंट्री में नहीं उसको फॉलो करते हैं.
3: वहाँ फिर ही होता है, किसी को डर नहीं होता.
1: अच्छा तो आप कह रहे कि डर की वजह से आप फॉलो कर रहे होते हैं, दिल से नहीं कर रहे?
3: पहले डर, फिर वो तो है कि हाँ,
1: फिर वो डर दिल में आ गया,
3: रास्ता दे देता. डर धीरे धीरे वो आदत बन गई है.
1: चलिए मैं कहती हूँ जैसे भी अच्छी आदत बन जाए, डर से बने, अपनी चॉइस से बने, बननी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अच्छी बात है. लेकिन मैं आपको पता है क्या बता रही थी, जो अंदर की रोड्स हैं, जो इंटीरियर रोड्स हैं, रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं, वहाँ पर भी लोग दे स्टॉप दे कार, और वहाँ पे कोई ऐसे सिग्नल नहीं है, देयर इज नथिंग एज सच, कोई ऐसे कैमरास भी नहीं है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट वो आपको पूरा इज्जत देते हैं कि आप क्रॉस कर जाइए, एंड दे लिटरली स्टॉप द कार और फिर आगे बढ़ते. सो ये यहाँ की, यहाँ का ये जो कल्चर है, मैं कहूँगी ये बहुत यूनिक है, बहुत ही इम्प्रेसिव भी है.
3: किसी कल्चर को अपनाते हैं या दूसरों को करते हुए देखते हैं, जैसे बच्चे बड़ों से सीखते हैं ना,
1: जी जी जी,
3: वैसे ही जो लोग पहले से कर रहे हैं और फिर हम लोग आए बाद में, तो वही देख देख के हम लोग भी सीखे.
1: सीखा, बिल्कुल सही
3: जी.
1: बहुत सही. तो एक अच्छी बात आपने भी यहाँ हाईलाइट की, स्पेशली गावा के हवाले से, तो दैट्स ब्यूटीफुल, नाइस, थैंक यू. कुछ और कहेंगे नसीम जी?
3: ओ गावा भाई नहीं, गावा
1: गावा, गावा भाई गावा भाई का इंतजार है. अब आए तो कुछ बताए पंजाब के बारे में, आई एम श्योर वो कुछ तो बहुत अलग सा बताएंगे अगर जुड़ते हैं हमारे साथ. लेट्स सी. चलिए आप,
3: तो आपके लिए कुछ है?
1: Please.
3: मिर्जा गालिब साहब का है.
1: जी जी, प्लीज गो अहेड, इरशाद.
3: कौन किसको दिल में जगह देता है? कौन किसको दिल में जगह देता है? दरख्त भी सूखे पत्तों को गिरा देता है. वाकिफ है हम इस दुनिया के लोगों से. वाकिफ है हम इस दुनिया के लोगों से, जब दिल भर जाए तो हर कोई भुला देता है.
1: वाह वाह वाह, क्या बात कही है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट और एप्ट है हम सब पर. बहुत जबरदस्त, बहुत खूब. कैसे वैसे आप ढूंढते हैं? जखीरा है आपके पास, मिल जाता है. अरे वाह, चलिए जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप जुड़े मेरे साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़. ऑलराइट, एंड यस, कॉल्स भी आ रही है. चलिए एक कॉलर के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक, विच इज़ गोइंग टू बी रियली मैंडेटरी वन, वो हम लेंगे, वापस आएंगे इस टॉपिक पर और बात करेंगे. लेट्स सी कौन है हमारे साथ. हेलो,
4: हाँ जी नादिया जी, की हाल चाल है जी?
1: गावा जी, आपकी ना इतनी लंबी उम्र है, मैं बता नहीं सकती. अभी अभी आपका जिक्र हुआ था, पता है?
4: थैंक यू जी, मैं सुन रहा था नसीम भाई को, शुक्रिया.
1: अभी उन्होंने आपकी बात की और मैंने कहा कि अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ हमें यूनिक बताएंगे, तो आई एम श्योर आप बहुत ही अच्छा वाला कुछ यूनिक सा कल्चर पंजाब के बारे में कुछ तो बताएंगे.
4: जी नादिया जी, अगर टाइम है 2 बजे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेक का तो आप ले सकते हैं. आई विल बी ऑन होल्ड.
1: नहीं चलिए आप बात कर लीजिए, फिर मैं लेती हूँ ब्रेक भी.
4: सबसे पहले तो मैं नाजिया जी कतर का बताना चाहता हूँ.
1: हाँ जी,
4: जैसे नसीम भाई ने बात की ना,
1: हाँ,
4: हम लोग जैसे मैडम नाजिया जी किसी भी ऑफिस में जाते हैं, मेजोरिटी में,
1: हाँ, हाँ,
4: या कतरी सिटीजन के घर में जाते हैं ना मैडम,
1: हाँ,
4: तो यकीन मानिए मैडम, जब वहाँ पे जाते हैं ना,
1: हाँ,
4: जो थर्मस में डाला हुआ कहवा और साथ में खजूर, मैडम उसका तो
1: जवाब
4: कहना चाहिए, स्टाइल ही अलग है मैडम उसका.
1: जब आपको फर्स्ट टाइम सर्व किया गया था, वही यू लाइक रिलक्टेंट कि मैं लूं, क्या है क्या नहीं, या आपने मतलब आपने इनिशिएट किया कि मैं लूं ट्राई करूं, या आपने मना कर दिया कि नो नो थैंक यू, इस तरह से कुछ हुआ आपके साथ कभी इंसिडेंट?
4: मैडम देखिए, डेफिनेटली अगर इतने बंदे पी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बंदे उसको पी रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छी चीज होगी ना वो.
1: अच्छा, मेरे साथ हुआ, मेरा एक बहुत ही स्टूपिड सा ये सीन हुआ कि जब मुझे छोटे से उसमें किसी ने ऑफर किया था, बस लाइक ये कॉफ़ी है चाय इतनी छोटी में दे रही, इतना ही सा सर्व कर रहे, क्योंकि हम लोग क्या तो बढ़ के बड़े बड़े ग्लासेस या बड़े कप्स का ही उसमें दिया जाता था. तो जब फर्स्ट टाइम मैंने पिया तो मुझे लगा कि ये तो मैं नहीं पी सकती थी कभी भी. अच्छा, मैंने खजूर ली नहीं थी, तब मुझे पता चला कि बगैर खजूर के पीना टफ है. दिस इज रियली टफ.
4: नाजी जी, एक्चुअली चक्कर पता क्या है, हम लोगों के देसी लोगों के जो वहाँ पे इंडिया में, पाकिस्तान में, अपनी कंट्रीज में रहते हैं ना, उनके गले ना उसी चीजों पे एडिक्टेड है मैडम, चाय पे ज्यादातर, जो दूध वाली होती है.
1: जी जी
4: जी,
1: और हमारे लिए नया भी था,
4: थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग. जी
1: स्ट्रॉन्ग है, अभी तो बहुत अच्छा लगता है। मैं पहली बार जब आई थी और जब पहली बार मुझे कहीं पे पीने को ये ऑफर हुआ था, तब मेरा ये था कि मेरा मैं काफ़ी झिझक रही थी। एक तो पहले मैंने छोटा सा सर्विंग देखा तो मैंने कहा इतना कम, फिर मुझे वो कम भी लगा कि ये तो बहुत है, इससे कैसे ख़त्म करें।
4: जी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं ना जिन पे हमें अगर सॉफ्ट ड्रिंक लेना है तो रिफिल के लिए पे करना पड़ता है, मगर यही एक मैडम मेरे को लगता है ऐसी चीज है ना जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और अनलिमिटेड।
1: हाँ ये तो है, ये बात तो है।

0: आपने कुछ लेना है नहीं लेना है डजंट मैटर, मगर ये उन्होंने थर्मस में डाल के रखा होता है ना, साथ में छोटा सा कप, खजूर हो ना हो मगर ये चीज तो अवेलेबल होती है मोस्टली होटल,
1: हर जगह होती है। ट्रू ट्रू, बिल्कुल। और ये इनकी हॉस्पिटैलिटी का एक जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई भी मेहमान आता है तो डेफिनेटली ये जो अरेबिक कॉफ़ी है या खजूर है वो पेश करते ही करते, जो दिखाते भी है कि यू नो कितना मोहब्बत कितनी रिस्पेक्ट है उसका इजहार है। सो रियली बहुत ही अच्छा लगता है सच
0: मोस्टली। मैडम जी देखिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो उसके साथ में कावे के साथ में करते हैं, उसका रीजन यही है कि बंदे का गला है ना गला ठीक रहता है, तो ये चीज गले के लिए भी बहुत अच्छी है और बॉडी के लिए भी सही है बहुत।
1: हाँ ये तो है, अभी तो खैर आदत हो गई, अब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम बस लाइक थोड़ा टफ। ये तो आपने कतर के कल्चर के बारे में बताया, कुछ बताना चाहेंगे पंजाब के कल्चर के हवाले से, कोई चीज जो कोई बात आपको बहुत फैसिनेटिंग लगती है?
0: मैडम बताऊंगा जरूर, एक्चुअली जो पंजाब का कल्चर है वो मोस्टली आपको पता होगा मूवीज में आपने देखा ही होगा तकरीबन सब कुछ, मगर एक दो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी कावे का जिक्र हुआ ना, हमारे वहाँ पे आप मैडम किसी भी घर पे चले जाओ, चाहे फीमेल से चुगलियां करने के लिए ही गई हैं किसी और के घर पे,
1: लस्सी
0: लस्सी तो मैडम है जी मैडम, लस्सी अगर किसी के घर में अवेलेबल होगी ना फ्रेश तो डेफिनेटली मैडम फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर एवरीवन, ना उसमें कोई मुंह बनाएगा ना कोई नखरा करेगा भी नहीं देनी, हर बंदा दूसरे बंदे को देख के खुश होता है, लस्सी एक ऐसी चीज है मैडम।
1: नाइस, तो यही आप बता रहे कि लस्सी जो है वो हर जगह, नहीं मैंने देखा छाछ भी आप बहुत ज्यादा ऑफर की जाती है पंजाब में, एंड देयर इज अ डिफरेंस।
0: नहीं मैडम छाछ का इतना नहीं है, छाछ मैंने खुद मैडम राजस्थान में फर्स्ट टाइम पी थी, छाछ है पंजाब में मैडम दूसरी है जो पैकिंग में आती है।
1: अच्छा ओके ओके, सो ज्यादा करके लस्सी ही है जो हर एक को सर्व किया। हाँ सही,
0: लस्सी है और मैडम आप किसी के भी घर में चले गए मजाल है, बिना चाय के आपको उठने दे देगा बंदा।
1: अरे छोड़िए किसी के घर, पंजाबी के घर जाओ बगैर खाना खाए जाने दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने प्रेम से खाना खिलाते हैं जो भी हो उनके पास अवेलेबल, बिल्कुल अपना दिल खोल के रख देते हैं, तो ये बात तो काफी कॉमन है।
0: नाजिया जी, जी एक और चीज है वो शाम वाली, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा,
1: उसका नहीं कीजिए
0: तो यार दोस्तों में वो चलता है सिस्टम।
1: हाँ नहीं वो
0: अच्छा। नाजिया जी एक चीज और,
1: हाँ
0: टैलेंट होने के साथ साथ मैडम आप लक्की भी हो।
1: क्यों?
0: देखिए मैडम विद इन 6 मंथ आपकी सेकेंड वेकेशन।
1: अरे ये मेरी इमरजेंसी वेकेशन है।
0: सॉरी
1: तो, और ये बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट वेकेशन है।
0: चलिए मैडम जो भी है बस सारा कुछ ठीक ठाक रहे, बस यही दुआ है हमारी।
1: चलिए जी थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, एंड बस 2 वीक्स के लिए जा रहे हैं, आई विल बी बैक जल्दी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल नाजिया जी, थैंक यू,
1: थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए, बाय। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

0: राइट दोस्तों, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर. मैं हूं नासिया आपके साथ और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 2:06.
1: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर विद आरजे नाजिया, सिर्फ एफएम 107 पर. दिल से देसी.
0: हाँ जी, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर. मैं हूं नासिया आपके साथ. एंड यस, आज हम बात कर रहे हैं कल्चर्स की, यूनिक कल्चर्स की. कोई भी कल्चर आप जिसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं, अपने कंट्री का है या फिर इस खूबसूरत से कंट्री कतर का है, तो वो आप हमारे साथ शेयर करिए. हमारे नंबर्स हैं 666-222-107, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77. एंड यस, वी आर कनेक्टेड to one more caller. Hello. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aapka naam?
2: Fazal bhai se mukhatib hai.
0: Acha ji, Fazal ji, kaise hain aap? Khairiyat se?
2: Ek baar phir se mujhe topic bata dena.
0: अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं यूनिक कल्चर के हवाले से, आपके कंट्री का या फिर कतर का, जो आपको बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है.
2: जी देखिए, कल्चर्स तो मुझे लगता है कि हमको हर कल्चर में ब्लेंड होने की कोशिश करना चाहिए. इंडियन कल्चर सर, यानी हर स्टेट का कल्चर अलग है एंड इट्स वेरी यूनिक. और कतरी कल्चर मोस्टली जो है ना, अरब हॉस्पिटैलिटी से कनेक्टेड है. मैंने देखा है कि बहुत वार्म और अरब हॉस्पिटैलिटी वाला कल्चर है. स्पेशली जो है ना, दोहा के बाहर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल उम सलाल चले जाए, मुसंदम चले जाएंगे, तो वहाँ लगा के लोग बैठते हैं. वहाँ पे आप टिफिन माने इतना जबरदस्त आपका वेलकम होता है, आपको खावा पेश किया जाता है, आपसे बात की जाती है. सही, लाइक ट्रीट अस.
0: बिल्कुल. और आपने जैसे कहा कि हॉस्पिटैलिटी, ये तो बात बिल्कुल सच है.
2: और दूसरी बात इंडियन कल्चर की, देखिए इंडियन कल्चर में हमेशा
0: आपकी आवाज बहुत लो हो रही है.
2: अतिथि देवो भव, ये जो है ना, इंडिया के हर स्टेट में ये चीज मौजूद है.
0: और मुझे लगता है कि अगर इंडिया के कल्चर की बात की जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी जो है वो हमें नजर आती है.
2: जी
0: फजल जी, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी लो हो जाती है बीच बीच में. आपकी आवाज बहुत लो हो गई है, प्लीज कम. हाँ जी जी,
2: हर कल्चर में ना कुछ ना कुछ हॉस्पिटैलिटी और लोगों को वेलकम करना, गेस्ट के साथ वो अच्छे से पेश आना, अच्छे से ट्रीट करना, आई बिलीव हर कल्चर का ये होता है, व्हाटएवर कल्चर इज.

0: आवाज कुछ डिस्टर्ब हो रही है, आई थिंक कुछ तो मसला है और क्लियर कॉल नहीं है, बट बहुत ही अच्छा मैसेज जो देना चाहते थे फजल जी वो हम तक पहुंचा है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज. एंड लेट्स गेट कनेक्टेड टू वन मोर कॉलर. हेलो,
1: सलाम वालेकुम. आपके फैशन को मैं सलाम करता हूँ कि मेरे भाई की आवाज को 90% मतलब ये हो के और फिर भी आप
0: ऐसा
1: लग रहा था कि आवाज को मतलब डबल टकरा भी रहा था
0: जी तो कैसे हैं पहले तो आप ये बताइए, अपनी खैरियत तो बताइए.
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सोचा कि सरवर भाई ने डरा दिया. मैं बोला नाजिया पहुंच गई लगता है वहाँ अपने मतलब तंडवाइन के घर पे एक थे मतलब भाई हमारे ना
0: सरवर भाई ने ये कहा था कि मुझे ना टाइम चाहिए, मुझे टाइम दो तो सबको लगा के चलो इनको थोड़ा ज्यादा टाइम दो तो दैट
1: अब सर पे पड़ गई है मतलब ओखली में पड़ गया सर तो फिर उसकी क्या गिनती कर रहा
0: है. चलो नहीं वो बोले मैंने अभी सर मुंडाया था.
1: नहीं
0: सरवर भाई बताए वो चाह रहे थे, कह रहे थे मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा तो मैं ज्यादा लोगों से बात कर सकूंगा और मेरे लिए अच्छा होगा, तो फिर लगा कि चलो फिर सुबह का शो बेस्ट है सरवर भाई के लिए.
1: नहीं रोक बोले कबीर जय चला गया हमारे सर पे डाल के वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम अब नाजिया बोला मैंने तो नाजिया चली गई लगता है लेकिन अभी शायद आए एक दो दिन बाकी है.
0: जी मैं अभी थर्सडे तक हूँ इंशाल्लाह.
1: सारे लोगों से मिलजुल के आ जाए, जरूरी नहीं है कि भाई अब हम लोगों का जो अपना पुराना एक ये है तो वहीं पे है. अब अजदाद के तो ऐसे मसाइल होते हैं कि भाई जाना पड़ता है.
0: जी बस ऐसे ही छुट्टी अब बस था तो मौका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा आप मुझे लगता है रईस जी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बताएंगे. आज मेरा टॉपिक इज अबाउट कल्चर. किस कंट्री का कल्चर आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है और क्यों?
1: कल्चर भाई अब यूरोप में तो पूरी उम्र के बहुत से ज्यादा हिस्से गुजार दिए तो यहाँ के कल्चर को ऊपर ही ज्यादा बात करना बेहतर है. अब अपने मुल्कों का तो कल्चर मतलब कुछ यहाँ की जो चाय और वो गहवे की बात हो रही थी
0: जी.
1: मैं भी जब कुछ पहले जब आया तो जो जिस घर पे गया तो मैं ना वो गिलास का वो जो था उसमें ज्यादा से ज्यादा मेरे को लग रहा है कि 25 ml 50 ml आने वाला गिलास मैं देखा तो मुझे यार अजीब सा फील हुआ. मैं बोला ये क्या है भाई इसमें कौन पीता. फिर ऊपर से खजूर भी खाते हैं भाई मीठे के साथ मीठा तो मुझे भी अजीब सा लगा कि यार ये मीठे के साथ. लेकिन वो बाद में पता चला कि नहीं उसके अंदर मीठा क्या कुछ चाय के अंदर उस गावे के अंदर वो इलायची बनी होती है तो वो मीठा नहीं होता बल्कि ये अलग से मीठा खा के फिर उसका टेस्ट को और मतलब ये किया जाता है मजेदार बनाया जाता है. यहाँ का कल्चर इन लोगों का मतलब मैं खुद भी देख के पहले तो हैरान हुआ और इतनी छोटी गिलास
0: मुझे भी नहीं सी लगा इतना कम इतनी कम क्वांटिटी. फिर जब मैंने पिया तो मैंने कहा भाई ये भी बहुत है इसको पीना मुश्किल था. पहली बार पीना मुश्किल था.
1: नहीं मैंने तो भाई तो ये किसकी लेके मैंने रख दिया. मैं बोला ये यार ये कौन पीता है यार ऐसे भी लोग पीते इतने कड़वे होते थे ना.
0: हाँ हम लोग का टेस्ट नहीं था डेवलप तो हमसे क्योंकि हम लोग के साइड चाय एंड कॉफी एंड दैट टू विद

0: मिल्क दूध के साथ, तो जी
1: तो कम से कम एक पाव के गिलास में भर के पीने वाले लोग,
0: सही बात है, बड़े बड़े मग्स में
1: घर की तो, घर की चाय को जब पीते थे तो छोटे उसमें नहीं, वो एक पाव के गिलास में थोड़ा नहीं चाहिए वाला, होटलों में तो मतलब मीडियम होते हैं गिलास, लेकिन अब यहाँ के जब उसमें आए देखे तो धीरे धीरे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं उन लोगों का कुछ मतलब, भाई हर जगह का एक तहजीब और ये अलग होता है।
0: सही कह रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए हम और आप कितना चाव से, कितने शौक से पीते हैं, कितना एंजॉय करते हैं ना, तो अब हम यूज्ड टू हो गए और हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। सही बात
1: नहीं, तो बाद में उसके फायदे और उसके ये पता चले कि मतलब हाँ भाई इसके अंदर जो है, तो फिर वो समझ के मैं बहुत सी चीजों को पहले अपने बचपन में जितना मतलब ये करता था, खासकर मतलब हरी सब्जियों को तो बिल्कुल कतई तौर पे बहुत सी सब दाम नहीं लूंगा मतलब, लेकिन अब जब उसके फवायद के पते चले तो अब पता चला कि नहीं आपको मुझे कैसा भी कोई बना के दे देना तो मैं खा लेता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ का कल्चर भाई, यहाँ के यहाँ पे रह के और यहाँ के लोगों में समझ लो कि बहुत ज्यादा, यहाँ के खाने भी इनके घरों के तो बहुत से लोग जो हमारे इधर के लोग हैं वो नहीं खा सकते हैं पहले शुरुआत में, उनको अजीब सा लगे कि यार उसमें ना नमक पता चलता है ना हम लोग के तो मतलब मिर्च मसाले
0: ज्यादा ही होते हैं,
1: अलग तो अलग से मतलब ज्यादा ये करके डाले होते हैं तो लोग नहीं बर्दाश्त, लेकिन अब हम लोग हमारा तो बिल्कुल आदत पड़ गया है इन लोगों के उसमें रह के, अपने यहाँ के उसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा, अब हम तो हम घर पे जाते हैं तो इस चीज पे बहुत कंट्रोल कर लिया जाता है क्योंकि मुझे कुछ भी पसंद नहीं है वो चीजें, तो यहाँ के लोगों का कल्चर और ये इसके ऊपर ज्यादा तबसरा नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अब यहाँ के माहौल में रह के अब किस चीजों का नाम ले, अल्हम्दुलिल्लाह
0: बहुत ही प्राउड फील होता है कि हम जो है यहाँ इस कंट्री में है और सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
1: पहली बात मतलब पीसफुल, कोई किसी के उसमें मतलब इंटरफेयर नहीं करने वाला, हर कोई अपने उसमें, हम लोगों के उधर तो भैया अड़ोस पड़ोस के चलो एक जगह लग गया
0: ज्यादा नहीं बोलिए,
1: लग गया
0: ज्यादा नहीं बोलिए,
1: अब नहीं अब बिल्कुल बिल्कुल
0: समझदारी से
1: ये चीज तो ये सब चीजें जो हम लोग के इधर के मतलब वो तो आम है भाई, बस इनकी खिंचाई उनकी खिंचाई बैठ के, बस इनके वहाँ पे क्या इनके वहाँ पे क्या, ये चीजों से यहाँ पे पाक है और ये बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि इसको अगर बयान किया जाए ना तो लोग मतलब ये हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे, और उसको एक माहौल बना लिया गया है हमारे यहाँ पे जहाँ पे जो कुछ लोग बैठते हैं तो बस उसी को उस पर, चाहे औरतें हो या मर्दों में भी वो खसलत अब पाई जाने लगी, खाली औरतों को बेचारों को बदनाम बदनाम किया गया,
0: औरतों को किया गया। फिर मेरी मुलाकात सर्वर भाई से भी, मैंने कर लो औरतें पीछे हैं, सर्वर भाई आगे, सर्वर भाई ने कहा मैं लीड करूंगा,
1: माशाल्लाह बेचारे हाय बड़ा बेहतरीन आदमी, मतलब उनके बाद ये करने का मजा आता है सुनने के उनके माशाल्लाह
0: से, तो सुबह जरूर सुनिए।
1: नहीं नहीं सुनते हैं और फोन भी किए थे आज, बात भी किए
0: और सुबह तो आपके लिए टाइम भी अच्छा हो गया ना, तो आप बात
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सुबह के टाइम में ज्यादा, आज तो मतलब कुछ ऐसे हम थोड़ा दूर थे अपने लोकेशन से,
0: अच्छा
1: तकरीबन 100 किलोमीटर दूर, तो अभी आप मौका मिला तो मैं बोला अच्छा आज देखता हूँ कौन है वो टाइम में, माशाल्लाह आपकी आवाज, मैं बोला क्या है भाई ये रिकॉर्डेड तो नहीं है फिर मैं देखा हमारे गावा जी बात कर रहे हैं, मैं बोला नहीं नहीं नहीं फिर मौका देख के चलो मैं भी बात कर लेता हूँ।
0: बहुत अच्छा किया, शुक्रिया, बहुत बहुत
1: शुक्रिया हमारे तमाम भाइयों को,
0: बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा भाई अपना,
1: जर्नी आपका भी हो अच्छे,
0: थैंक यू, अभी हूँ, अभी मैं हूँ, थर्सडे में बोलिएगा मुझे, अभी मैं हूँ
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हम एडवांस हो सकता है बात ना हो पाए भाई, हो सकता है कि मतलब
0: नहीं भाई अभी अभी तो 3-4 दिन आपको बात करनी है, टाइम निकाल के ठीक है,
1: बिल्कुल इंशाल्लाह
0: कोशिश करते रहेंगे, अल्लाह। सो यहाँ पर अभी तक जो है वो कतर के बहुत ही खूबसूरत से कल्चर, फैसिनेटिंग कल्चर की बात हो रही है, हर कोई अपनी बात कर रहा है, लेकिन उसके पहले कुछ मैसेजेस भी मुझे लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे जो लिसनर्स हैं वो नाराज हो जाते हैं जो मैसेज करते हैं। एक मैसेज है मुझे, सलाम कहते हैं अरबाज खान जी, एंड कहते हैं सरवर भाई कहाँ हैं, सरवर भाई जो हैं वो सुबह का शो कर रहे हैं, तो अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो 6 बजे से ज़रूर सुनिए, मॉर्निंग शो में पहुँच चुके हैं सरवर भाई, तो इस तरह से मुबीन जी हैं और हंसते मुस्कुराते हुए थैंक यू। और हमारे पास बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, अभी हम इन्हें सबको शामिल करेंगे, बट एक कॉलर मेरे साथ यहाँ पे जुड़ गया, हेलो
2: जी अस्सलाम वालेकुम,
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।

0: बरकात तू कौन है मेरे साथ?
1: ओवैस बात कर रहा
0: हूँ। ओवैस कैसे हैं आप? खैरियत से?
1: अरे
0: क्यों नहीं होंगे सरवर भाई, भरपूर तरीके से आपके साथ सुबह कनेक्ट होंगे।
1: अच्छा सुबह ही? ओके तो सुबह क्या? अच्छा,
0: 6 बजे से।
1: अच्छा
0: इंशाल्लाह 6 बजे से हमारे सरवर भाई, शुरुआत सरवर भाई ही करेंगे, तो बस हर दिन की शुरुआत सरवर भाई के साथ।
1: ठीक है,
0: सुबह जी
1: आप लोग कल्चर की बात कर रहे हैं।
0: हाँ।
1: मुझे सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: प्लीज।
1: एज फार एज ऑल द कल्चर्स आर वेरी दे आर डियर टू एवरीबॉडी हूएवर बिलोंग्स टू दैट स्पेसिफिक कल्चर। अपने कल्चर को ओन करना जो है ना, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हम यहाँ रह रहे हैं,
0: ब्यूटिफुल लाइन।
1: अपना रिफ्लेक्शन जो है ना वो आपके बिहेवियर से ही होता है।
0: Nice.
1: और जो करेंगे वही डिपिक्ट होगा, लोग वही अज्यूम करेंगे कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, किस ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से, किस कल्चर से हैं। तो हम मैं कराची से हूँ और आई फील लाइक के जब भी हम लोगों से बात करें, मिले जुले, अपनी लैंग्वेज और अपना बिहेवियर पॉजिटिव रखें उनकी तरफ, और लोगों को पता चले कि भाई आपका क्या है एक्चुअल बैकग्राउंड। तो हमारे यहाँ जो शाम की बैठक है और वो हमारे यहाँ सिंध कल्चर फॉलो होता है, तो वहाँ की अजरक एक बहुत
0: जी,
1: अजरक
0: जी,
1: की ओढ़नी है बड़ी ट्रेडिशनल, वो बड़ी मशहूर है
0: जी।
1: तो ये दो चार चीजें थी, मैं आई जस्ट थॉट ऑफ डिस्कसिंग।
0: बहुत ही अच्छा। और जो आपने कहा ना ओन करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप जो है वो इस चीज़ को लेके रिलक्टेंट ना हो कि मैं आता कहाँ से हूँ, मेरे रूट्स कहाँ से हैं, क्या मुझे दूसरी कंट्रीज़ में एकदम मॉडर्न दिखना है, इनके जैसा दिखना है। जबकि होता क्या है कि लोग आप जैसे हैं उसे अगर दिखाते हैं तो उससे बहुत इम्प्रेस भी होते हैं और बहुत एडमायर भी करते हैं, तो हम पता नहीं क्यों छुपाने लग जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपका मैसेज।
1: ट्रक कल्चर है, ट्रक एक वो आर्ट है, बड़ा मशहूर है कराची।
0: जी, मैंने देखा
1: है। और इट्स लाइक समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स दैट रीजन एंड दैट पार्ट।
0: यस, उसे डेकोरेट करना एंड ऑल दैट, राइट?
1: और एक लास्ट बात, वंस वी गो बैक होम, जब भी अपने अपने मुल्क जाए, अपने शहर जाए, तो जो हम यहाँ डिसिप्लिन शो कर रहे हैं बाहर ममालिक, तो वो वहाँ पे भी शो करें।
0: जो चीजें हमने यहाँ सीखी है पता नहीं क्यों वहाँ हम उनको अप्लाई नहीं कर पाते। आई डोंट नो, यहाँ जैसे एक भाई ने कहा कि थोड़ा डर होता है, डर से कर लेते हैं।
1: वहाँ का ओनरशिप का हमारा तरीका मुख्तलिफ है, बाकी तो
0: सही कहा आपने।
1: बहुत-बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट्स आपने हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, सो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस रह गए हैं जो रह ना जाएं, तो कॉल्स भी हैं वो हम शामिल करेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन उसके पहले मैसेज है मोहम्मद यूसुफ जी का। सलाम कहते हैं, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वेलकम करते हैं हमें और हैप्पी वाले मंडे आफ्टरनून। और आगे कहते हैं मोहम्मद यूसुफ जी कि मैं कहूँगा कि कतर की जो बेस्ट कल्चर की बात है वो है उनकी हॉस्पिटैलिटी। चाहे कोई भी हो, कहीं से भी हो, किसी भी कंट्री से हो, हर एक के साथ बहुत अच्छे से पेश आना और जैसी चीज़ों का जिक्र हम करते ही आ रहे हैं, प्रेजेंट करना, खिलाना, ये बहुत यूनिक बनाता है। फिर उनका कि हमारे वहाँ भी, मतलब इंडिया से भी इनका ताल्लुक़ है, और वहाँ घर में भी रिस्पेक्ट देना, मेहमान नवाजी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कोई भी मेहमान आता है तो भरपूर रिस्पेक्ट दी जाती है, खातिर की जाती है, खाना खिलाना, टी, कॉफ़ी, जूस एक्सेट्रा कहते पेश करना, फिर लास्ट में सौ भी, वाह भी वाह, आपके घर में तो पूरा हर तरीके से हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। और घर से निकलने लगे तो बाहर तक छोड़ने, सी ऑफ करना बाहर तक, ये सभी हमारे यहाँ घर पर होती हैं। ये बहुत अच्छी बात कि कोई भी आपके घर आए उसको भरपूर इज्जत देना, ये होना भी चाहिए। और आजकल जैसे आपने कहा ना, बाहर तक लोग नहीं भी आते हैं, बस आपको कहा और निकल गए, बट देन दिस इज़ लाइक रियली यूनिक। और बहुत अच्छा आपने बताया। एक और प्यारा सा मैसेज है और इनका नाम हम चेक कर लेते हैं। समीरा है हमारे साथ और कहती हैं, कैसे आप? एंड कतर का वेलकम करने का तरीका बहुत अच्छा दिखता है, एंड द इम्पॉर्टेंस गिवन टू फैमिलीज। या ये तो मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखा देखा कि गाड़ी बकायदा रोक दी गई एंड दे आस्क कि आप गुजर जाइए. आई एम सो इम्प्रेस्ड, ओ माय गॉड, इतनी इज्जत मिली है कि पूछो नहीं. अभी तो खैर हम लोग यूज्ड टू है, लेकिन पहली बार जब ये हुआ तो हमने कहा अमेज्ड कि भाई ओहो ऐसा भी होता है. कहते मेरी फैमिली का ट्रेडिशन है कि कोई घर आए तो बिना खाना खाए नहीं जा सकता. दूसरा, या जिस भी घर में शादी है वो लोग पूरी फैमिली की लेडीज को मेहंदी लगाते हैं. नाइस समीना, बहुत ही अच्छा. अच्छा यहाँ पर हमें मैसेज है ओके के एम खान जी का, सलाम कहते हैं. ओके चलिए ये तो मैंने पढ़ लिया. ओके इसके साथ एक और सलाम है, रिजवान हमारे साथ जुड़ गए हैं. कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. एंड मैम रिगार्डिंग अ कल्चर, हमारे विलेज में ओहो बहुत सारे, और ये लोकल है इनके नाइव्स बनाना, एक चीज़ तो मैं कट कर दूंगी. और कहते हैं पीपल इन आवर विलेज हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. कहाँ से ताल्लुक है अरबाज जी आपका, बताइएगा जरा मुझे. अच्छा इसी के साथ आई थिंक अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है और एक भी गाना आज हम चला नहीं पाए, बट आप लोग के साथ बात करते हुए मज़ा बहुत आया. बहुत सारे कल्चर्स को तो हम एक्सप्लोर एज सच नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी हमने समझा उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा आप लोगों ने हाईलाइट की वॉज लाइक हॉस्पिटैलिटी. मैं कहूँगी दोस्तों, चाहे हम कतर से हो, पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया से, बांग्लादेश से, हमारी ज़माने अलग हैं, हमारे ट्रेडिशंस अलग हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम सबको जोड़ती है वो है मोहब्बत और इज्जत और इंसानियत. ये हम सबको जोड़ती है और ये हर कल्चर में बहुत ही खूबसूरत भी लगती है. तो इस खूबसूरत से मोती को जो है वो हमेशा सजा के रखना है हमें अपने कल्चर में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्यूनिटी में एंड ऑफकोर्स अपनी फैमिली में. इसी खूबसूरत से नोट पे अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी. हाँ कल वापस से आपकी और मेरी मुलाकात होगी 1:30 इसी टाइम. अपना तब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए एंड सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी. हाँ जी, और ये ऊंचा लंबा कद सरवर भाई का.

7 presents Tech Update. Tech Update. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूं दुआ वाला कबीर एफएम 107 पे एंड येट अनदर अपडेट। देखिए टेक अपडेट में मैंने आपसे वादा किया है, मैंने आपको वेबसाइट्स बहुत सारी बताई है, बहुत सारी भाई, कभी कभार तो मैं भूल जाता हूं कौन कौन सी बताई है, लेकिन अब हम बात करेंगे मेन स्ट्रीम टेक और गैजेट्स की जो खबरें आ रही है मार्केट में, किस तरीके से डेवलप हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, सब चीजों के बारे में कवर करेंगे ताकि आप बिल्कुल अपडेटेड रहें।

0: तो मैं बात करने वाला हूँ वी आर ग्लासेस के बारे में। देखिए बड़ा ही पेचीदा टॉपिक है ये पेचीदा इसलिए भी है क्योंकि कई मरतबा इसको लेके लोग जो है इतने ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं कि वो नजरअंदाज कर देते हैं इसके यूसेज को। मैं समझाता हूँ क्या कहने का मतलब है। आपको लगता होगा भाई वीआर आ जाएगा, मजा आ जाएंगे अंटिल और अनलेस यू आर ओके विद द प्राइस टैग। चलो प्राइस टैग भी हटा देते हैं, आपने ले लिया, लेकिन उसके बाद आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मैं खुद बताता हूँ आपको। मैंने लिया था प्ले स्टेशन का वीआर एंड वो अभी भी पड़ा हुआ है, उसका इतना इस्तेमाल नहीं है एंड आई एम रिग्रेटिंग काइंड ऑफ कि मैंने क्यों इस पे इतने खर्च कर दिए। दूसरी चीज जो आपने अगर नहीं देखी है तो आपको बता दूं बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं एंड मेडिकली प्रूवन है कि बच्चों को वीआर नहीं देना चाहिए। सो इफ यू आर गिविंग देम वीआर तो थोड़ा आप जरा बच के रहिए बिकॉज ये इफेक्ट करता है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो प्लीज बी श्योर कि आपका बच्चा अगर आपसे कह रहा है कि मुझे तो वीआर चाहिए वीआर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बड़ा होने के बाद दिलाने की वाली बात दूसरी खुद ही ले लेगा वो, मगर उससे पहले मत दीजिए बिकॉज बहुत बहुत बहुत फर्क पड़ता है इससे। एंड वीआर की बात हो ही गई है तो मेन स्ट्रीम मीडिया में जब एप्पल विजन प्रो लॉन्च हुआ था आपको याद है, उसकी कीमत इतनी ज्यादा रखी गई कि लोगों ने कहा कुछ तो होगा, एप्पल है तो कुछ तो होगा ही, इतना महंगा है लोग बड़े बड़े लोग ले रहे होंगे। लेकिन बड़े बड़े लोगों को भी एप्पल विजन प्रो लेने की बात कोई फायदा नहीं हुआ। पीपल आर लाइक क्या यार ये मतलब अपने प्राइस टैग के हिसाब से नहीं है, इट्स अ लिटिल टू ओवरवेलमिंग। जिस हिसाब से वो था उस हिसाब से 2,000-3,000 रियाल 4,000-5,000 रियाल थोड़ा कम होता तो बढ़िया रहता है। एप्पल कुड हैव डन इट बेटर, कुड हैव डन इट बेटर वाला जो टैग है वो एप्पल पे लग गया और एप्पल ने लिटरली मेंशन करना बंद कर दिया था एप्पल विजन प्रो को कहीं पर भी। आप कोई सा इवेंट उठा के देख लीजिए, दे आर नॉट इवन मेंशनिंग, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बनाया ही नहीं, एप्पल विजन प्रो कभी था ही नहीं। बट रिसेंटली एप्पल ने बिल्कुल सुबड़ी में चुपके से अपनी इस एंट्री को मिक्स्ड किया है और उसे मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश करी है स्पेशल कंप्यूटिंग की के जरिए। तो स्पेशल कंप्यूटिंग कंज्यूमर एंटरप्राइजेस स्पेसेस में अपनी जगह बनाई है एप्पल ने और उन्होंने अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन माइक्रो ओएलईडी स्क्रीन्स जो हैं, डिस्प्लेज, आई ट्रैकिंग, हैंड जेस्चर, विजन प्रो में और सुधार किया जा रहा है। हालांकि आपको किसी इवेंट में नहीं नजर आएगा बट दे आर ट्राइंग टू ब्लेंड डिजिटल कॉन्टेंट इन टू फिजिकल इन्वायरमेंट। वो उसे अभी उसका प्राइस चेक कम नहीं कर रहे, वॉट दे आर डूइंग इज दे आर ट्राइंग टू मैच द प्राइस टैग जो ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है। ये भी एक अलग किस्म का चलन है, वो जानते हैं कि अभी सस्ता करेंगे तो लोग बोलेंगे देखा हमने कहा था इतना अच्छा है नहीं। सो एप्पल क्या कर रहा है कि उसकी कीमत के हिसाब से उसको वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो इफ यू हैव चेक्ड एप्पल विजन प्रो अभी तक, पर अगर आपने नहीं चेक किया है अभी उसमें सुधार आने के बाद इट इज गुड, पर क्या अभी भी एक आम आदमी के लिए है? आंसर इज नो, आई डोंट थिंक सो। अभी भी एक आम आदमी इसको ऐसे यूज करे जैसे एप्पल का फोन यूज करता है वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। बट तो आने वाले इवेंट में लगता है कि एप्पल जो है अपने एप्पल विजन प्रो को शायद मेंशन करे और इस बार वो जब मेंशन करेगा तो शायद प्राइस टैग को भी थोड़ा सा लोअर करे। हालांकि मुझे ये प्राइस टैग लोअर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट दे माइट अटैच इट और क्या कहते हैं उसको इंजेक्ट करे बाकी एप्स के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं कि ड्रॉबैक है एप्पल प्रो विजन में, बट डेफिनेटली प्राइस टैग बहुत हाई। आपको क्या कहना है एप्पल विजन प्रो पे अगर सस्ता हो जाएगा क्या आप लेंगे तो ये बताइएगा। 666-22-1078 नंबर है हमारा और सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar FM107 Qatar। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट।
4: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में हम बात करते रहते हैं, चाहे वो टिकट के बारे में स्कैम हो रहे हों, पेड क्विज के बारे में स्कैम हो रहे हों, डिस्काउंट वाले स्टेकेशन पार्टी वाले स्कैम हो रहे हों, या फिर फ्री में आपको कोई फर्नीचर दे रहा हो सोशल मीडिया पे, उस तरह के भी अगर स्कैम हो रहे हों तो हम यहाँ पर बात करते रहते हैं और आपको एक्चुअली में आगाह करते रहते हैं। वेल, आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है फेक इवेंट टिकट के गिव अवे स्कैम। यार अगर आपको कोई टिकट देगा किसी बड़े इवेंट का, क्या ये

0: और ले जाइए फ्री में, तो आप तो बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे। लेकिन ये फ्री का टिकट एक स्कैम हो सकता है। जब भी कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है शहर में, तो उसके बारे में बड़ा बज होता है, लोग बात करते हैं, सोशल मीडिया पे इसके पोस्ट चलते हैं, वेरीफाइड जो पेज होते हैं वो भी इसके फ्लायर डाल रहे होते हैं, है ना, रेडियो पे अलग अलग जगह बातें हो रही होती हैं, पोस्टर लगे होते हैं, और ये बड़े बड़े सिंगर लेकर आते हैं, तो ये पोस्टर जो लगे होते हैं इसमें सिंगर का पोस्टर होता है, कॉन्सर्ट होता है, म्यूजिक फेस्टिवल है ना, वर्ल्ड कप जैसे बड़े बड़े क्रिकेट मैचेस हैं, तो लोगों में टिकट्स को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज होता है, क्योंकि इनके टिकट्स आसानी से मिलते नहीं है। स्कैमर्स एक्चुअली इनका फायदा उठाते हैं, इस तरह के कॉन्सर्ट का, क्रिकेट मैचेस का, जहां पर टिकट बहुत आसानी से नहीं मिलता है, उसका फायदा उठाते हैं, एक्साइटमेंट और जज्बात का फायदा उठाते हैं। वो सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पर फेक एड्स और पोस्ट वगैरह चलाते हैं, जहां पर फ्री वीआईपी पासेस या फ्री प्रीमियम टिकट्स गिव अवे का लालच देते हैं। इनका तरीका बाकी स्कैम से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये आपसे तुरंत पैसा नहीं मांगते हैं, ये चालाकी करते हैं, ये आपको एक लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं, जो दिखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार ये तो टिकट की एक्चुअली में कोई लिंक है, ये ऑफिशियली टिकटिंग वेबसाइट है, जहां से किसी वर्ल्ड कप की, किसी कॉन्सर्ट की, किसी म्यूजिक फेस्टिवल की टिकट मिल जाएगी। अपना फ्री प्राइस क्लेम करने के लिए ये आपसे एक फॉर्म भरने को कहते हैं थ्रू लिंक, जिसमें आपकी बहुत सेंसिटिव और प्राइवेट डिटेल्स भी मांगी जाती है, जैसे कि आपका पूरा नाम, घर का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, और यहाँ तक कि अपने ईमेल या अकाउंट के क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड्स भी कहते हैं। इसके साथ ही वो आपसे कहते हैं कि इस लिंक को अपने 5 से 10 दोस्तों को भेज दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कहीं और सोशल मीडिया पे, तभी टिकट जो है वो अनलॉक होगा। जैसे ही आप भेजेंगे 10 लोगों को, ये अनलॉक हो जाएगा, टिकट आपको मिल जाएगा। ऐसा करके वो आपको ना चाहते हुए भी किसी तरह इस फ्रॉड का हिस्सा बनने के लिए कोशिश पूरी कर रहे होते हैं और वो फंसा देते हैं। एक बार जब आप अपनी सारी डिटेल्स उन्हें दे देते हैं, तो कोई टिकट वाकई में आती नहीं। स्कैमर्स आपके इस डेटा का यूज करके आपकी ईमेल्स हैक कर लेते हैं, और कई बार एक्चुअली में टिकट आती है, सारी डिटेल्स होती हैं उसमें, लेकिन एक्चुअली में कोई मतलब नहीं होता। मिसाल के तौर पे ABCD मैं लिख दूं किसी टिकट का आईडी नंबर, और फिर उसमें सीट नंबर अलाना फलाना डाल दूं, और वो आपको सोशल मीडिया पे या फिर आपके व्हाट्सएप पर भेज दूं, तो इससे गारंटी थोड़ी हो जाती है कि आपको टिकट मिल गया। अगर मैं किसी ओरिजिनल वेबसाइट के थ्रू कहीं पेमेंट करूंगा, तो मुझे वो जो आईडी या वो टिकट मिलेगा या टिकट का आईडी मिलेगा, वो कंफर्म होता है, वो सही होता है। लेकिन आइडेंटिटी थेफ्ट करके भी आपको स्कैम किया जा सकता है। कई बार ये टिकट भेज देते हैं, लेकिन उस टिकट का कोई मायने होता ही नहीं है। खैर, अगर आपसे ये सारी डिटेल मांगी जा रही हो, जिसमें वो आपसे पूरा नाम, घर का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर मांग रहे हो, तो आपको चिंता करनी चाहिए। आपके बैंक अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, या आपके नाम पर फ्रॉड लोन्स और फेक आईडीज बनाकर आइडेंटिटी थेफ्ट को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन बचने के 3 आसान तरीके हैं। ऑफिशियल वेरीफाइड हैंडल्स चेक करें। अगर कोई बड़ी कंपनी या इवेंट ऑर्गेनाइजर सच में गिव अवे कर रहे हैं, तो वो हमेशा अपने ऑफिशियल वेबसाइट या ब्लू टिक वाले वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही इसकी अनाउंसमेंट करते हैं। दूसरा तरीका है सेंसिटिव इन्फो शेयर करने से बचें। अगर कोई भी आपसे कहे, इवन आपसे अगर ऑफिशियल वेबसाइट में भी इतनी सारी डिटेल्स मांगी जा रही है, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल बचना चाहिए। उसके अलावा काउंटडाउन टाइमर्स और प्रेशर से बिल्कुल ना डरे। इस तरह के स्कैमर्स जो होते हैं, जब आपको टिकट का लालच देते हैं, तो वो आपके सामने 2 मिनट लेफ्ट, 1 मिनट लेफ्ट, है ना, 5 मिनट लेफ्ट, ये करा करते हैं। तो इस तरह के काउंटडाउन से बचिए। किसी भी तरह से कोई भी टिकट खत्म नहीं हो रही, बहुत टाइम होता है इन सब के टिकट्स में, बहुत इजीली बिकती भी नहीं है टिकट, सच्चाई तो ये है। और अगर आपसे जरूरत से ज्यादा डिटेल्स मांगी जा रही हो, तो आपको खतरे की भनक लग जानी चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज के इस स्कैम के बारे में समझ आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।
1: दोस्तों, स्कूल स्टूडेंट्स की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए वजारत दाखिला ये ताकीद करती है कि बच्चों को सिर्फ डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के जरिए ही रोड क्रॉस करने की हिदायत दी जाए। ये न सिर्फ उन्हें ट्रैफिक एक्सीडेंट से महफूज करता है, बल्कि उनमें ट्रैफिक अवेयरनेस और अपने आप को महफूज रखने की आदत को भी बढ़ावा देता है। पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल स्टाफ का फर्ज है कि वो बच्चों को गाइड करें और उन्हें समझाएं कि ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी हर वक्त जरूरी है। बिना पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के रोड क्रॉस करना खतरा बढ़ाता है, खासतौर पर बिजी रोड्स और स्कूल जोन्स में। बच्चों को ये जरूर बताएं कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग

क्रॉसिंग पर भी रुककर ट्रैफिक का मुआयना करना, सिग्नल्स और रोड मार्किंग्स को फॉलो करना उनकी सेफ्टी को इंश्योर करता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि अगर हम सब मिलकर बच्चों को रोड क्रॉस करने का सही तरीका सिखाएं, तो हम न सिर्फ उनकी हिफाजत करते हैं बल्कि एक डिसिप्लिन्ड और सेफ ट्रैफिक कल्चर को भी बढ़ावा देते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश कर

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे टेनिस खिलाड़ी के बारे में। मॉडर्न टेनिस स्टार हैं और जबरदस्त खिलाड़ी हैं एलेना रिबाकिना। जी हाँ दोस्तों, एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान की हैं और आज के दौर में उन टेनिस स्टार्स में वो बिलोंग करती हैं जो कि अपनी कंसिस्टेंसी, पावरफुल गेम और प्रेशर मोमेंट्स में कंपोजर की वजह से वर्ल्ड टेनिस में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रिबाकिना ने कम उम्र में ही प्रोफेशनल टेनिस की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे अपने इस गेम को इतना मजबूत बनाया कि आज वो विमेन्स टेनिस की एलिट प्लेयर्स में शुमार होती हैं। रिबाकिना की टेनिस जर्नी रशिया में शुरू हुई जहां उन्होंने जूनियर लेवल पर टेनिस सीखना और कॉम्पिटिटिव मैचेस खेलना शुरू किए। बाद में उन्होंने कजाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का फैसला किया जो उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित होता है। कजाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए उन्होंने इंटरनेशनल सर्किट पर अपनी पोजीशन मजबूत की और कंट्री को भी विमेन्स टेनिस में एक नई पहचान दिलाई। अगर उनकी करंट फॉर्म और रैंकिंग की बात की जाए तो रिबाकिना इस वक्त WTA रैंकिंग्स यानी विमेन्स टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग्स के मुताबिक वर्ल्ड नंबर 2 पर हैं। ये उनके करियर का हाईएस्ट रैंकिंग लेवल भी रहा है। टॉप रैंकिंग तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि रिबाकिना ने सिर्फ एक या दो टूर्नामेंट्स में नहीं बल्कि लंबे अरसे तक कंसिस्टेंटली वर्ल्ड क्लास टेनिस खेली है। अगर उनकी करंट फॉर्म और रैंकिंग की बात की जाए तो रिबाकिना इस वक्त WTA रैंकिंग से मुताबिक नंबर 1 खिलाड़ी हैं। शी इज द टॉप मोस्ट रैंक प्लेयर इन द टेनिस वर्ल्ड इन विमेन्स टेनिस। ये उनके करियर का हाईएस्ट रैंकिंग लेवल भी रहा है और टॉप रैंकिंग तक पहुंचना दोस्तों इस बात का सबूत है कि रिबाकिना ने सिर्फ एक या दो टूर्नामेंट्स में नहीं बल्कि लंबे अरसे तक कंसिस्टेंटली वर्ल्ड क्लास टेनिस खेली है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ग्रैंड स्लैम स्टेज पर आई। रिबाकिना ने विंबलडन चैंपियनशिप 2022 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। उस टूर्नामेंट में उन्होंने प्रेशर फील्ड मैचेस में रिमार्केबल कंपोजर दिखाया और फाइनल में ओंस जबोर को हराकर अपना पहला मेजर टाइटल हासिल किया। दैट वाज द स्टार्टिंग जर्नी ऑफ

एलिना रबाकेना एंटर द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल टेनिस। विंबलडन की फतेह ने उन्हें ग्लोबल टेनिस ऑडियंस के सामने एक जेन्युइन ग्रैंड स्लैम चैंपियन के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। इसके बाद रबाकेना ने अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाया और 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीतकर अपनी ग्रैंड स्लैम कलेक्शन में दूसरा मेजर ऐड किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन की जीत ने ये साबित किया कि विंबलडन की कामयाबी सिर्फ एक एक्सेप्शनल रन नहीं थी, बल्कि रबाकेना कंसिस्टेंटली ग्रैंड स्लैम लेवल पर टाइटल जीतने की सलाहियत रखती हैं। एक लेवल छोड़ दिया उन्होंने कि मैंने विंबलडन इसलिए जीता नहीं कि बिकॉज मैं टैलेंटेड हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद उन्हें यह साबित किया कि मेरा जो विंबलडन टाइटल था दैट वॉज नॉट जस्ट बाई फ्लूक, बस एम ही चांस नहीं लिया था और जीत गया। दैट वॉज अ कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी इज द की वर्ड टू डिफाइन एलेना रबाकेना। रबाकेना का प्लेइंग स्टाइल उनकी सबसे बड़ी पहचान है। उनका सर्व विमेंस टेनिस के सबसे डेंजरस वेपन्स में से एक माना जाता है। वो पावरफुल फर्स्ट सर्व्स के जरिए ओपोनेंट्स पर शुरू से ही प्रेशर बनाती हैं और शॉर्ट पॉइंट्स जीतने की कोशिश करती हैं। उनकी हाइट और रीच भी उन्हें सर्व और कोर्ट कवरेज में फायदा देती है। अच्छा, सर्विस यानी सर्व के साथ साथ उनका बेसलाइन गेम भी बहुत पावरफुल है। रबाकेना ग्राउंड स्ट्रोक्स को डेप्थ और पेस के साथ हिट करती हैं, खासतौर पर फोरहैंड और बैकहैंड दोनों विंग से वो ओपोनेंट को डिफेंसिव पोजीशन में धकेल सकती हैं। बहुत डिफिकल्ट है उनको खेलना। उनका गेम सिर्फ पावर पर डिपेंड नहीं करता है, वो रैलीज को समझने और सही वक्त पर अटैक करने की सलाहियत भी रखती हैं। रबाकेना की एक और खास क्वालिटी प्रेशर मोमेंट्स में उनका काम रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ग्रैंड स्लैम मैचेस में जब स्कोरबोर्ड टाइट हो और प्रेशर अपने पीक पर हो, तब भी वो अक्सर अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखती हैं। ये मेंटल स्ट्रेंथ उनके गेम को और डेंजरस बना देती है। करियर के दौरान इंजरीज और डिफिकल्ट पीरियड्स ने भी रबाकेना का टेस्ट लिया, लेकिन हर सेटबैक के बाद उन्होंने कमबैक करने की कोशिश की और अपने लेवल को मेंटेन किया। मॉडर्न वुमेन्स टेनिस में कंपटीशन बहुत टफ हो गई है, जहां हर टूर्नामेंट में मल्टीपल प्लेयर्स टाइटल की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स होती हैं, और इस एनवायरनमेंट में रबाकेना का कंसिस्टेंटली टॉप लेवल पर रहना उनकी क्वालिटी को हाईलाइट करता है। आज एलेना रबाकेना वुमेन्स टेनिस की लीडिंग कंटेंडर्स में शामिल हैं। उनका नाम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के फेवरेट्स में लिया जाता है और उनका पावरफुल सर्व, एग्रेसिव बेसलाइन गेम और काम टेम्परमेंट ओपोनेंट्स के लिए एक सीरियस चैलेंज होता है। रबाकेना सिर्फ एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं है, बल्कि मॉडर्न डे टेनिस की एक पावरफुल फोर्स हैं। उनकी जर्नी ये दिखाती है कि टैलेंट के साथ कंसिस्टेंसी, मेंटल स्ट्रेंथ और प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी किसी भी खिलाड़ी को वर्ल्ड स्टेज पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्टिंग कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: रमज़ान को सही से गुजारने की, सही से इबादत करने की इन दिनों में। अब आते हैं बच्चों, रमज़ान नाम क्यों है? सही, रमज़ान जो नाम है ना, तो इसका क्या मतलब है, ये नाम क्यों रखा गया इस महीने का? अच्छा, रमज़ान अरबी लफ्ज रमज से आया है, जिसका मतलब है शदीद गर्मी। पुराने ज़माने में जब ये महीना आया था तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया रमज़ान। उलमा ये भी कहते हैं कि रमज़ान का एक और मतलब है गुनाहों को जला देना। यानी रमज़ान ऐसा महीना है जो दिल की गंदगी साफ करता है, गलतियों को जलाता है और दिल को नया बना देता है। जैसे कपड़े धोकर साफ हो जाएं, वैसे ही रमज़ान में दिल जो है ना धुल जाता है। तो बच्चों के लिए हमारा पैगाम यही है इस प्रोग्राम से कि रमज़ान हमें क्या सिखाने के लिए आया है कि भाई कुरान से दोस्ती करो, अल्लाह की बातें सुनो, दिल को साफ करो और शुक्रगुजार बनो। रमज़ान हमें ये बताता है कि अल्लाह सख्त नहीं, अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह हमें बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। इसीलिए रमज़ान आया और इसीलिए कुरान आया, ताकि हम सब रोशनी में चल सकें, अंधेरे में हलाकत का शिकार न बने। और एक छोटी सी ब्रेक के बाद मुलाकात होती है, सामने करम जुड़े रहें हमारे साथ।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुक कर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।
0: वेलकम बैक, एक मतलब फिर आप सबको खुशामदीद प्रोग्राम कुरान फॉर किड्स में। तो प्यारे बच्चों, अब हम जो है ना एक साथ तिलावत करेंगे ये आयत। तसव्वुर करो कि अल्लाह, हम सब अल्लाह के सामने बैठे हैं, आहिस्ता आहिस्ता खामोशी के साथ पढ़ो, अल्लाह का प्यारा पैगाम आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, एक बार फिर दिल से, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ما شاء الله ما شاء الله اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں سب سے قیمتی تحفہ دیا، اور وہ تحفہ ہے قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن روشنی ہے، قرآن راستہ ہے، قرآن مداوی ہے دل کا، قرآن دل کو ٹھیک کرتا ہے، ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। रमज़ान में कुरान उतरा ताकि हमें सही और गलत का फ़र्क समझ में आए, यानी क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस रास्ते पर चलना है और किससे बचना है। तो पहले रमज़ान से पहले वो शौक़, फिर रमज़ान में अमल, फिर रमज़ान गुजरने के बाद या फिर हर रोज़े के अख्तिताम पर, हर इबादत के इकमाल पर जब वो ख़त्म करते हैं, हम इबादत मुकम्मल करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो ज़िक्र के बाद आता है शुक्र का मरहला। गोया कि हम इस तरह कहें कि जिक्र और शुक्र दोनों एक साथ ही चलने चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना एक बहुत बड़ी नेमत है और एक बहुत खूबसूरत इबादत भी। शुक्र का मतलब क्या है? शुक्र का मतलब है दिल से मान लेना कि जो कुछ मेरे पास है वो सब अल्लाह की तरफ से है। मेरी सांसें, मेरी आंखें, मेरा घर, मेरा खाना, सबसे बड़ी नेमत कुरान। अल्लाह ने हमें शायद के जरिए एक खास रास्ता दिखाया है, वो रास्ता है रमज़ान का रास्ता। रमज़ान ख़ास क्यों है? क्योंकि यही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। बच्चों, जब कोई बच्चा रमज़ान में कुरान पढ़ता है और उस पर अमल करता है, रोज़ा रखता है और अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, तो आपको क्या लगता है वो दरअसल क्या कर रहा है? वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है, और अल्लाह को शुक्र बहुत पसंद है। इतना पसंद कि अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, लेकिन शक्र तुम लाज़ीदन्नकुम। तो रमज़ान जो है ना सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि दिल को जगाने का महीना, अल्लाह को पहचानने का महीना, शुक्र करने का महीना, शुक्र को सीखने का महीना। तो दिल से कहो, या अल्लाह शुक्रिया कुरान देने का, शुक्रिया रमज़ान देने का, शुक्रिया हमें अपना बंदा बनाने का, मोमिनीन या मुस्लिमीन में शामिल करने का। रमज़ान हमें सिखाता है, अल्लाह ने हमें कुरान दिया है ताकि हम अच्छे इंसान बने, सच्चे इंसान बने, और एक प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिस करने वाला एक मोमिन बने। और सर, यही कुरान रमज़ान का सबसे खूबसूरत तोहफा है। इसी कुरान को हमें मजबूती से थामना है। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें इसकी तौफीक दे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद बिइज़्निल्लाह तआला।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाए।

0: एक आयत कम से कम पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, सिर्फ एक आयत, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ, मुस्कुराहट के साथ समझाइए उन्हें। सिर्फ एक आयत ही अब रोज़ाना जब उसके साथ शेयर करते हैं तो वो बच्चे के दिल में कुरान की मोहब्बत डाल सकती है। रमज़ान की असल कामयाबी तो यही है कि बच्चे का दिल कुरान से जुड़ गया हो। जब कुरान दिल में उतर जाए तो फिर वो सिर्फ रमज़ान का नहीं रहता, पूरी ज़िंदगी का साथी बन जाता है। कुरान से ताल्लुक बच्चे को सिर्फ नेक नहीं बल्कि मजबूत, मुतमईन और बाइखलाक इंसान बनाता है। प्यारे बच्चों और प्यारे वालिदैन, एक बहुत अहम बात हमें समझनी है। बड़े मशहूर आलिम दीन इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कुरान का असल मकसद ये है कि हम उसके माना समझें, उस पर अमल करें। अगर कोई सिर्फ पढ़ता रहे लेकिन न समझे न अमल करे तो कुरान का हक अदा नहीं करता। यानी कुरान सिर्फ जबान की किताब नहीं बल्कि यहाँ पूरी ज़िंदगी का नक्शा है इस कुरान में। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ये भी एक और बड़े आलिम दीन हैं, कहते हैं इन्होंने कुरान को छोड़ने या हजर करने की 5 शक्लें बताईं। इन 5 शक्लों को हमें गौर से समझनी चाहिए। पहली किस्म तो ये, न कुरान को सुने, न उस पर ईमान रखे, न उसको बस बिला तवज्जो रहे, उसकी तरफ उसकी कोई तवज्जो ना हो। यानी कुरान बस अपनी जगह पर, हम अपने मोबाइल फ़ोन में, हम अपने जगह में मसरूफ़, कुरान की तिलावत हो रही है लेकिन हमारा दिल जो है ना दूसरी तरफ है, ना हम अपने कान लगा रहे हैं इस तिलावत की तरफ। ये भी कुरान को छोड़ने की एक शक्ल है। यानी कहीं अगर नमाज में हम खड़े हैं या फिर मस्जिद में बैठे हुए हैं, कहीं कुरान की तिलावत हो रही है तो हमें सही से कुरान की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। वरना हजर कुरान, जिसके बारे में काफ़ी वाइद आई है कि रसूल क़यामत के दिन अपने रब से कहेंगे मेरी कौम ने कुरान को हजर किया था, इन्ना कौम इत्तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा, तो यही है हजर कुरान की शक्लें कि कुरान कहीं तिलावत हो रही हो, कहीं कोई इमाम नमाज पढ़ा रहा हो लेकिन हम अपनी तरह मसरूफ़ रहें। फिर दूसरी किस्म यह है कि कुरान पढ़ना लेकिन उस पर अमल न करना। कुरान कहता है सच बोलो और हम झूठ बोलते रहें, कुरान कहता है नरमी करो और हम गुस्सा करते रहें, तो ये भी कुरान से दूरी है। तीसरी किस्म है ज़िंदगी के फ़ैसलों में कुरान को शामिल न करना। यानी कुरान मौजूद है लेकिन हम ज़िंदगी में सिर्फ अपनी मर्ज़ी करते हैं, अल्लाह की बात नहीं पूछते, ये भी कुरान को छोड़ना है। चौथी किस्म, कुरान को बग़ैर समझे पढ़ना। यानी सिर्फ जल्दी जल्दी आवाज़ निकालना, न सोचना, न सवाल करना, न मतलब जानना, ये ऐसे है जैसे किसी ख़त को पढ़े बगैर लिफाफा ही देखते रहें। पांचवी किस्म है दिल की बीमारियों के लिए कुरान से शिफा न लेना। जब दिल में हो गम, डिप्रेशन, हसर, डर, मायूसी और हम कुरान की तरफ न जाएं, सिर्फ दुनिया की तरफ और भी मज़ीद आगे बढ़ते रहें और कोशिश करें दुनिया से इसका हल निकालने का, तो गोया हमने कुरान को छोड़ दिया। अरे कुरान ही तो शिफा है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन कहेंगे या रब्बी नक़ौम इत्तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा, या रब मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। ये बात बहुत दर्द वाली है सामिन किराम। तो बच्चों, हमें जो सुन रहे हो, हमें क्या करना है? कुरान के साथ दोस्ती करनी है, दिल लगाकर पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है, सवाल करना है, फिर थोड़ा थोड़ा ज़िंदगी में भी लाना है। अल्लाह खुद फरमाते हैं हमने कुरान का आसान बना दिया है। यानी ये मुश्किल किताब नहीं, ये बच्चों के लिए भी आसान है, सबके लिए आसान। शर्त यह कि दिल हाजिर हो, अकल साथ हो, नीयत हो, या अल्लाह मैं सीखना चाहता हूँ। बार बार कहो, अगर कोई दिक्कत पेश आ रही है कोई मसला नहीं, अपने अज़म का यादा करते रहो बार बार, अज़म बिल जज़म, नहीं मुझे सीखना ही है। उस तरह कुरान को दोस्त बनाना है, अपना रहनुमा बनाना है। अल्लाह सुभान व तआला हमें इन तमाम हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम के इख्तिताई मरहले में, जुड़े रहे हमारे साथ।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।
0: सभी कराम, इस प्रोग्राम में हमने निहायत बहुत ही खूबसूरत बात सीखी है कि रमज़ान का महीना है, दरअसल कुरान का महीना है और कुरान हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। जिस तरह रमज़ान ये दिल को साफ करने का, दिल की बेदारी, हमारे ईमान को मजबूत बनाने का महीना है, अल्लाह खुद फरमाते हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो मोमिनों के दिल लरज उठते हैं, जब कुरान पढ़ा जाता है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। यानी कुरान पढ़ने से दिल नरम होता है, गम हल्का हो जाता है, दिल में सुकून आ जाता है। और इस तरह एक खूबसूरत बात यह भी है कि कुरान पढ़ना और रोज़ा रखना आसान बना देता है, क्योंकि कुरान हमें

0: सबर सिखाता है, हौसला देता है, याद दिलाता है कि हम अल्लाह के लिए सब कर रहे हैं। तो रमज़ान अहले कुरान के लिए सबसे ख़ास महीना होता है। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को ज़मीन पर भेजा। रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और शैतान कमज़ोर हो जाते हैं। यानी यही महीना दिल बदलने का महीना है, आदतें बदलने का महीना है, कुरान से दोस्ती बढ़ाने का महीना है। बच्चों, रमज़ान हमें एक मौका देता है कि हम कुरान के साथ नया रिश्ता बनाएं। चाहे रोज़ाना एक ही आयत के ज़रिए क्यों ना हो, चाहे चंद सत्रें हों, लेकिन दिल से समझ कर। रमज़ान कुरान का महीना, जिस रमज़ान में हमें कुरान के साथ वो ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करनी है। अल्लाह सुब्हानहु ताला हमें तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम कुरान फॉर किड्स के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर शहबाज और मुझे तलहा शफर जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: Smart money.
2: हेलो एंड वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक फाइनेंशियल टर्म पे, और ये टर्म है एमोर्टाइजेशन, यानी एक बड़ी कॉस्ट को वक्त के साथ डिवाइड करना। चलिए जानते हैं कि ये टर्म हमें और आपको क्या सिखाने वाली है। दोस्तों, जब हम बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में एमोर्टाइजेशन का लफ्ज सुनते हैं तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। इसका मतलब है किसी इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान धीरे धीरे एक्सपेंस की शक्ल में रिकॉर्ड करना। सबसे पहले यहाँ पर यह भी समझना होगा कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या है। देखिए, इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो फिजिकली नजर नहीं आते, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत कीमती होते हैं। मिसाल के तौर पे ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड नेम, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ये सब चीजें आप हाथ से टच तो नहीं कर सकते, लेकिन इनकी मार्केट वैल्यू होती है और ये कंपनी को पैसा कमा कर देते हैं। अब मान लीजिए एक कंपनी ने एक पेटेंट खरीदा और पेटेंट की कॉस्ट थी $100,000 और उस पेटेंट की यूजफुल लाइफ है 10 साल। अब अगर कंपनी पूरे $100,000 को एक ही साल एक्सपेंस दिखा दे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत पिक्चर दिखाएगा, है ना। इसीलिए अकाउंटिंग के रूल के मुताबिक कंपनी इस कॉस्ट को 10 सालों में डिवाइड करेगी। कैलकुलेशन है 100,000 डिवाइडेड बाय 10। इस तरह से हर साल कंपनी $10,000 को एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी और इस प्रोसेस को एमोर्टाइजेशन कहते हैं। देखिए, एमोर्टाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी जानना जरूरी है। सोचिए, अगर आपने एक फ्रेंचाइजी खरीदी जो 20 साल तक इनकम जनरेट करेगी, अगर आप पूरी कॉस्ट एक ही साल में एक्सपेंस कर दें तो प्रॉफिट बहुत कम नजर आएगा, लेकिन असल में उस फ्रेंचाइजी का फायदा तो अगले 20 साल तक मिल रहा है। इसीलिए अकाउंटिंग कहती है कि जिस ड्यूरेशन तक एसेट बेनिफिट दे रहा है उसी ड्यूरेशन में उसकी कॉस्ट को स्पीड करो। इसी प्रिंसिपल को मैचिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, यानी इनकम और एक्सपेंस को उसी पीरियड में शो करो जिस पीरियड में बेनिफिट मिल रहा हो। अब देखिए, डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन में भी फर्क है। स्टूडेंट्स और बिगनर्स अक्सर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स भी कर देते हैं। डिप्रिसिएशन जो है वो क्या है? टेंजिबल एसेट्स पर ये डिप्रिसिएशन लगता है। एग्जांपल्स हैं, बिल्डिंग है, आपकी गाड़ी है, मशीनरी है, फर्नीचर है। वही एमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स पर होता है। टैक्स प्लानिंग में, बेटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, एसेट वैल्यू ट्रैक करने में और इन्वेस्टर्स को क्लियर पिक्चर देने में। अब कुछ लोग कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि एसेट खरीद लिया मतलब पूरी कॉस्ट फॉरेन एक्सपेंस कर दो। ये अकाउंटिंग के रूल के खिलाफ है। जिस एसेट का बेनिफिट फ्यूचर

0: में मिल रहा हो उसकी कॉस्ट को भी फ्यूचर पीरियड्स में एलोकेट करना चाहिए। इसे एलोकेशन ऑफ एमोर्टाइजेशन भी कहते हैं। देखिए, अब बस जाते जाते आपसे यही कहूंगी कि एमोर्टाइजेशन हमें और आपको ये सिखाती है कि हर बड़ी कॉस्ट को एक ही वक्त में नहीं उठाया जाए। जिस तरह जिंदगी की जिम्मेदारियां वक्त के साथ पूरी होती हैं, उसी तरह इनटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट भी उनकी यूजफुल लाइफ में स्प्रेड की जाती है। स्मार्ट बिजनेसेस सिर्फ पैसा खर्च नहीं करते बल्कि हर कॉस्ट को सही वक्त पर रिकॉग्नाइज करते हैं और यही एक्यूरेट अकाउंटिंग की बुनियाद है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते यही कहूंगी कि एक गोल्डन रूल अपने जहन में रखिए। टेंजिबल एसेट्स इज एक्चुअली इक्वल टू डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल एसेट्स टू एमोर्टाइजेशन। ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया क्या? लेट्स स्टिक टू व्हाट वी हैव लर्न। फिलहाल के लिए मुझे यानी नासिया को और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो संतरी एफएम 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107,
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यस नाउ वेलकम वेलकम वेलकम FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और आज द रिक्वेस्ट शो की जो थीम है दैट इज 2000s थ्रोबैक, यानी फिल्मी दुनिया में जो 2000s का एरा था वो बड़ा कमाल का था। कहते हैं कि वो जमाना था जब दिल टूटने पर हम सैड सॉन्ग सुनते थे, खो जाते थे। हाँ, किसी पर दिल आ जाए तो सिर्फ रोमांटिक गाने रिपीट पर चलते थे, और दोस्तों के साथ पार्टी करना हो तो तय रहा कि कोई ना कोई डांसिंग नंबर्स जोरों शोरों से बजता ही रहेगा। वेल, 2000s की यादें बड़ी कमाल की है, तो आपको कौन सा गाना बहुत ज्यादा पसंद है 2000s के एरा का दैट यू रियली वांट टू लिसन, जरूर शेयर करें 6622107 पर 6622107, या फिर आप हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े, आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। अभी जो सबसे पहली रिक्वेस्ट आई है दैट इज ऑफ मोहम्मद, एंड उन्होंने एक बहुत ही प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट की है।
2: चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता।
1: क्या बात है, शान की आवाज कैलाश खेर के साथ, एंड लिटरली जब फना फिल्म में शान ये गाना गा रहे थे तो क्योंकि उनको उदित नारायण बहुत पसंद है तो समहाउ वो उनके कैरेक्टर में घुस जा रहे थे, उनके स्टाइल को कॉपी कर रहे थे। देन इस फिल्म के डायरेक्टर साहब कुणाल कोहली ने उन्हें काफी मोटिवेट किया कि नहीं भाई अपनी आवाज को अलग रखो, एंड दिस इज हाउ ये गाना हमें मिला, और इस गाने के लिए ने फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। सो यस, दिस इज अ सॉन्ग जो कि पूरा पूरा सुनेंगे। उसके बाद रमेश की रिक्वेस्ट पर हम सुनेंगे, जब इस म्यूजिक को सुनते हैं तो एकदम से समझ में आ जाता है कि गाना कौन सा है, भागते दौड़ते हमें कौन दिखता है, अमीषा पटेल एंड ऋतिक रोशन। और इन दोनों की डेब्यू फिल्म का गाना है कहो ना प्यार है, जो कि हम पूरा पूरा आगे सुनने वाले हैं। सो दोनों ही कमाल की रिक्वेस्ट आपके लिए हम प्ले करेंगे, आपकी कौन सी रिक्वेस्ट है डू शेयर विद अस ऑन 6622107। कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
5: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
4: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर,
3: फ्यूचर करियर
4: आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी. आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: Yes, and now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप. द रिक्वेस्ट शो पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और क्या कमाल के गानों की रिक्वेस्ट आई है. मतलब बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा गाने आज आपके लिए प्ले हो सके. वेल 2000s का जो एरा था, फिल्मी दुनिया का सफर, कभी केके की आवाज वो जो थी ना दिल को छू लेती थी, कभी सोनू निगम के गानों ने रोमांस का हमें मतलब समझाया था, और जब हम श्रेया घोषाल की आवाज सुनते थे दैट स्वीटनेस, तो हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते थे. एंड देन कम्स एक बड़ी ही कमाल की एंट्री, दैट वॉज हिमेश रेशमिया. ओहो, उनके गानों को सुनकर मतलब हर कोई झूमने लगता ही था. भले ही कहे कि देखो ये नाक से गा रहे हैं, लेकिन उनके गानों में मैजिक तो है कि नहीं. तो चलो सोचो सोचो कौन से वो गाने हैं जो कि आपके दिल को जीतते आ रहे हैं, जो कि आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा अभी भी है 2000s एरा के. यस, लेट मी नो योर फेवरेट्स. 6622107 6622107 पर मैसेज करें अपने डेडिकेशंस, अपने रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स. और अभी हम बढ़ते हैं अगली रिक्वेस्ट की तरफ, विच इज ऑफ रिजवान एंड जमील. और ये बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है. मतलब एक तरफ आतिफ असलम है और दूसरी तरफ अलका याग्निक. किस्मत कनेक्शन का ये गाना, एंड दिस कोलैबोरेशन इज आल्सो वेरी यूनिक. सो आतिफ असलम और अलका याग्निक की आवाज में ये गाना हम पूरा पूरा आगे एंजॉय करने वाले हैं. और उसके बाद फैजल साहब की रिक्वेस्ट, राज फिल्म का वो गाना जिसमें अलका याग्निक की हॉन्टिंग आवाज है. और फिल्म में वाकई में गाना जितना खूबसूरत लगता है, लेकिन बीच में ऐसी फीलिंग आती है कि उफ कभी कहां से घोस्ट आ जाएगा. बट यस, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक जो कि आपकी राहों में पूरा पूरा आएगा. और आप भी अपनी जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट हमसे शेयर करें 6622107 पर. एंड लेट्स एंजॉय द म्यूजिक. आगे बढ़ते हैं. बा खुदा तुम ही हो आपकी राहों में आ चुका है स्टेडियम टू FM 107 दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: दोस्तों, मैत्राश ऐप के जरिए वर्क वीजा आसानी और तेजी से जारी किया जा सकता है, जिसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत भी नहीं होती। इस खदमत से फायदा उठाने के लिए सबसे पहले मैत्राश ऐप की होम स्क्रीन पर जाकर वीजा का इंतखाब करें, फिर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हुए वर्क वीजा का ऑप्शन चुनें। वर्क वीजा के सफहे पर मुतालिक एप्लीकेशन नंबर सिलेक्ट करने के बाद इशू वीजा पर क्लिक करें। इसके बाद एप्लीकेंट की कौमियत या नेशनैलिटी का इंतखाब करें और उसके पासपोर्ट की वाजे कॉपी अपलोड करें। फिर एक साफ और वाजे पर्सनल फोटोग्राफ अपलोड करें। तमाम मालूमात अपलोड करने के बाद जाती डेटा का एहतियात से जायजा लें और यकीन कर लें कि तमाम तफसीलात दुरुस्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। दरख्वास्त जमा करते ही अमल मुकम्मल हो जाएगा और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए मुतालिका अथॉरिटी को भेज दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि ये डिजिटल सर्विस वीजा के इजरा के अमल को मजीद आसान, तेज और मौसर बनाती है और मुस्तफीद अफराद को घर या दफ्तर से ही अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करने की सहूलत फराहम करती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
5: चले तो कट ही जाएगा सफर।
4: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में।

0: जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
1: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से
2: 7:15 बजे से
1: FM 107 पर दो हवाले कबीर के साथ
3: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
0: Yes, my Desi audience, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी एफ और अमिता. द रिक्वेस्ट शो चल रहा है और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 2000s का जो एरा था वो कुछ अलग ही था. मतलब एक तरफ रोमांटिक मेलोडीज होती थी, दूसरी तरफ जबरदस्त डांस नंबर्स और तीसरी तरफ वो इमोशनल सॉन्ग्स जो सीधा दिल पर लगते थे, है कि नहीं. उस जमाने में गाना पसंद आ जाए तो कभी म्यूजिक शॉप से CD खरीदने लगते थे हम, या फिर रिंग टोन डाउनलोड करते थे, या फिर हम गाने अपने दोस्तों को डेडिकेट करते थे, या फिर सिर्फ हमारी दुनिया होती थी हेडफोन्स. आपकी दुनिया इन सब में से कौन सी थी, बताओ जरूर शेयर करो अपने 2000s के फेवरेट सॉन्ग्स या अपने डेडिकेशंस 6622107 पर. अभी हम आगे बढ़ते हैं एक अगली रिक्वेस्ट की तरफ. अहमद की रिक्वेस्ट है, इट्स अ वेरी वेरी यूनिक सॉन्ग असलम एंड शिबानी का, जो कि बहुत ही कमाल का गाना है एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स. मतलब इस गाने की रिक्वेस्ट बहुत कम आती है एंड आई रियली लव इस गाने को सुनना, क्योंकि नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हैं और हमारे दोस्तों के ग्रुप को ये गाना बहुत पसंद था, तो डेफिनेटली वी विल ऑल इन्जॉय टुगेदर. उसके बाद रियाज, अशोक एंड प्रिंसन, ये तीन लिसनर्स ने रिक्वेस्ट की है एंड द सॉन्ग इज इस गाने की खास बात है कि बस म्यूजिक से ही गाना हर कोई पहचान लेता है. ओहो, क्या बात है, धूम मचा ले सुनिधि चौहान की आवाज. डेफिनेटली इस गाने को हम पूरा एंजॉय करने वाले हैं और हमारे जो रेगुलर लिसनर है प्रिंसन, उनका कहना है कि अमिता ये गाने पे ना मैं परफॉर्मेंस देने वाला था लेकिन ना मेरा पैर फ्रैक्चर था. प्रिंसन, लेट्स डू वन थिंग, हम ना बैड मेमोरीज को साइड करते हैं बट लेट्स रिमेंबर द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग. तो ये गाना पूरा हम आपके लिए प्ले करेंगे और हमारे लिसनर्स जो भी गाना सुनना चाहते हैं 2000s एरा का, डू रिक्वेस्ट नाउ. कुछ ही देर में क्विज टाइम भी लेकर आएंगे लेकिन अभी हम खोने वाले हैं मोहब्बत में. हो गई है मोहब्बत जस्ट आपके लिए. Stay tuned to FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता. सीरियसली द रिक्वेस्ट शो पर जो आपकी चॉइसेस हैं, जो रिक्वेस्ट हम प्ले कर रहे हैं, सच में हमारे दिल को जीतते जा रही है. दिल खुश हो गया मेरा. लेकिन अभी आपके फिल्मी नॉलेज को टेस्ट करने का टाइम है, सो इट्स टाइम फॉर
0: क्विज टाइम.
1: तो चलो जल्दी से आ जाओ, एक गाना सुनते हैं और आपको पहचानना है कि ये गाना कौन सा है.

Come on, guess the song. 666-22-107 पर अपने नाम के साथ और ये गाना पूरा पूरा आपके नाम हो जाएगा. और इसी के साथ अगली रिक्वेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं. सो ये हैदराबाद से आई है शेक रॉफ की और कहते हैं कि अमिता ये गाना तो प्ले कर ही दो. बहुत ही शानदार गाना है उदित नारायण एंड अलका याग्निक की आवाज. दिल है तुम्हारा फिल्म का गाना और बहुत ही अडोरेबल मूवी है सच में. सो यस, इस गाने को हम पूरा पूरा इंजॉय करेंगे. और उसके बाद इमरान की रिक्वेस्ट, आई शुड टेल यू कि 2000s के एरा में ये फिल्म और इसका गाना और इसके गाने सुपर डुपर हिट रहे. मूवी धड़कन. गाना कौन सा है? दिल ने ये कहा है दिल से. बेहद बेहद खूबसूरत गाना आपकी राहों में आएगा. तो चलिए एंजॉय करते हैं. आप कहीं ना जाएं, बने रहे हमारे साथ FM 107 पर. दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप और इस वक्त द रिक्वेस्ट शो का आखिरी पड़ाव चल रहा है। वैसे क्या खास बात थी ना 2000s के एरा की कि फिल्म रिलीज होने से पहले इसके गाने रिलीज होते थे और वो भी सुपर हिट हो जाते थे, और कई बार हम थिएटर में सिर्फ गानों की वजह से मूवी देखने जाते थे, यानी फिल्म ही देखने जाते थे। वाह, सल्यूट टू 2000s एरा। और मैंने आपको क्विज टाइम पे एक गाना सुनाया था, कहा था गाना पहचानो। हाँ, तो कौन सा गाना है? द सॉन्ग इज मैं हूँ डॉन, डॉन फिल्म का, शान की आवाज़। और जिन्होंने बिल्कुल गाना सही पहचाना है वो है मोहम्मद यूसुफ खान, अदील है हमारे साथ, कैसर है हमारे साथ, और इनका नाम क्या है, गुलाम शरीफ खान है, तूबा है हमारे साथ, विच इज़ अ वेरी यूनिक नेम। रिजवान ने भी सही जवाब दिया है, शहजादा सलीम ने सही जवाब दिया है, और आफ्ताब ने सही जवाब दिया है। सो गुड जॉब गाइज। ये गाना पूरा पूरा आपकी राहों में आएगा, इंजॉय कीजिएगा। और इसी के साथ अब आप दीजिए मुझे इजाजत, आपकी मेरी मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे। तब तक क्या करना है, खूब सारा इंजॉय करना है, अपना ख्याल रखना है, हिटेड गाने सुनते रहना है कि नहीं? और जाते जाते ये कहना तो बनता है, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। Stay tuned to FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 5:01।
2: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: हाँ जी दोस्तों, सलाम आदाब, अ वेरी गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है, उम्मीद करें आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नाजिया और आप सभी को वेलकम कहना चाहेंगे इस अमेजिंग से शो में जिसका नाम है विमेन वेलनेस। देखा जाए

0: तो आपका हमारा साथ पूरे एक घंटे रहने वाला है और ये हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम होता है जहां हमारी भरपूर कोशिश रहती है कि हम ख्वातीन की सेहत से मुतालिक अहम मौजूआत महरीन से बातचीत करें ताकि हम सब बेहतर और सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। वेल, आज का हमारा जो एपिसोड है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द सॉलिड रीजन कि आज जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं अर्ली कैंसर के डिटेक्शन पे और साथ ही अर्ली अवेयरनेस पे। वेल, कैंसर के बारे में डर और गलतफहमियां जो हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन इलाज की कामयाबी से भी बढ़कर डायग्नोस करना, समझ पाना और उसके बारे में भरपूर मालूमात हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम जानेंगे कि कैंसर के क्या साइन हैं, कौन से अर्ली सिम्टम, स्क्रीनिंग कितनी ज़रूरी है और हम और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन से ऐसे कदम जो हैं वो उठा सकते हैं जिससे कैंसर के रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। वेल, बहुत सारी बात है करने के लिए और ये सारी बात यहाँ पर करने के लिए हमारे साथ हमारे बीच इस टॉपिक पर बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर ज़ेबा इकबाल, जिन्हें वेलकम कहना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम ऑन दिस एपिसोड ऑफ वुमेन वेलनेस। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं।
1: वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड आज हम बात करें कैंसर रिस्क एंड देयर अर्ली डिटेक्शन।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, आज इसी टॉपिक पे बात होगी और क्योंकि हमने कहा ही कि हमारा टॉपिक ही इस तरह का है कि जहाँ पर कैंसर के डिटेक्शन और अर्ली अवेयरनेस के बारे में हम सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी डॉक्टर कि जब हम फीमेल्स के बारे में बात करते हैं या रिस्क फीमेल्स में रिस्क को देखें तो ब्रेस्ट कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर, इनके बारे में ज़्यादा बात होती है। आपसे जानना चाहूँगी कि इसके अलावा ऐसे और कौन कौन से हैं कैंसर जिनके बारे में अवेयरनेस फीमेल्स के लिए बहुत अहम है।
1: आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा है। सर्वाइकल जैसे कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसका रिस्क एज वेल एज ब्रेस्ट कैंसर रिस्क तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चेदानी का रिस्क, दैट इज़ यूट्रन कैंसर रिस्क एंड ओवेरियन कैंसर रिस्क, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कैंसर्स है वो है फैलोपियन ट्यूब्स, द ट्यूब्स जिसे कहते हैं ना, नलियाँ जिसे कहते हैं, वो बहुत बहुत सारे लोग उसको, हम लोग उसको डायग्नोज ही नहीं करते। सो दैट इज़ बिकमिंग अ मोर इम्पॉर्टेंट रिस्क नाउ। जैसे आजकल भी ये बोला जाता है कि फैलोपियन ट्यूब इज़ द साइट ऑफ कैंसर, दैट मीन्स पहले जो कैंसर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब से स्टार्ट होता है। तो इफ़ यू रिमूव द फैलोपियन ट्यूब यू रिमूव 50% ऑफ ओवेरियन कैंसर रिस्क, सो दैट इज़ वॉट आई हैव सेड। सो वैन यू आर रिमूविंग एनी कैंसर, मतलब जो भी कैंसर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में निकाल रहे हैं तो दे उसके साथ भी फैलोपियन ट्यूब्स निकालना ज़रूरी है।
0: बहुत सही, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर, अगर हम कैंसर के रिस्क की बात करते हैं तो कैंसर का रिस्क कितना आप कहती हैं कि वो जेनेटिक्स से होता है और कितना हमारी लाइफस्टाइल, जिसमें हमारी डाइट हो गई, एक्सरसाइज है या हमारी और जो डेली हैबिट्स हैं उससे होता है?
1: That's a very, very important question. देखिए, normally genetic risk 5-10% of the population, और rest of the risk जो है 80% risk जो है lifestyle modification. So genetic in the sense, आपको genetic risk क्यों है ये कैसा पता चलेंगे आपको? क्योंकि अगर आपके family में किसी को cancer हुआ है but very young age, less than 50, या आपकी family में cancer 3-4 किस्म के एक इंसान को हुए हैं, या आपकी family जैसे कि your mother, your sister and your grandmother together है, तो ऐसे cancers genetic कहते हैं। So then you need to test as early as possible. Apart from that, the other risk are lifestyle modification. Lifestyle as in smoking, because smoking will increase the risk, cancer risk increase कर सकता है। मोटापा जिसे कहते हैं, मोटापा से ये होता है कि chronic inflammation जिसे कहते हैं कि सूजन जो body में होती है बहुत chronic, मतलब काफी सालों से अगर आपकी body cells सूज रहे हैं, then the chances of they having free radical injuries are very high, so then they convert into malignant cells. So motapa is very, very treatable and increase risk of cancer. And then smoking, and then lifestyle habits like alcohol and increase fat intake. So these are the things which can be taken care of in the lifestyle, and also sedentary lifestyle if you're very not exercising, that's also important.
0: दोनों ही चीज़ इम्पोर्टेंट हो गई। अच्छा डॉक्टर, कौन कौन से ऐसे अर्ली साइंस हैं या सिम्टम्स हैं जिन्हें आप कहेंगे ये फीमेल्स को किसी भी सूरत पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए?
1: नाउ व्हेन द कैंसर

0: is mostly after 45, but there are some young, pehle zamane ke young age cancers bhi hote hain. So there are certain symptoms hai jise aapko bilkul tawajjo deni hoti hai. Ek, agar aap sudden 5 kgs weight loss without any reason. Dusra, when you have bloating, agar aap achha kha rahe ho, achha exercise kar rahe ho, still you have gas bloating. And third, you have generalized weakness and you have hemoglobin, aapka jo blood hai ekdam niche gir raha hai. Ye 3-4 symptoms hai aur phul raha hai without any reason. Aapko, you have to go to the doctor and check, because there are certain tumor markers aate hain jisse hame pata chal sakta hai ki kaun se qisam ka cancer hai.
1: सही. अच्छा डॉक्टर, आजकल जो है ना वो जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो कॉमन हो गई है. आप हमें बताइए कि कौन लोग जो हैं वो जेनेटिक कंसल्टिंग या काउंसलिंग फिर टेस्टिंग करवाएं.
0: मैंने आपको कहा 5-10% पूरे कैंसर हो सकते हैं. तो मैंने कहा अगर आपकी फैमिली में आपके मम्मी को या आपकी दादी को या आपकी हो या जिस कैंसर था वो यंग एज पे था, जस्ट मोर देन लेस देन 45 इयर्स, वैसे लोगों को जेनेटिक टेस्टिंग करवाना जरूरी है. नाउ देयर अलग अलग किस्म के जेनेटिक टेस्टिंग्स होते हैं जिसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहते हैं. एक तो जीन टेस्ट होते हैं, वो नए मेथड से हम पिकअप कर सकते हैं उसके, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर टेस्ट है BRCA1, BRCA1 एंड BRCA2. और दूसरे टिश्यू टेस्टिंग हो सकते हैं जिसे हम टिश्यू से भी मालूम कर सकते हैं कि आपको कैंसर होगा. जैसे कि थोड़ी, जैसे कि बच्चेदानी के टिश्यू में हार्मोन स्पेसिफिक, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, वो टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं. थोड़े ब्लड होते हैं जैसे कि ट्यूमर मार्कर्स हो गए, CA125, CEA और CA15. ये ट्यूमर मार्कर्स हम खून में भी पिकअप कर सकते हैं. तो मुख्तलिफ ट्यूमर मार्कर्स, ब्लड टेस्ट एंड जेनेटिक टेस्टिंग आजकल मौजूद है. सो आप में टेस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क्स.
1: सही. अच्छा डॉक्टर, फैमिली हिस्ट्री को जानना कैंसर को, कैंसर के रिस्क को एसेस करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है?
0: फैमिली हिस्ट्री इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट. तो बिकॉज हम ना आजकल हमारे पास छोटी फैमिलीज में हम रहते हैं, वी डू नॉट स्टे इन एन एक्सटेंडेड फैमिली, सो वी रियली डू नॉट नो विच कैंसर रन्स इन अ फैमिली. सो वी नीड टू फाइंड आउट विच फैमिली हैज़, बिकॉज सर्टन फैमिलीज, थोड़े फैमिलीज में पेट का कैंसर जिसे कहते हैं कॉलोन कैंसर हाई होता है, तो आजकल हम टेस्ट कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं. थोड़े फैमिलीज में ब्रेस्ट कैंसर रिस्क हाई होता है, थोड़े फैमिलीज में थोड़ी फैमिलीज में ओवेरियन कैंसर रिस्क हाई हो सकता है, तो हम टेस्ट कर सकते हैं. तो ये रिस्क जो है हम नॉर्मली थोड़े ट्यूमर मार्कर्स को लेकर टेस्ट करते हैं. तो दिस इज़ हाउ वी टेस्ट फॉर रिस्क फॉर फैमिली हिस्ट्रीज.
1: और आप कहती हैं इम्पोर्टेंट बहुत है, जैसे आपने कहा. दोस्तों यहाँ पर जो है बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा इसी टॉपिक पे. फिलहाल हम बढ़ रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ. आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, डॉक्टर से कुछ पूछना चाहते हैं, फील फ्री टू कनेक्ट विद अस ऑन द नंबर 666-2207. हम फिलहाल ब्रेक पे यूं गए और यूं आए.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
3: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी उन्हें राह दी है. उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा दाता है. स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं. आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें.
2: सुनिए शो आरजिश खान के साथ दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी. हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तबीयत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है.

0: लीविंग अ नॉर्मल लाइफ, दैट इज द एम ऑफ स्क्रीनिंग. हैविंग सेड दैट, स्क्रीनिंग हर कैंसर के लिए जरूरी नहीं है. स्क्रीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है. 75% ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स कैन बी पिक्ड अप एज अर्ली एज प्री कैंसरस, और कैंसर ऑफ ब्रेस्ट विच कैन बी पिक्ड अप एंड देन कैन वी कैन गो बैक टू डू कर सकते हैं, और कैंसर ऑफ दी ऑल्सो कैन बी स्क्रीन बाय कोलोनोस्कोपी.
1: सही. अच्छा डॉक्टर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कई बार इन्फेक्शन से भी कैंसर होता है, तो पहले ये पता चाहिए और होता है तो कैसे होता है?
0: That's a very important question. इन्फेक्शन कैंसर तब्दील हो रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है आप इन्फेक्शन हो तो आपको कैंसर होगा. नाउ देयर इज एन इन्फेक्शन कॉल्ड HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. 70% ऑफ सर्वाइकल कैंसर हो सकते हैं. सो एज अ गायनोकोलॉजिस्ट और एज अ वुमेन वेलनेस स्पेशलिस्ट, आई वुड से कि हम स्क्रीनिंग करेंगे बाय डूइंग सिंपल HPV टेस्ट. अगर आप में HPV टेस्ट पॉजिटिव आता है, द चांसेस ऑफ यू कन्वर्ट इनटू कैंसर इज हाई. सो इन दैट केस वी विल ट्राई टू गिव यू वैक्सीनेशंस और प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग दैट इन्फेक्शन. इनडायरेक्टली देन यू आर प्रिवेंटिंग कैंसर सर.
1: अच्छा डॉक्टर, जो कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट हैं बहुत सारे हैं, अवेलेबल हैं, किसी भी फीमेल को पता चले कि उन्हें कौन सी स्क्रीनिंग करानी है और कौन सी किस एज में करवानी जो है वो चाहिए?
0: इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू टेक होम कि हर वुमन जो 25 ईयर्स की हो जाती है 25th बर्थडे पे,
1: 25
0: यस यू हैव इफ यू आर मैरिड. अगर आपकी शादी नहीं हुई है दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट इफ यू आर मैरिड दैट यू हैव टू स्टार्ट योर पैप स्मियर एवरी 3 years till 50 years to do a simple pap. ओके एंड आफ्टर 50 ईयर्स आपका जो एज थ्री आपका जो 3 years का वो है हम 5 years कर सकते हैं. सो यू नीड टू डू पैप स्मियर आफ्टर 25, आपकी शादी हो चुकी है एंड यू आर इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, एवरी 3 years. एंड आफ्टर 50 द सेम पैप स्मियर यू कैन डू एवरी 5 years.
1: Okay.
0: This is important. And there is another thing, and you have to start screening off after 50 years. If you do not have any history, every 2 to 3 years. Or if you have a history and assembly may breast cancer risk hai, then at earliest 40 to 45.
1: सही. अच्छा डॉक्टर, आपने अब से थोड़ी देर पहले स्मोकिंग को हल्का फिर डाइट या फिजिकल एक्टिविटी इन सब चीज़ों का जिक्र किया, तो मैं पूछनी हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, ये सारी हैबिट्स जो हैं, वो कैंसर रिस्क को कितना अफेक्ट करती हैं?
0: ये दैट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्मोकिंग इज इंजरियस नॉट ओनली टू द हेल्थ बट ऑल्सो कि अगर आप स्मोक करते हैं तो आपका जो इन्फिन है जो कैंसर तब्दील कर सकता है बॉडी में लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा. सो सपोज आपको मैंने आपको HPV जैसा बताया, अगर HPV आपकी बॉडी में लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, आप नॉर्मल सेल्स को HPV के एक्सपोजर में रख रहे हो. दैट मीन्स यू आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग अ नॉर्मल सेल इनटू अ कैंसर सेल विल बी हाई इफ यू स्मोक. एंड इफ यू डू नॉट स्मोक, वही इन्फेक्शन कम ड्यूरेशन के लिए आपके बॉडी में रहेगा. सो द प्रोबेबिलिटी फॉर नॉर्मल वर्ट विल बी लेस. You understand? So that is why all the risk factors like smoking, alcohol and lifestyle changes will increase the probability of the cell conversion. So hum unko reduce karte hain. Agar normal human being mein 1 to 2 years tak HPV aapki body mein rehta hai. Magar wohi human being agar smoke kar raha hai to 2 years ke badle 4 years rehta hai. तो आप उनको ज्यादा टाइम पीरियड दे रहे हो सेल को कन्वर्शन के लिए. इट्स बेटर टू रिड्यूस द टाइम पीरियड.
1: सही. अच्छा डॉक्टर, हमारे एक लिसनर हैं, वो पूछ ये रही हैं कि आप बता सकती हैं सर्वाइकल कैंसर के क्या अर्ली सिम्टम्स हैं?
0: Yeah, that's very important. Actually, cervical cancer risk happens to patients who have increased risk of infection. Agar aapko vaginal infection every alternate month, year mein 2 or 3 times aa raha hai, recurrent infection, or there is any changes in the discharge, or it's a blood stain discharge, or during the periods ke baad bhi aapko periods aa rahe hain, in between periods, or during intercourse you're having bleeding, then you need to check and do pap smear or just simple check from a gynecologist.
1: ओके, तो ये सारे सिम्टम्स आपने बताए. अच्छा डॉक्टर, सोशल मीडिया पर कैंसर कॉजिंग फूड्स और कुछ और फूड्स जो हैं वो बड़ा ही क्लेम करते हैं, दिखाते हैं कि इन फूड से कैंसर होता है. आपके हिसाब से क्या ये मिथ्स हैं या इनमें कोई रियलिटी है?
0: सोशल मीडिया

0: is a very, very larger platform nowadays. Uh-huh. And you know, social media, there is no control. So everybody is saying whatever they feel is saying. So I mm-hmm. personally feel that it has to be controlled and it has to be validated. Social media, hum sunna chahiye. So the thing is, foods causing cancer is very, very, it's a myth, because koi food cancer cause nahi karta. There is a chance that you might have changes, but not related to food, but related to infection, related to habits, related to smoking. So these are the things which have to be kept in mind. And when you're listening to a social media, how authentic wo social media source hai, aap pehle confirm kar lijiye, then you listen to them, because bahut sare cheeze hai social media.
1: Doctor, main aapko beech mein rok rahi hoon, kuch doctors bhi ye kehte hain ki processed food hai ya packed foods hai, in sab ko avoid kare, kyunki kahin na kahin ye cancer ke risk ko thoda sa elevate karte hain.
0: A processed food, yes, elevate karte hain, but when the processed food comes with an ISI mark, so when they come with a mark of a shelf life, then they don't cause any changes. But if you take a processed food which has passed the shelf life, then that causes a risk, but not necessarily there is a chance that it converts into cancer, but causes a risk. So they always come with a shelf life. That's very important to check before you use them.
1: Acha, aapne jaise kaha ki jo hamari daily habits hain, wo to wajah ban sakti hain ki risk ko thoda sa elevate कर दे, but not the eating habits.
0: Yeah.
1: या उसका भी कोई link है हमारी eating habits.
0: Obesity is a first important risk factor. Lot of cancers. Obesity जिससे आपके जो peripheral जो fat है, वो estrogen में convert हो जाता है, which is a estrogenic hormone, which causes lining. The lining of बच्चेदाने की lining होती है, उसका cancer होता है. It's called uterine cancers. So obesity causes uterine cancers, and obesity causes colon cancers. जो आती है, उसका cancer. So obesity is a silent cancer risk factor, and there are bahut sare grades hai obesity ke, body metabolic index. If you are above 30, grade 1 hota hai, above 35, grade 2, and above 40, grade 4 hota hai. So if you are above 35 BMI, then the risk doubles.
1: तो मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा important factor है कि आप अगर carefully और consciously नहीं कर रहे हैं, check नहीं कर रहे हैं, तो you never be आप बीमारियों को जो है दावते रहे हैं. Well दोस्तों, यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें जो हैं वो होंगे topic के. हमें अभी कुछ पूछना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ 666-1207 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर. आप अपना जो क्वेश्चन है हमें सेंड करें. फिलहाल हम बड़े ब्रेक की तरफ वापस आएंगे, तो कुछ और बातें भी करेंगे, उस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे. बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM 107.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज करें हमारे मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.ua.
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर DC.
4: दोस्तों, बिजली से लगने वाली आग का जगह है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें. सबसे पहले, हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों. लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना न सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है, बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है. वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है. ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और से बचाएं. अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई इश्यू आए, जैसे कि स्पार्क, झटका या यूजुअल स्मेल, तो फौरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं. आपके घर और ऑफिसेज की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें. FM 107 आप और आपकी फैमिली हिफाजत की ख्वाहिश है.
5: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने

0: आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
1: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी
2: गेम चेंजर सीजन 2।
3: हफ्ते के सबसे बेहतरीन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की इद करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का बेहतरीन फराहम करता है। सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस RJ Nazia के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
5: राइट दोस्तों, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो वेमन वेलनेस, मैं हूं नाजिया आपके साथ 5:35 ऑन द क्लॉक। और एक बार वापस से मैं वेलकम कहूंगी हमारी डॉक्टर ज़ेबा को, जो बहुत अच्छी और बहुत ही कीमती मालूमात आप सब तक पहुंचा रही हैं। अच्छा डॉक्टर, हम कैंसर की बात करते हैं, बात करना बहुत आसान है, हम समझ सकते हैं कि वो लोग जो इस से गुजरते हैं उनकी फैमिली वो खुद, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या कैंसर इज़ एक्चुअली द एंड ऑफ लाइफ, या कोई भी कैंसर पेशेंट जो है नॉर्मल लाइफ तरफ वापस आ सकता है तो कैसे, स्पेशली अगर हम वुमेन की बात कर रहे हैं, तो अगर वो अपनी नॉर्मल लाइफ में बच्चे कंसीव करना चाहती हैं, अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहती हैं, तो क्या ये मुमकिन है, पॉसिबल है?
6: वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये मत सोचिए कि अगर आपको कैंसर है दैट इज़ द एंड गोल एंड एंड ऑफ लाइफ एंड मेरी जिंदगी अब इसके बाद है, ऐसा कुछ नहीं है। वी ट्राई टू स्क्रीन कैंसर एज अर्ली एज पॉसिबल, इसीलिए स्क्रीनिंग अ जनरल पॉपुलेशन एंड पिकिंग एंड टू हैव अ कैंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू डाउन स्टेज द डिजीज, हम कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। दूसरा, अगर हम जल्दी पकड़ी पॉपुलेशन गो बैक टू हैव अ नॉर्मल लाइफ। अगर कैंसर स्टेज में एक कैंसर को पकड़ते हैं तो हम आपको छोटा सा सर्जरी करवाएंगे, इट इज़ नॉट अ वेरी वे लार्ज सर्जरी और नॉट कीमो, देर इज नो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी रिस्क। सो ऐसे पेशेंट्स दे कैन रिमूव द कैंसर एंड गो बैक एंड लीव अ नॉर्मल लाइफ एंड इवन बी प्रेग्नेंट। आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स इन माई प्रैक्टिस हु कम बैक फ्रॉम ए फर्स्ट स्टेज कैंसर ब्रेस्ट, सेकेंड स्टेज कैंसर ब्रेस्ट एंड बिकम प्रेग्नेंट एंड गो बैक टू इवन ब्रेस्ट फीडिंग द चिल्ड्रन। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आर एम एज अ गायनेकोलॉजिस्ट इज टू पिक अप कैंसर एज अर्ली एज पॉसिबल, गिव देम अ नॉर्मल लाइफ, बिकॉज पोस्ट कैंसर पेशेंट very important, making them feel that they are normal and going back to normal life is very important.
5: अच्छा डॉक्टर, क्या obesity तो आपने बताया, क्या stress और mental health का cancer के risk को elevate करने में किसी तरह का कोई connection है?
6: मेंटल हेल्थ आजकल बहुत अंडररेटेड है, नोबडी गिव्स इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ, इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग एंड डिप्रेशन इज नथिंग, बट व्हाट हैप अगर आप एक अपने आप पे देखें, आपको किसी ने बोला आपको कैंसर है, सो देयर इज सो मच ऑफ डिप्रेशन द पर्सन गोज इनटू, यू नो, सो मेंटल हेल्थ इटसेल्फ विल मेक द पेशेंट नॉट रिकवर फास्टर, you and she will not be ready to come out of taking treatment, wo treatment sahi se nahi le payegi, she will be depressed and

0: she going back to normal work will be delayed. So mental health is very important. So aajkal ek mental health ka alag department hai along with the cancer treatment where they take care of you and give you mental health counseling, which is called one-to-one cognitive behavioral counseling, where they give you psychological help as well as help so that you can combat cancer and come back to normal.
1: बड़ा चैलेंजिंग रहता होगा डॉक्टर, जैसे ही पेशेंट को पता चलता है तो किसी और तरह की डिजीज का भी हो जाना कॉमन है लॉन्ग सर.
0: Yes, a cancer is an important thing that we have to test. Aur tarah ke diseases bhi ho sakte hain cancer.
1: I mean to say, koi mental illness bhi ho jati hai patient mein, is it common or no?
0: It is very common for patients to feel depressed and problem for the patient to feel, go into a chronic depression, which I kehte hain psychosis ho jata hai. It's very common for patient not to come out of their depression and take medication. Aur ye mental health medications jo hai, they don't come easy. They become a bit dependent. Matlab, agar aapko antidepressants lete ho, to us now karne bahut mushkil hai patients ko, and you cannot live without them. So they are making you dependent on psychosis. That's why aajkal mental health physicians hain jo aapko one to one cognitive behavioral therapy dete hain. They elevate you and they give you psychological talk of medication so that you don't get dependent on these medications.
1: सही. अच्छा डॉक्टर, अभी एनवायरनमेंट की बात की जाए, पोल्यूशन की बात की जाए, या केमिकल्स हैं या फिर पैसिव स्मोकिंग है, क्या ये कैंसर के रिस्क को अफेक्ट करते हैं?
0: मैंने आपको पहले भी बताया, स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर्स, नॉट ओनली फॉर सर्वाइकल कैंसर्स, कैंसर्स ऑफ द यूट्रस एंड ऑल्सो द ओवरीज. सो स्मोकिंग कैन नॉट बी आप एक्टिव स्मोकिंग. अगर आप स्मोक कर रहे हो तो आपको तो कैंसर रिस्क होना है ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू आर पुटिंग द लाइफ ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग विथ यू, दैट्स कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग. तो स्पेशली इफ अ पर्सन हु इज लिविंग विथ यू एंड शी इज प्रेगनेंट, सो यू आर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ a pregnant woman who's living with you, so that will also increases her risk of cancer and problems during pregnancy. Like if you have smoking and you're pregnant, aapke baby ka growth effect ho sakta hai. Baby will be small for gestational age, matlab uski growth effect ho sakti hai, uska labor effect ho sakta hai, and her, if she has an infection which is causing risk for cancer, wo aapki body mein zyada reh sakta hai. So aap uski life affect kar rahe ho agar aapke sath wo rehti hai. To passive smoking is very underrated, wo bahut bahut important hai aapke sath. Aap kiske sath reh rahe ho, kitna expose kar rahe ho, that is also very important.
1: यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही. और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, अगर आप एक्टिव स्मोकर्स हैं तो इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि इफ़ इनकेस आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतनी है. पहले तो ये डॉक्टर खुद ही कह रही हैं कि जितना हो सके आप अपने आप को, अपनी इस हैबिट को मिनिमाइज़ कीजिए. अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो किसी दूसरे की लिए परेशानी का सबब ना बने स्मोकिंग, स्पेशली वो आपकी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल. और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात को हाईलाइट भी किया यहाँ पर. अच्छा डॉक्टर, हम वो मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ी सी बात करी है, और आपने कि कैंसर जब डायग्नोस हो जाता है इस तरह से मिलते हैं पेशेंट, जो कि काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन जो मैं जो पेशेंट की फैमिलीज हैं उनको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए क्या करती हैं सर डॉक्टर?
0: दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नॉट ओनली द पेशेंट इज अफेक्टेड, एनी बडी हु हैज द होल फैमिली इज ऑल्सो अफेक्टेड. दे ऑल्सो गो इन टू डिप्रेशन एंड दे ऑल्सो फील दैट इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट. सो आजकल ग्रुप है, इट इज़ कॉल्ड ग्रुप पीयर ग्रुप्स, जहाँ पर जिसके फैमिली में कैंसर है, दे ऑल कम टुगेदर एंड दे पर्सनली शेयर द एक्सपीरियंस विद ईच अदर. सी दे हैव डेल्ट विद देयर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, सो इट विल बिकम अ लेसन फॉर द अदर फैमिली मेंबर्स. जैसे कि आपके पास थैलेसीमिया ग्रुप है, जिसके पेशेंट्स को थैलेसीमिया है, दे ऑल कम टुगेदर एंड दे कम विद आइडियाज एंड विद न्यू रिक्वायरमेंट्स दैट दे डिस्कस विद ईच अदर एंड देन दे डिटेल्स. दैट्स कॉल्ड पीयर ग्रुप ट्रीटमेंट प्रोग्राम. सो अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है, इट्स ऑलवेज बेटर to make a peer group jo jiski dusri family cancer hai, so that not only the person who suffering from cancer is affected, the whole family is affected. So it's better for group encouragement programs.
1: सही. अच्छा डॉक्टर, अगर मैं किसी एक हैबिट के बारे में बात करूं जो हर वुमेन को आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए जस्ट मिनिमाइज द

0: उसको ऑफेंस करते हो, आपके हिसाब से कौन सी हैबिट है?
1: या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वुमेन को हु आर सेक्सुअली एक्टिव, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज आफ्टर 25 इयर्स गेट अ पैप स्मियर एवरी 3 इयर्स. That's important. Uh-huh. And after 50 years, get a mammography done every 2 years. That's very, uh-huh. very important. And if you are a little on the higher weight, please keep your weight less than 25 BMI. Weight or height ke hisab se hota hai. Keep your and eat a healthy diet. And if you're a smoker, it's very difficult. Aapko bolun ki smoking kam kar de ya less kar de. Agar aap pregnant hai, to you cannot smoke at all. But if you're not, at least 2 to 3 cigarettes per week kar de. So that you will reduce the risk of smoking exposure.
0: बहुत ही अच्छी आपने एडवाइस दी. अच्छा डॉक्टर, क्या हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो कैंसर को 100% प्रिवेंट कर सकती है?
1: Yeah, healthy lifestyle not only cancer. Healthy lifestyle is good for a lot of other things. Like if you have a healthy lifestyle, aapka cholesterol kam ho jayega. So cholesterol related disease jise hain, jise ki cardiac events kam ho jayenge. Agar aapki healthy lifestyle hai, to aapka cancer risk for the uterus kam ho jayega. Lining thick jo hoti hai because of obesity, because of unexposed estrogen jise obesity se aata hai, wo kam ho jayega. Aur agar aapka healthy lifestyle hai, to aapki bones mein jo weight ka chronic weight है वो कम हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस कम रहेगा एंड आपका बोन्स कैन बेटर इंप्रूव हो जाएगा. मोटिलिटी और मोबिलिटी जो इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल से जो आती है, रेगुलर एक्सरसाइज से जो आती है, आपको हेल्दी रखेंगी. सो हेल्दी लाइफस्टाइल नॉट ओनली रिड्यूसेस द कैंसर रिस्क बट आपकी दूसरी जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनको भी कम करता है. आपको एक अच्छी लाइफ दे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू आप जिंदा लॉन्ग टाइम तक रहे, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू लिव अ हेल्दी लाइफ.
0: नाइस, बहुत अच्छा. अच्छा डॉक्टर, अर्ली डिटेक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है?
1: सबसे बड़ा फायदा अर्ली डिटेक्शन इज अ अर्ली स्क्रीनिंग प्रोग्राम. जैसे मैंने कहा, अर्ली डिटेक्शन मतलब आप जनरल पॉपुलेशन में जो लगता नॉर्मल है उसमें हम अगर डिजीज पिकअप करें तो हम वो डिजीज को डाउनग्रेड कर रहे हैं. मतलब अगर हम कैंसर को ग्रेड 1 पे पिकअप कर रहे हैं, हम कैंसर को प्री कैंसर स्टेज पे पिकअप कर रहे हैं, हम कैंसर को ग्रेड 1 तक जाने नहीं दे रहे हैं. इन दैट केस वी आर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ surgeries, reducing the risk of chemotherapy and reducing the risk of radiotherapy. In that case, we will do less surgeries or minimal surgeries and the patient will go back to a normal life. And the other thing is the patient also will not be as depressed as the patient would be depressed in stage 4 cancer.
0: ये फायदा है, बहुत बड़ा फायदा इनफैक्ट. अच्छा डॉक्टर, स्क्रीनिंग या फिर सिम्टम, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए?
1: यस, देखिए दोनों मुख्तलिफ हैं. स्क्रीनिंग ये है कि हम आपको कोई सिम्टम्स के बिना पिकअप कर रहे हैं डिजीज. सिम्टम्स अगर आए तो आपको जरूर लाजमी है कि कैंसर को पिकअप करें और आपके स्पेशलिस्ट के पास जाएं. तो इन दोनों भी अपने अपने उसमें इम्पॉर्टेंट है. मगर इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स इसलिए है क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका है. यू हैव द सिम्टम्स, सो यू गो टू द डॉक्टर एंड सी दैट इट डजंट गो बियॉन्ड व्हाट इट इज बीन सीन. बट screening is also important in its own way so that we can pick up the disease before you have symptoms.
0: बहुत ही ज़रूरी मालूमात. वेल दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक बनता है, वापस आएंगे तो कुछ और कंक्लूडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हम यहाँ पर रखेंगे. और आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए 666-2107 पर. और आई थिंक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में किसी ने पूछा है तो आपने काफ़ी हद तक तो मेंशन किया ही है, जिसमें एक्सरसाइज आपने बताई कि थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज है, स्मोकिंग और जो ये सारी हैबिट्स हैं इनसे परहेज़, तो इस तरह से या कुछ और भी ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर?
1: हेल्दी लाइफस्टाइल पेरीमेनोपॉजल वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेनोपॉज के टाइम पे आपके बोन्स वीक हो जाते हैं एंड आपका जो यूरिनरी सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है. एंड इफ यू कीप पुट एक्सरसाइज इन योर सिस्टम देन दीस थिंग्स कैन बी डिलेड.
0: तो ये एक अच्छी बात. यहाँ पर दोस्तों छोटा सा ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के उस पार सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है. फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त

0: करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर सवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है आइए जुमे की रूहानी खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक Only on FM 107 दिल से देसी
1: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO Feeling of missing out यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे सो नो फोमो एवर अगेन सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
2: दोस्तों मेट्रो स्टेशन पे सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करना अपने और दूसरों के लिए एक सेफ और कंफर्टेबल सफर को इंश्योर करता है अपने पर्सनल सामान को सेफ रखें हमेशा अपने सामान का ख्याल रखें ताकि चोरी या नुकसान ना हो इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद हासिल करें जहां भी मुमकिन हो दरवाजों से दूर रहें जब वो खुल रहे हों या बंद हो रहे हों दरवाजों के करीब ना खड़े हों ताकि किसी भी एक्सीडेंट या चोटों से बचा जा सके स्टेशन के अंदर दी गई हिदायत और साइंस फॉलो करें हर साइन और अनाउंसमेंट का ख्याल रखें ताकि सेफली और इफिशिएंटली सफर कर सकें मेट्रो स्टेशन में स्मोकिंग मना है ताकि सब पैसेंजर्स को सेफ्टी और कंफर्ट मिले एस्केलेटर्स पर बच्चों का ख्याल रखें बच्चों का हाथ थाम कर उनको सेफली एस्केलेटर पर चढ़ने के लिए मदद दें इन गाइडलाइंस को फॉलो करना न सिर्फ आपकी अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी है बल्कि दूसरों की सेफ्टी के लिए भी उतना ही अहम है हम सब की जिम्मेदारी है कि मेट्रो स्टेशन को सेफ और कंफर्टेबल बनाएं। आपका कोऑपरेशन आपके और दूसरों के सफर को बेहतर बना सकता है FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात न सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है
3: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी
2: दोस्तों साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें याद रखें आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है
4: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
5: राइट दोस्तों एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम खुशामदीद आप सुन रहे हैं शो वेमेन वेलनेस मैं हूं नाजिया आपके साथ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ेबा और आज बहुत ही कीमती मालूमात इंफॉर्मेशन जो है वो डॉक्टर ने आप तक पहुंचाई मुझ तक पहुंचाई एंड अब हम अपने शो के एकदम कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर एक दो सवाल और हैं जो डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे उसमें सबसे पहला सवाल यही होगा कि जैसे कहा जाता है कि ओवेरियन कैंसर को एक साइलेंट कैंसर कहा जाता है तो ये क्यों कहा जाता है और इसकी जो है वो अर्ली डिटेक्शन इतनी चैलेंजिंग क्यों होती है
6: ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बिकॉज ओवरीज जो हैं उसे अंडेदानी कहते हैं वो आपके अबडोमन के अंदर होती हैं तो दे नॉर्मली यू डोंट देर आर नो ट्यूमर रिस्क फैक्टर्स और ट्यूमर मार्कर्स जिससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं जो भी ट्यूमर मार्कर्स हैं वो बहुत

0: नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक इन द सेंस कि ये ट्यूमर मार्कर्स दूसरे कैंसर्स में भी एलिवेट हो सकते हैं और ये ट्यूमर मार्कर्स प्रेगनेंसी में भी एलिवेटेड हो सकते हैं. इसे कहते हैं CA125 विच इज़ वेरी नॉन स्पेसिफिक. तो और टू ओवरीज जो है अंदर होती हैं तो हमको समझ में नहीं आता है. एंड ओवरीज का सिम्टम्स हैं कि इफ़ यू लूज वेट एंड इफ़ यू हैव ब्लोटिंग एंड इफ़ यू लॉस्ट इफ यू हैविंग इरेगुलर ब्लीडिंग एंड ब्रेथलेसनेस. तो दीज आर द साइंस ऑफ ओवेरियन कैंसर्स एंड ओवेरियन कैंसर स्पेशली आफ्टर 50 ईयर्स होते हैं. सो ये सिम्टम्स और साइंस आपके हैं जो आपको दिमाग में रखना चाहिए एंड देन यू शुड टेक हेल्प.
1: सही डॉक्टर, अगर कैंसर जैसे आपने कहा कि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीटमेंट और रिकवरी के चांसेस कितने बेहतर हो जाते हैं?
0: कैंसर नॉर्मली व्हेन यू डिटेक्ट कैंसर इन द अर्ली स्टेज, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो उसकी सर्जरी मुख्तलिफ हो जाती है. अगर कैंसर आप स्टेज वन पे डिटेक्ट कर रहे हो बनिस्बत के कैंसर स्टेज फोर पे डिटेक्ट कर रहे हो, दोनों के ट्रीटमेंट मोडालिटीज डिफरेंट है. अगर हम स्टेज वन पे डिटेक्ट करेंगे तो हम सिंपल सर्जरीज करेंगे. अगर हम स्टेज फोर पे डिटेक्ट करेंगे दैट मीन्स द कैंसर हैज़ गॉन बियॉन्ड द स्टेज, इट हैज़ गॉन टू बाजू स्ट्रक्चर्स एंड इट हैज़ गॉन टू द बोन एंड द लिवर एंड द लंग्स. हमको सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी और सम केसेस रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी देनी पड़ेगी. इन दैट द सर्वाइवल रेट फॉल्स डाउन टू 50%. बनिस्बत कैंसर अगर हम स्टेज वन में डिटेक्ट करेंगे द सर्वाइवल रेट इज 90%.
1: सही डॉक्टर, अब मैं चाहूँगी कि आप जो है वो इस टॉपिक को कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके.
0: या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे. आई वांट टू टेल यू दैट कैंसर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउअडेज एंड इट इज राइजिंग एंड देयर इज अ राइज इन द कैंसर, नॉट बिकॉज इट इज नॉट प्रिवेलेंट पहले, बट बिकॉज वी हैव स्टार्टेड टेस्टिंग एंड डूइंग स्क्रीनिंग फॉर कैंसर. एंड हैविंग कैंसर इट डजंट मीन इट इज एंड ऑफ लाइफ या आपकी लाइफ खत्म नहीं हो गई है, बट हैविंग कैंसर इट मींस दैट वी हैव डिटेक्टेड द कैंसर एंड वी वांट टू स्टेज इट एंड डिटेक्ट इट एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट यू कैन गो बैक टू हैव अ नॉर्मल लाइफ.
1: बहुत ही अच्छी एडवाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने जो है वो अपने कीमती वक्त में से जो है वक्त निकाल कर हमारे साथ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, हमारे लिसनर्स के साथ इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर इनसाइट एंड इन्फॉर्मेशन.
0: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.
1: वेल दोस्तों, अब जाते जाते बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि याद रखिए जैसे डॉक्टर ने कहा कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स. अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें, रेगुलर चेकअप्स कराएँ और अपने जिस्म के सिग्नल्स जो भी हैं को समझने की कोशिश करें. इसी पॉजिटिव नोट पे अब वक्त आपसे इजाजत लेने का, नए एपिसोड में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे. वेल तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: हां जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। मेरा नाम है फजील। 6:06 हमारे स्टूडियो घड़ी में तबीयत थोड़ी नासाज है ना, इस वजह से दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है, हो जाता है कभी कभार। और आज अगर शो करते हुए बीच में अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये आवाज सुनाई दे तो समझ लेना बीमार आदमी है। तो इस बीमार आदमी को माफ कर देना। और बाकी थोड़ी बहुत गलती होगी, 6 को 8 बोल दे रही हूँ है और 8 को 6 बोल दे, ये सब सोच लेना कि यार आज सटका हुआ है। कभी कभार होता है ना, पैसेंजर आपके बगल बैठते हैं, वो कहते हैं अरे ये क्या बात कर रहा है, तो कहते ना अरे वो तबीयत खराब है, तो समझ जाएंगे अरे यार कोई ज्यादा एकदम कनेक्टिविटी वाला हिसाब है इन लोगों का, बहुत ज्यादा समझते हैं एक दूसरे को। भाई है तुम्हारा मैं रिश्तेदार है, ये रेडियो पे आ रहा है, तो उनको कह देना नहीं नहीं वो बता चुका है। तो पता चल जाएगा ना लोगों को कि ऐसे दोस्ती आ रही है करके। पता नहीं क्या हो गया यार, कुछ तो ट्रिगर कर गया भाई, सुबह से 1-2 बार नहीं कम से कम 1 मिनट में 3 बार आ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद मजदूरी तो करना है बाबू, तो मजदूरी कर रहे हैं, कहीं जा नहीं सकते। बाकी नाक से और आवाज से पता चल रहा होगा कि थोड़ी तबीयत नासाज है। पानी यानी फिर क्या, अपन एकदम सेट हो गए हैं और सवाल पे आ जाते हैं। आज का सवाल क्या है उस पर जल्दी से
3: मेरे सवाल का जवाब दो।
2: ऐसी तबीयत में कोई अगर चाय दे देते यार, एकदम अदरक वाली हो मजा ही आ जाता भाई साहब। खैर काली चाय अदरक के ख्यालात में नहीं डूबेंगे वरना शो का हिसाब किताब बन नहीं पाएगा, इसलिए आज के सवाल पे आते हैं। दोस्तों आज का सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी तक इस तरह का सवाल हो चुका है कि अगर इंटरनेट नहीं रहा तो क्या होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि अगर इंटरनेट चला जाए ठीक है तो मेजर इशू सभी की जिंदगी में एक साथ क्या कलेक्टिवली होगा, इस पर बात तो नहीं हुई है। आपकी जिंदगी में क्या होगा वो तो अपनी जगह है, लेकिन कलेक्टिवली एक बहुत बड़ा इशू आएगा, वो क्या क्या हो सकता है। मुझे मेरा मानना है कि चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी है ना, क्योंकि अभी ये जो जनरेशन है ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि हर तरफ कैमरा लगा है और कैमरा इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि यार अगर इंटरनेट ख़त्म हो जाए, मुझे याद नहीं है कुछ 1-1.5 महीने पहले मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैंने लिख लिया था, फिर बाद में पता चला यार ये सवाल भी कर सकते हैं कि अगर एकदम से इंटरनेट ख़त्म हो जाए तो भाई साहब आपका क्या होगा जनाब याली। तो उस दिन मैंने यही कहा था यार सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो ये कि इंसान फिर डरना छोड़ देगा। अभी क्या है कि कुछ भी काम कर रहा है कुछ भी गलत कर रहा है तो उसको ये डर है कि कहीं ना कहीं मेरी शक्ल मेरी हरकतें चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए नहीं करनी चाहिए एज अ ह्यूमन वो हम कर रहे हैं, लेकिन वो कैमरा देख भी रहा है और जो कि इंटरनेट से बॉस से कनेक्टेड है या फिर यू नो जहां वो सारी फुटेजेस जा रही हैं जो सब सर्विलांस कर रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू तो कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और इवन सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो लगता है उनके घरों में आएगी जो वर्किंग लोग हैं, क्योंकि कई वर्किंग लोग जो मेरे जानने के लोग हैं जानने वाले लोग हैं उनके घर में कैमरे लगे हैं और जब वो काम करने जाते हैं उनके घर में उनकी मेड जो है वो रहती हैं और फिर वो कैमरे के थ्रू अपने बच्चे पर अपने मेड पर अपने घर पर नज़र रखते हैं। सोचो अगर इंटरनेट गायब हो जाए भाई साहब, पता चला बच्चा नहीं मिल रहा है। तो खैर ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऑल दो ऐसा होगा नहीं कि इंटरनेट गायब ही हो जाए, इंटरनेट तो रहेगा हमेशा ज़िंदगी भर। फिर एक अगर इंटरनेट चला भी जाए तो दूसरा वाला रहेगा, एक ही इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ी है, एक ही कंपनी थोड़ी है जो इंटरनेट दे रही है। लेकिन ये तो मुद्दा है, आज का सवाल ही यही है। बाकी क्वेश्चन की तरफ सॉरी आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैसेज तौफीक भाई का, सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, कैसे हैं तौफीक? यूसुफ भाई हैप्पी मंडे इवनिंग लिखते हैं, हैप्पी मंडे इवनिंग, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ये रहा मेरा जवाब। आगे हल्लू से बढ़ लेते हैं जवाब देने के बाद। सलाम भाई, अल्लाह आपकी सेहत अच्छी दे, मैं खुद भी दुआ कर रहा हूँ। शहसवार ने ये बात लिखी है, मुझे लगता है कि अब तो तबीयत सही हो जानी चाहिए, नाम में इतनी पावर है भाई साहब, इनकी दुआ में भी पावर होगी। उसके अलावा एक और मैसेज है, मेजर इशू विल बी रिसेशन। हंटर वाला भाई होगा ना बाजू? अरे यार हंटर से तो क्यों मेरे दुश्मन बने हुए भाई, वो ऑलरेडी दुश्मन आदमी है, पता है, वो तो ऐसा मुद्दा ढूंढ रहा है कि मेरी सैलरी किसी तरह बने, कि कोई गलती करे और इसको पीठ पे एक सूद दें। लेकिन तुम लोग जिस तरह से उसे मोटिवेट कर रहे हो ना भाई, किसी दिन चाहे ना चाहे वो सूद देगा मुझे। अरे रहने दो, लेकिन मेरे को पता है क्या, कभी कभार ऐसा चुल मचती है हर इंसान से बात करने की, तो मैंने उससे भी बात कर लिया, कोड़े वाले भैया से। अच्छा आदमी है यार दिल का, उसकी प्रॉब्लम बस यही है वो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करता। बाकी ये मैसेज है किस भाई का, नाम तो यहाँ पर लिखा नहीं है, जो भी है भाई आपका नाम लिख देते हैं, मुबशर फरहान इनका नाम है, कहते हैं मेजर इशू विल बी रिसेशन। रिसेशन हाँ, ये भी एक मुद्दा है कि अगर जहाँ नौकरी गई के बेटा, जो इंटरनेट से काम करते हैं उनका क्या होगा, जो वीडियोस बनाते हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं हमारे कतर में, उनका क्या होगा यार। इंटरनेट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए, आय हाय बहुत बड़ा नुकसान होगा भाई। और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रिसेशन में, मतलब ऐसे तो इंटरनेट से बहुत से काम होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा वो है एंटरटेनमेंट का भी, कि आप सब मोबाइल छोड़ देंगे फिर FM 107 ही ट्यून इन किएंगे, यही FM 107 ही रहेगा फिर एंटरटेनमेंट के लिए, बाकी रील आपसे चलाई नहीं जाएगी, मैसेज आपके गायब हो जाएंगे, फिर मैसेज इसके यू नो FM 107 के थ्रू जाएगा, ए वजील भाई बोल दे यार मोटर बंद कर दे पानी बह रहा है। यार वो टावर है ना अलमहा वाला, उधर रहते होंगे, उनके अपार्टमेंट नंबर सेकंड फ्लोर है, अपार्टमेंट नंबर 22 वाला, तो 2204 वाले अपार्टमेंट है उसमें, प्लीज बोल दो ना यार इनको, तो ये टेंशन है जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बाकी और भी अपने आप लोगों के थॉट होंगे वो बता सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।

0: इंटरनेट के थ्रू तो आपका काम होता होगा।
1: हाँ, कंटिन्यूअसली इंटरनेट तो चाहिए।
0: और अगर नहीं हुआ तो?
1: इंटरनेट के तो फिर नहीं हुआ, नहीं हुआ तो जिंदगी ख्वार है फिर।
0: अगर नहीं हुआ तो फिर घर वाली बैठी हुई है कोड़ा लेकर। फिर मेरे ही जिंदगी में कोड़े वाला नहीं रहेगा, सबकी जिंदगी में रहेगा।
1: फिर पुराने वक्त में वापस जाना पड़ेगा, अब वो हम जा नहीं सकते।
0: वो तो यार हाँ, अभी तो यार ऐसा सिस्टम हो गया कि अपने को आता ही यही दो चार चीजें हैं और करना ही इंटरनेट के आसपास ही जिंदगी यू नो रिवॉल्व करती है। तो अगर ये नहीं रहा तो क्या? वैसे कोई ऑप्शन है आपके पास अगर इंटरनेट नहीं रहा तो, कभी सोचा?
1: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंटरनेट ना रहने का तो खैर कॉन्सेप्ट मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ इसका इस्तेमाल कम हो जाए हाँ। तो जो रिश्तों के अंदर आजकल जो है वो व्हाट्सएप पे रिश्ते रह गए ना, वो फिजिकल जो पुराने रिश्ते थे कुछ वो हो जाएंगे कुछ हाँ। किसी तरीके से जो है वो माहौल बेहतर हो सकता है,
0: माहौल
1: अगर किसी तरीके से इस्तेमाल लिमिटेड हो जाए हाँ। आजकल इस्तेमाल इसका बहुत ज्यादा है
0: हाँ।
1: इतना ज्यादा है कि इंसान को खुद नहीं पता कि मैं जो है वो मैंने खाना खाया है या नहीं खाया
0: हाँ।
1: फोन पे लगा हुआ है खाना कितना खाया है कितना नहीं खाया है
0: नहीं पता। और फिर अगर बात करनी होती है तो अपनों से ऑनलाइन यू नो वीडियो कॉल वगैरह कर लेते हैं, वहां पर बात हो जाती है काम पूरा।
1: और आजकल तो एक नया सिस्टम शुरू हो गया स्टेटस के थ्रू बात होती है।
0: किसके थ्रू?
1: स्टेटस के थ्रू
0: हाँ।
1: किसी को कोई बात पहुंचाना
0: हाँ मेरा भाई, ये तो बहुत गहरी बात बोल दी आपने, स्टेटस के थ्रू बात होती है। और ऐसे ऐसे टॉन्ट जाते हैं है ना, किसी को पहुंचानी किसी को होती 100 लोग पढ़ लेते हैं।
1: ये थोड़ा सा ना बड़ा इंटरनेट का नुकसान भी है, बहुत सारी जगहों पे टेक वर्ल्ड के अंदर फायदा भी है, लाजमी की बात है हर चीज जो है वो
0: करेक्ट,
1: लेकिन नुकसान ये बहुत हो रहा है कि बंदा जो है वो एक तो खाना खाते हुए जो बेसिक नीड है इंसान की उससे भी गया। इवन कि आप बच्चे को भी अगर खाना खिलाना है तो उसको कार्टून लगा के देना पड़ेगा तभी वो खाना खाएगा।
0: लेकिन एक बात तो इंटरनेट से सबसे बेस्ट हुई है कि जैसे शहर के अंदर, पहले मुझे याद है कि आपको शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, आपको रिक्शा करना पड़ता था या फिर आपको यू नो ऑटो करना पड़ता था और फिर वो सवारी लेकर बैठा था तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। जबकि वो लोग भी जो अफोर्ड कर सकते हैं कार वगैरह, तो उस वक्त तो कार थी नहीं, लेकिन जब इंटरनेट आया तो एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन के थ्रू लोग कैब बुक करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह अकेले बैठ कर जाते हैं और अफोर्ड भी कर सकते हैं आसानी से, और ऐसे में लोगों का रोजगार भी बढ़ा। तो ये एक बहुत बेहतरीन बात हुई है, खासकर ड्राइवर भाइयों के लिए भी।
1: बिल्कुल ऐसा तो है, बिल्कुल है, लेकिन उसके बरक्स फिर लॉस हाँ, है वो नई जनरेशन का लॉस भी है
0: हाँ,
1: लेकिन फायदा मैं ये कह सकता हूँ कि फायदा कुछ हद तक थोड़ा सा ज्यादा है
0: हाँ, करेक्ट,
1: कोई शक नहीं है,
0: करेक्ट। प्रोज एंड कॉन्स तो है ही है। देखिए अब आपको यू नो बहुत ज्यादा दूर चल के कहीं जाना हो, जैसे यू नो आपको ट्रेन से कहीं जाना हो तो आपको वहां स्टेशन नहीं जाना पड़ता, आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेन बुक कर सकते हैं, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट हो गया है। ओके भाई,
1: फैसिलिटी तो हाँ। बहुत है, फैसिलिटी तो बहुत है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा लॉस ये हुआ है कि वो जो आपस के रिश्ते थे ना
0: हाँ।
1: तो बस वो
0: तो स्टेटस के थ्री पहुंच रहे हैं। किसी को टॉन्ट पहुंचनी वो भी पहुंच रहा है, किसी को मोहब्बत पहुंचनी तो वो भी पहुंच रहा है। सही चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरा भाई,
1: थैंक यू,
0: थैंक यू, ओके अल्लाह हाफिज़। तो इसी के साथ बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और ये तो मुद्दा भाई बहुत गहरा हो गया है। बाकी ये मैसेज है, दो तक हो जाओगी क्या, दो दो कौड़ी कावो तक हो जाओगी, क्या लिखना चाह रहे हैं मोहम्मद साहब? हमें लग रहा है कि आपका कीपैड टूट उड़ गया क्या मेरा भाई। खादर अब्दुल कहते हैं, फजील भाई आप ज़्यादा काली मिर्च का मसालेदार रसम पिया करो, अच्छे हो जाओगे। इंटरनेट नहीं हुआ तो मुझे सुकून मिलेगा, मुझे इंटरनेट नहीं चाहिए। अरे ये बात देखो, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप पे मैसेज करते हुए बता रही है। लेकिन ठीक है, ये भी अपना तरीका है विरोध दर्ज कराने का कि मुझे इंटरनेट चाहिए नहीं, मुझे सुकून मिलेगा, और ये बात मैं इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए कहना चाह रहा हूँ। ये खादर भाई की अपनी बात है, क्या बात है। फजील लगता है मौसम का असर हो गया, टेक केयर एंड रेस्ट। अरे मेरा भाई पता नहीं कि क्या है, मैं पूरी बॉडी ये वाला होता है मेरे साथ अक्सर, पूरी बॉडी एकदम मस्त होती है लेकिन बस हल्लू हल्लू सा ऐसा लगता है कोई गुदगुदी कर रहा और मेरे को छींक आ जाती है भाई, ये तो जवाई थी। बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और है मैसेज, अगर इंटरनेट बंद हो गया तो पागल हो जाएंगे, लोगों को कुछ करना नहीं आता होगा, झगड़ा करेंगे और क्या। झगड़े अब ऐसा भी नहीं है।

सवार भाई के सब लोग जो है वो भरे बैठे हुए हैं, एक दूसरे का गला ही जो है काट देंगे, ऐसा नहीं है मेरा भाई। हाँ ये है कि इंटरनेट ने बहुत लोगों को बिजी कर दिया है, फिजूल के काम नहीं करते हैं। ये मुझे अपनी सही चीज़ लगती है इसमें इंटरनेट होने में। हिशाम साहब का है सलाम वालेकुम अस्सलाम, एक और ये मैसेज है, नाम है इनका अय्यूब। अय्यूब साहब क्या मैसेज करते हैं, सलाम वालेकुम अस्सलाम। आगे भाई बहुत ज़्यादा लंबा लिख दिया, थोड़ा छोटा छोटा लिखा करो यार। फिर आप छोटा नहीं लिखते, मजबूरी ये हो जाती है कि छोटा करके पढ़ना पड़ता है मेरे को, ठीक है। बाकी आपका मैसेज अभी हम नेक्स्ट वाले में पढ़ लेंगे क्योंकि लंबा मैसेज है। मुबीन साहब का मैसेज है सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारा कुछ लिख दिया है, इनकी भी आवाज़ जो है वो समझ में मेरे को आती है नहीं। बाकी एक और मैसेज है सलाम वालेकुम अस्सलाम फज्जू भाई, फज्जू मेरा नाम लोगों को बहुत ज़्यादा पता चल गया है, के एम खान इनका नाम है और कहीं तो पहाड़ वहाड़ में है भाई, इंजॉय कर रही हैं बहुत ज़्यादा ही, बढ़िया है। खदर साहब कहते हैं इंटरनेट टेंशन, अरे भाई इनने कोई फॉर्मूला ही दे दिया इंटरनेट का यार। ओके साथ ही एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम अबरार कहते हैं कि एजेंट, इंटरनेट के आने से एजेंट हट गए, अगर इंटरनेट नहीं रहा तो ये फिर से जिंदा, अच्छा जिंदा हो जाएंगे, ऐसा कर रहे हैं यार कि मतलब निपट थोड़ी गए हैं मेरा भाई। हाँ वही मैंने अभी कुछ देर पहले बात कही ना कि जो आप जैसे कभी ट्रेन आपको बुक करनी हो तो आपको बाकायदा स्टेशन जाना होता था, फिर वहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना होता था, फिर फॉर्म भरने के बाद आप जमा करते थे और फिर आपको वहाँ पर वो कंप्यूटर पर बैठ के टिकट वगैरह देते थे। कई बार आप एजेंट के पास चले जाया करते थे कि भाई एजेंट देखो हमें इस डेट को चाहिए, आपको तत्काल कराना हो तो भी आप वो कर देता था एजेंट, और कई बार ऐसा होता था कि आप उसको देकर चले आते थे डिटेल कि भैया ये नाम है, ये एज है और इस डेट को मुझे जाना है, अब तुम अपने हिसाब से कर देना, मैं आकर टिकट ले जाऊंगा 2-3 दिन बाद, आपका अपना लोकल एजेंट होता था। अब वो एजेंट कट गए, अब इंटरनेट जब से आया है आपने इस्तेमाल करना सीख लिया है, आपने आईडी बनानी सीख ली है, अब आपको जाने की जरूरत नहीं है स्टेशन या फिर एजेंट के पास, आप उस एप्लीकेशन के थ्रू सारा सेटअप कर लेते। लेकिन जिस दिन इंटरनेट नहीं रहा, अबरार भाई की बात सुन लो, वापस से ये एजेंट जिंदा हो जाएंगे। और भाई ये जिंदा नहीं होंगे, ये जिंदा हो के आपको चूस डालेंगे, फिर ये बहुत ज्यादा खाते हैं। ऐसे ही फ्लाइट की टिकट में भी यही होता था, और फ्लाइट की टिकट तो मुझे लगता है कि 95% लोगों को करनी आती नहीं थी इवन इंटरनेट आने के बावजूद। तो लोग करते क्या थे, लोग एजेंट के पास जाते थे, और आज भी कई ऐसे लोग हैं जो एजेंट के पास जाते हैं, और उससे क्या होता है कि कई बार टिकट सस्ती हो जाती है। एजेंट के पास एक अपना तो कुछ तो स्पेशल होता है भाई, उनके पास होता है ना, एजेंट होने का भी अपना एक फायदा है, तो वो सस्ती टिकट भी दिलवा देते हैं कभी कभार, और आपका इस तरह से भी फायदा होता है, सस्ते टिकट, टाइम पे टिकट, आपको जब चाहिए जैसे चाहिए वो फोन कॉल पर दे देता है आपको। लेकिन अब आपके पास अगेन सारी सुविधाएं आ गई हैं, आपको पता है कहां पर सस्ती टिकट मिल रही हैं, वाया टिकट लेनी है, आप पूरा यू नो शेड्यूल देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि फ्राइडे को अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप रात के 10 बजे तक इंतजार करें, आपको सुबह 6 बजे वाली फ्लाइट अच्छी लग रही तो सुबह फ्राइडे 6 बजे जाने के बाद यानी कि फ्लाइट पकड़ने के बाद आप 12 बजे तक अपने शहर अपने कंट्री पहुंच जाते हैं। तो ये एक और प्लस पॉइंट है, और मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी अबरार भाई की, एजेंट जिंदा हो जाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 6:22 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और जब वापस आएंगे तो मजीद आप लोगों के मैसेज की तरफ पढ़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, सवाल एक बार फिर से कर लेते हैं। सवाल ये है कि अगर इंटरनेट गायब हो जाए तो मेजर इश्यूज क्या पैदा होंगे आपकी जिंदगी में, और शहर में क्या इश्यूज पैदा होंगे वो आपको बताना है। नंबर है 666-22107 666-22107।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती, आपका

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है। कभी नए सपने दिखाता है। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: शो सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
3: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
4: हां जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है 6:31 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और सवाल ये है कि अगर इंटरनेट गायब हो जाए तो मेजर इश्यूज क्या आएंगे आपकी जिंदगी में, और आम तौर पे जो लोग इंटरनेट से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं उनकी जिंदगी में क्या मेजर इश्यूज आ सकते हैं। वेल सलाम आया एक भाई का, वालेकुम अस्सलाम मुबशर मुबीन। ये दूसरे वाले हैं, कहते हैं मुझे तो लगता है कि अगर इंटरनेट खत्म हो गया तो हर जगह इंसान नहीं ज़ॉम्बीज नजर आएंगे, बाकी तो ऐप आप समझ ही सकते हैं। हाँ मतलब ये आखिरी वाली समझ तो नहीं सकते, लेकिन ये ज़ॉम्बीज वाली बात समझ गए कहीं। मतलब ऐसा तो है कि क्या करना है फिर समझ नहीं आएगा। अब तो क्या है ना कि किसी को, जैसे आप किसी पार्टी में गए बगैर किसी वजह के आप मोबाइल चलाने लग जाते हैं जब आप किसी को नहीं जानते, तो है ना। तो ऐसे में क्या है कि आपको बोरियत नहीं होती है। और मैंने अपने दोस्तों को देखा भाई, जब वो किसी को नहीं जानते वो मोबाइल निकालेंगे एप्लीकेशन में दाएं बाएं करते हैं, वो बस अपने जितने भी एप्लीकेशन है ऊपर से नीचे देख लेंगे, कुछ फोटो वोटो देखना शुरू कर देते हैं। उनके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो फिर वो किसी गेम को खेलना शुरू कर देंगे जिसमें इंटरनेट नहीं चलता। शादी में या किसी फंक्शन में किसी को जानते नहीं है, किसी से बात नहीं हो रही, अकेले बैठे मोबाइल जेब से निकाला और फिर कुछ भी स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो अगर इंटरनेट चला गया भाई तो ये क्या करेंगे भाई कितनी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। सोचो अगर इंटरनेट चला गया तो ये मोबाइल निकाल के ये मतलब बताएंगे क्या। ऐसे क्या होता है कि आप किसी दावत में है, पार्टी में है, शादी ब्याह में है, आपने मोबाइल निकाला तो कुछ तो देख रहा हो भाई, मैच देख लिया आपने, रील चला ली। इंटरनेट नहीं है, लोग देख के कहेंगे बेटा तुम चला क्या रहे हो। अगर आप किसी को जानेंगे नहीं भाई, कितनी बेइज्जती होती है यार कि बोर हो रहा है इस अगले आदमी पर, कोई है नहीं आगे से, कोई आगे सलाम दुआ नहीं कर रहा, कोई बैठ नहीं रहा इसके पास, यार बहुत ज्यादा ही बुरा लग जाएगा। फिर यूसुफ भाई का कहना है, फॉर मी ऑल ऑफिस वर्क हैवीली इफेक्ट विदाउट इंटरनेट बिकॉज ऑफ अकाउंट्स, ईआरपी इज वेब बेस्ड। पर्सनली कहें तो घर पे बात करना और बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। नाउडेज वी ऑल आर फुली डिपेंडेंट अपॉन इंटरनेट। हाँ ये तो है भाई, आप सोचिए अपने घर पे जो पैसे भेज पा रहे हैं, फिर आपको वो वाला हिसाब करना पड़ेगा जिसमें काफ़ी लंबे वक्त बाद जो है वो पैसा पहुँचा करता था। ठीक है, अगर आपने कम्युनिटी बनाई, अपने दोस्त यार बनाए हैं, तो उस 100-200 लोगों के या फिर 50-100 लोगों में जो दोस्त बनाए हैं, तो अगले महीने कौन जा रहा है पाकिस्तान, हाँ फला जा रहा है, उसके हाथों पैसे भिजवा दिए। या फिर पता चला वो गायब हो गया, गया नहीं गया, पैसे दिए आपके घर वालों में, नहीं दिए, गायब, अल्लाह जाने, है ना। ऐसे क्या इंटरनेट के थ्रू आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे दे सकते हैं। फिर उसके बाद ये भी सबसे बड़ा इशू आता है कि भाई आपके ऑफिस का जो काम है इंटरनेट बेस्ड, वो मुझे लगता है वो नहीं रुकेगा, फिर वो फिजिकल आ जाएगा, है ना, हार्ड कॉपी पे आ जाएगा। अभी तक सॉफ्ट कॉपी पे इंटरनेट पे चल रहा है, वो सब हार्ड कॉपी पे आ जाएगा, वो कहाँ ही जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो पैसे देना, पैसे ट्रांसफ़र करना, घर को चलाना, है ना, बैक इन योर कंट्री उनको सपोर्ट करते हैं आप थ्रू इंटरनेट, आप पैसे भेज सकते हैं, लेकिन फिर जब पैसे नहीं जाएंगे तो फिर मनी ऑर्डर जाते थे, फिर तो उसमें टाइम लगता था ना भाई, वो एक अलग झंझटी काम था यार। खैर एक और मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, क्या है एहसान उबैद ने सलाम किया है, बात तो अभी नहीं लिखी है, हो सकता है अभी इन्होंने ट्यूनिंग किया हो। फिलहाल एक और मैसेज है, मोहसिन कहते हैं कि पहले तो सलाम वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई का कहना है कि अगर नहीं रहा, अच्छा मतलब कहे भाई अगर इंटरनेट नहीं रहा तो जिनकी दुकान, जिनकी बिरयानी और जिनकी निहारी इंटरनेट से बिक रही है वो बिकना बंद हो जाएगा। अरे यार किसी से कोफ्त है लग रहा है मेरा भाई। बाकी इंटरनेट नहीं रहा है, ये किस भाई का मैसेज है, नाम नहीं लिखा मेरा भाई, नाम लिख दिया करो। इंटरनेट नहीं रहा तो सॉन्ग कहाँ से सुनेंगे, अरे एफएम 107 है ना, अरे क्या यार। और एफएम 107 की बेस्ट बात है कि आपको अपनी मर्जी के गाने भी सुनने को मिलते हैं अमिता के शो में, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई झंझट है ही नहीं कि भाई आपके पास इंटरनेट नहीं तो गाने कहाँ से सुनेंगे आप, फिर बाकी सोशल मीडिया भूल जाइए, फिर FM 107 तो है। कई बार होता है ना कि FM 107 कहीं कहीं नहीं पहुंच रहा है, जैसे आप लंबे रूट पे गए तो इंटरनेट के थ्रू आपने इस्तेमाल कर लिया है ना, FM 107 का उर्दू रेडियो चैनल जो है, वेबसाइट है उसकी, और वो वेबसाइट है urduradio.qa। हल्के हाथ से प्रमोशन जरूरी है भाई, तो ये नहीं हुआ तो फिर QMC का ऐप, लेकिन अगर इंटरनेट नहीं हुआ तो फिर FM 107 रहता है, मौजूद है भाई, ठीक है। फिर एक और मैसेज है खादर साहब का, कहते हैं अगर इंटरनेट ना हुआ तो मैं फजील भाई और सरवर भाई को कैसे कांटेक्ट हैं, तो अभी कौन साहब कांटेक्ट करे ले रहे हैं भाई, हमारा और आपका जो वार्ता है वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, इंटरनेट एक जरिया है, उर्दू रेडियो डॉट क्यू है, हल्के से प्रमोशन। लेकिन अगर आप शहर में हैं, कतर में हैं, तो FM 107 कतर छोड़ो भाई, अपन बहरीन में भी आ रहे हैं, पता है आपको, वो जुल्फिकार साहब सुन रहे होंगे अभी, और सऊदी से भी मैसेज आते हैं हमारे पास, दुबई वाले तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि इतनी दूर कैसे पहुंच जा रहे हैं, 6 घंटे दूर है वो। तो ये सारी चीजें हैं, और डरने की बात तो बिल्कुल नहीं हैगी। एक और कॉलर है, इनसे हम बात करेंगे, लेकिन एक मैसेज है, रेडियो पर सुनेंगे FM 107 उर्दू, भाई लाइव बिल्कुल सेट हो जाएगी इंटरनेट के बिना, सैयद जमील का कहना है, और रेडियो पर FM 107 उर्दू सुनेंगे। अरे क्या बात है भाई, बस ऐसे लोगों के लिए पता है मैं अलग से शोरमा बचा के रखता हूँ, रात के 10 बजे बाद कुछ जगहों पे ख़त्म हो जाता है, मैं कहता हूँ रोक के रखो, ऐसे लोगों के साथ मैं आऊँगा खाने के लिए, भाई आपके लिए बचा के रखवाया है मैंने, ठीक है आज चलेंगे साथ में। फिलहाल एक कॉलर जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम प्यारे फजील भाई, बहुत अरसे के बाद कॉल किया, मैंने कहा भाई से बात हो जाए।
4: अरे मेरा भाई कहाँ थे आप, छुट्टी पे चले गए थे क्या, बहुत लंबी?
5: नहीं सर, मैं यहाँ हूँ, आप लोगों को बड़े शौक से सुन रहा हूँ, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे सर के, बस पता नहीं कुछ कंफ्यूजन थी, कोई प्रॉब्लम, कोई वट एवर, कुछ कोई ना कोई वजह तो होगा ना।
4: अरे
5: लेकिन अभी जो आपके पास सुनी, आपने कहा सऊदी अरबिया बहरेन, मैंने कहा अभी तो बात बनेगी, सर को बताना पड़ेगा कि हाँ ये बात तो सच है कि आपको सऊदी में भी लोग सुनते हैं, बहरेन में भी सुनते हैं, यहाँ तक दुबई में भी लोग सुनते हैं।
4: हाँ भाई, दुबई से भी मैसेज आते हैं
5: ठीक है, मुझे लोग, क्योंकि जब कभी कभी मैं कॉल करता हूँ ना, लोग उधर सुन लेते हैं, फिर मुझे मैसेज करते हैं, वो मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, भाई आप रेडियो पे आज बात कर रहे थे भाई।
4: अरे अच्छा, जमी कॉल लगा रहे जमील भाई, वाह भाई वाह।
5: तो मैंने कहा भाई ये FM 107 जो चैनल है ना, ये माशाल्लाह इसमें बड़े इस्लामी बातें भी होते हैं, और हमारे जो लोग हैं जहाँ पर बैठते हैं हमारे साथ बात करते हैं, जो मौजू लाते हैं, तो मैंने कहा वो बड़े प्यारे लोग हैं और काफी लोग सुनते भी शौक से, तो वो लोग भी वहाँ आप लोगों को सुन रहे हैं, जब तक उनको जब कभी कभी टाइम मिलता है उन लोगों को, वो बड़े शौक से सुनते हैं FM 107।
4: बहुत शुक्रिया भाई,
5: अच्छा है सर।
4: हाँ हाँ, अरे हमने सब सेट कर रखा है भाई, बहुत खर्चा करते हैं।
5: अरे वजीर भाई और कोई सुन ना ले यार, क्या बात है।
4: चले अच्छा, आज आज के टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि एक और कॉल आ रही है, उनकी भी कॉल उठानी है।
5: ठीक सर,
4: तो मतलब टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक पर बताइए कि अगर इंटरनेट नहीं रहा तो।
5: आइए सर, सवाल करें, हम कोशिश कर लेते हैं।

0: तो ये सवाल ये था कि अगर इंटरनेट नहीं हुआ तो मेजर इशू कंट्री में, शहर में, आपकी जिंदगी में क्या आएंगे?
1: अगर इंटरनेट ना हुआ तो हमारी जिंदगी में इससे क्या इशू आएंगे?
0: ये हल्की बात नहीं बता देना कि अरे वो क्या है, घर वालों को कॉल नहीं कर पाएंगे और वाइफ का चेहरा नहीं देख पाएंगे।
1: तो इंटरनेट नहीं होता तो फिर आपके साथ बात कैसे होती ना?
0: अरे भैया, इंटरनेट के थ्रू आप तो कॉल कर रहे हैं मेरा भाई,
1: तो ये भी उसका एक हिस्सा है ना, बहन भाई है ना आपस में। अभी हम एक दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ है यहाँ पर, इंटरव्यू देने गए, बस एक ही बात पे हमने वहाँ काम छोड़ा वो दोस्त के, कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं है।
0: अरे हटाओ ऐसे का।
1: हमने कहा भाई वो काम वाला चीज है ही नहीं ना यार, काम तो कम है ना, कम से कम आपको बिजी होने के लिए कुछ ना कुछ दरिया तो होना चाहिए ना मेरे भाई।
0: हाँ नहीं सही है, घर में राशन रहे ना रहे इंटरनेट जरूर रहना चाहिए भाई।
1: माशाल्लाह आपके सवाल भी देखो, आज हम जिधर गए अभी रयान में है ना, यहाँ पे तो उधर जिधर काम था वहाँ पे, उसने कहा भाई सब कुछ है लेकिन इंटरनेट उसका जो है ना वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ले। हमने कहा भाई ऐसे कैसे होता है?
0: कहो भाई 30 रियाल दे देंगे इंटरनेट के लिए ले लो। लेकिन
1: वो भी नहीं है ना सर, उस एरिया में आपको अपना ही पैकेज लेना पड़ेगा 260-250 वाला, तब जाके जो है ना अनलिमिटेड आप जाके कुछ कर पाएंगे। काम है ही नहीं ना, जाहिर है बंदे के पास फोन है, दिन तो ऐसे नहीं गुजरेगा ना नेट के बगैर।
0: सही है,
1: कुछ सीखना भी है, दुनिया आजकल दौर है ये एआई का दौर है, जो आप लोगों के जरिए हमारे तक जो बातें पहुंचते हैं, जो हम देखते हैं, चेक करते हैं, ट्राई करते हैं, तो उसके लिए तो डेटा का होना बहुत जरूरी है सर।
0: सही है, सही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, पीछे से और भी कॉल आ रही है वो भी एक्सेप्ट करते हैं, बहुत शुक्रिया भाई,
1: अल्लाह आपको खुश रखे।
0: थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ओके तो एक और कॉलर जल्दी से इनसे बात करते हैं, वक्त बड़ा मुख्तसर सा है लेकिन कॉल कट गई इतनी देर में इनकी। फिर उसके बाद तो फैल भाई का मैसेज आ जाए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक हफ्ते से इंटरनेट नहीं है पाकिस्तान में, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा ये मेरे को पता नहीं है, तो फिर कैसे लोगों की जिंदगी चल रही है? जल्दी से कॉल एक्सेप्ट कर लेते हैं और पूछते हैं इनसे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू, कैसा है मेरा भाई?
0: मेरा भाई एकदम जगह, आप कौन बात कर रहे हैं? वैसे मैं पहचान गया हूँ लेकिन
2: भाई आपसे
0: हाँ मैं पहचान गया हूँ, लेकिन फिर भी बाकी लोगों के लिए कर लेता हूँ सवाल कि लोगों को पता हो कि कौन कॉल कर रहा है। फजल भाई सबसे बड़ा इशू क्या होगा मेजर अगर इंटरनेट नहीं रहा तो? जल्दी से बताएं, वक्त बड़ा मुख्तसर सा है
2: सर। इंटरनेट नहीं होगा तो बहुत सारे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी।
0: जैसे
2: फॉर एग्जाम्पल आज कौन नहीं है जो, कंज्यूमर्स की बात करूं तो हर कंज्यूमर जाता है गूगल पे सर्च करता है, उसके बाद वो बिजनेस की तरफ अप्रोच करता है। तो जितने यानी गूगल लिस्टिंग जो है, जितने लोगों की गूगल लिस्टिंग है वो कैसे काम करेगी अगर इंटरनेट ना हो तो?
0: हाँ अगर इसे सही करें तो जितने लोगों का बिजनेस बहुत ही मेजरली डिपेंड करता है इंटरनेट पे, सर्च इंजन पे, SEO पे, उनका काम जो है इम्पैक्ट करेगा, है ना?
2: अभी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ
0: जल्दी जल्दी।
2: देयर आर 4 lakhs ब्लू कॉलर बिजनेसेस इन दोहा अलोन, और ये सारे लोग जो है अब डिजिटल कतर के माध्यम से जो है ऑनलाइन होते जा रहे हैं और हम भी उनकी बड़ी हेल्प करते हैं।
0: सही।
2: तो ये लोग अगर इंटरनेट इनको नहीं मिले तो ना कंज्यूमर इन तक पहुंच पाएगा ना ये कंज्यूमर्स को अपनी सर्विस दे पाएंगे।
0: करेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया फजल भाई, बस वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपसे और हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच मेरा भाई।
2: थैंक यू।
0: आई एम रियली सॉरी, एक छोटे से ब्रेक क्या, अजान की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस जब आएंगे तो मजीद आप लोगों के मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
3: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: इस दुनिया के अंदर जितने भी रिश्ते नाते हैं उन सब में अजीम रिश्ता माँ बाप का है। अगर आप 70 साल तक खाना काबा का तवाफ करके उसकी नेकियां माँ बाप को हदिया करते रहे तब भी आप आंसू के उस कतरे का बोझ हल्का नहीं कर सकते जो आपकी बदसलूकी की वजह से आपके माँ बाप की आंख से गिरा था। अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए और उनकी दुआएं लीजिए, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाएंगे।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: जेन ज़ी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी,
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
5: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
6: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
7: FM 107 दिल से देसी, और 6:47 हमारे स्टूडियो घड़ी में। जल्दी से लोगों के कुछ और मैसेज जो हैं वो ले लेते हैं और अब जरा खत की तरफ भी बढ़ते हैं। सबसे पहले खत की डिमांड कर लेते हैं। खत आपको ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डार्क लिखना है, नॉर्मल वाला हल्लू हल्लू सा लिखना है। और बाकी जो कॉल आ रही है, ओके मेरा भाई, आपकी कॉल हम उठाते हैं कुछ देर में, लेकिन पहले ऐलान तो कर दें। और ऐलान ये है कि जो है इशू, मेजर इशू क्या होगा वो आपको लिखना है। और अगर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी ऐसा वक्त आ जाए जब इंटरनेट ना हो, तो इंटरनेट प्रोवाइडर को क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पे कभी कभार होता है ना कि एकदम से इंटरनेट चला गया, ठीक है, आप बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, तो अगर उनको कुछ मोहब्बत से बात कहनी है तो वो आपकी क्या होने वाली है, क्या होती होगी? जैसे कभी कभार ऐसे एक ज़माने में हुआ करता था, आप टीवी देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आ रहा और एकदम से लाइट चली जाती थी, तो आप खूब दुआएं दिया करते थे ना बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो वो दुआएं किस किस क्रिएटिव तरीके से हुआ करती थी। वैसे ही आप अगर इंटरनेट नहीं है, आप मोबाइल में बहुत ज़रूरी कोई काम कर रहे हैं अपने इंटरनेट के साथ, या अपने लैपटॉप में कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहा है, अपने ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, किसी बड़े इंपॉर्टेंट शख्स से बात कर रहे हैं, अपने दिल लगी वाले शख्स से बात कर रहे हैं और इंटरनेट ख़त्म हो जाए या चला जाए, तो आप ऐसे में क्या इंटरनेट प्रोवाइडर को जो प्रोवाइड करते हैं उनको क्या कहते हैं, क्या लिखेंगे उनको, ये ज़रूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 पे, 6622107 पे। फिलहाल एक कॉलर लेते हैं। जी हेलो, सलाम वालेकुम, फजल भाई हैं क्या? हेलो भाई, कॉल लगा के भूल गए क्या? सलाम, हेलो, कोई और है, दूसरे कॉलर को लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम जी, कौन बात कर रहा है?
8: फजील भाई कैसे हैं? सैयद जमील अहमद।
7: जमील साहब क्या हाल है?
8: जिसके लिए आपने आधा शौरमा रखा हुआ था ना,
7: है क्या जिसके लिए
8: जिसके लिए अभी आधा शौरमा रखा था ना।
7: अच्छा, 10 बजे ओके। तो फिर आज मतलब इस शौरमे का इतना लालच भाई, कॉल ही कर दिया आपने। लग रहा दोपहर का खाना खाया नहीं है भाई ने।
8: यार काफी दिन से ना, एक हफ्ता हो गया सर्वर भाई से बात नहीं हुई, इसलिए थोड़ा सा फूडी आदमी हूं, समझा करें आप। आपका जिक्र दिया था होता है।
7: तो मैंने कहा सोशल मीडिया पे या फिर क्या हमने FM 107 पे बता दिया है कि मैं भुक्कड़ आदमी हूँ क्या?
8: नहीं नहीं, सर्वर भाई ने बताया सबको
7: कि मैं भुक्कड़। ये बात सर्वर कह रहे हैं भाई,
8: ये बात सर्वर भाई कह रहे हैं, नादी कह रही है, नहीं वो तो आपकी साइड पर होती है, वो नहीं, सर्वर भाई ज्यादा लेते हैं।
7: अरे यार मैं यकीन से बता दूं, आप खुद आपने सर्वर भाई को देखा है?
8: हाँ देखा है बहुत बार, हजरात मेट्रो से उतरते हुए और चढ़ते हुए।
7: एक बात बताया जमील साहब, ये कौन सा बंदा होगा, कौन सी खुदा की जात है जो सर्वर भाई के बगल बैठने के बाद भुक्कड़ दिख रहा हो? आप बताओ अगर आपने देखा है सरवर भाई को।
8: हाँ मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा सरवर भाई को, बहुत अच्छी तरीके से देखा। मैं कोई हो ही नहीं सकता
7: अगर मेरा मेरा दुगना हट्टा कट्टा आदमी उसके बगल बैठ गया तब भी जो है ये कहेंगे कि सरवर भाई की एपेटाइट अच्छी है। तो लोग यही कहेंगे, बाकी ये कहेंगे फजील तुम कमजोर हो गए, लोग मुझे सरवर भाई के बगल बैठ के देखेंगे ना तो यही कहेंगे।
8: अलिफ ने उनकी थोड़ी लगेगी।
7: बाकी ठीक है, मतलब हो सकता है उसने मुझे कहते हुए कभी देख लिया। आजकल मैं बुक्कड़ हो गया हूँ, मैं ये मानता हूँ।
8: अच्छा आपके जो फजील भाई आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना कि सडनली इंटरनेट जाने के बाद आप सर्विस प्रोवाइडर को क्या कहेंगे,
7: हल्लू हल्लू बोलना भाई, ऐसा गाढ़ा नहीं बोलना। हाँ ये पता है
8: मैं बोल ही नहीं सकता
7: क्योंकि हुआ क्या है, ये कोड़े वाले भैया ने ना मोबाइल भी यहाँ पर ट्रैक करना शुरू कर दिया, वो नंबर से ट्रैक कर लेते कहाँ हो कहाँ नहीं।
8: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं बोल ही नहीं सकता, सिर्फ सिर्फ यही निकलता दिल से
7: अस्तग़फ़िरुल्लाह। जैसे एक वक्त पे हुआ था ना फलाना एप्लीकेशन वांट्स टू नो योर लोकेशन, वैसे ही ये जलाली आदमी जल्लाद आदमी कहता है जलाल ये कहता है वेर इज ही आई वांट टू नो हिज लोकेशन, ये भी यही कहता है।
8: आप यूपी से तो नहीं है फजील भाई?
7: हाँ भाई यूपी से ही हूँ मैं।
8: तो फिर आपने जलाह क्यों बोला?
7: जलाल कहा भाई।
8: जलाल।
7: भाई आपके कान बहुत खुल गए हैं माशाल्लाह, जब से शोर में की आवाज सुनी है आपने।
8: मेरे से मेरे बराबर में एक बैठा हुआ है यूपी आजमगढ़ का।
7: अच्छा आजमगढ़ के भाई बैठे हो, अपन कानपुर से फैजाबाद से ताल्लुक रखते हैंगे तो ठीक है, मतलब ये तो अच्छी
8: अच्छा,
7: बात है।
8: और पता है क्या फजील भाई, देखें इंटरनेट जाने से पहले मैं बताऊं, अगर नॉर्मली पूरी दुनिया में अनाउंस कर दिया जाए कि भाई विद इन 30 डेज पूरी दुनिया से इंटरनेट गायब हो जाएगा, तो ये दुनिया उसका रिप्लेसमेंट चुटकी बजा के ढूंढ लेगी और ठीक 30 दिन के बाद इनको पता भी नहीं होगा कि कोई इंटरनेट नाम की चीज थी भी।
7: और मुझे हाँ ये बात बहुत सही कही आपने कि रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए बहुत तैयार बैठे, उनको तो चाहिए मौका कि कब तुम्हारी ऐसी
8: एकदम
7: हाँ कब तुम्हारा इधर उधर हो और अपन जो है आगे कब्जिया ले।
8: और हम लोग जो मिडिल ईस्ट में जो गल्फ में रहते हैं ना, हमें अगर हमारी अपनी गाड़ी खराब हो तो ओवर भी नहीं आए तो पैदल चलना शुरू कर देते हैं, हमारे पास ऑल्टरनेट के तो भरमार लगे हुए।
7: और सोचो फिर अगर ये भी नहीं है तो मेट्रो नहीं है तो फिर कारवा है ना, तो बस कर ले रहे हैं।
8: चला ले भाई तुझे नहीं बोल रहे हो,
7: नहीं ये गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट वाला बोल सकते भाई।
8: हाँ गवर्नमेंट
7: वाला बोल सकते। चले भाई बहुत बहुत शुक्रिया
8: फजील भाई, इसलिए इंटरनेट चले जाने से कुछ इतना ज्यादा बुरा नहीं होगा, जब बुरा तो कब हुआ जब वो आया।
7: अच्छा
8: बुरा हुआ तो बुरा हुआ जान, लेकिन मैं बड़ा सुकून में आ जाऊंगा भाई, बहुत ज्यादा सुकून है। हमने दुबई में भी वो वाली लाइफ गुजारी है जब इंटरनेट नहीं था। वो बड़े सुकून में वीकेंड के ऊपर जाके घर पे बात कर रहे हैं और 16 मिनट बात हो रही है 100 धर्म के अंदर, कैसे हैं वो, कैसे हैं पप्पा, कैसे हैं चच्ची, कैसी हैं ओके अल्लाह हाफिज़, एक हफ्ते का सुकून। अभी तो हर 5 मिनट के बाद वीडियो कॉल आती है, बताओ क्या कर रहे हो। अभी टेंशन है,
7: अभी मुझे पता है, अभी एक मेरा दोस्त है तो मुझे पता चला है कि यहां पर उसके करीब 8-10-15 दोस्त हैं और उन लोगों ने 100-100, 200-200 रियाल इकट्ठा करके एक कमरा लिया है और रात को 8-9 बजे के बाद ना वो सारे लोग साथ में बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं और इंटरनेट इस्तेमाल नहीं होता, मोबाइल इस्तेमाल नहीं होता और सारे लोग अपना खेल करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और 2-4 घंटा 2 बजे तक रात के वो मजे करते हैं। और मुझे लगा यार ये वाला ऑप्शन भी बढ़िया है कि 100-100 रियाल जो है वो इकट्ठा करके एक ऐसा रूम ले लो जहां पर बैठ के हंसी मजाक करो फैमिली को छोड़ के,
8: और ये फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी।
7: करेक्ट करेक्ट, तो वो बहुत सही बात लगी मुझे क्योंकि ये सही है कि इंसान जो है ना इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलता है, लोगों से मिलता है तो ज्यादा फील फ्री कर पाता है।
8: बिल्कुल, जैसे 2008-09 में 7 में 6 में 4 में हम लोग थे।
7: हाँ हाँ करेक्ट,
8: आप तो खैर छोटे होंगे उस
7: वक्त। तब मेरे पास इंटरनेट,
8: हमने गल्फ की लाइफ देखी।
7: तब मेरे पास 15 रुपए का इंटरनेट था, अखबार बेच के 15 रुपए इकट्ठा करते थे, फिर वो कार्ड लेते थे 15-15 रुपए का।
8: हाय माशाल्लाह
7: 250 MB।
8: चलिए फजील भाई, इंशाल्लाह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में बात होगी जरूर, बहुत याद रखिएगा।
7: थैंक यू मेरा, थैंक यू सो मच मेरा भाई, और मुझे नहीं यकीन कि आप एक शोर में के लिए कॉल कर देंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।
8: अरे नहीं बता क्या। ओके ओके
7: ओके भाई ओके। 6:54 बाकी लोगों के मैसेज की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। कनाडा से भाई मैसेज आ रहे हैं, हाँ यार आते तो हैं। ये है फलाना एज ग्रुप, अच्छा लव यू भाई, लव यू टू मेरा भाई। इंटरनेट से किसी को फर्क पड़े या ना पड़े बट इन्फ्लुएंसर के काम बंद होंगे। हाँ यार उनके काम बड़े हैम्पर होंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो भी गया तो ये जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है मुझे लगता है ये सारे मिलकर एक इंटरनेट की इजाद तो कर ही लेंगे। है ना, मतलब कुछ नहीं तो 100-150 अच्छे इन्फ्लुएंसर जिनको जो वेल नोन है ये मिलकर इंटरनेट का इजाद कर ले, कुछ ना कुछ तो करेंगे कि भाई हमारे लिए तो इंटरनेट करवाओ यार लेकिन इनके लिए हो जाएगा तो बाकी लोगों के लिए कैसे? ये या तो ऐसा करेंगे कि बड़े आदमी से बात करेंगे, इलॉन मस्क बाबू से, कि बाबू इधर इधर इंटरनेट चाहिए मेरे को, इंटरनेट पहुंचा दो भाई, एक अलग दुनिया बना के। इनके काम लेकिन रुक जाएंगे, जितने भी इन्फ्लुएंसर भाई लोग हैं इनके काम जो है वो रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है, आपका घर चलता रहेगा। जो इन्फ्लुएंसर भाई सुन रहा है ना, आपका घर चलता रहेगा, आप चिंता मत करिए, ये बस एक सवाल है। वाकई मुश्ताक शेख कहते हैं इंटरनेट इज माई सेकेंड वाइफ, अरे लारे अच्छा हुआ आपकी फर्स्ट नहीं सुन रही है एक और लाइन आ रही, वो बोल नहीं सकता हूँ वरना वो तोड़ती हैं आपको। आगे बढ़ते हुए ये मैसेज है, डियर इंटरनेट प्रोवाइडर फटे मुंह तेरा इतना इतना गुस्सा अभी से। ये अशफाक भाई ने तो वो बात लिखी है जो फिल्टर होके यहां तक आई है, ये कुछ और बोलना चाह रहे हैं वो मैं नहीं बताऊंगा इमराना सरवर का नाम है भाई, प्लीज सऊदी से डैश डैश डैश कैंसिल हो रही है, प्लीज किसी से पूछ के बताएं, ये मेरे को आइडिया नहीं है। कल मेरी बहन आने वाली है फलाना एयरपोर्ट, जवाब मैं इसका इसका इसकी मुझे जानकारी कम है क्योंकि आजकल मैं खुद सोशल मीडिया कम चला रहा हूँ, मैं किसी से पूछूं इससे बेहतर है कि कुछ देर में आप न्यूज़ बुलेटिन सुनेंगे और न्यूज़ बुलेटिन में ये बात अगर वाजे हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा कि क्या ऐसा है या नहीं है जो आपका सवाल है ना। फिलहाल दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे इसी जगह से FM 107 पे। अभी जैक की आवाज में अपना दिल ये गाना आपके लिए, दिल से देसी।

कंपनियों के लिए कतर में नई शराकत दारियों की राह हमवार करने पर तवज्जो दी जा रही है। बिलखसूस मालियाती खिदमात, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और पायदार तरक्की के शोबों में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। सुजन लिंगली ने कहा कि कतरी सरमायाकारी ने बरतानिया के मुतअद्दिद अहम शोबों को तकवियत पहुँचाई है, जबकि बरतानवी महारत और तजुर्बे ने भी कतर की तरक्की और पेशरफ्त में नुमाया किरदार अदा किया है। कतरी सरमायाकारों के नाम अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि बरतानिया उनके अज़्म और एतमाद को कदर की निगाह से देखता है और इस शराकतदारी को मज़ीद गहरा करना चाहता है। जबकि पायदार सरमायाकारी के लिए महफूज और शफाफ माहौल की फराहमी का सिलसिला भी जारी रहेगा। उन्होंने इस हवाले से कानून की वालादस्ती, मौसर और काबिल एतमाद ज़ाब्ताकारी, वसी मालियाती मंडियों और आलमी मेयार की पेशवराना मुशावरती खिदमात को बरतानिया की अहम खसूसियात करार दिया है। कतर की तरक्याती तरजीहात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लंदन कतरी इदारों और कंपनियों को सरमाया, खसूसी मुशावरती खिदमात और आलमी शराकत दारों तक रसाई फराहम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है, जबकि सरमायाकारी, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी और पेशावराना खिदमात के शोबों में लंदन का वसी तजुर्बा नई सनतों के लिए माली वसाइल की फराहमी, बड़े मनसूबों के तहफ्फुज़ और कतरी कंपनियों की आलमी सतह पर तोसी में मददगार साबित हो सकता है। सिटी ऑफ लंदन की लॉर्ड मेयर ने इस बात पर भी जोर दिया कि सब्ज मईशत, मालियाती टेक्नोलॉजी और इस्लामी मालियात ऐसे शोबे हैं जहां कतर और बरतानिया के दरमियान तआवुन को मज़ीद आगे बढ़ाने के हकीकी और वसी मौके मौजूद हैं। उनके मुताबिक लंदन सब्ज बुनियादी ढांचे और साफ तवानाई के मनसूबों के लिए निजी सरमायाकारी हासिल करने में मुआवनत कर सकता है, जबकि अपने मजबूत मालियाती टेक्नोलॉजी निज़ाम के जरिए कतरी कंपनियों को नई खिदमात मुतारिफ कराने और आलमी मंडियों में अपने कारोबार को वसअत देने में भी मदद फराहम कर सकता है। ये खबरें उर्दू रेडियो FM 107 से नशर की जा रही है। सऊदी अरब के वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि खित्ते और सऊदी अरब में हालिया पेशरफ्त ने एक बार फिर ये हकीकत वाज़े कर दी है कि तवानाई के तहफ्फुज़ को किसी सूरत यकीनी और तयशुदा अमर समझकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बिलखसूस ऐसे हालात में जब तवानाई की तरसील के रास्तों को दबाव का सामना हो और अहम बुनियादी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा हो। रियाज में आज 25वीं आलमी पेट्रोलियम कांग्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा कि तवानाई के निज़ाम की मजबूती और मुश्किल हालात का मुकाबला करने की सलाहियत का अंदाज़ा सिर्फ इजाफी पैदावारी गुंजाइश, पाइपलाइनों या बिजली पैदा करने की सलाहियत से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि इसमें तनसीबात की देखभाल और मरम्मत, ज़रूरत पड़ने पर तरसील के रास्तों में तब्दीली, मुतबादल ज़राए की तलाश, किसी बहरान के बाद तेज़ी से बहाली और दबाव के बावजूद तनाई की फराहमी जारी रखने की सलाहियत भी शामिल हैं। सऊदी वजीर तवानाई ने इस बात पर जोर दिया है कि सबके लिए तवानाई के महफूज मुस्तकबिल का तसव्वुर उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक तवानाई का तहफ्फुज़ भी सबके लिए यकीनी न हो, इसलिए तवानाई के शोबे में तब्दीली और तवानाई के तहफ्फुज़ को एक दूसरे से अलग करने के बजाय दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना ज़रूरी है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने आज रियाज के किंग खालिद बिन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर फ़िज़ाई ऑपरेशन की मुअत्तली की मुद्दत में मज़ीद तौसी का ऐलान किया है। अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा कि यह फ़ैसला मुतालिक इदारों के साथ राबते और तआवुन से हवाई अड्डे की तमाम तनसीबात और सहूलियात की हिफाजत का मुकम्मल जायज़ा लेने और फ़िज़ाई ऑपरेशन के लिए उनकी तैयारी यकीनी बनाने की गरज से किया गया है। वाज़ह रहे कि गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान हौसी ग्रुप की जानिब से किंग खालिद बिन अल-अक़वामी हवाई अड्डे और उसकी मुख्तलिफ तनसीबात को निशाना बनाया गया था, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जाँबहक और ज़ख्मी हुए, जबकि अमलाक और तनसीबात को भी मादी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी हुक्काम ने बताया है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर रूसी हमलों के नतीजे में दो अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद इमारतों और बुनियादी ढांचे की तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा है। गज़ा पट्टी के शमाली इलाके में गुज़श्ता रोज़ इसराइली ड्रोन हमलों में ज़ख्मी होने वाला एक फ़लस्तीनी आज ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया, जबकि गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज की फायरिंग और फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में बच्चों और ख़वातीन समेत मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। जनूबी लुबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली हमलों का सिलसिला आज भी जारी रहा।

0: मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, एनर्जी और दूसरी इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनाइजेशंस रोबोटिक्स और ऑटोमेशन को इंक्रीजिंगली यूज कर रही हैं। इसका मकसद प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, सेफ्टी इन्हांस करना, रेपिटेटिव वर्क को ऑटोमेट करना और ऑपरेशंस को ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। इस वजह से ऐसे प्रोफेशनल्स की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है जो मशीन्स के साथ सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को समझते हों। यानी फ्यूचर में सिर्फ रोबोट बनाना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, रोबोट का समझना, प्रोग्राम करना, मेंटेन करना और सेफली ऑपरेट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। और अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आपको रोबोटिक फील्ड में करियर चूज करना हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे? क्या आप रोबोट्स डिजाइन करना चाहेंगे या उन्हें प्रोग्राम करना, या रोबोट्स को मेंटेन और रिपेयर करना, या फिर किसी इंडस्ट्री में रोबोट्स के साथ डायरेक्टली वर्क करना? अपना जवाब जहन में जरूर रखिए, क्योंकि एपिसोड के एंड में हम इस क्वेश्चन पर दोबारा बात करेंगे। और अब वक्त आ गया है हमारे सेगमेंट जॉब्स फॉर टुमारो का। रोबोटिक्स एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है। इसका मतलब यह है कि इस फील्ड में सिर्फ एक सब्जेक्ट का नॉलेज काफी नहीं होता। रोबोटिक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एरियाज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ऑटोमेशन का फोकस प्रोसेसेस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने और रेपिटेटिव ह्यूमन टास्क को टेक्नोलॉजी के जरिए परफॉर्म करवाने पर होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्साइटिंग फील्ड में कौन कौन से करियर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोबोटिक इंजीनियर की। रोबोटिक्स इंजीनियर रोबोट्स को डिजाइन, डेवलप और टेस्ट करता है। यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक नया रोबोट बनाना चाहती है तो रोबोटिक्स इंजीनियर उस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। रोबोटिक्स इंजीनियर रोबोट का फिजिकल स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकता है। वो डिसाइड करता है कि रोबोट के लिए किस टाइप के मोटर सुटेबल होंगे, कौन से सेंसर यूज किए जाएंगे और रोबोट किस तरह मूव करेगा और मशीन डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन डिजाइन के बाद काम खत्म नहीं हो जाता, रोबोट को टेस्ट करना होता है और अगर रिपोर्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे रहा तो इंजीनियर को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है। हो सकता है कि मोटर की स्पीड एडजस्ट करनी हो सकता है कि सेंसर को चेंज करना हो सकता है सॉफ्टवेयर में करेक्शन करनी हो और सेफ्टी को भी केयरफुली चेक करना होता है। रोबोटिक्स इंजीनियर्स इंडस्ट्रियल रोबोट्स, मेडिकल रोबोट्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स और रिसर्च रोबोट्स पर काम कर सकते हैं। इस करियर के लिए क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सोचना पसंद होना चाहिए कि इस मशीन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आपको प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रॉब्लम को एक चैलेंज समझकर सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। अगला करियर है ऑटोमेशन इंजीनियर। ऑटोमेशन इंजीनियर ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करता है जो मशीन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने में मदद देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में प्रोडक्ट्स एक प्रोडक्शन लाइन पर मूव कर रहे हैं। ऑटोमेशन इंजीनियर ऐसा सिस्टम डिजाइन कर सकता है जो प्रोडक्ट्स को मूव करे, उनकी क्वालिटी चेक करे और फिर उन्हें पैकेजिंग के लिए प्रिपेयर करे। इस प्रोसेस में डिफरेंट मशीन्स, सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ऑटोमेशन इंजीनियर का काम होता है कि ये इंटायर प्रोसेस एक्यूरेटली और सेफली ऑपरेट करे। ऑटोमेशन इंजीनियर्स प्रोडक्शन लाइंस, कंट्रोल सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, पैकेजिंग सिस्टम्स और क्वालिटी इंस्पेक्शन सिस्टम्स पर काम कर सकते हैं। ये करियर उन स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है जिन्हें मशीन और टेक्नोलॉजी दोनों पसंद हो। अब बात करते हैं रोबोट टेक्नीशियन की। अगर इंजीनियर्स रोबोट डिजाइन करते हैं तो टेक्नीशियंस उन रोबोट्स की प्रैक्टिकल ऑपरेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. रोबोटिक टेक्नीशियन रोबोटिक इक्विपमेंट को इंस्टॉल, मेंटेन, टेस्ट और रिपेयर करते हैं. अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो टेक्नीशियन उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है. वो डैमेज्ड कंपोनेंट रिप्लेस कर सकता है, सेंसर्स को कैलिब्रेट कर सकता है, मशीन के डिफरेंट पार्ट्स इंस्पेक्ट कर सकता है और रेगुलर मेंटेनेंस परफॉर्म कर सकता है. सोचिए, एक फैक्ट्री में एक इम्पोर्टेंट रोबोटिक मशीन अचानक काम करना बंद कर दे. अगर मशीन आवर्स तक बंद रहे तो प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है. इसलिए ट्रेन टेक्नीशियन की जरूरत होती है जो प्रॉब्लम को क्विकली अंडरस्टैंड करके मशीन को दोबारा ऑपरेशनल बनाए. इस करियर में प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको मशीन्स को सिर्फ बुक्स में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली समझना होता है. अगला करियर है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट. ये प्रोफेशनल्स फैक्ट्रीज और लार्ज इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में ऑटोमेटेड सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं. वो इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स, सेंसर्स, रोबोटिक आर्म्स, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम और मशीन कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ काम कर सकते हैं. उनका मेन गोल होता है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम्स स्मूथली ऑपरेट करें, प्रोडक्शन एफिशिएंट रहे, क्वालिटी मेंटेन हो और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हों. इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट को मशीन के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को भी समझना होता है. यानी उन्हें सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि मशीन कैसे चलती है, उन्हें ये भी समझना होता है कि मशीन प्रोडक्शन प्रोसेस का किस पार्ट में यूज हो रही है. अगर आपको मैकेनिकल सिस्टम्स भी पसंद है और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग भी, तो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपके लिए इंटरेस्टिंग फील्ड हो सकती है. मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सिस्टम और कंट्रोल टेक्नोलॉजी को कंबाइन करती है. मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स स्मार्ट मशीन्स, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स, रोबोटिक डिवाइसेस और प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स पर काम कर सकते हैं. इस फील्ड की खास बात यह है कि आपको मल्टीपल टेक्निकल एरियाज का कॉम्बिनेशन सीखने का मौका मिलता है. एक स्मार्ट मशीन को इमेजिन कीजिए, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हैं, उसका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है और उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम्स की जरूरत होती है. मैकेट्रॉनिक्स इन डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करती है. और अब बात करते हैं एक रैपिडली डेवलपिंग फील्ड की, ऑटोनोमस व्हीकल्स. ऐसे व्हीकल्स जो अपने सराउंडिंग को सेंस कर सकें और लिमिटेड ह्यूमन कंट्रोल के साथ ऑपरेट कर सकें, उन्हें डेवलप करने के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है. ऑटोनोमस व्हीकल स्पेशलिस्ट सेंसर्स और कैमरास के साथ काम करते हैं, नेविगेशन सिस्टम्स डेवलप करते हैं, व्हीकल कंट्रोल को इम्प्रूव करते हैं, सेफ्टी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और रियल टाइम डिसीजन सिस्टम्स पर काम करते हैं. यहाँ रोबोटिक्स के साथ प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एक ऑटोनोमस व्हीकल को सिर्फ रोड पर मूव नहीं करना होता, उसे सराउंडिंग्स को समझना होता है, ऑब्स्टिकल आइडेंटिफाई करने होते हैं और सिचुएशन के मुताबिक रिस्पॉन्स देना होता है. इसीलिए इस फील्ड में मल्टीपल टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है. और अब एक और इम्पॉर्टेंट करियर, रोबोटिक्स रिसर्चर. रोबोटिक रिसर्चर्स नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज डेवलप करने पर फोकस करते हैं. वो स्टडी कर सकते हैं कि रोबोट्स ह्यूमंस के साथ किस तरह बेटर इंटरेक्ट कर सकते हैं, रोबोट मूवमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोबोटिक्स में किस तरह यूज किया जा सकता है, कंप्यूटर विजन को कैसे बेटर बनाया जा सकता है और हेल्थ केयर में रोबोट्स का रोल किस तरह डेवलप हो सकता है. रिसर्च यूनिवर्सिटीज, लेबोरेटरीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज और इनोवेशन सेंटर्स में की जा सकती हैं और अगर आपको क्वेश्चंस पूछना और उनके आंसर डिस्कवर करना पसंद है तो रिसर्च एक एक्साइटिंग करियर पाथ हो सकता है।
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
0: एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि रोबोट्स सिर्फ फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, लेकिन रोबोटिक्स का यूज बहुत सी इंडस्ट्री में हो रहा है। जैसे कि हेल्थ केयर में रोबोटिक टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, प्रिसिशन प्रोसीजर्स, लेबोरेटरी प्रोसेसेस, रिहैबिलिटेशन और लॉजिस्टिक्स जैसे एरिया में सपोर्ट कर सकती है। एग्रीकल्चर में ऑटोमेशन प्लांटिंग, मॉनिटरिंग और हार्वेस्टिंग जैसे टास्क में हेल्प कर सकती है। वेयरहाउसेस में रोबोट्स गुड्स को मूव और ऑर्गेनाइज करने में मदद कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऑटोमेटेड सिस्टम सेफ्टी और एफिशिएंसी इंप्रूव करने में रोल प्ले कर सकते हैं। हॉस्पिटलिटी और रिटेल में रोबोटिक सिस्टम्स कस्टमर असिस्टेंट, डिलीवरी, क्लीनिंग और इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। स्पेस सेक्टर में रोबोटिक सिस्टम्स उन एनवायरमेंट्स में काम कर सकते हैं जहां ह्यूमंस के लिए जाना डिफिकल्ट या रिस्की हो। यानी रोबोटिक्स एक सिंगल इंडस्ट्री करियर नहीं है, ये एक ब्रॉड फील्ड है। आप इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, रिसर्च, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, डिजाइन और मैनेजमेंट जैसे डिफरेंट एरियाज में अपना करियर बना सकते हैं। और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट करियर टू कैंपस का। अब सवाल ये है, अगर एक स्टूडेंट फ्यूचर में रोबोटिक्स या ऑटोमेशन में करियर बनाना चाहता है तो उसे स्कूल और यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रोबोटिक्स के लिए कोई एक ही एकेडमिक रूट नहीं है। आपका पाथवे आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको मशीन्स और मैकेनिकल डिजाइन पसंद है तो एक रूट हो सकता है। अगर प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पसंद है तो दूसरा रूट हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम पसंद है तो आप डिफरेंट इंजीनियरिंग पाथवे चूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्किट्स, सेंसर्स, मोटर्स और कंट्रोल सिस्टम को समझने में हेल्प करती हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मशीन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंटरेस्टिंग लगते हैं तो ये फील्ड आपके लिए यूजफुल हो सकती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन्स के स्ट्रक्चर्स, मूवमेंट, मटेरियल्स और डिज़ाइन पर फोकस करती है। रोबोट्स का फिजिकल बॉडी और मूवमेंट डिज़ाइन करने में मैकेनिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग के साथ कंबाइन करती है। रोबोटिक्स के लिए ये नेचुरली रेलेवेंट पाथवे है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग हार्डवर्क और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन पर फोकस करती है। एम्बेडेड सिस्टम्स और रोबोटिक हार्डवेयर के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग का नॉलेज यूजफुल हो सकता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्राम विजन और रोबोट लर्निंग में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर साइंस स्ट्रॉन्ग पाथवे हो सकता है। मॉडर्न रोबोट्स को इंटेलिजेंट बनाने में सॉफ्टवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑटोमेशन, प्रोडक्शन सिस्टम्स, एफिशिएंसी और प्रोसेस इंप्रूव करने से रिलेटेड करियर्स का पाथवे प्रोवाइड कर सकती है। स्कूल लेवल पर स्टूडेंट्स को कुछ सब्जेक्ट पर स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए। सबसे पहले है मैथ। रोबोटिक्स में कैलकुलेशंस, मेजरमेंट्स, ज्योमेट्री, स्टेट्स और लॉजिकल थिंकिंग इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आता है फिजिक्स। मूवमेंट, फोर्स, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल सिस्टम्स को समझने के लिए फिजिक्स हेल्पफुल है। उसके बाद प्रोग्रामिंग। आज के रोबोट्स सिर्फ मैकेनिकल मशीन्स नहीं है, उनके बिहेवियर को सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, इसलिए प्रोग्रामिंग सीखना बहुत यूजफुल है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेंसर्स और सर्किट्स किस तरह काम करते हैं ये समझना रोबोटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है. कंप्यूटर एडेड डिजाइन, स्टेट्स, कंट्रोल सिस्टम्स और इंजीनियरिंग सेफ्टी भी रेलेवेंट एरियाज हैं. सिर्फ टेक्स्ट बुक पर डिपेंड करना रोबोटिक्स में इनफ नहीं होता. अगर आप स्टूडेंट हैं तो छोटे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें. आप एक सिंपल रोबोटिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एक बेसिक सेंसर को प्रोग्रामिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रोबोटिक्स क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एजुकेशनल रोबोटिक किट्स यूज कर सकते हैं, स्मॉल प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिले तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रोजेक्ट का बहुत एडवांस होना ज़रूरी नहीं, आप एक सिंपल आइडिया से स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक सेंसर बेस्ड सिस्टम जो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे, फिर आप उस सिस्टम में एक मोटर ऐड कर सकते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग इम्प्रूव कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक कंप्लीट रोबोटिक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं. रोबोटिक्स में लर्निंग स्टेप बाय स्टेप ही होती है. टेक्निकल नॉलेज के साथ कुछ पर्सनल स्किल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग. रोबोटिक्स में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, मशीन काम नहीं करेगी, कोड में एरर आ जाएगा, सेंसर करेक्ट रीडिंग नहीं देगा और डिज़ाइन को मल्टीपल टाइम्स चेंज करना पड़ेगा. इसलिए पेशेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों इम्पॉर्टेंट हैं. दूसरी स्किल है क्रिएटिविटी. रोबोटिक्स सिर्फ फॉर्मूलाज फॉलो करने का नाम नहीं, कभी कभी आपको कम्प्लीटली न्यू सॉल्यूशन सोचना पड़ता है. कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स अक्सर टीम्स में डेवलप होते हैं. इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, टेक्नीशियंस और मैनेजर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होता है. टीम वर्क के बगैर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स डिफिकल्ट हो सकते हैं. अटेंशन टू डिटेल भी एसेंशियल है. एक छोटी सी मिस्टेक मशीन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी अवेयरनेस. रोबोट्स पावरफुल मशीन हो सकती हैं, इसलिए सेफ ऑपरेशंस और रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइन को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए. स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करने की अपॉर्चुनिटीज भी सर्च करनी चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंजीनियरिंग फर्म्स, रिसर्च सेंटर, टेक्नोलॉजी कंपनीज, लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस, एनर्जी कंपनीज, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, ये सब पोटेंशियल लर्निंग एनवायरनमेंट हो सकते हैं. इंटर्नशिप से स्टूडेंट को ये समझने का मौका मिलता है कि क्लासरूम में जो कॉन्सेप्ट सीखे गए हैं वो रियल वर्क प्लेस में किस तरह यूज हो सकते हैं. मेरी स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल एडवाइस है, आपको एक कॉम्प्लेक्स रोबोट से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. बेसिक से स्टार्ट करें, समझें कि सेंसर कैसे काम करता है, एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, मैकेनिकल सिस्टम को ऑब्जर्व करें, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स समझें, फिर इन कॉन्सेप्ट को कंबाइन करना शुरू करें. अगर पहली अटेम्प्ट में प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोबोटिक्स के लिए सूटेबल नहीं हैं. एक्चुअली फेलियर लर्निंग का पार्ट है. रोबोट को इम्प्रूव करने के लिए टेस्टिंग और मिस्टेक्स दोनों ज़रूरी हैं. रोबोटिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे इंटरेस्टिंग फील्ड हो सकती है जो एक्सपेरिमेंट करना, क्वेश्चंस पूछना और सॉल्यूशंस इम्प्रूव करना पसंद करते हैं. कतर का एनर्जी सेक्टर भी एडवांस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सिस्टम से क्लोजली कनेक्टेड है. लार्ज इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में मॉनिटरिंग, कंट्रोल और ऑटोमेटेड सिस्टम्स का कंट्रोल इम्पॉर्टेंट हो सकता है. प्रोफेशनल्स टेक्नोलॉजी को सेफली ऑपरेट करने, इक्विपमेंट परफॉर्मेंस मॉनिटर करने और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इस फील्ड में इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन स्किल्स यूजफुल हो सकती हैं. लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन भी रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं. पोर्ट्स, वेयरहाउसेस, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में गुड्स को एफिशिएंटली मूव करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है. ऑटोमेटेड वेयरहाउसेस में मशीन्स प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई और मूव करने में हेल्प कर सकती हैं. future professionals, warehouses, automation, smart logistic, robotic handling systems और operations technology जैसे areas में काम कर सकते हैं. Healthcare technology भी robotics के लिए एक important area है. Robotic systems, medical assistants, laboratory processes, rehabilitation और internal logistics जैसे areas में support provide कर सकते हैं. Healthcare और robotics को combine करने वाले professionals को engineering के साथ healthcare environment को भी समझना होता है. ये एक ऐसी field है जहां technology का ultimate purpose human well-being और better services को support करना होता है. कतर की हॉस्पिटलिटी और सर्विस सेक्टर भी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहा है. रोबोटिक सिस्टम्स फ्यूचर में कस्टमर असिस्टेंट, क्लीनिंग, डिलीवरी और इन्वेंटरी मैनेजमेंट जैसे टास्क में सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. लेकिन इन सपोर्ट्स को ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी. यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कॉम्पिटिशन, इंजीनियरिंग एक्टिविटीज और इनोवेशन प्रोग्राम्स के जरिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं. अगर आप कतर में स्टूडेंट हैं और रोबोटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो यूनिवर्सिटीज, कम्युनिटी प्रोग्राम्स और टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशंस को फॉलो करना यूजफुल हो सकता है. कतर में रहने वाले तमाम यंग स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस है कि सबसे पहले अपनी मैथ और साइंस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज हासिल करें, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल डिज़ाइन को एक्सप्लोर करें, रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन्स और साइंस प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करें, यूनिवर्सिटी और कम्युनिटी बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को फॉलो करें, इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज सर्च करें और कतर के डिफरेंट इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी किस तरह यूज हो रही है इस पर नज़र रखें. आपको हर चीज एक साथ सीखने की जरूरत नहीं. एक स्किल से स्टार्ट करें, फिर दूसरी स्किल ऐड करें. फॉर एग्जांपल, पहले आप प्रोग्रामिंग शुरू करें, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर सेंसर्स की तरफ आ जाएं, और फिर एक सिंपल रोबोटिक प्रोजेक्ट. इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हैं. रोबोटिक्स एक ऐसी फील्ड है जहां इमेजिनेशन को एक रियल वर्किंग सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है. अगर आप एक आइडिया इमेजिन करते हैं, उसे डिज़ाइन करते हैं, उसे बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसे इम्प्रूव करते हैं, यही प्रोसेस एक स्टूडेंट को फ्यूचर प्रोफेशनल बनाने में हेल्प कर सकता है. हम आज के एपिसोड से क्विक करियर चेक करते हैं. अगर आपको मशीन्स पसंद हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सप्लोर करें. इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग हो सकता है. प्रोग्रामिंग और एआई पसंद है तो कंप्यूटर साइंस एक्सप्लोर करें. मशीन्स और सॉफ्टवेयर दोनों पसंद है तो मैकेट्रॉनिक्स कंसिडर करें. इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और एफिशिएंसी में इंटरेस्ट है तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग देखें. और अगर आपको नए आइडियाज डिस्कवर और एक्सपेरिमेंट करना पसंद है तो रोबोटिक रिसर्च आपके लिए एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकता है. करियर चूज करते हुए सिर्फ जॉब टाइटल ना देखें, अपनी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, लर्निंग स्टाइल को भी समझें. आपको किस काम करते हुए एनर्जी मिलती है, क्या आप डेस्क पे प्रोग्रामिंग करना पसंद करते हैं, क्या आप मशीन्स के साथ हैंड्स ऑन वर्क करना चाहेंगे, क्या आप डिज़ाइन और क्रिएटिविटी इंजॉय करते हैं या आप रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन पसंद करते हैं. इन सवालों के जवाब आपको अपना करियर डायरेक्शन समझने में हेल्प कर सकते हैं. और अब आ जाते हैं अपने सेगमेंट, जो मैंने आपसे शुरू में सवाल पूछा था उसकी तरफ, कि आपसे मैंने आज ये सवाल किया था कि हम ह्यूमंस और मशीन मिलकर कितना बेहतर काम कर सकते हैं. आपसे मैंने आज सवाल पूछा था कि अगर आप रोबोटिक फील्ड्स में करियर चूज करें तो आप रोबोट्स डिजाइन करना पसंद करेंगे, उन्हें प्रोग्राम करना, मेंटेन करना या किसी इंडस्ट्री में रोबोट्स के साथ डायरेक्टली वर्क करना. इस सवाल का कोई करेक्ट आंसर नहीं है. अगर आपको ड्राइंग और डिजाइन पसंद है, शायद आप रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकते हैं. अगर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर्स पसंद है तो एआई या रोबोटिक सॉफ्टवेयर आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है. अगर आपको मशीन्स को प्रैक्टिकली हैंडल करना पसंद है तो रोबोटिक्स टेक्नीशियन का रोल आपको सूट कर सकता है। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी अप्लाई करना पसंद है तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर की जा सकती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें और फिर उस इंटरेस्ट को स्किल्स में कन्वर्ट करें। तो अपने आंसर के बारे में सोचिए, शायद आपका आज का आंसर आपके फ्यूचर करियर का पहला क्लू हो। आज के एपिसोड में हमने रोबोटिक्स और ऑटोमेशन को देखा एक ब्रॉड और इवॉल्विंग करियर के तौर पे। इसमें इंजीनियरिंग भी है, इसमें जो कुछ बहुत सारे चांसेस हैं, स्कोप्स हैं, वो मैंने आपको बताए। इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द करियर्स ऑफ टुमारो। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे माविश, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام

वेलकम एक समय एक मतलब फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस सरवा में हमारा जो लास्ट जो पॉइंट था हमारे कैप्टन फहद जासिम अल मंसूरी के साथ जिनका ताल्लुक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से, उनसे हमारा आखिरी सवाल ये था कि ओवरऑल हमारे सामीन के लिए क्या कहेंगे अगर उनके पास से यानी फ्रॉड वगैरह के अवेयरनेस के हवाले से। तो पहली बात उन्होंने कही वीज़ास वगैरह के हवाले से। देखें वीज़ा के हवाले से हमें काफ़ी यानी सिक्योरिटी का जो है ना मामले को ज़रा हर वक्त मद्देनजर रखनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि बाज़ औक़ात हम जो है ना बड़े बड़े बड़ी रकम दे देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि ये फ्रॉड था, ये फिर पता चलता है कि ये टूरिस्ट वीज़ा था, ठीक है, काम का वीज़ा समझकर वो हम वो पैसे देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो टूरिस्ट वीज़ा था, या फिर पैसे दे देते हैं लेकिन वीज़ा ही इशू नहीं होता। तो बात यह है कि देखें कानून के हवाले से जो जहालत है या नावाकिफियत है ये आपको सज़ा से नहीं बचा सकती, ठीक है। ये उन्होंने ये कानून इस उसूल को उन्होंने सही से समझाया है और बताया है जहल बिल कानून मायफी बिल अकूबा, ठीक है, मायफी अकूबा या फिर मायफी बिल अकूबा, यानी इसका मतलब है कि जो मुराद है कि कानून से जो जहालत है कानून के हवाले से ये आपको सज़ा वगैरह से नहीं बचा सकती, ठीक है। तो आपने ओवरऑल जो भी मामला है वीज़ा के इश्यूज़ के हवाले से इसमें आपने काफ़ी होशियार यानी हर वक्त जो है ना मोहतात रहना है, मोहतात रहना है, ठीक है। और मज़ीद उनसे दरमियान में मैंने ये भी कहा था कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग यानी वीज़ा वगैरह के पैसे दे देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि ये फ्रॉडी है, या फिर बाज़ औक़ात कोई अपने से काफ़ी सारे जो है ना कैरियर्स वैकेंसीज़ वगैरह का ऐलान करता है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज़ है ये वो अपने से ऐलान कर रहा है कि मेरे पास है ये है। अरे फ़र्द के पास कैसे वैकेंसीज़ आ जाए गवर्नमेंट के और आप उस पर कैसे विश्वास करके इतने पैसे वगैरह देते हैं, इसको कोई नामुमकिन है। मैंने कहा कि जो अथॉरिटीज़ हैं जो इदारे हैं वही जो है ना इन वैकेंसीज़ का ऐलान करती हैं और वही रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों इश्तहारात वगैरह के हवाले से। तो आप पर किसी ख़ास किसी बंदे के उसके यानी जाली और इस तरह के जो है ना जुर्म का शिकार न हो और मसले में पड़ने से पहले आप इस सिलसिले में जितनी भी जानकारी की ज़रूरत है वो हासिल करें और इस तरह जो है ना ख़ुद भी महफूज रहें, दूसरों की हिफाजत भी उनकी दूसरे की हिफाजत को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझें। तो ये था ये थे चंद अहम नकात जिन पर हमारे मेहमान कैप्टन फहद जासिम अल मंसूरी ने तफसीली तौर पर रोशनी डाली और हमें इसकी वजाहत पेश की बहुत ही उम्दा अंदाज में। सामने क्रम अब जो है ना हम थोड़े से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद हमारे यहाँ दूसरे मेहमान यानी उनसे हमारे सवालात होंगे और क्या मौजू है, कौन से डिपार्टमेंट हैं, ये आप ब्रेक के बाद हम तफसीली तौर पर बताएंगे। तो जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत ही अहम नकात पर गुफ्तगू होने वाली है, बेखसूस मसाइल में तो कमी नहीं, हर किसी को किसी ना किसी मसला का सवाल है। तो बेदला ताला बहुत ही अहम दूसरा सेशन होने वाला है, जुड़े रहिए हमारे साथ।

वेलकम एक समय एक मतलब फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस और आवाम में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही एक वज़ारत दाखिला के अहम डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट दरअसल उसकी अपनी ख़ास खिदमत के हवाले से, यानी उसकी एक ख़ास सर्विस है, उस पर ये डिपार्टमेंट के जो नुमाइंदे हैं उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको डिपार्टमेंट बता दूं, ये डिपार्टमेंट है इदारतुल अमन अल वकाई प्रिवेंटिव सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, यानी पेशगी सलामती के हवाले से जो काम करते हैं ये वो इदारा है। और ख़ास तौर पर अलहदीद सर्विस के हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। तो चलें पहले हम हमारे मौजूद जो लेफ्टिनेंट सालिम अली अल हामिद है उनका इस्तकबाल कर

हेलो एंड वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक फाइनेंशियल टर्म पे, और ये टर्म है एमोर्टाइजेशन, यानी एक बड़ी कॉस्ट को वक्त के साथ डिवाइड करना. चलिए जानते हैं कि ये टर्म हमें और आपको क्या सिखाने वाली है. दोस्तों, जब हम बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में एमोर्टाइजेशन का लफ्ज सुनते हैं तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. असल में ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है. इसका मतलब है किसी इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान धीरे धीरे एक्सपेंस की शक्ल में रिकॉर्ड करना. सबसे पहले यहाँ पर यह भी समझना होगा कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या है. देखिए, इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो फिजिकली नजर नहीं आते, लेकिन बिजनेस लिए बहुत कीमती होते हैं. मिसाल के तौर पे ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड नेम, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ये सब चीजें आप हाथ से टच तो नहीं कर सकते, लेकिन इन मार्केट वैल्यू होती है और ये कंपनी को पैसा कमा कर देते हैं. अब मान लीजिए एक कंपनी ने एक पेटेंट खरीदा और पेटेंट की कॉस्ट थी $100,000 और उस पेटेंट की यूजफुल लाइफ है 10 साल. अब अगर कंपनी पूरे $100,000 को एक ही साल एक्सपेंस दिखा दे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत पिक्चर दिखाएगा, है ना. इसलिए अकाउंटिंग के रूल के मुताबिक कंपनी इस कॉस्ट को 10 सालों में डिवाइड करेगी. कैलकुलेशन है 100,000 डिवाइडेड बाय 10. इस तरह से हर साल कंपनी $10,000 को एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी और इस प्रोसेस को एमोर्टाइजेशन कहते हैं. देखिए, एमोर्टाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी जानना जरूरी है. सोचिए, अगर आपने एक फ्रेंचाइजी खरीदी जो 20 साल तक इनकम जनरेट करेगी, अगर आप पूरी कॉस्ट एक ही साल में एक्सपेंस कर दें तो प्रॉफिट बहुत कम नजर आएगा, लेकिन असल में उस फ्रेंचाइजी का फायदा तो अगले 20 साल तक मिल रहा है. इसीलिए अकाउंटिंग कहती है कि जिस ड्यूरेशन तक एसेट बेनिफिट दे रहा है उसी ड्यूरेशन में उसकी कॉस्ट को स्पीड करो. इसी प्रिंसिपल को मैचिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, यानी इनकम और एक्सपेंस को उसी पीरियड में शो करो जिस पीरियड में बेनिफिट मिल रहा हो. अब देखिए, डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन में भी फर्क है. स्टूडेंट्स और बिगनर्स अक्सर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स भी कर देते हैं. डिप्रिसिएशन जो

टेंजिबल एसेट्स पर ये डिप्रिसिएशन लगता है. एग्जांपल्स हैं, बिल्डिंग है, आपकी गाड़ी है, मशीनरी है, फर्नीचर है. वही एमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स पर होता है. टैक्स प्लानिंग में, बेटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, एसेट वैल्यू ट्रैक करने में और इन्वेस्टर्स को क्लियर पिक्चर देने में. अब कुछ लोग कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं. बहुत लोग समझते हैं कि एसेट खरीद लिया मतलब पूरा एक्सपेंस कर दो. ये अकाउंटिंग के रूल के खिलाफ है. जिस एसेट का बेनिफिट फ्यूचर में मिल रहा हो उसकी कॉस्ट को भी फ्यूचर पीरियड्स में एलोकेट करना चाहिए. इसे एलोकेशन ऑफ एमोर्टाइजेशन भी कहते हैं. देखिए, अब बस जाते जाते आपसे यही कहूंगी कि एमोर्टाइजेशन हमें और आपको ये सिखाती है कि हर बड़ी कॉस्ट को एक ही वक्त में नहीं उठाया जाए. जिस तरह जिंदगी की जिम्मेदारियां वक्त के साथ पूरी होती हैं, उसी तरह इनटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट भी उनकी यूजफुल लाइफ में स्प्रेड की जाती है. स्मार्ट बिजनेसेस सिर्फ पैसा खर्च नहीं करते बल्कि हर कॉस्ट को सही वक्त पर रिकॉग्नाइज करते हैं और यही एक्यूरेट अकाउंटिंग की बुनियाद है. चलिए आज के लिए बस इतना ही. जाते जाते यही कहूंगी कि एक गोल्डन रूल अपने जहन में रखिए. टेंजिबल एसेट्स इज एक्चुअली इक्वल टू डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल एसेट्स टू एमोर्टाइजेशन. ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया क्या? लेट्स स्टिक टू व्हाट वी हैव लर्न्ड. फिलहाल के लिए मुझे यानी नासिया को और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दुआ वाला कबीर FM 107 पे एंड येट अनदर अपडेट। देखिए टेक अपडेट में मैंने आपसे वादा किया है, मैंने आपको वेबसाइट्स बहुत सारी बताई है, बहुत सारी भाई कभी कभार तो मैं भूल जाता हूँ कौन कौन सी बताई है। लेकिन अब हम बात करेंगे मेन स्ट्रीम टेक और गैजेट्स की जो खबरें आ रही हैं मार्केट में, किस तरीके से डेवलप हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, सब चीजों के बारे में कवर करेंगे ताकि आप बिल्कुल अपडेटेड रहें। तो मैं बात

करने वाला हूँ वी आर ग्लासेस के बारे में। देखिए बड़ा ही पेचीदा टॉपिक है ये पेचीदा इसलिए भी है क्योंकि कई मर्तबा इसको लेके लोग जो है इतने ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं कि वो नजरअंदाज कर देते हैं इसके यूसेज को। मैं समझाता हूँ क्या कहने का मतलब है। आपको लगता होगा भाई वीआर आ जाएगा, मजा आ जाएंगे अंटिल और अनलेस यू आर ओके विद द प्राइस टैग। चलो प्राइस टैग भी हटा देते हैं, आपने ले लिया, लेकिन उसके बाद अब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मैं खुद बताता हूँ आपको। मैंने लिया था प्लेस्टेशन का वीआर एंड वो अभी भी पड़ा हुआ है, उसका इतना इस्तेमाल नहीं है एंड आई एम रिग्रेटिंग काइंड ऑफ कि मैंने क्यों इस पे इतने खर्च कर दिए। दूसरी चीज जो आपने अगर नहीं देखी तो आपको बता दूं बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं एंड मेडिकली प्रूवन है कि बच्चों को वीआर नहीं देना चाहिए। सो इफ यू आर गिविंग देम वीआर तो थोड़ा आप जरा बच के रहिए बिकॉज ये इफेक्ट करता है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो प्लीज बी श्योर कि आपका बच्चा अगर आपसे कह रहा है कि मुझे तो वीआर चाहिए, वीआर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बड़ा होने के बाद दिलाने की वाली बात दूसरी खुद ही ले लेगा, मगर उससे पहले मत दीजिए बिकॉज बहुत बहुत बहुत फर्क पड़ता है इससे। एंड वीआर की बात हो ही गई है तो मेन स्ट्रीम मीडिया में जब एप्पल विजन प्रो लॉन्च हुआ था आपको याद है, उसकी कीमत इतनी ज्यादा रखी गई कि लोगों ने कहा कुछ तो होगा, एप्पल है तो कुछ तो होगा ही, इतना महंगा है लोग बड़े बड़े लोग ले रहे होंगे। लेकिन बड़े बड़े लोगों को भी एप्पल विजन प्रो लेने की बात कोई फायदा नहीं हुआ। पीपल आर लाइक ये क्या है यार, ये मतलब अपने प्राइस टैग के हिसाब से नहीं है, इट्स अ लिटिल टू ओवरवेलमिंग। जिस हिसाब से वो था उस हिसाब से 2,000-3,000 रियाल 4,000-5,000 रियाल थोड़ा कम होता तो बढ़िया रहता है, एप्पल कुड हैव डन इट बेटर। वाला जो टैग है वो एप्पल पे लग गया और एप्पल ने लिटरली मेंशन करना बंद कर दिया था एप्पल विजन प्रो को कहीं पर भी। आप कोई सा इवेंट उठा के देख लीजिए, दे आर नॉट इवन मेंशनिंग, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बनाया ही नहीं, एप्पल विजन प्रो को भी था ही नहीं। बट रिसेंटली एप्पल ने बिल्कुल सुबड़ी में चुपके से अपनी इस एंट्री को मिक्स्ड किया है और उसे मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश करी है स्पेशल कंप्यूटिंग की के जरिए। तो स्पेशल कंप्यूटिंग कंज्यूमर एंटरप्राइजेस

0: माइक्रो ओएलईडी स्क्रीन्स जो हैं, डिस्प्लेज, आई ट्रैकिंग, हैंड जेस्चर, विजन प्रो में और सुधार किया जा रहा है। हालांकि आपको किसी इवेंट में नहीं नजर आएगा, बट दे आर ट्राइंग टू ब्लेंड डिजिटल कंटेंट इनटू फिजिकल एनवायरनमेंट। वो उसे अभी उसका प्राइस टैग कम नहीं कर रहे, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर ट्राइंग टू मैच द प्राइस टैग जो ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है। ये भी एक अलग किस्म का चलन है। वो जानते हैं कि अभी सस्ता करेंगे तो लोग बोलेंगे देखा हमने कहा था इतना अच्छा है नहीं। सो एप्पल क्या कर रहा है कि उसकी कीमत के हिसाब से उसको वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो इफ यू हैव चेक्ड एप्पल विजन प्रो अभी तक, पर अगर आपने नहीं चेक किया है, अभी उसमें सुधार आने के बाद इट इज गुड, पर क्या अभी भी एक आम आदमी के लिए है? आंसर इज नो, आई डोंट थिंक सो। अभी भी एक आम आदमी इसको ऐसे यूज करे जैसे एप्पल का फोन यूज करता है, वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। बट तो आने वाले इवेंट में लगता है कि एप्पल जो है अपने एप्पल विजन प्रो को शायद मेंशन करे, और इस बार वो जब मेंशन करेगा तो शायद प्राइस टैग को भी थोड़ा सा लोअर करे। हालांकि मुझे ये प्राइस टैग लोअर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट दे माइट अटैच इट और क्या कहते हैं उसको इंजेक्ट करे बाकी एप्स के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं कि ड्रॉबैक है एप्पल प्रो विजन में, बट डेफिनेटली प्राइस टैग बहुत हाई। आपको क्या कहना है एप्पल विजन प्रो पे अगर सस्ता हो जाएगा क्या आप लेंगे, तो ये बताइएगा। 666-22-107 नंबर है हमारा, और सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड, दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही ज़रूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे, और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। कुरान पढ़ते वक्त उमूमन हमारा जहन अक्सर एक सवाल में मसरूफ रहता है कि आज कितना पढ़ा है, एक सफ़ा या 10 सफ़ा, एक पारा सूरा मुकम्मल हुई या नहीं। ये अहदाफ अपनी जगह मुफीद हैं, लेकिन आज हम एक मुख्तलिफ सवाल पूछेंगे कि जो पढ़ा है इसमें से कितना दिल तक पहुंचा। इस सवाल का जवाब हमें कुरान के साथ ताल्लुक की एक खूबसूरत सुन्नत में मिलता है, और वो सुन्नत है रुकना, दोबारा पढ़ना और आयत को दिल में उतरने का वक्त देना। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत के साथ क़याम फरमाते रहे और उसे बार बार पढ़ते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। वो आयत ईसा अलैहि सलाम की दुआ के अल्फाज में है, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर तू उन्हें अजाब दे तो ये तेरे ही बंदे हैं, और अगर तू उन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही गालिब और हिकमत वाला है। गौर कीजिए सामने किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उसके बाद अगली आयत पढ़ सकते थे, फिर अगली, फिर पूरी सूरत, मगर एक आयत ने उनके दिल को रोक लिया, और जब दिल रुक गया तो जबान भी उसी आयत पर रुक गई। एक आयत बार बार, यहाँ तक के सुबह हो गई। सामिनिकराम, कोई पूछ सकता है कि एक आयत समझ आ गई तो दोबारा क्यों पढ़ें? जवाब यह है कि कुरान सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ये सिर्फ मालूमात हासिल करने की किताब नहीं। एक आयत पहली मरतबा आपकी जबान से गुजर सकती है, दूसरी मरतबा शायद जहन उसे ज्यादा समझने लगे, तीसरी मरतबा दिल किसी लफ्ज पर रुक जाता है, चौथी मरतबा वही आयत आपकी अपनी जिंदगी का कोई वाकया याद दिलाती है, पांचवी मरतबा शायद आंख नम हो जाए, अल्फाज वही हैं लेकिन हर मर्तबा दिल की कैफियत वही नहीं रहती। इसीलिए कभी तकरार मानी के नए दरवाजे खोल देती है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से एक नहायत खूबसूरत बात मनकूल है, कुरान को ऐसी तेजी से न पढ़ो जैसे शेर जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है, और न उसे बेतवज्जुही से बखेरते चले जाओ, बल्कि उसके अजायब पर रुको, उसके जरिए दिलों को हरकत दो, और तुम्हारी सारी फिक्र सिर्फ सूरत के आखिर तक पहुंचना ना हो। कितना बड़ा उसूल है ولا يكن

स्कैम अलर्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एफ एम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज एक नए जमाने नए स्कैम हम बात करते हैं, चाहे वो टिकट के बारे में स्कैम हो रहे हों, पेड क्विज के बारे में स्कैम हो रहे हों, डिस्काउंट वाले स्टेकेशन पार्टी वाले स्कैम हो रहे हों, या फिर फ्री में आपको कोई फर्नीचर दे रहा हो सोशल मीडिया पे, उस तरह के भी अगर स्कैम हो रहे हो तो हम यहाँ पर बात करते रहते हैं और आपको एक्चुअली में आगाह करते रहते हैं। वेल, आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है फेक इवेंट टिकट के गिव अवे स्कैम। यार, आपको कोई टिकट देगा किसी बड़े इवेंट का, क्या आइए और ले जाइए फ्री में, तो आप तो बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे। लेकिन ये फ्री का टिकट एक स्कैम हो सकता है। जब भी कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है शहर में तो उसके बारे में बड़ा बज होता है, लोग बात करते हैं, सोशल मीडिया पे इसके पोस्ट चलते हैं, वेरीफाइड जो पेज होते हैं वो भी इसके फ्लायर डाल रहे होते हैं, है ना, रेडियो पे अलग अलग जगह बातें हो रही होती हैं, पोस्टर लगे होते हैं, और ये बड़े बड़े सिंगर लेकर आते हैं, तो ये पोस्टर जो लगे होते हैं इसमें सिंगर का पोस्टर होता है, कॉन्सर्ट होता है, म्यूजिक फेस्टिवल है ना, वर्ल्ड कप जैसे बड़े बड़े क्रिकेट मैचेस हैं, तो लोगों में टिकट्स को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज होता है क्योंकि इनके टिकट्स आसानी से मिलते नहीं है। स्कैमर्स एक्चुअली आउट

0: हैं, इस तरह के कॉन्सर्ट का, क्रिकेट मैचेस का, जहां पर टिकट बहुत आसानी से नहीं मिलता है, उसका फायदा उठाते हैं, एक्साइटमेंट और जज्बात का फायदा उठाते हैं। वो सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पर फेक एड्स और पोस्ट वगैरह चलाते हैं जहां पर फ्री वीआईपी पासेस या फ्री प्रीमियम टिकट्स गिव अवे का लालच देते हैं। इनका तरीका बाकी स्कैम से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये आपसे तुरंत पैसा नहीं मांगते हैं, ये चालाकी करते हैं। ये आपको एक लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं, जो दिखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार ये तो टिकट की एक्चुअली में कोई लिंक है, ये ऑफिशियली टिकटिंग वेबसाइट है जहां से किसी वर्ल्ड कप की, किसी कॉन्सर्ट की, किसी म्यूजिक फेस्टिवल की टिकट मिल जाएगी। अपना फ्री प्राइस क्लेम करने के लिए ये आपसे एक फॉर्म भरने को कहते हैं थ्रू लिंक, जिसमें आपकी बहुत सेंसिटिव और प्राइवेट डिटेल्स भी मांगी जाती है, जैसे कि आपका पूरा नाम, घर का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, और यहाँ तक कि अपने ईमेल या अकाउंट के क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड्स भी कहते हैं। इसके साथ ही वो आपसे कहते हैं कि इस लिंक को अपने 5 से 10 दोस्तों को भेज दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कहीं और सोशल मीडिया पे, तभी टिकट जो है वो अनलॉक होगा। जैसे ही आप भेजेंगे 10 लोगों को, ये अनलॉक हो जाएगा, टिकट आपको मिल जाएगा। ऐसा करके वो आपको ना चाहते हुए भी किसी तरह इस फ्रॉड का हिस्सा बनने के लिए कोशिश पूरी कर रहे होते हैं और वो फंसा देते हैं। एक बार जब आप अपनी सारी डिटेल्स उन्हें दे देते हैं तो कोई टिकट वाकई में आती नहीं। स्कैमर्स आपके इस डेटा का यूज करके आपकी ईमेल्स हैक कर लेते हैं, और कई बार एक्चुअली में टिकट आती है, सारी डिटेल्स होती हैं उसमें, लेकिन एक्चुअली में कोई मतलब नहीं होता। मिसाल के तौर पे ABCD मैं लिख दूं किसी टिकट का आईडी नंबर और फिर उसमें सीट नंबर अलाना फलाना डाल दूं और वो आपको सोशल मीडिया पे या फिर आपके व्हाट्सएप पर भेज दूं, तो इससे गारंटी थोड़ी हो जाती है कि आपको टिकट मिल गया। अगर मैं किसी ओरिजिनल वेबसाइट के थ्रू कहीं पेमेंट करूंगा तो मुझे वो जो आईडी या वो टिकट मिलेगा या टिकट का आईडी मिलेगा वो कंफर्म होता है, वो सही होता है। लेकिन आइडेंटिटी थेफ्ट करके भी आपको स्कैम किया जा सकता है। कई बार ये टिकट भेज देते हैं लेकिन उस टिकट का कोई मायने होता ही नहीं है। खैर, अगर आपसे ये सारी डिटेल मांगी जा रही हो, जिसमें वो आपसे पूरा नाम, घर का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर मांग रहे हो, तो आपको चिंता करनी चाहिए। आपके बैंक अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं या आपके नाम पर फ्रॉड लोन्स और फेक आईडीज बनाकर आइडेंटिटी थेफ्ट को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन बचने के 3 आसान तरीके हैं। ऑफिशियल वेरीफाइड हैंडल्स चेक करें। अगर कोई बड़ी कंपनी या इवेंट ऑर्गेनाइजर सच में गिव अवे कर रहे हैं तो वो हमेशा अपने ऑफिशियल वेबसाइट या ब्लू टिक वाले वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही इसकी अनाउंसमेंट करते हैं। दूसरा तरीका है सेंसिटिव इन्फो शेयर करने से बचें। अगर कोई भी आपसे कहे, इवन आपसे अगर ऑफिशियल वेबसाइट में भी इतनी सारी डिटेल्स मांगी जा रही है, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल बचना चाहिए। उसके अलावा काउंटडाउन टाइमर्स और प्रेशर से बिल्कुल ना डरे। इस तरह के स्कैमर्स जो होते हैं, जब आपको टिकट का लालच देते हैं तो वो आपके सामने 2 मिनट लेफ्ट, 1 मिनट लेफ्ट, है ना, 5 मिनट लेफ्ट, ये करा करते हैं। तो इस तरह के काउंटडाउन से बचिए। किसी भी तरह से कोई भी टिकट खत्म नहीं हो रही, बहुत टाइम होता है इन सब के टिकट्स में, बहुत इजीली बिकती भी नहीं है टिकट, सच्चाई तो ये है। और अगर आपसे जरूरत से ज्यादा डिटेल्स मांगी जा रही हो तो आपको खतरे की भनक लग जानी चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज के इस स्कैम के बारे में समझ आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रस्म, लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर एक जजीरा नुमा मुमलिकत है जिसके चारों तरफ समंदर फैला हुआ है। इसीलिए समंदर पुराने और नए कतर की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहा है। मछली और दूसरी समंदरी गजाएं सिर्फ खुराक नहीं बल्कि साहली बस्तियों की याद, कश्तियों के सफर और खानदानी रिवायत से जुड़ी हुई विरासत हैं।

0: FM7 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अब समझ और तर्क के मुताबिक इससे फैज हासिल कर रहा है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान की आज की इस नशिस्त में हम इल्म और अहले इल्म के हवाले से गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। पिछले कई हलकों से हमारी इसी मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। सामिन किराम, इस्लामी तारीख में ऐसे अहले इल्म गुजरे हैं जिनकी ज़िंदगी किताबों, शोहरत और मनासिब से ज़्यादा अल्लाह ताला की में गुजरी। वो अरबी ज़बान के माहिर थे।

0: कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: वेलकम एक्सामिन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के इस हलके में, जहां इल्म और अहले इल्म के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। सामिन इकराम, प्रोग्राम के इस मरहले का इब्तिदा करते हैं एक सवाल के ज़रिए कि अगर कोई पूछे कि कुरान का पहला अमली पैगाम क्या है, वो पहला हुक्म क्या है जो अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को दिया, तो कुरान खुद उसका जवाब देता है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नास उबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तअक़िलून। ए लोगों, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो ये कुरान का पहला उमूमी हुक्म है, उमूमी तौर पर पूरी इंसानियत के लिए। गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नमाज, रोज़ा, ज़कात या हज का हुक्म नहीं दिया, बल्कि फरमाया अपने रब की इबादत करो। क्यों? क्योंकि जब रब से ताल्लुक मजबूत हो जाए तो बाकी तमाम इबादत भी आसान हो जाती है। इबादत दरअसल इंसान को उसके खालिक से जोड़ने का नाम है। इस आयत में एक और नहायत खूबसूरत बात है कि अल्लाह फरमाता है, जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया, यानी तुम इस दुनिया के पहले इंसान नहीं हो ना आखिरी हो। तुमसे पहले कितनी कौमें आईं, कितने बादशाह गुजरे, कितने ताकतवर लोग आए, मगर सब चले गए। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, इसलिए कुरान बार बार हमें दुनिया की हकीकत याद दिलाता है। अल्लाह फरमाता है, वमल हयातु दुनिया इल्ला लाइबु वलहु, दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है। इसका मतलब ये नहीं सामिन किराम कि इस्लाम दुनिया छोड़ने की तालीम देता है, मतलब ये है कि दुनिया को आखिरत पर तरजीह न दो। आज इंसान की पूरी ज़िंदगी काम, कारोबार, तफरीह, मुकाबला और शोहरत के गिर्द घूमती है। सुबह से शाम तक दौड़ है, फिर एक दिन अचानक ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कुरान कहता है, इस दौड़ में अपने असल मकसद को मत भूलो। सामने क्रम, आज बाज़ लोग कहते हैं कि आखिरत का तसव्वुर ये इक्तदार हासिल करने का ज़रिया है या सिर्फ इंसान को बहलाने के लिए है।

0: दाने सजा में खड़ा था। सिपाहियों ने बंदूकें तान ली। आखिरी लम्हे में माफी का हुक्म आ गया। बाद में उसने कहा, उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का हर लम्हा मेरे लिए एक नई नेमत बन गया, क्योंकि जिसने मौत को करीब से देखा हो वो जिंदगी की कीमत जान लेता है। और यही कुरान हमें सिखाता है, हर सांस अल्लाह की आता है, हर सुबह एक नया मौका है, हर दिन तौबा का दरवाज़ा खुला है। इस्लाम हमें यह भी बताता है कि मौत की तमन्ना न करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मुसीबत की वजह से मौत की आरजू न करे, अगर नागुजीर हो तो यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ्फनी इज़ा कानतिल वफातु खैरन ली। ए अल्लाह, जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो मुझे जिंदा रख, और जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे अपने पास बुला ले। ये एक मोमिन का अंदाज है, वो जिंदगी से फरार नहीं चाहता, वो अल्लाह के फैसले पर राजी रहता है। इस्लाम फर्ज से लेकर माशरा तक सबकी सलामती की तालीम देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुआओं में फितनों से हिफाजत मांगा करते थे, क्योंकि अमन एक ऐसी नेमत है जिसकी कदर अक्सर लोग उस वक्त करते हैं जब उनसे छिन जाती है। जिस माशरे में अमन हो, जहाँ लोग इत्मीनान से नमाज पढ़ सकें, जहाँ बच्चे सुकून से तालीम हासिल कर सकें, जहाँ तजारत महफूज हो, जहाँ जान व माल महफूज हो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए इस्लाम हमें फसाद नहीं इस्लाह की दावत देता है, नफरत नहीं खैर खाही की तालीम देता है। कुरान हमें एक अजीम उसूल देता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। यह आयत हमें बताती है कि हकीकी तब्दीली अंदर से शुरू होता है, अगर दिल बदल जाए तो मुआशरा भी बदल जाता है, अगर नीयत दुरुस्त हो जाए तो हालात भी बदलने लगते हैं। जब किसी माशरे से दियानत ख़त्म हो जाए, अमानत ख़त्म हो जाए, कानून की इज्जत ख़त्म हो जाए और लोग एक दूसरे के हकूक़ पामाल करने लगे, तो फिर माशरा आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। कुरान हमें इस अंजाम से खबरदार करता है। इसलिए इस्लाम 5 बुनियादी मकासद की हिफाजत चाहता है, दीन की हिफाजत, जान की हिफाजत, अकल की हिफाजत, नस्ल की हिफाजत और माल की हिफाजत। जब इन चीज़ों की हिफाजत होती है तो माशरा मजबूत रहता है, और जब ये ख़त्म होने लगें तो बेचैनी, खौफ और इंतशार पैदा होने लगता है। तो सामिन किराम, आज की इस पूरी गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि हमारे अहले इल्म बुज़ुर्ग अकाबर उलमा ने अपनी ज़िंदगियाँ कुरान को समझने और उम्मत तक पहुँचाने में वक्फ़ कर दी। इमाम गज़ाली जैसे अजीम उलमा ने कुरान के मानी को नहायत गहराई के साथ बयान किया। सोचिए ज़रा सामिन किराम, 1000 साल पहले लिखा गया इल्म आज भी दुनिया भर में पढ़ा जा रहा है। यही इल्म की बरकत है, यही इखलास का समरा है। माल ख़त्म हो जाता है, शोहरत मिट जाती है, लेकिन इखलास के साथ छोड़ा हुआ इल्म सदियों तक जिंदा रहता है। आज की गुफ्तगू का खुलासा यही है कि कुरान हमें सिर्फ इबादत का तरीका नहीं सिखाता, बल्कि जीने का सलीका भी सिखाता है। वो हमें मौत याद दिलाता है ताकि हम जिंदगी की कदर करें, वो आखिरत याद दिलाता है ताकि दुनिया में इंसाफ कायम करें, वो अमन की नेमत बताता है ताकि हम फसाद से बचें, वो खुद एहतसाबी सिखाता है ताकि हम दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलें, और वो हमें अल्लाह से ऐसा ताल्लुक अता करता है जो इंसान को हर हाल में सुकून, उम्मीद और इस्तकामत देता है। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने, अपनी ज़िंदगियों को उसकी रोशनी से मुनव्वर करने और कुरान को यौम क़यामत हमारे लिए हुज्जत बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम तफ़हीमुल कुरान के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
1: आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
2: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन एफएम 107। दिल से देसी।
3: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें। छोटी सी कहानी हो

0: किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
1: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील संडे टू थर्सडे 6 PM टू 7 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

सच्चा तालिबे हक दलील से खौफजदा नहीं होता, वो सवाल सुनता है और करता है, और अगर अपनी गलती वहां से हो जाए तो उसे कबूल करने की हिम्मत पैदा करता है।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियाँ, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

हमने मूसा को निशानियां अता की थीं, जो सरीह तौर पर दिखाई दे रही थीं। अब ये तुम खुद बनी इसराइल से पूछ लो कि जब मूसा उनके हां आए तो फिरौन ने यही कहा था ना कि ऐ मूसा, मैं समझता हूं कि तू जरूर एक सहर ज़दा आदमी है। मूसा ने उसके जवाब में कहा, तू खूब जानता है कि ये बसीरत अफरोज निशानियां जमीन और आसमानों के रब के सिवा किसी ने नाजिल नहीं की हैं, और मेरा ख्याल ये है कि ऐ फिरौन, तू जरूर एक शामत ज़दा आदमी है। आखिरकार फिरौन ने इरादा किया कि मूसा और बनी इसराइल को जमीन से उखाड़ फेंके, मगर हमने उसको और उसके साथियों को इकट्ठा गर्क कर दिया, और उसके बाद बनी इसराइल से कहा कि अब तुम जमीन में बसो। फिर जब आखिरत के वादे का वक्त आन पूरा होगा तो हम तुम सबको एक साथ ला हाजिर करेंगे। इस कुरान को हमने हक के साथ नाजिल किया है और हक ही के साथ ये नाजिल हुआ है, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें हमने इसके सिवा और किसी काम के लिए नहीं भेजा कि जो मान ले उसे बशारत दे दो और जो न माने उसे मुतनब्बिह कर दो। और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम ठहर ठहर कर इसे लोगों को सुनाओ, और इसे हमने मौका मौका से बतदरीज उतारा है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि तुम इसे मानो या न मानो, जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया है उन्हें जब ये सुनाया जाता है तो वो मुंह के बल सजदे में गिर जाते हैं और पुकार उठते हैं, पाक है हमारा रब, उसका वादा तो पूरा होना ही था, और वो मुंह के बल रोते हुए गिर जाते हैं और इसे सुनकर उनका खुशू और बढ़ जाता है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो उसके लिए सब अच्छे ही नाम है, और अपनी नमाज न बहुत ज्यादा बुलंद आवाज से पढ़ो और न बहुत पस्त आवाज से, इन दोनों के दरमियान औसत दर्जे का लहजा इख्तियार करो, और कहो तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने न किसी को बेटा बनाया, न कोई बादशाही में उसका शरीक है, और न वो आजिज है कि कोई उसका पुश्तेबान हो, और उसकी बड़ाई बयान करो कमाल दर्जे की बड़ाई।

और इसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि जरा आपस में पूछगछ करें। उनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे? दूसरे ने कहा, शायद दिन भर या इससे कुछ कम रहे होंगे। फिर वो बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक्त इस हालत में गुजरा। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। वहां से वो कुछ खाने के लिए लाए और चाहिए कि जरा होशियारी से काम करे, ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहां होने से खबरदार कर बैठे। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संगसार ही कर डालेंगे या फिर जबरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे और